बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप ले रहे।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

बहुत खूब दोस्तों, आदि शक्ति को सनातन निराकार परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी परे एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास, नज़रों से देखें तो कण कण में और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

अपने अंतर्मन के तार उस अलौकिक आदर्श शक्ति से जुड़े हुए महसूस किए होंगे। कुछ ऐसे ही अनुभूति ये भजन सुनकर आपको अवश्य होगी, जिसे लेकर आ रहे हैं संजय गुप्ता जी।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मशरू सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत

आपने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय।

0: माँ संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार।

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाए समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्ते।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण खोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

0: शेरवाली भजन को आवाज दे रहे थे समीर मुंबई से।
1: कल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। भक्ति धारा प्रोग्राम में आज हमारे संग है भक्ति रस की हमारी जयपुर रेडियो की सिंगर मंजू रैना एनसीआर दिल्ली से। वेलकम है मंजू आपका इन भक्ति गीतों के साथ।

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मंजुरैना की आवाज में आपने सुना ये मीरा का लोकप्रिय भजन। ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है।

0: किसकी बारात है माँ?
1: रुक्मनी की। वो बड़े हवेली वाले साहू जी है ना, उनकी बेटी की शादी है।
0: और वो घोड़े पर कौन बैठे हैं?
1: रुक्मनी का दूल्हा। नीचे बैठ मीरा, हिलती रहती है बस।
0: और मेरा दूल्हा कौन है?
1: तेरा दूल्हा वो रहा सामने, गिरधर
0: सवाई गिरधर।

मैं बैरागन होंगी। मीरा का ये सुरीला भजन अपनी आवाज में आप तक पहुंचा रही हैं भक्ति धारा प्रोग्राम में मंजू रैना।

0: शाम मोहे चाकर राखो ना, शाम मोहे चाकर राखो जी। चाकर का मतलब होता है सेवक। अपनी सेवा के लिए मुझे रख लो ना हे शाम। बहुत ही खूबसूरत भजन है ये मीराबाई का, और यदि हम इसको खूब सुनते रहें तो हमें बोध होगा कि जैसे मीरा कह रही हैं हम सबके लिए, हे श्याम, हे मोहन, हे कृष्ण, हे घनश्याम, आप मुझे चाह कर रखो ना, यानी आपकी चाह मेरे प्रति बनी रहे, और यदि आपकी चाह बनी रहेगी हम पर तो हमारा जीवन सरल होगा, सुगम होगा, उत्तम होगा। हमारी सुरीली मेहमान भक्ति धारा के आज की प्रस्तुति में हमारे संग रही एनसीआर दिल्ली की मंजू रैना। मंजू रैना जयपुर रेडियो की बहुत ही सुरीली सुगम संगीत की गायिका है, और हम मंजू रैना का आभार व्यक्त करते हैं भक्ति धारा की इस प्रस्तुति के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मंजू आपका।
1: नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी जयपुर रेडियो सुनने वालों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मैं रिजो। जयपुर रेडियो के माध्यम से आओ झूमे गाएं और रॉकिंग रागा प्रस्तुत करने जा रहा है एक खूबसूरत युगल गीत, जिसे अपने सुरों से नवाजा है विद्या विकास और रामकी ने। आपको बताते चले कि लफ्जों की गुजारिश कार्यक्रम में आज का विषय है चल। तो आइए सुनते हैं चलते चलते फिल्म का ये गाना। इस गाने को फिल्माया गया था भारतवर्ष और ग्रीस में।

मैंने कब कहा वो मिल जाए मुझे, गैर ना हो जाए, बस इतनी सी हसरत है। आइए दोस्तों अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, जिसे गाया है रिजू और सुधी जी ने। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

कम ऑन। ये दिल था कि तरसता था मरासीम के लिए, अब यही तर्क ताल्लुक के बहाने मांगे। अपना ये हाल कि जी हार चुके, लुट भी चुके, और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। फिर किसी की याद में तड़पा दिया, हम कलेजा थाम कर रह गए। जी हां, दिल कहता है चल उनसे मिल, अकेले हम अकेले तुम, इस मूवी का खूबसूरत गाना जिसे पेश करने वाले हैं मैनाक्षी और केतन जी, आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों, अगर आपने किसी के साथ वादा किया है, वायदे निभाइए और जिंदगी के हर मुश्किलात को साथ मिलकर सुलझाइए और संग संग चलते रहिए।
1: तो अभी आप सुनने जा रहे हैं श्वेता और संतोष जी के युगल सुरों में ये खूबसूरत नगमा ओ साथी चल।

दोस्तों, अगर आपने किसी के साथ वादा किया है, वायदे निभाइए और जिंदगी के हर मुश्किलात को साथ मिलकर सुलझाइए और संग संग चलते रहिए। आइए सुनते हैं आखिरी गाना, जिसे सुरों से नवाजा है मानवेंद्र और पूर्ण जी ने। बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, आपके लिए पेश करने जा रहे हैं मानवेंद्र और पूर्ण जी। सुनते रहिए जयपुर रेडियो

0: अंत में जयपुर रेडियो के माध्यम से आप सभी ने सुना आओ झूमे गाए और रॉकिंग रागा के सौजन्य से लफ्जों की गुजारिश। आज का लफ्ज था चल।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम सुपर सिंगर, संगीत जिनकी जान और प्राण है, संगीत से जिनका अभिमान है और संगीत से ही जिनका मान है, उनका नाम है संगमित्रा घोष। दिल्ली से हमारे साथ आज इस सुरीले प्रोग्राम की मेहमान, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है संगमित्रा घोष का। आप न केवल ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी रही हैं, बल्कि वहां की एक ग्रेड आर्टिस्ट रही हैं, और एक ग्रेड आर्टिस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही कलाकार का हम आज जयपुर रेडियो के इस मंच पर वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। क्या कहती हैं संगमित्रा जी, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार, आप सब सुनने वालों को शुभ संध्या। मेरे इस प्रोग्राम में आप सबका दिल से स्वागत। मेरी संगीत की शिक्षा मूलतः कोलकाता में हुई थी। मेरे गुरु किराना घराने से थे। उनके अतिरिक्त मैंने कुछ और गुरुओं से भी तालीम ली, उनमें से श्रीमती शोभना मित्र और जयश्री घोष शामिल हैं। ऑल इंडिया रेडियो के साथ मेरी लंबी सफर रही है। कोलकाता युवावाणी, कोलकाता जनरल और दिल्ली जनरल स्टेशन का मैं एग्रेड आर्टिस्ट रही। विदेश चले जाने के कारण ऑल इंडिया रेडियो से नाता टूट गया।

0: मैं मूल रूप से ख्यालिया हूँ। ठुमरे में मेरी तालीम श्रीमती शांति हीरानंद जी से हुई। कृष्णा दास गुप्ता जी से मैंने कीर्तन सीखी। संगीत मेरी जान और प्राण है। मैं सिखाती भी हूँ। ऑनलाइन सिखाने के कारण दुनिया के दूर दूर कोने में बैठे मेरे स्टूडेंट्स हैं।
1: संगीत जिनकी जान और प्राण है, संगीत से ही जिनका मान और अभिमान है, उन्हीं का नाम है संघमित्रा घोष। आज अपने गीतों के साथ इस मंच पर हमारे जयपुर रेडियो के लिसनर्स के लिए लेके आई हैं अपने गाए कुछ गीत। साहित्य और संगीत में एक रस बहुत प्रधान होता है और उसका नाम है श्रृंगार रस। और श्रृंगार में वियोग श्रृंगार की बहुत प्रधानता है। बहुत सारे गीत वियोग श्रृंगार को लेकर गाए गए हैं। आज कुछ ऐसे गीत लेके आई हैं। पहला गीत बहुत ही लोकप्रिय गीत है, दुनिया में ऐसा कहां सबका नसीब है। आइए सुनते हैं ये पहला गीत हमारी आज की मेहमान सिंगर की आवाज में।

मेरे नगमों से उनका दिल न दुखे, मेरे नगमों से उनका दिल न दुखे, जो कहीं वो मुझ पे गुजर जाए, बेकसी हद से जब गुजर जाए। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गजल हमारी आज की सुपर सिंगर संघमित्रा घोष की आवाज में।

बेकसी हद से जब गुजर जाए। आपने सुनी ये खूबसूरत गजल हमारी आज की मेहमान सिंगर संघमित्रा घोष की आवाज में। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। और अब एक खूबसूरत नगमा, ना रोए दिल कहीं रोने से तकदीरें बदलती हैं, ना रो ए दिल कहीं रोने से क्या तकदीरें बदलती हैं। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा संघमित्रा घोष की आवाज में, आपकी आवाज आपकी पहचान।

ना रो ऐ दिल, कहीं रोने से क्या तकदीरें बदलती हैं। ना रो ऐ दिल, कहीं रोने से क्या तकदीरें बदलती हैं। हमने सुना ये खूबसूरत नगमा हमारी आज की सुपर सिंगर संगमित्रा घोष की आवाज में। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आइए आप सुने। हमारे दिल से न जाना धोखा न खाना, हमारे दिल से न जाना धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान। हाँ जी, दुनिया बड़ी बेईमान। बुरा है जमाना, टूटे ना ये दिल का खिलौना, दुनिया बड़ी बेईमान। आइए सुने ये अगला खूबसूरत गीत हमारी आज की मेहमान सिंगर संगमित्रा घोष की आवाज में।

हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना, दुनिया बड़ी बेईमान हमारे। और जब हम कहते हैं हमारे, आप हमारे, तो कितना इस हमारे शब्द में कितना वजन होता है हमारा कहना। और जब किसी से प्यार हो जाए तो हमारा होना निश्चित है। और ऐसे ही प्यार में एक गीत और गा रही हैं, मोरे सैया जी उतरेंगे पार, मोरे सैया जी उतरेंगे पार, हो नदिया धीरे बहो, चल है नदी की धार, हो नदिया धीरे बहो। आइए सुने ये खूबसूरत गीत संगमित्रा घोष की आवाज में। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुपर सिंगर।

हाले दिल मैं क्या कहूं, मुश्किल है मेरे सामने। हाले दिल मैं क्या कहूं, मुश्किल है मेरे सामने। भोले भाले रूप में कातिल है मेरे सामने। आइए सुने एक खूबसूरत गजल हमारी आज की सुपर सिंगर संगमित्रा घोष की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं संगमित्रा घोष को।

हाले दिल मैं क्या कहूं, मुश्किल है मेरे सामने। आपने सुनी ये खूबसूरत गजल हमारी आज की सुपर सिंगर संघमित्रा घोष की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान। बिना बादल के कभी आपने बिजली चमकती देखी है, लेकिन गीतों में चमकती है, अपनी रोशनी से सबको सराबोर करती है। डारे नजर हल्के हल्के देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के। आइए सुनते हैं ये बिन बादल बरसात कैसे होती है। आवाज हमारी आज की सुपर सिंगर की।

देखो बिजली डोली बिन बादल के, और जब हम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो यूं ही डोलना पड़ता है। जब हम साथ होते हैं तो बात कुछ और ही होती है। और हमारे साथ हैं जयपुर रेडियो के सिंगर संगमित्रा घोष और हमारे वो सारे लिसनर्स जो जयपुर रेडियो और डिजिटल वॉइस वर्ल्ड को बहुत चाहते हैं। हम उनके लिए यही कहेंगे, जो हम पे गुजरती है तन्हा किसे समझाएं, जो हम पे गुजरती है तन्हा किसे समझाएं, तुम ही तो नहीं मिलते जाएं तो किधर जाएं, बस में नहीं वरना हम उड़के चले आए। आइए सुने ये सुरीला सॉन्ग।

आजा के मोहब्बत की मिटने को है तस्वीरें, आजा के मोहब्बत की मिटने को है तस्वीरें, बस में नहीं है वरना हम उड़ के चले आए। इस खूबसूरत गीत के बाद एक मनभावन गीत, और वो मनभावन के गीत में मनभावन के घर जाने की बेला का ये सुरीला सॉन्ग हमारी आज की सुपर सिंगर संगमित्रा घोष की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

बंधी रहे ये प्यार की डोरी हमें ना भुलाना। बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत में श्रृंगार के दोनों पहलू हैं, वियोग भी है और साथ साथ संयोग भी है कि सजन के घर जाना है और हमें ना भुलाने की बात है। और अब उस पवित्र गंगा की बात करते हैं। हमारी आज की सुरीली मेहमान संघमित्रा घोष की आवाज में, आपकी आवाज आपकी पहचान इस सॉन्ग के साथ।

0: इस गीत के बाद तो हम यही कहेंगे कि गंगा को साफ रखें, पवित्र रखें और पाप अपने पास रखें। हमारे साथ रहें दिल्ली की संगमित्रा घोष, जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार संगमित्रा जी। फिर मिलते हैं इसी रास्ते पर, इसी सफर पे, जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान। और अब प्रस्तुत है एक बहुत ही सुरीली कहानी मठाधीश। इसको लेके आई हैं प्रतिमा अखिलेश श्रीवास्तव।
1: नमस्ते, मैं प्रतिमा अखिलेश श्रीवास्तव। प्रस्तुत है मेरी कहानी मठाधीश। मेरा चातक चितवन उसकी प्रेमिल दृष्टि की नित्य ही प्रतीक्षा करता और वह स्वयं को मेरे दृष्टिपथ से बचाते हुए निकल जाता। मेरा मौन निमंत्रण सदा उसके उच्छ्वासों पर सुगंधी बिखेरता और वह दीर्घ निश्वास भर संगियों के संग ज्ञानालाप के सुर छेड़ता मुड़ जाता। उसका संसार विस्तृत था, हाथों में वेद थे, आंखों में पुराण थे और मस्तिष्क में ब्रह्म ज्ञान। मेरे पास क्या था? उसके नाम के मात्र एक झीनी चूनर जिसमें सितारे टके थे उसकी मुस्कानों के, जो मैंने चुराए थे मठ में प्रसाद वितरित करते हुए चुपके से। वह मठ में होने वाली मठाधीश प्रतिस्पर्धा का प्रतिभागी था। 5 ग्रामों के मध्य एक ही मठ था जहां विद्यार्थी आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करते थे तो पुरोहित प्रांगण में बने शिव मंदिर में अर्चन करते थे। वृद्ध परम गुरु के स्थान पर अब नए मठाधीश का चुनाव होना था। परम गुरु अब अस्वस्थ थे, मठाधीश बनना अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना। इस युवा ने तो सभी आचार्य महापंडितों को पराजित कर दिया था और बस अब मुख्य शास्त्रार्थ ही बचा था। मेरे पिताजी मुख्य पुरोहित थे मठ के, तो बात हो रही थी मेरे उन दिवसों की जो सजीव थे, वशीकृत थे, उसके नाम से रचे बसरे थे जिसका नाम चंद्रभान था। क्या सचमुच वह विजयी होगा, मठाधीश बनेगा, ब्रह्मचर्य पालन करेगा? मुख पर तो मधुमय वसंत बिखरा पड़ा है महोदय के। कोई भी किशोरी नैनों के कानन वन में खो जाए, अधरों की मंद मुस्कानों के पोखर में डूब जाए। ऐसे कितने ही विद्वान मठ में शास्त्रार्थ में हिस्सा ले चुके थे, वे पराजित भी हुए। सदा ही मठ में युवाओं का आना जाना और मेरा सबको प्रसाद वितरण करना सामान्य सा था, पर अब क्या विशेष हुआ? क्यों इस चंद्रभान बाबू के प्रेम में स्वयं को विकल करूं थी? यदि ये विजित हुए तब मेरे प्रेम का क्या होगा? क्या त्रषित नैनों को मात्र दर्शन लाभ से ही संतुष्ट होना होगा? क्या जीवन उनकी रसीली बातों का रसपान भी न कर पाएगा? आह, हृदय ने यह कैसी प्रचंड प्रणय डगर पकड़ ली थी। जब से वह हमारे ग्राम में आया उसका आकर्षण ऐसा कि कुछ दिनों से मेरे ब्रह्मांड में नित्य श्वेत पुष्प खिलने लगे थे। हजारों उल्काओं के मध्य बादलों की धरा पर मेरी झीनी अनुरागी चूनर उन्हें स्वप्न में बीनती और वेणु में गूंज लेती। तब मेरी विकलता कि हाय, उसकी एक दृष्टि तो पड़ जाए इस रूप श्रृंगार पर, इस यौवन पर, कहाँ छिपाऊं इन मादक क्षणों को कि किसी की दृष्टि ना पड़े। एक परिपक्व स्त्री को तो सब कुछ छुपाना आता है, किंतु एक किशोरी को, उसे तो सपने भी छिपाने नहीं आते। तो यह रहस्य सखियों में खुल गया। कुहुकनी कुकुठी मैना गाने लगी, हास परिहास के मध्य मुझे इंगित किया जाने लगा और दूर कहीं बांसुरी मेरा और उसका नाम पुकारने लगी। मेरे नाम में क्या रखा, कुछ भी हो, बात तो उसकी हो रही है। यह सब एक स्वप्न सा था। एक दिन सखियों ने कहा, अरे बावरी तजदेश चाह को, तू नहीं जानती यह पाप है, वह आयु में तुझसे अधिक है, वह हमारा गुरु बनेगा, मठाधीश बनेगा। तब मैं खिलखिला देती, वह मात्र मेरा बनेगा। क्या यह कसक उसकी उर में न जागी होगी? भला इतना आकर्षक युवक और ब्रह्मचर्य जीवन, प्रेम तो इससे अधिक बड़ी साधना है। ओ मेघमालाओ, रसा वर्षण करो उसके अंतर मन पर। ओ कुसुम धनवा, प्रेम विशिक तानो तनिक, मेरा उर्पुष्प चुरा के ले गया है वह। मैं झूम उठती, ऋतुराज मेरा प्रेम पल्लवित करो इन गदराए फलों में, इन विकसित फूलों में, बस मेरी ही मेरी सुगंध भर दो। सहस्त्रों निर्झरियां फूट पड़े उसके हृदय में मेरे नाम की। हे गंधवा जाओ जाओ, मेरी मधु स्मृति भर दो उसकी सांसों में। हे चंद्रमालिकाओं, उसके मन के कोने कोने में मेरे सपने, मेरी छवि, मेरी मुस्कानें बसा दो। हे गोरी माँ, मुझे यही वर डाल दो झोली में, अर्थात मैं स्वयं चौकी। यह मैंने क्या मांग लिया? क्या उसकी पराजय मांग ली मैंने? वह तो यहाँ विजयी होकर मठाधीश बनने आया है, उसका मनोबल इतना क्षीण तो न होगा। वह नित्य आता पिताजी से संवाद करता और चला जाता। पिछले एक माह से एक दृष्टि तक मेरी ओर ना की थी उसने। मेरा श्रृंगार, मेरी कोमल भावनाएं संदेखी को पी रही थी भीतर तक। भावनाओं का विहल सागर आंदोलित हो रहा था। कब भंवर उठे, कब मैं डूब जाऊं उसमें ज्ञात नहीं था। कुछ दिनों से इसी ब्रह्मांड से आग के गोले बरसने लगे थे, तारिकाएं टूटने लगी थी, सभी ग्रह नक्षत्र डोलने लगे थे, नव की दीपावलियां मुझे रास नहीं आ रही थी। मन खूब उलाहने बुन रहा था, पर यह दुशाला किसे उड़ाऊं। फिर वह सांझ आई जो अकल्पनीय थी, अविश्वसनीय थी, 16 कलाओं से परिपूर्ण थी, किंतु क्षणिक थी, यह बाद में जान पाई। अवंती मेरी छोटी बहन भागती हुई आई। जी जी जी जी, पिताजी नहीं है घर पर, चंद्रभान बाबू आए हैं, तुम्हें बुलाते हैं। देव देव देव, क्या हो गया यह, वह मुझे बुलाते हैं। बड़ी रहस्यमयी सृष्टि है यह। मैं श्वेत पड़ी जा रही थी जबकि मुझे गुलाबी होना था, और यह सांझ जिसे यह सूचना पाकर गुलाबी होना था, तो वह लाल हुई जा रही थी, संभवतः लाज से। सब रंग उलट पुलट हो रहे थे। क्षण भर पूर्व ही तो मेरा दृष्टिकोण काला सफेद सा था, जो अब हरा हरा सा होने लगा था। अब अवश्य जीवन इंद्रधनुषी हो जाएगा, बैंजदि पुष्प झरेंगे आंचल में मेरे। अवश्य वह आज कहने आए हैं कि वह मुझसे प्रेम करते हैं। सो कपोलों पर चोरी से उभराई हल्की लालिमा लिए सांसें रोक के उनके समक्ष जा खड़ी हुई मैं। यह क्या, वे तो द्वार पर ही थे। जी, मेरा धीमा स्वर गूंजा, स्वर अटका पड़ा था कंठ में, तन कांप रहा था नीचे से ऊपर तक। प्रथम बार हमारी दृष्टि मिली, यूं आभास हुआ शत चषक प्रेम प्रसन्न रसपान कर लिया हो मैंने। बस अभी मत होकर गिरने ही वाली थी कि उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए। फिर प्रभावी कालजयी स्वरों में जो कहा, वह सदियों तक मेरे कानों में गूंजता रहा। सदियों तक इसलिए कि उसके पश्चात एक एक क्षण एक सदी एक युग बन गया था। उन्होंने कहा, चंद्रा, हाँ यही नाम तो है मेरा। उनके अधरों से संबोधित होकर मैं ना रही। चंद्रा चंद्रा चंद्रा, बस यही गूंज रहा था सृष्टि में। चंद्रा, उन्होंने पुनः पुकारा तो मेरी सुधी लौटी। तुम पवित्र आत्मा हो चंद्रा, तुमसे अनुरोध करने आया हूँ, ईश्वर से मेरी पराजय ना मांगना। कहते हैं पवित्र आत्माओं की प्रार्थनाएं स्वीकार्य होती हैं। उनके मुख पर कुछ प्रभावी तत्व था, क्या था नहीं जानती। उन्होंने हाथ जोड़े और तुरंत मुड़कर चले गए। वे चले गए, संसार चला गया, ईश्वर चला गया, सब कुछ तो चला गया, बस रह गया उनका स्वर, मेरी पराजय न मांगना, मेरी पराजय न मांगना। मैं अवाक थी, मैं जड़ थी, मैं पत्थर थी, मैं पानी भी थी, मैं आग बन ही रही थी कि हवा हो गई। हवा बनी तो सूखी पंखुड़ियों से झरने लगी, तब सांझ थरथराने लगी, धरती कांपने लगी। वह फटती ही ना थी कि मैं उसमें समा जाऊं। कहीं से एक ग्लानी का अणु आ बैठा मन में, तो मैं भी एक दीवार के कोने में जा बैठी, दुबकी सी शून्य को निहारती। भीतर कुछ भी नहीं घट रहा था। ऐसा आघात, ऐसा प्रतिदान, आह कि यह क्या बंधन था कि उन्होंने जान लिया कि मैं उनकी पराजय चाहती हूँ। देव, यह अंतरात्मा का एकीकरण नहीं तो क्या था। मेरे अश्रु नहीं बह रहे थे, क्योंकि प्रातः मुख्य शास्त्रार्थ के पश्चात मेरी देह जल अधिष्ठात्री की गोद में समाने वाली थी। उससे पूर्व में ध्यानस्थ हो चुकी थी उनकी विजयी कामना के लिए। उनने कहा था कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार्य होगी, तो मेरे लिए यह वचन ईश्वर के हो गए। और अब ईश्वर में कहाँ सामर्थ्य रह गया कि वह रंच मात्र हेरफेर कर दे मेरे निर्णय में। ईश्वर को उनके वचनों का मान तो रखना ही होगा, मेरी विनती मेरी प्रार्थना स्वीकार करना ही होगी। मैं कब तक ध्यान अवस्था में रही मैं नहीं कह सकती। दूसरे दिन दोपहर समाधिस्थ होने से पूर्व अवंती का स्वर सुनाई दिया, चंद्रभान बाबू विजित हुए, चंद्रभान बाबू विजित हुए। वह चहक रही थी, ताली बजा रही थी, नाच रही थी। पिताजी कहते हैं वे परम ज्ञानी हैं, उन्हें तो विजय होना ही था। मैंने दो अश्रु बूंदे उनके स्वागत में अर्पित की और एक ओर लुढ़क गई। अवंती चीखी, जी जी। तीसरे पहर नेत्र खुले तो पिताजी की मजबूत हथेलियों का कोमल स्पर्श माथे पर पाया। मैं स्वयं को रोक न सकी। किस तंद्रा में 100 प्रश्न पूछ डाले जिसका एक भी उत्तर न दिया उन्होंने। कहाँ गया था उनका ज्ञान। पिताजी, विश्वामित्र, वशिष्ठ, परशुराम, द्रोणाचार्य सहित सभी महागुरु तपस्वी गृहस्थ थे, उनकी जीवन संगनिया थी, सहयोगी थी। तब मठ में ब्रह्मचर्य पालन क्यों। पिताजी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अंतिम प्रश्न पर मैं फफक पड़ी। पिताजी मौन थे। पिताजी संभवतः ठीक से समझ नहीं सके और मेरी तपती देह का ताप उस पर जाकर उड़ेल दिया। बस इतनी ही खबर उड़ी कि पिताजी ने उसे भला बुरा कहा। अवंती ने बताया, वह दोषी है, उसने तुम्हें बहकाया है, ऐसा ही कुछ कहते थे पिताजी। मठ के समस्त आचार्य उत्तर मांगते थे, वह मौन था। मैंने तो उसका तप ही स्वाहा कर दिया था। छी, कितनी स्वार्थी थी मैं। उसका नाम खराब हो गया, वह मुझे कोसता होगा। पिताजी के सम्मान में अब उसकी दृष्टि तक न उठेगी। मैंने प्रत्यक्ष पूछा, तब आगे क्या हुआ? आगे पिताजी बोले, मेरी पुत्री कल मूर्छित हो गई थी। तब किसी पुरुष का धीमा स्वर उभरा, मेरी पुत्री भी। तब तीन स्वर और उभरे, मेरी भी। तब सन्नाटा छा गया, हतप्रभ थी। और कौन मूर्छित हुआ और क्यों? तभी पिताजी लौट आए और हम कक्ष में चले गए। अगले दिन ग्राम में सन्नाटा था, जैसे कोई मर गया हो। हवाएं रुकी थी, जैसे सृष्टि की सांसें रुक गई हों। सूरज तो निकला था, पर अपराध बोध के साथ। क्या अपराध किया होगा उसने, ज्ञात नहीं। मठ द्वार बंद था, चिड़िया तक न चहकती थी। अवंती फुसफुसाई, गई रात चंद्रभान बाबू को मठ से निकाल दिया गया, यह कहकर कि उन्होंने नियम भंग किया। क्या कहती है? मैं चौंकी, कौन सा नियम? मैं पागलों की भांति मठ की ओर दौड़ पड़ी। नहीं नहीं नहीं, यह अन्याय है, द्वार खोलो, वे निर्दोष है। मैं दौड़ी तो अवंती पिताजी भी दौड़े, पड़ोस भी दौड़ा, अन्य प्रतिभागी भी दौड़े, कुछ आचार्य पुरोहित भी दौड़े, कुछ स्त्रियां भी दौड़ी। अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है, यह वाक्य हवा दोहराती हुई पूर्व मठाधीश परम गुरु के कक्ष में गई और द्वार खोल दिए गए जैसे खुले थे मेरे केश हवा में लहराते हुए। मैं शिव प्रतिमा के चरणों में जा गिरी। शिव शपथ, वे निर्दोष है, वे निर्दोष है, उन्होंने एक दृष्टि भी मेरी ओर नहीं की। सबको विश्वास करना ही होगा। यह शक्ति इतनी तीव्र थी, इतनी सत्य थी कि भीड़ अचंभित रह गई। ग्राम अपनी बालाओं का मान करता था, सो कुछ ना बोला। इस शक्ति ने उन चार बालाओं की भी अंतर शक्ति जागृत कर दी और वे भी मेरे पार्श्व में आ खड़ी हुई। यह सच कहती है। समाज स्वयं को धिक करता रहा, अब किस मुंह से उनसे क्षमा मांगी जाए। परम

0: समय जा गिरे। उनका मध्यम स्वर निकला, कल तुम्हारे अतिरिक्त चार बालाएं भी मूर्छित मिली देव प्रकोष्ठ में। परम गुरु ने हाथ जोड़े, क्या इसमें चंद्रभान का दोष है? हम पानी पानी थे। वे पुनः बोले, कन्याओं, तुम्हारा हृदय तोड़ने वाला तुम्हारा दोषी इस मठ का मठाधीश नियुक्त हुआ है। यदि इसका कुछ दोष हो तो इसने एक भी दृष्टि नहीं नहीं नहीं नहीं गुरुदेव, मैं उनके चरणों में जा गिरी। यह तो हमारा दोष है, यह तो हमारी नासमझी है। अन्य कन्याएं भी अश्रु बहा रही थी। हमने पाप किया है, हमने पाप किया है। पाप नहीं चंद्रा, वे आगे बढ़े, मठाधीश चंद्रभान आगे बढ़े। तुमने प्रेम किया है, इन्होंने भी प्रेम किया है, यह पाप कदाचित नहीं है। प्रेम तो ईश्वर का ही रूप है। तुम सब ग्लानी त्याग दो, बस उस प्रेम का स्वरूप बदल दो। उसकी पवित्रता पर आंच न आए। उन्होंने मेरे शीश पर हाथ रख दिया। देव, कि मैं पवित्र हो गई, कि मेरे मनोभाव परिवर्तित हो गए। देव, कि मेरी आत्मा पुनः देह में प्रविष्ट हो गई एक नए रक्त संचार के साथ। देव, कि मैं सुगंध होकर घुलने लगी सरित सरोवरों में। मेरी दृष्टि विस्तार देखने लगी, मेरा हृदय ब्रह्मांड हो गया। मैं उनके चरणों में झुक गई। गुरुदेव, गुरुदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। चंद्रा, उन्होंने दोनों बाहुओं से मुझे उठाया। यह स्पर्श नवीन था, स्नेह युक्त था। मैं जीवन भर तुम सबका ऋणी रहूंगा, वे बोले। तुम्हारे पवित्र प्रेम को पूछकर ही कार्य आरंभ करूंगा। बस तुम सब मुझे सदा प्रसन्न दिखो, मठ में प्रसाद वितरित करती दिखो, नृत्य करती दिखो, खिलखिलाती दिखो, इन पेड़ पौधों में जल सींचती दिखो, तब समझूंगा कि मैं दोषी नहीं। कक्ष में अब मात्र सिसकियां थी, जो सांसें थी नवीन जीवन की। ग्रामवासी अश्रु बहाते थे, मुझ सहित वे सभी किशोरियां भी मुस्कुरा दी। अब हमारे मन स्वच्छ थे। यही तो जादू था उनमें, कि क्षण में हृदय परिवर्तित कर दिया, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। हमें अपने इतने निकट कर लिया कि हम बिना संकोच उनसे मिल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, साथ में अपने हृदय की बातें साझा कर सकते हैं। अब तो हम उनसे रूठ भी सकते हैं, उससे भी अधिक हम ज्ञान पाते हैं उनसे। वे महान हैं, वे हमारे गुरु हैं और हम उनके चंचल चपल प्रिय शिष्याएं, और यही है हमारा अमर प्रेम। धन्यवाद। बताइएगा कहानी कैसी लगी।
1: आपने सुनी कहानी मठाधीश। कहानी आप तक पहुंचा रही थी प्रतिमा अखिलेश श्रीवास्तव। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है।
2: आओ झूमे गाएं, ये है ताजा तरीन एपिसोड। कविता मेहरा के साथ हैं आप। हर शो की तरह इस शो में भी बेहतरीन गाने हैं और कुछ अनोखे और अनकहे किस्से भी बांटे जाएंगे। दोस्तों, आओ झूमे गाएं ग्रुप के सिंगर्स लेकर आए हैं सागर की लहराती धारा जैसे खूबसूरत गीत आपके लिए। कुछ बॉलीवुड के ऐसे गाने जो सागर के किनारे पिक्चराइज हैं। वास्तव में एक बेहतरीन गीत जो वास्तविक जीवन की भावनाओं को उजागर करता है। महान मन्ना डे जी की मधुर आवाज और संगीतकार के ईमानदार प्रयास ने इस गीत को अद्भुत रचना बना दिया है। गीत के बोल हैं, जिंदगी कैसी है पहेली। प्रस्तुत कर रहे हैं अनुजा जी और धन्या जी।

मैं 2023 में ये गाना सुन रही हूँ, पर ऐसा लगता नहीं है। ये गाना 1992 में रिलीज फिल्म का है। जब भी सुनो बिल्कुल नया ही लगता है। धन्यवाद वंश की पूरी टीम को जिसने इतना बेहतरीन गाना बनाया। गीत के बोल हैं, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। प्रस्तुत कर रहे हैं संतोष और विद्या जी।

अगला गीत है झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आनंद बख्शी साहब का मंत्र मुग्ध करने वाला गीत। युगल गायक हैं लता जी और रफ़ी साहब, और सबसे बढ़कर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी। इस शानदार रचना को प्रस्तुत कर रहे हैं प्रशांत नायर और गिरिजा जी।

आवाज़ के मालिक महान रफ़ी जी ने यह सदाबहार गीत गाया है। गीत के बोल है, नज़र न लग जाए किसी की राहों में। यह गीत आज भी उतना ही हरा है जितना 60 साल पहले था और दुनिया के अंत तक रहेगा। संगीत निर्देशक ने इस गीत के लिए संगीत तैयार करते समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को श्रद्धांजलि। आइए, प्रस्तुत कर रहे हैं संगीता और मनीष जी।

1985 में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी सागर। इस फिल्म का एक गाना आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है, सागर किनारे दिल ये पुकारे। किशोर दा की आवाज़ ने इस गीत को अमर कर दिया। हालांकि इस गीत की धुन को वो पहले भी एक बार एक गाने में प्रयोग कर चुके हैं। आइए सुनते हैं संजय जोशी और कविता, यानी कि आपकी होस्ट की आवाज़ में।

अगला गीत है फूल खिले हैं गुलशन गुलशन फिल्म से, मनु भाई मोटर चली पम पम पम, अनूप दुआ और बिमल जी की आवाज़ में। इस शानदार प्रदर्शन का पूरा श्रेय किशोर दादा को जाता है।

अगला गीत है फिल्म पापा कहते हैं। गीत के बोल हैं घर से निकलते ही। उदित नारायण के अलावा किसी अन्य गायक ने इस गाने को इतना ताज़ा और जीवंत नहीं बनाया होगा। अभी भी ऐसा लगता है जैसे ये आज का ही गाना है। आइए, प्रस्तुत कर रहे हैं राजेंद्र जी और मनीषा जी।

धीरे धीरे सुबह हुई, ग्रेट येसुदास जी का यह मेरा पसंदीदा गीत है, राग भैरवी अहीर। सुपर गीत, आइए प्रस्तुत कर रहे हैं मनवेंद्र त्यागी और अर्पणा जी।

एसी बर्मन साहब और महान गीतकार आनंद बख्शी साहब की जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। आइए अगला गीत गा रहे हैं मनप्रीत और डॉली जी, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा।

इसी के साथ अगला और आखिरी गीत सुनते हैं, यो यो हनी सिंह, जिसने पूरी पीढ़ी को 2G में कैद कर लिया। 2010 से 2015 यो यो हनी सिंह का स्वर्ण युग कहलाता है। आइए सुनते हैं मनीष और भौमिक को, आज ब्लू है पानी पानी।

0: वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत इसकी भी आदमी सी है। हाँ, समय को रोक तो नहीं सकते, मगर पलों को यादगार बना सकते हैं, और ऐसे ही पल हमारी शख्सियतें शेयर करती हैं हमसे इन बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। आज के एपिसोड में मेरे तकनीकी सहयोगी हैं श्री ओपी शर्मा। ये बात तो हम सभी समझते हैं कि हमारा शरीर ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो हुआ ना बेहद जरूरी इसका ख्याल रखना। इसमें भी एक जरूरी बात यह है कि शारीरिक के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमें खुशी से तरोताजा रखने में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति जैन, अ सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो पिछले 10 वर्षों से अपने चिकित्सकीय कौशल से लोगों को मानसिक सुदृढ़ता के प्रति सचेत बनाकर समाज में एक आवश्यक चेतना जगाने में प्रयासरत हैं। नमस्कार डॉक्टर प्रीति जैन।
1: नमस्कार सुषमा जी।
0: तो बात करें अच्छे स्वास्थ्य की। अच्छे स्वास्थ्य के प्रति तो हम धीरे धीरे बहुत सजग हो रहे हैं, मतलब इतने लोग जिम जाना शुरू कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा जो अवेयरनेस है वो इसको लेकर आई है। जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है, जो हमारे डेली चोर्स में हमें खुश रखने में, एनर्जेटिक रखने में, पॉजिटिव रखने में मददगार है।
1: जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है कि फिजिकल हेल्थ को लेकर के लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ी है और बहुत ही तेजी से बढ़ी है। लोग जिम भी जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें नो अपने फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पीपल आर डूइंग रियली गुड एफर्ट्स। बट ये भी बहुत जरूरी है समझना कि हमारा मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ। कि आपका शरीर तो संपत्ति है ही है, लेकिन आपका मन भी उससे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं है। इफ अ पर्सन हु इज नॉट मेंटली हेल्दी, देन डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ खराब होगी ही। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, और जो भी आप सोचते हैं, जो आप आपके इमोशनल जो स्टेट है उसका ख्याल रखें, जब जरूरत पड़े तो उसको शेयर भी करें। एक दूसरी जो मुझे समझ में आती है कि लोग क्यों फिजिकल हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयर होते हैं एज कम्पेयर टू मेंटल हेल्थ। वाई? बिकॉज फिजिकल हेल्थ इश्यूज बहुत ही क्लियरली एविडेंट होते हैं, है ना, दिख जाता है। अगर हमारे पेन होता है, तकलीफ होती है, तो हमें पता चल जाता है और हम इवेंचुअली फटाफट से डॉक्टर को दिखाते हैं।

0: डॉक्टर से कंसल्टेशन भी लेते हैं, लेकिन जब मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर करते हैं, है ना, कि कोई बात नहीं, स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है, डेली लाइफ लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है या बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी है, लेकिन तब तक लोग इस चीज को इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि वो बहुत ज्यादा सीवियर ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, इसके प्रति भी सजग होना उतना ही जरूरी है। अब बात करें इस पॉइंट की कि अपनी करियर यात्रा में आपने मेंटल हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर करने का पाथ क्यों चुना, कोई खास वाकया इसका कारण बना, कोई खास माहौल, कोई खास प्रेरणा?
0: जी देखिए, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस रिकॉल करूं तो व्हेन आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग साइकोलॉजी, मेरा इनिशियल जो एक रिफ्लेक्शन था इस सब्जेक्ट को लेकर के वो मेरे इंटरेस्ट के बेसिस पर था। बट जैसे जैसे इस सब्जेक्ट के बारे में और अपने आसपास जो भी मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, जो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मैंने ली इस सब्जेक्ट के बारे में, तो एक चीज थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि लोग जब भी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, पीपल यूज टू से दिस टर्म कि अरे ये तो पागलों का सब्जेक्ट है। हर्ड दिस लाइन नंबर ऑफ टाइम्स इवन, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में है ही नहीं। इट इज स्टिल अ स्टिग्मा इफ यू आर हैविंग अ जनरल प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन, इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दिस इज समथिंग यू कैन शेयर विद अ पर्सन, अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट। इसमें कहीं भी ऐसा कुछ शेमफुल नहीं है, बट पीपल यूजुअली टैग देम। तो तब मुझे लगा कि यस, देयर इज अ स्कोप टू डू समथिंग गुड।
1: राइट, बहुत तेजी से, वैसे तो वक्त की जो बदलाव की रफ्तार है वो बहुत तेज हुई है, कुछ सालों में तो बहुत ही तेज हुई है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले लोग शर्म महसूस करते थे अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, कि लोग उन्हें वही शब्द से नवाजेंगे जो आपने जिसका जिक्र किया कि पागल कह सकते हैं। तो पिछले 10 वर्षों में हर बात में परिवर्तन आ गया है, किस तरह के प्रेशर्स हैं आज इंसान पर?
0: देखिए, अवेयरनेस में भी बहुत चेंजेस आए हैं। अब इतना स्टिग्मा और इतनी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स ऐसा सुनने को नहीं मिलता, फैमिलीज आर बिकमिंग मोर अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट, दे आर कंसल्टिंग। बट टाइम के साथ साथ कुछ कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक कंसर्न बन रही है, और जो हमारे न्यू डायग्नोस्टिक मैनुअल्स हैं उसमें भी वो डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स बन रही हैं। आप देखेंगे कि ये टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पर हम मोबाइल्स और हमारे जो भी गैजेट्स हैं उसके बिना अगर अपन अपनी लाइफ को इमेजिन करें तो वो बहुत ही इनकम्प्लीट सी महसूस होगी। सो दिस इज द एडवांटेज, बट यही एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है जिसका एक्सेसिव यूज नाउ दिस इज कॉजिंग स्ट्रेस, डिजिटल डिमेंशिया विच इज यूजुअली द लॉस ऑफ मेमोरी। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एडवांस्ड यूज ऑफ सच गैजेट्स। सेकेंडली, आपने कहा कि एज ग्रुप के हिसाब से प्रेशर्स क्या हैं, तो हर एज ग्रुप के हिसाब से प्रेशर्स तो अलग अलग हैं, हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बहुत बदले हैं। पहले हमारे टाइम पर एक यंग एडोलेसेंट जो होता है, बच्चा हु इज अराउंड 15 टू 16 इयर्स ऑफ एज, इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था। एक एम्बिशंस होती हैं, लेकिन इतना ज्यादा करियर का प्रेशर या एकेडमिक्स का प्रेशर, इतना ज्यादा टफ कंपटीशन, तो ये प्रेशर्स पहले नहीं थे। और अभी नंबर ऑफ केसेस दोज आई एम टेकिंग इन माय काउंसलिंग सेंटर, दीज आर दी हाईएस्ट केसेस, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ सच काइंड ऑफ डिप्रेशन, वेयर इवन इफ द पेरेंट्स आर पुटिंग प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर ऑन दी स्टूडेंट्स, और दे देमसेल्व्स आर टेकिंग सच प्रेशर।
1: बिल्कुल,
0: दिस इज द मोस्ट कंसर्न।
1: और मैं मान सकती हूँ कि पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, उसके बाद बच्चा अपना गोल बना के बैठ जाता है और अगर उसे सक्सेस नहीं मिलती है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। यानी कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने की जो बात है वो बहुत बढ़ गई है बच्चों में।
0: जी,
1: कोविड जैसा काल जब आया तो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने की प्रेरणा दी उस काल ने हमें, और हमारे आसपास होने वाले जो ये हादसे हैं जो हम सुनते रहते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक दुर्बलता को ही दर्शाते हैं। उन्होंने हमें मेंटल स्ट्रेंथ के प्रति जागरूक किया है, ये तो आप मानती हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ बनने की कवायद में पहली सीढ़ी क्या है?
0: ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि पहली सीढ़ी क्या है, क्योंकि अभी अगर हम इस दौर की बात करें तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारा काम हो रहा है ऑलरेडी, बट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए हमारा जो मन है, जो माइंड है, वो पूरी तरीके से एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, हम उसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन, जो डेटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोसेस करता है। इन द सेम वे हम जो भी चीजें अपने एनवायरमेंट में परसीव करते हैं, वो सारी प्रोसेसिंग हमारे माइंड में होती है, और वो प्रोसेसिंग ही ये डिटरमाइन करती है कि हम अच्छा महसूस करेंगे या खराब महसूस करेंगे, है ना। तो ये प्रोसेसिंग जो है, ये हमारा परसेप्शन कहलाता है साइकोलॉजी में, यानी कि हमारा जीवन में चीजों को देखने का नजरिया, हमारा सोचने का तरीका, द वे वी थिंक, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि हम अगर चीजों को पॉजिटिवली देखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो उसका जो आउटकम इमोशन होगा वो पॉजिटिव होगा। यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी यू नो फीलिंग कंटेंट इन योर लाइफ। और दूसरी तरफ अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने के बाद में भी इफ यू कंटिन्यूअसली यू नो यू हैव अ टेंडेंसी टू थिंक नेगेटिव ओनली, तो डेफिनेटली आप नेगेटिव इमोशंस को अट्रैक्ट करेंगे। और अब तो यू नो वी हैव अ ब्रांच ऑफ, न्यू ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज नोन एज पॉजिटिव साइकोलॉजी।
1: ओके,
0: यस, विच टॉक्स अबाउट ओनली यू नो हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, ग्रेटिट्यूड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, थिंक पॉजिटिव, देन यू विल फील हैप्पीनेस।
1: बिल्कुल सही है, सकारात्मक सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे जिंदगी में तो बहुत कुछ अच्छा, मतलब उन्हीं वाइब्स को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। एज ग्रुप वाइज या जो प्रॉब्लम्स अभी समाज की के प्रेशर्स की वजह से जो यहाँ पर मेरे सामने आती हैं, तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे टीनेजर की। सबसे ज्यादा बदलाव एक टीनेजर, एक ग्रोइंग बच्चा फेस करता है, तो क्या क्या प्रेशर्स आते हैं, कैसे वो उनका सामना करे, स्ट्रांग रहे, माता पिता की भूमिका इसमें क्या रहे, कैसे समझाती हैं?
0: माता पिता की भूमिका एक्चुअली बहुत ज्यादा अहम है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है डिस्कस करने के लिए ना। देखिए सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज है इस एज ग्रुप के साथ में, वो है इनका इमोशनल इम्पल्सिविटी, यानी कि इम्पल्सिव इमोशंस। क्योंकि ये वो उम्र है जहां पर शरीर के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो जाहिर भी है कि बच्चे बहुत जल्दी यू नो इम्पल्सिव हो जाएंगे, रिएक्ट बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसे, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं आज के दौर में जो एड ऑन कर रहे हैं इन हार्मोनल चेंजेस में। पहला फैक्टर जैसा मैंने अभी बात करी कि यूज ऑफ इंटरनेट, है ना, जो सोशल मीडिया पर जो टाइम दे रहे हैं बच्चे, या जो ऑनलाइन गेम्स में दे रहे हैं। आप देखेंगे कुछ ऑनलाइन गेम्स हैं जिनका नेचर ही वायलेंट है, तो एग्रेशन की टेंडेंसी उन गेमिंग्स की वजह से टीनेजर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्लस बिहेवियरल डिग्रेडेशन भी कई चीजों में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब सेकंड अगर हम एस्पेक्ट की बात करें कि माता पिता क्या करें, तो आप मानेंगे नहीं कि सबसे ज्यादा इस उम्र के माता पिता ही परेशान है कि हम हैंडल कैसे करें।
1: राइट,
0: कि क्या ऐसा करें कि बच्चा मान ले। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स जो स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, वो बताते हैं कि टीनेज एक ऐसी उम्र है जब बच्चा पेरेंट के साथ एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है बच्चे को, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो मेजरली आती है लाइफ में, वो इसी उम्र के दौरान आती है, जब हर टीनेजर को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, और पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो मोस्टली अगर इस उम्र के जो पेरेंट्स होंगे, इस उम्र के बच्चों के पेरेंट्स, वो रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से। तो पेरेंट्स के लिए मेरा एक जो मैसेज है वो ये है कि आप पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो आपको अपनी बदलनी पड़ेगी, और आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चे की इमोशनल नीड्स क्या है। हम बिहेवियर शेपिंग की जब बात करते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे में ये परिवर्तन आ जाए, उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आ जाए, वो गुस्सा करता है या कुछ गलत बोलता है, तो ये सब ना करें। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक ऐसा बॉन्ड एस्टैब्लिश करें, एक पेरेंट चाइल्ड ऐसा ट्रस्टवर्दी बॉन्ड एस्टैब्लिश करें कि बच्चा अपनी सारी चीजें आपको बता पाए। मेजरली हो क्या रहा है कि बच्चे शेयर ही नहीं कर रहे हैं, देर आर अ लॉट ऑफ बैरियर्स, और पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक अपना ऐसा एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है जो स्ट्रिक्ट वाला पेरेंटिंग स्टाइल होता है ना,
1: जी
0: तो अगर आप बच्चे के ऊपर इम्पोज करेंगे तो डेफिनेटली वो रिवेंज में या एग्रेशन के अंदर रिजल्ट करेगा. तो बी अ फ्रेंड ऑफ विद योर चाइल्ड एंड ऑलवेज ओपन गुड कम्युनिकेशन चैनल्स.
1: बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, लेकिन आज के पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रिक्ट रहकर ही आज जैसे हम हैं वैसा बनाया, और शायद वही चीज हम बच्चों पर लाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माहौल बदल रहा है, तो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ट्रस्ट वर्दी बॉन्ड बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब सिनेरियो एकदम चेंज हो चुका है। दूसरी प्रॉब्लम पर आते हैं, वो है रिलेशनशिप्स। क्या सोच बन गई है आजकल हमारी मेंटल हेल्थ को, किस तरह इससे नुकसान पहुंच रहा है?
0: ये भी अभी हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसी से काफी हद तक रिलेटेड है. सेकंड जो कंसर्न है रिलेशनशिप्स का, वो भी आप देखेंगे कि जो यंग टीनेजर्स हैं और यंग अडल्ट्स हैं, जो बिल्कुल अराउंड 15 इयर्स से लेकर के आप मान के चलिए 21 इयर्स तक के जो एज ग्रुप है, ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो रिलेशनशिप इश्यूज को बहुत ज्यादा फेस करता है. रिलेशनशिप इश्यूज का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि इस एज ग्रुप के बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं है. मैरिज काउंसलिंग्स होती है, मैरिटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वो जो बहुत ही इमेच्योर इमोशनल प्रोसेसिंग की वजह से हो रही है. तो ये जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन भी बोलते हैं. और इसका सिंपल सा एक मीनिंग ये है कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है और कैसे रेगुलेट करना है, यानी कि कैसे कंट्रोल करना है, ये आपको आना चाहिए. अब क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा इमोशन होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस इमोशन माना जाता है लव, तो यहां पर अगर आपने अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करा तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट तो मेंटल हेल्थ पर आएगा ही.
1: बिल्कुल, तो इमोशनल जो एक मैनेजमेंट है वो सीखना बहुत जरूरी है, और उसमें पेरेंट्स बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। बात करते हैं एक तीसरी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा आजकल हमारे सामाजिक जो आसपास जो भी एक ढांचा बना हुआ है उसमें नजर आ रही है, अकेलापन और अकेले रहने की प्रवृत्ति। ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो कौन सी स्थिति घातक है और उसका निवारण क्या है?
0: देखिए, अकेले रहने की प्रवृत्ति का मतलब है एक तरह का पर्सनालिटी टेम्परामेंट. हम सभी की एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, टेम्परामेंट मतलब हमारा बेसिक एक नेचर. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं थोड़ा सा, जिनको हम कहते हैं कि रिजर्व नेचर के हैं, तो दे आर नोन एज इंट्रोवर्ट्स. तो ये उनकी प्रवृत्ति है, उनका एक टेंडेंसी है कि वो कम बोलते हैं, वो तो ठीक है. लेकिन अगर अकेलापन का मतलब इफ यू आर फीलिंग लोनलीनेस, तो ये स्थिति जो है ये ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर. क्योंकि इसका मेजर एक कारण जो है वो ये है कि जब आप अकेले हैं, यानी कि आपके जो इमोशंस हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर तक रख रहे हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे. तो अंदर रखने का मतलब है यू आर कंटिन्यूअसली सप्रेसिंग दी नेगेटिव इमोशंस. अब जब सप्रेशन होगा तो वो सप्रेशन कहाँ होगा? वो सप्रेशन हमारे ही माइंड की एक डीपर लेयर है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड. तो वो सारा का सारा नेगेटिव इमोशंस सप्रेशन वहीं भरता जाता है. और धीरे धीरे जब कोई भी चीज एक कैपेसिटी से ज्यादा भर जाती है तो डेफिनेटली उसका एक फ्लडिंग होता है, उसका एक आउटबर्स्ट होता है. तो ये स्थिति एक ज्यादा घातक स्थिति हो सकती है, जिसमें काफी लंबे समय तक अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखा जाए और फिर बाद में जाकर के वो एक प्रॉब्लम बने.
1: डॉक्टर प्रीति जैन, क्या लोग अब बेहतर रूप से समझ पाते हैं कि उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में झिझकते नहीं हैं? और खास तौर पर मैं ये सोचती हूँ कि ऑनलाइन काउंसलिंग इस दिशा में काफी बेहतर और विश्वसनीय साबित हो रही है, आपको क्या लगता है?
0: देखिए, चेंजेस तो बहुत ज्यादा आए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, 10 10 भी बहुत ज्यादा है, पिछले 5 6 साल में भी. मतलब रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, और रैपिड चेंजेस आ रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के कि लोग अप्रोच कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट को माइनर इश्यूज के लिए भी, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन हो रहे हैं अब चीजों के. अब ऐसा नहीं कि दे आर वेटिंग फॉर द डिजास्टर व्हेन इट बिकम्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. नो, जनरल जब प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप काउंसलिंग, सो जनरल इश्यूज कपल काउंसलिंग, और मे बी इफ अ केस ऑफ फैमिली थेरेपी, तो जहां पर फैमिली डायनेमिक्स में प्रॉब्लम है वहां पर भी लोग बात कर रहे हैं, तो जनरल इश्यूज पर भी यू नो पीपल आर गेनिंग कंसल्टेशंस. तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स द अवेयरनेस. सेकेंडली इफ यू टॉक अबाउट ऑनलाइन काउंसलिंग, तो ऑनलाइन काउंसलिंग कोविड का जो टाइम था उसमें एक बूम बूम था, एक मतलब एक वरदान साबित हुआ था, जहां पर हम बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू हेल्प करा, जब लोग नहीं मिल सकते थे पर्सन टू पर्सन, जहां पर बात नहीं हो सकती थी. तो ये डेफिनेटली ऑनलाइन काउंसलिंग एक बहुत ही फिजिबल मेथड है, जब आप दूर हैं और आप बात कर सकते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेशंस ले सकते हैं. रिलायबल भी, डेफिनेटली रिलायबल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ओनली सर्टिफाइड काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट ही रजिस्टर्ड हैं. तो दिस इज रिलायबल ऑल्सो.
1: राइट. और ये भी होता है ना कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, सिर्फ उसे देख नहीं रहे हैं, तो हम बहुत कुछ और भी कह पाते हैं. राइट. कैसे पहचाने एक व्यक्ति की उसे जरूरत है किसी से परामर्श करने की, क्योंकि जो अवसाद के क्षण होते हैं वो उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं दे पाते हैं, तो क्या उपाय होता है उस वक्त उसके पास?
0: देखिए, इसमें दो चीजें हैं. पहला है कि एक तो व्यक्ति जो खुद अवसाद में है वो स्वयं इतना जागरूक हो, इतना अवेयर हो कि उसको ये समझ में आए कि नाउ दिस इज ओवर, अब मैं इसको अपने लेवल पर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, और अब मुझे कंसल्ट करना चाहिए, अब मुझे किसी से शेयर करना चाहिए. लेकिन हर केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है. तो उस केस के अंदर इम्पोर्टेंट ये बहुत मायने रखता है कि आपके फैमिली मेंबर्स या जो आपका सोशल सपोर्ट है, आपका सोशल नेटवर्क है, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, वो इतने जागरूक हों आपको लेकर के कि उन्हें आपके अंदर आए हुए ये बदलाव वो महसूस कर सके, वो समझ पाए और वो आपको भी गाइड कर पाए या आपको लेकर के किसी और प्रोफेशनल से वो कंसल्ट कर पाए. सो ऑलवेज देयर आर सम वार्निंग साइंस. वार्निंग साइंस का मतलब दिस इज आउट ऑफ थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड इज अ बॉर्डर लाइन. जैसे कि उदास होना एक नॉर्मल इमोशन है. ऐसा नहीं है कि सैडनेस का मतलब सीधे मैं डायग्नोस करूं कि नहीं ये तो क्लिनिकल डिप्रेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये नॉर्मल इमोशन है. लेकिन अगर कंटिन्यूअसली प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस बनी हुई है और वो आपकी लाइफ के नॉर्मल फंक्शनिंग को भी अब इंटरप्ट करने लग गई है, अब किसी भी चीज में मन नहीं लगता या ऑफिस जाने का मन नहीं करता, कोई काम ही आप नहीं कर रहे हैं, ग्रूम भी नहीं हो रहे हैं ना, और बहुत लंबे समय तक, तो अपने आप में एक वार्निंग साइन है जो दिखने लग जाएगा फैमिली मेंबर्स को भी कि देयर इज सम प्रॉब्लम. वो आपसे पूछेंगे भी कि क्या प्रॉब्लम है. सो इस तरीके से हम अपने ऑब्जर्वेशन और अपनी विजिलेंस के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि किसको कब परामर्श की जरूरत है.
1: राइट. तो मुझे लगता है हर व्यक्ति के पास एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्रेंड्स की बॉन्डिंग हो, फैमिली बॉन्डिंग हो, ताकि उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम चले, बहुत जरूरी होता है.
0: जी, सोशल सपोर्ट तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से दवाई की तरह काम करता है. जैसे आपने अकेलेपन वाला जो क्वेश्चन किया वो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में लोग हो. जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी फैमिली मेंबर से ही बात कर पाए. हो सकता है आप नहीं, आपका इतना उनसे इतना क्लोजनेस हो, आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, वो कोई भी हो सकता है पर्सन, बट सोशल सपोर्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: और हर व्यक्ति अपनी बात को कहने में झिझके नहीं, मतलब जो उसके अंदर है वो कह पाए, ये चीज अपने आप में डेवलप करना हर इंसान के लिए आई थिंक बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो बोलेगा नहीं तो जान नहीं पाएगा कोई भी. बिल्कुल. तो छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे लाइफस्टाइल की, क्या वो हो सकती हैं जिनका समावेश हमें करना चाहिए जिंदगी में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए? मतलब फिजिकली स्ट्रांग के लिए तो बहुत लोग बहुत टिप्स देते हैं, बट मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए हमारी लाइफस्टाइल में हम क्या चेंजेस, छोटी छोटी बातें जो हम इंक्लूड कर सकते हैं?
0: आज की लाइफस्टाइल की अगर बात करूं तो हमारे पास मैं जितनी भी वर्कशॉप्स या सेशंस भी लेती हूं तो आई यूजुअली आस्क कि आप अपने लिए स्वयं के लिए कितना समय निकालते हैं. तो नॉट बिलीव इवन यू नो मोर देन 70% ऑफ पीपल से नो कि इतना हैक्टिक स्केड्यूल है और इतना यू नो हमें टाइम ही नहीं मिलता. तो अपनी मेंटल हेल्थ इतनी आपके लिए इतना ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती कि आप अपने लिए टाइम ना निकाल। तो सबसे पहला है लाइफस्टाइल का फर्स्ट मूल मंत्र कि आप अपने लिए चाहे 10 मिनट निकालें, 15 मिनट या एक आधा घंटा, तो एटलीस्ट अगर आप अपने लिए निकालते हैं एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी के लिए जिसमें आप खुद के साथ समय व्यतीत करें, और हो सके तो मेडिटेशन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है, क्वालिटी ऑफ इमोशंस क्या है, तो आप एटलीस्ट सेल्फ अवेयरनेस रख पाएंगे। सेकेंडली, हमारे और भी बहुत सारी ऐसी एरर्स है जो हम अपनी लाइफस्टाइल में कर रहे हैं, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो या और दूसरे हमारी आदतें हों। जैसा कि आप देखेंगे, एक और दूसरा प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट का, है ना। हम कहते हैं हमारे पास समय की कमी है, और हर कोई, आप देखेंगे एंजाइटी या स्ट्रेस ये इसीलिए ज्यादा है कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और समय हमें नहीं मिल पा रहा, चाहे हमें फैमिली को मैनेज करना है, अपने काम को करना है, या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी है। तो अगर हम अपना टाइम मैनेजमेंट भी ब्यूटीफुली सीख जाते हैं कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को पूरी तरीके से व्यवस्थित रखना है, तो भी आधी आप एंजाइटी और स्ट्रेस कम कर लेंगे, एक वर्क
1: जी
0: लाइफ बैलेंस आपके अंदर बन जाएगा। और इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन करना या जैसे चीजों को टालना, कुछ लोग होते हैं जो अवॉइडेंस ओरिएंटेड कोपिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ना, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे बचते रहते हैं, भागते रहते हैं। अब जितना ज्यादा दूर भागेंगे उतना ज्यादा बड़ी बन के वो प्रॉब्लम सर पे गिरेगी। तो इट इज बेटर दैट वी लर्न प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटेजी, कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है लाइफ में, कोई समस्या आई है, तो हम उसका सामना करें, उसे कन्फ्रंट करें और एज अ चैलेंज लें, तो इट विल बी गुड। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंटर्स आई थिंक व्हाट वी कैन चेंज।
1: सिर्फ IQ ही नहीं बल्कि EQ की भी आज के वक्त में हम बात करते हैं, बहुत अहमियत रखता है EQ, दैट इज इमोशनल कोशियंट। तो कैसे EQ को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अलग-अलग एज ग्रुप्स की बात करें?
0: जी, EQ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी काफी लोगों को ये लगता है कि IQ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट मैं स्कूल स्टूडेंट्स की बात करूं या उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज की, तो ये उसमें कि 95% अगर आ जाता है तो मतलब दे प्री डिटरमाइन दिस थिंग कि अगर मेरे बच्चे का परसेंटेज 90% से ज्यादा है तो ये मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा क्लास। ये क्राइटेरिया है ही नहीं सक्सेसफुल होने का। एक अच्छी लाइफ का मतलब सक्सेसफुल होना नहीं है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। दूसरा, अगर सक्सेस को आप एक क्राइटेरिया मानते भी हैं तो कहीं भी उसका बेसिस IQ नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका IQ ज्यादा होने से आप एक बहुत बड़े प्रोफेशनल बन जाएंगे, लेकिन EQ का मतलब है अपने इमोशंस को बैलेंस करना। तो अगर आप बहुत बड़े प्रोफेशनल बनते हैं लेकिन स्टिल आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, तो किस तरह का क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, और क्या वो सक्सेस रेट जो है वो मेंटेन रह पाएगी आगे? डेफिनेटली नॉट। सो इट क्लियरली शोज कि EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ।
1: लाइफ को मैनेज करने में EQ बहुत काम आता है, ये भी होना बहुत जरूरी होता है और इसे स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी होता है किसी भी एज ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं। और बहुत से लोगों से आप जब काउंसलिंग में मिलती हैं तो आज के माहौल पर जब हम नजर डालते हैं, क्या मानती हैं कि ये जो इतने सुसाइड्स के प्रति एक इंसान जो है उसका दिमाग चला जाता है या कुछ भी गलत करने के पीछे वो दिमाग चला जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे समाज में?
0: देखिए, इसका कारण है रेजिलियंस की कमी होना। रेजिलियंस का मतलब टॉलरेंस या सहनशीलता। हमारा जो माइंड है वो इतना ज्यादा वल्नरेबल हमने बना लिया, यानी कि इतना ज्यादा उसको प्रोन कर लिया है कि थोड़े से स्ट्रेसर्स को भी हम झेल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप डेली माइंडफुलनेस करें, डेली आप अपने लिए समय निकालें। आप देखिए, अगर कोई ऐसी चीज होगी जो कि बहुत ही वीक है तो वो आसानी से टूट सकती है क्योंकि वो कमजोर है, लेकिन अगर स्ट्रांग होगी तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से अगर हमारा माइंड, हमारा मेंटल स्टेट, हमने इतना उसको वीक कर लिया है कि वीक इसलिए करा है कि हम उसको डोजेस नहीं दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हम उसको अच्छी चीजें नहीं दे रहे हैं, अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि बहुत सारा नेगेटिव, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, वरी, ये सब दे रहे हैं। तो वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा, और वीक होने का मतलब है कि अब बहुत जल्दी कोई भी चीज उसको तोड़ सकती है। तो सुसाइड्स का मतलब है कि डिप्रेशन का एक ऐसा स्टेट जब लाइफ में इंटरेस्ट या बिल्कुल लाइफ जो है वो वर्थलेस लगने लग जाए, तब इस तरह का कदम उठाया जाता है। और ये तब भी होता है जब हम समय रहते कंसल्ट नहीं करते, या शायद हमारे आसपास के लोग या वो व्यक्ति खुद ये समय रहते नहीं समझ पाता कि किसी की हेल्प की जरूरत भी है। और इनफैक्ट जो कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं अब, उसमें इतना इम्पल्सिव सुसाइडल अटेम्प्ट है कि मतलब प्रोसेसिंग भी नहीं है उसमें कि कहाँ से वार्निंग साइन आप देखोगे। तो इट क्लियरली शोज कि पीपल आर बिकमिंग वेरी वीक एंड वेरी वल्नरेबल बिकॉज ऑफ देयर मे बी डेली हसल्स और देयर लाइफ प्रेशर्स, वॉट एवर इट इज, बट वी नीड टू बी वेरी कंसर्न अबाउट ऑल दी प्रेशर्स वी आर हैविंग इन आवर लाइफ।
1: एग्जैक्टली और वो कहते भी है ना कि अगर हमें कुछ चीज प्यारी लगती है तो उसके लिए हम वक्त निकाल ही लेते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि अपने आप को 10 से 15 मिनट जरूर दें हर रोज, और वो कुछ करें जो आपको खुशी देता है, अंदरूनी खुशी देता है। क्या आपका फाइनल मैसेज होगा सभी के लिए, एक अच्छी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है इसको समझाने के लिए?
0: जी, मेरा फाइनल मैसेज सिर्फ इतना सा है कि जो हमारा मन है ये बहुत ही खूबसूरत सा एक बगीचा है। जैसे हम अपने खूबसूरत से बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर से फूल लगाते हैं, देख करके ना, पसंद करके लगाते हैं, ऐसे ही अपने इस प्यारे से बगीचे में, इस अच्छे से मन में कोई भी थॉट हम कैसे आने दें। तो बहुत जागरूक रहिए, जो भी आप सोचते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, ये बहुत ही अच्छे से रखिए। पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव इमोशन आप फील करेंगे ही करेंगे।
1: और एक सोशल बॉन्डिंग बनाकर रखिए, अपने आसपास अच्छा ग्रुप हो आपका, चाहे वो दोस्तों का हो, चाहे किसी फैमिली मेंबर का हो, ये भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है, बट बी अवेयर अबाउट द पीपल यू आर चूजिंग इन योर लाइफ। कई बार जो मैंने एडोलेसेंस के केसेस में, टीनेजर्स के केसेस में देखा, वो ये भी प्रॉब्लम है कि किस तरह के लोगों से वो गाइडेंस ले रहे हैं, कौन लोग उनको गाइड कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, सही दोस्त का चयन करना भी उतना ही जरूरी है। यह आपने बिल्कुल सही बात कही है कि फिजिकल हेल्थ को लेकर के लोगों में अवेयरनेस बहुत बढ़ी है और बहुत ही तेजी से बढ़ी है। लोग जिम भी जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें अपने फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए पीपल आर डूइंग रियली गुड एफर्ट्स।
1: राइट,
0: बट ये भी बहुत जरूरी है समझना कि हमारा मेंटल हेल्थ भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ। कि आपका शरीर तो संपत्ति है ही है, लेकिन आपका मन भी उससे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। इफ अ पर्सन हु इज नॉट मेंटली हेल्दी, देन डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ खराब होगी ही। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, और जो भी आप सोचते हैं, जो आपके इमोशनल जो स्टेट है उसका ख्याल रखें, जब जरूरत पड़े तो उसको शेयर भी करें। एक दूसरी जो मुझे समझ में आती है कि लोग क्यों फिजिकल हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयर होते हैं एज कम्पेयर टू मेंटल हेल्थ, वाई? बिकॉज फिजिकल हेल्थ इश्यूज बहुत ही क्लियरली एविडेंट होते हैं, है ना, दिख जाता है। अगर हमारे पेन होता है, तकलीफ होती है, तो हमें पता चल जाता है और हम इवेंचुअली फटाफट से डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर से कंसल्टेशन भी लेते हैं। लेकिन जब मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर करते हैं, है ना, कि कोई बात नहीं, स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है, डेली लाइफ लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है या बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी है। लेकिन तब तक लोग इस चीज को इग्नोर करते रहते हैं जब तक कि वो बहुत ज्यादा सीवियर ना हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, इसके प्रति भी सजग होना उतना ही जरूरी है। अब बात करें इस पॉइंट की कि अपनी करियर यात्रा में आपने मेंटल हेल्थ के लिए लोगों को अवेयर करने का पाथ क्यों चुना? कोई खास वाकया इसका कारण बना, कोई खास माहौल, कोई खास प्रेरणा?
0: जी देखिए, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस रिकॉल करूं तो व्हेन आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग साइकोलॉजी, मेरा इनिशियल जो एक रिफ्लेक्शन था इस सब्जेक्ट को लेकर के, वो मेरे इंटरेस्ट के बेसिस पर था। बट जैसे जैसे इस सब्जेक्ट के बारे में और अपने आसपास जो भी मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, जो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मैंने ली इस सब्जेक्ट के बारे में, तो एक चीज थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि लोग जब भी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, पीपल यूज टू से दिस टर्म कि अरे ये तो पागलों का सब्जेक्ट है। आई हर्ड दिस लाइन अ नंबर ऑफ टाइम्स इवन, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, लोगों की अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में है ही नहीं। इट इज स्टिल अ स्टिग्मा इफ यू आर हैविंग अ जनरल प्रॉब्लम लाइक डिप्रेशन, इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दिस इज समथिंग यू कैन शेयर विद अ पर्सन, अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट। इसमें कहीं भी ऐसा कुछ शेमफुल नहीं है, बट पीपल यूजुअली टैग देम। तो तब मुझे लगा कि यस, देयर इज अ स्कोप टू डू समथिंग गुड।
1: राइट, बहुत तेजी से वैसे तो वक्त की जो बदलाव की रफ्तार है वो बहुत तेज हुई है, कुछ सालों में तो बहुत ही तेज हुई है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले लोग शर्म महसूस करते थे अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, कि लोग उन्हें वही शब्द से नवाजेंगे जो आपने जिसका जिक्र किया कि पागल कह सकते हैं। तो पिछले 10 वर्षों में हर बात में परिवर्तन आ गया है, किस तरह के प्रेशर्स हैं आज इंसान पर?
0: देखिए, अवेयरनेस में भी बहुत चेंजेस आए हैं। अब इतना स्टिग्मा और इतनी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स ऐसा सुनने को नहीं मिलता। फैमिलीज आर बिकमिंग मोर अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट, दे आर कंसल्टिंग। बट टाइम के साथ साथ कुछ कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एक कंसर्न बन रही है, और जो हमारे न्यू डायग्नोस्टिक मैनुअल्स हैं उसमें भी वो डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम्स बन रही हैं। आप देखेंगे कि ये टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पर हम मोबाइल्स और हमारे जो भी गैजेट्स हैं उसके बिना अगर अपन अपनी लाइफ को इमेजिन करें तो वो बहुत ही इनकम्प्लीट सी महसूस होगी। सो दिस इज द एडवांटेज, बट यही एक बहुत बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है जिसका एक्सेसिव यूज नाउ दिस इज कॉजिंग स्ट्रेस, डिजिटल डिमेंशिया विच इज यूजुअली द लॉस ऑफ मेमोरी। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एडवांस्ड यूज ऑफ सच गैजेट्स। सेकेंडली, आपने कहा कि एज ग्रुप के हिसाब से प्रेशर्स क्या हैं, तो हर एज ग्रुप के हिसाब से प्रेशर्स तो अलग अलग हैं, हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ ये बहुत बदले हैं। पहले हमारे टाइम पर एक यंग एडोलेसेंट जो होता है बच्चा, हु इज अराउंड 15 to 16 ईयर्स ऑफ एज, इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था। एक एम्बिशंस होती हैं, लेकिन इतना ज्यादा करियर का प्रेशर या एकेडमिक्स का प्रेशर, इतना ज्यादा टफ कंपटीशन, तो ये प्रेशर्स पहले नहीं थे। और अभी नंबर ऑफ केसेस दोज आई एम टेकिंग इन माय काउंसलिंग सेंटर, दीज आर दी हाईएस्ट केसेस, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ सच काइंड ऑफ डिप्रेशन, वेयर इवन इफ द पेरेंट्स आर पुटिंग प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स, और दे देमसेल्व्स आर टेकिंग सच प्रेशर।
1: बिल्कुल,
0: दिस इज द मोस्ट कंसर्न।
1: और मैं मान सकती हूँ कि पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं, उसके बाद बच्चा अपना गोल बना के बैठ जाता है, और अगर उसे सक्सेस नहीं मिलती है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। यानी कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने की जो बात है वो बहुत बढ़ गई है बच्चों में।
0: जी,
1: कोविड जैसा काल जब आया तो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने की प्रेरणा दी उस काल ने हमें, और हमारे आसपास होने वाले जो ये हादसे हैं जो हम सुनते रहते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक दुर्बलता को ही दर्शाते हैं। उन्होंने हमें मेंटल स्ट्रेंथ के प्रति जागरूक किया है, ये तो आप मानती हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ बनने की कवायद में पहली सीढ़ी क्या है?
0: ये बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि पहली सीढ़ी क्या है, क्योंकि अभी अगर हम इस दौर की बात करें तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारा काम हो रहा है ऑलरेडी। बट वॉट इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखिए, हमारा जो मन है, जो माइंड है, वो पूरी तरीके से एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, हम उसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो डेटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसको प्रोसेस करता है। इन द सेम वे हम जो भी चीजें अपने एनवायरमेंट में परसीव करते हैं वो सारी प्रोसेसिंग हमारे माइंड में होती है, और वो प्रोसेसिंग ही ये डिटरमाइन करती है कि हम अच्छा महसूस करेंगे या खराब महसूस करेंगे, है ना। तो ये प्रोसेसिंग जो है ये हमारा परसेप्शन कहलाता है साइकोलॉजी में, यानी कि हमारा जीवन में चीजों को देखने का नजरिया, हमारा
1: जी
0: सोचने का तरीका, द वे वी थिंक, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि हम अगर चीजों को पॉजिटिवली देखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो उसका जो आउटकम इमोशन होगा वो पॉजिटिव होगा। यू विल बी सेटिस्फाइड, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी यू नो फीलिंग कंटेंट इन योर लाइफ। और दूसरी तरफ अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ होने के बाद में भी इफ यू कंटिन्यूअसली यू नो यू हैव अ टेंडेंसी टू थिंक नेगेटिव ओनली, तो डेफिनेटली आप नेगेटिव इमोशंस को अट्रैक्ट करेंगे। और अब तो यू नो वी हैव अ ब्रांच ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज नोन एज पॉजिटिव साइकोलॉजी।
1: ओके
0: यस, विच टॉक्स अबाउट ओनली यू नो हैप्पीनेस, ऑप्टिमिज्म, ग्रेटिट्यूड। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, थिंक पॉजिटिव, देन यू विल फील हैप्पीनेस।
1: बिल्कुल सही है, सकारात्मक सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे जिंदगी में तो बहुत कुछ अच्छा, मतलब उन्हीं वाइब्स को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। एज ग्रुप वाइज या जो प्रॉब्लम्स अभी समाज की के प्रेशर्स की वजह से जो यहाँ पर मेरे सामने आती हैं, तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे टीनेजर की। सबसे ज्यादा बदलाव एक टीनेजर, एक ग्रोइंग बच्चा फेस करता है, तो क्या क्या प्रेशर्स आते हैं, कैसे वो उनका सामना करे, स्ट्रांग रहे, माता पिता की भूमिका इसमें क्या रहे, कैसे समझाती हैं?
0: माता पिता की भूमिका एक्चुअली बहुत ज्यादा अहम है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है डिस्कस करने के लिए ना। देखिए सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लमेटिक चीज है इस एज ग्रुप के साथ में वो है इनका इमोशनल इम्पल्सिविटी, यानी कि इम्पल्सिव इमोशंस। क्योंकि ये वो उम्र है जहां पर शरीर के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो जाहिर भी है कि बच्चे बहुत जल्दी यू नो इम्पल्सिव हो जाएंगे, रिएक्ट बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसे, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं आज के दौर में जो एड ऑन कर रहे हैं इन हार्मोनल चेंजेस में। पहला फैक्टर जैसा मैंने अभी बात करी कि यूज ऑफ इंटरनेट है ना, जो सोशल मीडिया पर जो टाइम दे रहे हैं बच्चे या जो ऑनलाइन गेम्स में दे रहे हैं। आप देखेंगे कुछ ऑनलाइन गेम्स हैं जिनका नेचर ही वायलेंट है, तो एग्रेशन की टेंडेंसी उन गेमिंग्स की वजह से टीनेजर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्लस बिहेवियरल डिग्रेडेशन भी कई चीजों में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब सेकंड अगर हम एस्पेक्ट की बात करें कि माता पिता क्या करें, तो आप मानेंगे नहीं कि सबसे ज्यादा इस उम्र के माता पिता ही परेशान है कि हम हैंडल कैसे करें।
1: राइट,
0: कि क्या ऐसा करें कि बच्चा मान ले। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स जो स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, वो बताते हैं कि टीनेज एक ऐसी उम्र है जब बच्चा पेरेंट के साथ यू नो एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है बच्चे को, यानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो मेजरली आती है लाइफ में वो इसी उम्र के दौरान आती है, जब हर टीनेजर को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, और पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। तो ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है जो मोस्टली अगर इस उम्र के जो पेरेंट्स होंगे, इस उम्र के बच्चों के पेरेंट्स, वो रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से। तो पेरेंट्स के लिए मेरा एक जो मैसेज है वो ये है कि आप पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो आपको अपनी बदलनी पड़ेगी, और आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चे की इमोशनल नीड्स क्या हैं। हम बिहेवियर शेपिंग की जब बात करते हैं, हम चाहते हैं हमारे बच्चे में ये परिवर्तन आ जाए, उसके व्यवहार में ये परिवर्तन आ जाए, वो गुस्सा करता है या कुछ गलत बोलता है, तो ये सब ना करें। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक ऐसा बॉन्ड एस्टैब्लिश करें, एक पेरेंट चाइल्ड ऐसा ट्रस्ट वर्दी बॉन्ड एस्टैब्लिश करें कि बच्चा अपनी सारी चीजें आपको बता पाए। मेजरली हो क्या रहा है कि बच्चे शेयर ही नहीं कर रहे हैं, देर आर अ लॉट ऑफ बैरियर्स, और पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक अपना ऐसा एक पेरेंटिंग स्टाइल होता है जो स्ट्रिक्ट वाला पेरेंटिंग स्टाइल होता है ना
1: जी,
0: अगर आप बच्चे के ऊपर इम्पोज करेंगे तो डेफिनेटली वो रिवेंज में या एग्रेशन के अंदर रिजल्ट करेगा। तो बी अ फ्रेंड ऑफ विद योर चाइल्ड एंड ऑलवेज ओपन गुड कम्युनिकेशन चैनल्स।
1: बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए, लेकिन आज के पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रिक्ट रहकर ही आज जैसे हम हैं वैसा बनाया, और शायद वही चीज हम बच्चों पर लाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माहौल बदल रहा है, तो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि ट्रस्ट वर्दी बॉन्ड बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब सिनेरियो एकदम चेंज हो चुका है। दूसरी प्रॉब्लम पर आते हैं, वो है रिलेशनशिप्स। क्या सोच बन गई है आजकल हमारी मेंटल हेल्थ को, किस तरह इससे नुकसान पहुंच रहा है?
0: ये भी अभी हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसी से काफी हद तक रिलेटेड है। सेकंड जो कंसर्न है रिलेशनशिप्स का, वो भी आप देखेंगे कि जो यंग टीनेजर्स हैं और यंग अडल्ट्स हैं, जो बिल्कुल अराउंड 15 इयर्स से लेकर के आप मान के चलिए 21 इयर्स तक के जो एज ग्रुप है, ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो रिलेशनशिप इश्यूज को बहुत ज्यादा फेस करता है। रिलेशनशिप इश्यूज का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि इस एज ग्रुप के बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा नहीं है। मैरिज काउंसलिंग्स होती है, मैरिटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वो जो बहुत ही इमेच्योर यू नो इमोशनल प्रोसेसिंग की वजह से हो रही है। तो ये जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ इमोशनल मैनेजमेंट, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चेंट भी बोलते हैं। और इसका सिंपल सा एक मीनिंग ये है कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है और कैसे रेगुलेट करना है, यानी कि कैसे कंट्रोल करना है, ये आपको आना चाहिए। अब क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसा इमोशन होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंटेंस इमोशन माना जाता है लव, तो यहां पर अगर आपने अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करा तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट तो मेंटल हेल्थ पर आएगा ही।
1: बिल्कुल, तो इमोशनल जो एक मैनेजमेंट है वो सीखना बहुत जरूरी है और उसमें पेरेंट्स बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। एग्जैक्टली बात करते हैं एक तीसरी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा आजकल हमारे सामाजिक जो आसपास जो भी एक ढांचा बना हुआ है उसमें नजर आ रही है, अकेलापन और अकेले रहने की प्रवृत्ति। ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो कौन सी स्थिति घातक है और उसका निवारण क्या है?
0: देखिए अकेले रहने की प्रवृत्ति का मतलब है एक तरह का पर्सनालिटी टेम्परामेंट। हम सभी की एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, टेम्परामेंट मतलब हमारा बेसिक एक नेचर। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम बोलते हैं थोड़ा सा, जिनको हम कहते हैं कि रिजर्व नेचर के हैं, तो दे आर नोन एज इंट्रोवर्ट्स। तो ये उनकी प्रवृत्ति है, उनका एक टेंडेंसी है कि वो कम बोलते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर अकेलापन का मतलब इफ यू आर फीलिंग लोनलीनेस,
1: राइट,
0: तो ये स्थिति जो है ये ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि इसका मेजर एक कारण जो है वो ये है कि जब आप अकेले हैं यानी कि आपके जो इमोशंस हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप कहीं ना कहीं उसको अपने अंदर तक रख रहे हैं, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे। तो अंदर रखने का मतलब है यू आर कंटिन्यूअसली सप्रेसिंग द नेगेटिव इमोशंस। अब जब सप्रेशन होगा तो वो सप्रेशन कहाँ होगा? वो सप्रेशन हमारे ही माइंड की एक डीपर लेयर है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, तो वो सारा का सारा नेगेटिव इमोशंस सप्रेशन वहीं भरता जाता है। और धीरे धीरे जब कोई भी चीज एक कैपेसिटी से ज्यादा भर जाती है तो डेफिनेटली उसका एक फ्लडिंग होता है, उसका एक आउटबर्स्ट होता है। तो ये स्थिति एक ज्यादा घातक स्थिति हो सकती है जिसमें काफी लंबे समय तक अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखा जाए और फिर बाद में जाकर के वो एक प्रॉब्लम बने।
1: डॉक्टर प्रीति जैन, क्या लोग अब बेहतर रूप से समझ पाते हैं कि उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में झिझकते नहीं हैं? और खास तौर पर मैं ये सोचती हूँ कि ऑनलाइन काउंसलिंग इस दिशा में काफी बेहतर और विश्वसनीय साबित हो रही है, आपको क्या लगता है?
0: देखिए चेंजेस तो बहुत ज्यादा आए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, 10 भी बहुत ज्यादा है, पिछले 5-6 साल में भी, मतलब रैपिड चेंजेस आ रहे हैं। और रैपिड चेंजेस आ रहे हैं इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के कि लोग अप्रोच कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट को माइनर इश्यूज के लिए भी, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन हो रहे हैं अब चीजों के। अब ऐसा नहीं कि दे आर वेटिंग फॉर द डिजास्टर व्हेन इट बिकम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, नो। जनरल जब प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप काउंसलिंग, सो जनरल इश्यूज कपल काउंसलिंग, और मे बी इफ अ केस ऑफ फैमिली थेरेपी, तो जहां पर फैमिली डायनेमिक्स में प्रॉब्लम है वहां पर भी लोग बात कर रहे हैं। तो जनरल इश्यूज पर भी यू नो पीपल आर गेनिंग कंसल्टेशंस, तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स द अवेयरनेस। सेकेंडली इफ यू टॉक अबाउट ऑनलाइन काउंसलिंग, तो ऑनलाइन काउंसलिंग कोविड का जो टाइम था उसमें एक बूम बूम था, एक मतलब एक वरदान साबित हुआ था, जहां पर हम बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू हेल्प करा, जब लोग नहीं मिल सकते थे पर्सन टू पर्सन, जहां पर बात नहीं हो सकती थी। तो ये डेफिनेटली ऑनलाइन काउंसलिंग एक बहुत ही फिजिबल मेथड है, जब आप दूर हैं और आप बात कर सकते हैं, काउंसलिंग कंसल्टेशंस ले सकते हैं। रिलायबल भी, डेफिनेटली रिलायबल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ओनली सर्टिफाइड काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट ही रजिस्टर्ड हैं, तो दिस इज रिलायबल ऑल्सो।
1: राइट और ये भी होता है ना कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, सिर्फ उसे देख नहीं रहे हैं, तो हम बहुत कुछ और भी कह पाते हैं।
0: जी
1: राइट कैसे पहचाने एक व्यक्ति की उसे जरूरत है किसी से परामर्श करने की, क्योंकि जो अवसाद के क्षण होते हैं वो उसे ऐसा करने की हिम्मत नहीं दे पाते हैं, तो क्या उपाय होता है उस वक्त उसके पास?
0: देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला है कि एक तो व्यक्ति जो खुद अवसाद में है, वो स्वयं इतना जागरूक हो, इतना अवेयर हो कि उसको ये समझ में आए कि नाउ दिस इज ओवर, अब मैं इसको अपने लेवल पर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, और अब मुझे कंसल्ट करना चाहिए, अब मुझे किसी से शेयर करना चाहिए। लेकिन हर केस में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो उस
1: बिल्कुल
0: केस के अंदर इम्पॉर्टेंट ये बहुत मायने रखता है कि आपके फैमिली मेंबर्स या जो आपका सोशल सपोर्ट है, आपका सोशल नेटवर्क है, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, वो इतने जागरूक हों आपको लेकर के, कि उन्हें आपके अंदर आए हुए ये बदलाव वो महसूस कर सके, वो समझ पाए और वो आपको भी गाइड कर पाए या आपको लेकर के किसी और प्रोफेशनल से वो कंसल्ट कर पाए। सो ऑलवेज देयर आर सम वार्निंग साइंस। वार्निंग साइंस का मतलब दिस इज आउट ऑफ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड इज अ बॉर्डर लाइन। जैसे कि उदास होना एक नॉर्मल इमोशन है, ऐसा नहीं है कि सैडनेस का मतलब सीधे मैं डायग्नोस करूं कि नहीं ये तो क्लिनिकल डिप्रेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल इमोशन है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस बनी हुई है और वो आपकी लाइफ के नॉर्मल फंक्शनिंग को भी अब इंटरप्ट करने लग गई है, अब किसी भी चीज में मन नहीं लगता या ऑफिस जाने का मन नहीं करता, कोई काम ही आप नहीं कर रहे हैं, ग्रूम भी नहीं हो रहे हैं ना, और बहुत लंबे समय तक, तो अपने आप में एक वार्निंग साइन है जो दिखने लग जाएगा मैम फैमिली मेंबर्स को भी कि देर इज सम प्रॉब्लम। वो आपसे पूछेंगे भी कि क्या प्रॉब्लम है। सो इस तरीके से हम अपने ऑब्जर्वेशन और अपनी विजिलेंस के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि किसको कब परामर्श की जरूरत है।
1: तो मुझे लगता है हर व्यक्ति के पास एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्रेंड्स की बॉन्डिंग हो, फैमिली बॉन्डिंग हो, ताकि उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम चले, बहुत जरूरी होता है।
0: जी, सोशल सपोर्ट तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से दवाई की तरह काम करता है। जैसे आपने अकेलेपन वाला जो क्वेश्चन किया, वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में लोग हो। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी फैमिली मेंबर से ही बात कर पाए, हो सकता है आप नहीं, आपका इतना उनसे इतना क्लोजनेस हो, आपके फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, वो कोई भी हो सकता है पर्सन, बट सोशल सपोर्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: और हर व्यक्ति अपनी बात को कहने में झिझके नहीं, मतलब जो उसके अंदर है वो कह पाए, ये चीज अपने आप में डेवलप करना हर इंसान के लिए आई थिंक बहुत जरूरी है,
0: बहुत
1: क्योंकि जब
0: जरूरी
1: तक
0: है।
1: वो बोलेगा नहीं तो जान नहीं पाएगा कोई भी। बिल्कुल तो छोटी छोटी बातें होती हैं हमारे लाइफस्टाइल की, क्या वो हो सकती हैं जिनका समावेश हमें करना चाहिए जिंदगी में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए? मतलब फिजिकली स्ट्रांग के लिए तो बहुत लोग बहुत टिप्स देते हैं, बट मेंटली
0: देखिए,
1: स्ट्रांग रहने के लिए हमारी लाइफस्टाइल में हम क्या चेंजेस, छोटी छोटी बातें जो हम इंक्लूड कर सकते हैं?
0: आज की लाइफस्टाइल की अगर बात करूं तो हमारे पास मैं जितनी भी वर्कशॉप्स या सेशंस भी लेती हूँ, तो आई यूजुअली आस्क कि आप अपने लिए, स्वयं के लिए कितना समय निकालते हैं। तो नॉट बिलीव इवन यू नो मोर देन 70% ऑफ पीपल से नो कि इतना हैक्टिक स्केड्यूल है और इतना यू नो हम हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो अपनी मेंटल हेल्थ इतनी आपके लिए इतना ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती कि आप अपने लिए टाइम ना निकाल। तो सबसे पहला है लाइफस्टाइल का फर्स्ट मूल मंत्र कि आप अपने लिए चाहे 10 मिनट निकालें, 15 मिनट या एक आधा घंटा, तो एटलीस्ट अगर आप अपने लिए निकालते हैं एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी के लिए जिसमें आप खुद के साथ समय व्यतीत करें, और हो सके तो मेडिटेशन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्या है, क्वालिटी ऑफ इमोशंस क्या है, तो आप एटलीस्ट सेल्फ अवेयरनेस रख पाएंगे। सेकेंडली, हमारे और भी बहुत सारी ऐसी एरर्स है जो हम अपनी लाइफस्टाइल में कर रहे हैं, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो या और दूसरे हमारी आदतें हों। जैसा कि आप देखेंगे, एक और दूसरा प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट का। है ना, हम कहते हैं हमारे पास समय की कमी है, और हर कोई आप देखेंगे एंजाइटी या स्ट्रेस ये इसीलिए ज्यादा है कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और समय हमें नहीं मिल पा रहा, चाहे हमें फैमिली को मैनेज करना है, अपने काम को करना है, या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें निभानी है। तो अगर हम अपना टाइम मैनेजमेंट भी ब्यूटीफुली सीख जाते हैं कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को पूरी तरीके से व्यवस्थित रखना है, तो भी आधी आप एंजाइटी और स्ट्रेस कम कर लेंगे, एक वर्क
1: बिल्कुल
0: लाइफ बैलेंस आपके अंदर बन जाएगा। और इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन करना या जैसे चीजों को टालना, कुछ लोग होते हैं जो अवॉइडेंस ओरिएंटेड कोपिंग स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ना, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे बचते रहते हैं, भागते रहते हैं। अब जितना ज्यादा दूर भागेंगे उतना ज्यादा बड़ी बन के वो प्रॉब्लम सर पे गिरेगी। तो इट इज बेटर दैट वी लर्न प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रेटेजी, कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है लाइफ में, कोई समस्या आई है, तो हम उसका सामना करें, उसे कन्फ्रंट करें और एज अ चैलेंज लें, तो इट विल बी गुड। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंटर्स आई थिंक व्हाट वी कैन चेंज।
1: सिर्फ IQ ही नहीं बल्कि EQ की भी आज के वक्त में हम बात करते हैं, बहुत अहमियत रखता है EQ, दैट इज इमोशनल कोशियंट। तो कैसे EQ को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अलग अलग एज ग्रुप्स की बात करें?
0: जी EQ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी काफी लोगों को ये लगता है कि IQ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट मैं स्कूल स्टूडेंट्स की बात करूं या उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज की,
1: बिल्कुल
0: उससे कि 95% अगर आ जाता है तो मतलब दे प्री डिटरमाइन दिस थिंग कि अगर मेरे बच्चे का परसेंटेज 90% से ज्यादा है तो ये मतलब सक्सेसफुल हो पाएगा क्लास। ये क्राइटेरिया है ही नहीं सक्सेसफुल होने का। एक अच्छी लाइफ का मतलब सक्सेसफुल होना नहीं है, फर्स्ट पॉइंट तो ये है। दूसरा, अगर सक्सेस को आप एक क्राइटेरिया मानते भी हैं तो कहीं भी उसका बेसिस IQ नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका IQ ज्यादा होने से आप एक बहुत बड़े प्रोफेशनल बन जाएंगे, लेकिन EQ का मतलब है अपने इमोशंस को बैलेंस करना। तो अगर आप बहुत बड़े प्रोफेशनल बनते हैं लेकिन स्टिल आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, तो किस तरह का क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, और क्या वो सक्सेस रेट जो है वो मेंटेन रह पाएगी आगे? डेफिनेटली नॉट। सो इट क्लियरली शोज कि EQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन IQ।
1: लाइफ को मैनेज करने में EQ बहुत काम आता है, ये भी होना बहुत जरूरी होता है और इसे स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी होता है किसी भी एज ग्रुप की जब हम बात कर रहे हैं। और बहुत से लोगों से आप जब काउंसलिंग में मिलती हैं तो आज के माहौल पर जब हम नजर डालते हैं, क्या मानती हैं कि ये जो इतने सुसाइड्स के प्रति एक इंसान जो है उसका दिमाग चला जाता है या कुछ भी गलत करने के पीछे वो दिमाग चला जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे समाज में?
0: देखिए, इसका कारण है रेजिलियंस की कमी होना। रेजिलियंस का मतलब टॉलरेंस या सहनशीलता। हमारा जो माइंड है वो इतना ज्यादा वल्नरेबल हमने बना लिया, यानी कि इतना ज्यादा उसको प्रोन कर लिया है कि थोड़े से स्ट्रेसर्स को भी हम झेल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप डेली माइंडफुलनेस करें, डेली आप अपने लिए समय निकालें। आप देखिए, अगर कोई ऐसी चीज होगी जो कि बहुत ही वीक है तो वो आसानी से टूट सकती है क्योंकि वो कमजोर है, लेकिन अगर स्ट्रांग होगी तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से अगर हमारा माइंड, हमारा मेंटल स्टेट, हमने इतना उसको वीक कर लिया है, वीक इसलिए करा है कि हम उसको डोजेस नहीं दे रहे हैं स्ट्रांग करने के लिए, हम उसको अच्छी चीजें नहीं दे रहे हैं, अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि बहुत सारा नेगेटिव स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, वरी, ये सब दे रहे हैं। तो वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा, और वीक होने का मतलब है कि अब बहुत जल्दी कोई भी चीज उसको तोड़ सकती है। तो सुसाइड्स का मतलब है कि डिप्रेशन का एक ऐसा स्टेट जब लाइफ में इंटरेस्ट या बिल्कुल लाइफ जो है वो वर्थलेस लगने लग जाए, तब इस तरह का कदम उठाया जाता है। और ये तब भी होता है जब हम समय रहते कंसल्ट नहीं करते, या शायद हमारे आसपास के लोग या वो व्यक्ति खुद ये समय रहते नहीं समझ पाता कि किसी की हेल्प की जरूरत भी है ना। और इनफैक्ट जो कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं अब, उसमें इतना इम्पल्सिव सुसाइडल अटेम्प्ट है कि मतलब प्रोसेसिंग भी नहीं है उसमें, कि कहाँ से वार्निंग साइन आप देखोगे, तो इट क्लियरली शोज कि पीपल आर बिकमिंग वेरी वीक एंड वेरी वल्नरेबल बिकॉज ऑफ देयर मे बी डेली हसल्स और देयर लाइफ प्रेशर्स, वट एवर इट इज, बट वी नीड टू बी वेरी कंसर्न अबाउट ऑल दी प्रेशर्स वी आर हैविंग इन आवर लाइफ.
1: एग्जैक्टली और वो कहते भी है ना कि अगर हमें कुछ चीज प्यारी लगती है तो उसके लिए हम वक्त निकाल ही लेते हैं. तो आपने बहुत अच्छी बात की कि अपने आप को 10 से 15 मिनट जरूर दें हर रोज और वो कुछ करें जो आपको खुशी देता है, अंदरूनी खुशी देता है. क्या आपका फाइनल

0: थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव इमोशन आप फील करेंगे ही करेंगे।
1: और एक सोशल बॉन्डिंग बनाकर रखिए अपने आसपास, अच्छा ग्रुप हो आपका, चाहे वो दोस्तों का हो चाहे किसी फैमिली मेंबर का हो, ये भी बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है, बट बी अवेयर अबाउट द पीपल यू आर चूजिंग इन योर लाइफ। कई बार जो मैंने एडोलेसेंस के केसेस में, टीनेजर्स के केसेस में देखा, वो ये भी प्रॉब्लम है कि किस तरह के लोगों से वो गाइडेंस ले रहे हैं, कौन लोग उनको गाइड कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना, सही दोस्त का चयन करना भी उतना ही जरूरी है।
1: चलिए डॉक्टर प्रीति जैन, बहुत खूबसूरत बातें आपने शेयर करी हम सभी से। और जहां तक फिजिकल हेल्थ की बात है वो तो हम सोचते ही हैं, लेकिन आपकी बातें सुनकर ये जरूरत सबके सामने बिल्कुल जग जाहिर हुई है कि मेंटल हेल्थ भी हमारी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर हमें एक खुशनुमा जिंदगी बितानी है। आपका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर प्रीति जैन। थैंक
0: यू, माई प्लेजर।
1: यू सो मच।
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चाचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा,
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चाचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो। तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
5: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो आपकी पहचान।

0: झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। नमस्कार, वरकम, सत श्री अकाल, खंबा खनी, केम छो। जयपुर रेडियो सुन रहे हैं आप और मैं हूँ तनुजा मुंद्रा आपके साथ मुंबई से। एक बार फिर से उपस्थित हूँ हिंदी सिनेमा जगत की एक बेहतरीन, दिलकश और खूबसूरत अदाकारा के गीतों से सजी इस महफिल के साथ। आज मैं जिन मोहतरमा के बारे में आपके साथ बात करने वाली हूँ, वो अपने सह कलाकारों से लेकर अपने चाहने वालों तक हर किसी की ड्रीम गर्ल है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, सुंदरता के प्रतीक हेमा मालिनी जी की। इनकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। खूबसूरती के साथ ही साथ वो बेहद आला दर्जा के कलाकार भी हैं। आइए सुनाती हूँ उनके व्यक्तित्व को चरितार्थ करता ये सुरीला नगमा ड्रीम गर्ल, जिसे पेश करने आ रहे हैं मुकेश गुलानी और विमल सोनी जी।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

बेहद मधुर प्रस्तुति। दोस्तों, हेमा मालिनी जी ने लगभग 150 से भी ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की, परंतु क्या आपको पता है उनका फिल्मी सफर शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म होने के कगार पर था। ऐसा आखिर क्या हुआ था, बताऊंगी। फिल्म कुदरत का ये गीत तूने और रंगीले कैसा जादू किया, जिसे फिल्म में गाया था लता जी ने, और यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत करने आ रहे हैं जूही सिन्हा और डॉक्टर अभिजीत शाह अपनी खूबसूरत आवाजों में। वैसे मैं आपको बता दूं, ये गीत बंगाली गाने हाय की कोरे माने निया से लिया गया है।

वाह क्या बात है। तो हम बात कर रहे थे हेमा जी के फिल्मी सफर के शुरुआती दौर की। 1963 में हेमा जी ने दो तमिल फिल्मों में सह नर्तकी का काम किया। उसी तमिल फिल्म के डायरेक्टर सी वी श्रीधर जी ने उन्हें अपनी फिल्म में नायिका के रूप में लेना चाहा, लेकिन बाद में हेमा जी को यह कहकर वापस भेज दिया गया कि वे बेहद पतली हैं और फिल्मी पर्दे पर नायिका के रूप में अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन हेमा जी निराश नहीं हुई और उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना नसीब आजमाने की कोशिश की और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। 1968 में उन्होंने रजत पर्दे पर आगाज किया राज कपूर जी के साथ फिल्म सपनों के सौदागर से। आइए सुनाती हूँ अगला गीत फिल्म दुल्हन से, आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, जिसे पेश कर रही है बेहद ही आला गायिका इंदिरा जी।

बेहतरीन सुरीली पेशकश। दोस्तों अगला गीत 1981 में प्रदर्शित फिल्म कुदरत से। वैसे क्या आपको पता है इस फिल्म का पहले नाम रखा गया था प्यासा। इस फिल्म का एक बेहद ही चर्चित गीत पेश खिदमत है, हमें तुमसे प्यार कितना, और पेश करने आमंत्रित कर रही हूँ श्रुति और अश्वथ राव जी को।

बेहद खूबसूरत गायकी। दोस्तों, हेमा मालिनी जी द्वारा अभिनीत फिल्म किनारा 1977 में प्रदर्शित हुई। किनारा भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्माण एवं निर्देशन मेघना मूवीज के बैनर तले गुलजार साहब ने किया। आर डी बर्मन के जादुई संगीत से सजी ये फिल्म मध्य प्रदेश के शहर मांडू में एक प्राचीन से किले में फिल्माई गई थी। सुनाती हूँ इसी फिल्म का बेहद खूबसूरत गीत नाम गुम जाएगा, जिसे यहाँ अपने खूबसूरत स्वरों से सजाया है दीप शिखा जी और अनिंदु घोष जी ने।

बहुत खूब। दोस्तों, धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी के प्यार के किस्से फिल्मी गलियारों में बेहद मशहूर थे, पर क्या आपको पता है दो ऐसे कलाकार भी थे जो हमारी प्यारी ड्रीम गर्ल की खूबसूरती के कायल थे। कौन थे वो दो कलाकार, बताऊंगी सत्ते पे सत्ता के इस खूबसूरत गीत के बाद जिसे फिल्म में गाया है आवाज के शहंशाह किशोर कुमार जी ने, और यहाँ हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर आदेश सक्सेना और संजीव कुमार जी।

सुरीली प्रस्तुति। तो हम बात कर रहे थे हेमा जी की खूबसूरती के मुरीद नायकों की। वो थे जितेंद्र और संजीव कुमार जी, दोनों ही हेमा जी की अदाओं के कायल हुआ करते थे। जी हाँ, और सूत्रों की माने तो दोनों ने ही हेमा जी को शादी का प्रस्ताव भी दिया था। जितेंद्र ने तो हेमा जी को सगाई की अंगूठी तक पहना दी थी, पर अंदाज तो हमारे पंजाबी मुंडे धर्मेंद्र पाजी का था, जिस पर हमारी तमेलियन हेमा जी फिदा हो गई। आइए सुनते हैं फिल्म सत्य पे सत्ता का ही एक और बेहतरीन नगमा मुकेश चोपड़ा जी और गायत्री जगन्नाथ जी की आवाजों में।

0: चैन कुली की मेन कुली, मेन कुली की चैन।
1: बहुत खूब दोस्तों, अगली पायदान का जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो फिल्म धर्मात्मा से है। ये फिल्म अंग्रेजी फिल्म गॉडफादर का हिंदी रिमेक है और सूत्रों की माने तो धर्मात्मा फिल्म का टाइटल रोल मटका किंग रतन खत्री से प्रेरित था, जिसे फिल्म में प्रेमनाथ साहब ने अभिनीत किया था। सुनते हैं यही कर्णप्रिय गीत क्या खूब लगती हो, विद्या विकास और वरुण पारिक की सुमधुर आवाजों में।

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। मैं आपकी सखी तनुजा मुंद्रा। आज हम सुन रहे हैं बॉलीवुड के दिलकश और बेहतरीन अदाकारा हेमा मालिनी जी के कुछ बेहद चर्चित गीत और उनकी जीवन के कुछ खट्टे मिट्टे किस्से भी। अगला गीत 1981 में प्रदर्शित फिल्म दर्द से, जिसे संगीत से सवारा है खयाम साहब ने, फिल्म में गाया है लता जी ने और यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं MD त्यागी और संगीता जी अपनी मीठी आवाजों में। गीत के बोल, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

सुमधुर प्रस्तुति। दोस्तों, एक फिल्म आई थी सीता और गीता, जिसमें हेमा जी ने दोहरी भूमिका निभाई थी और इस फिल्म ने हेमा जी के फिल्मी सफर को एक बेहतरीन आयाम भी दिए। इस फिल्म का संगीत बेहद कर्णप्रिय रहा और क्यों न हो भला, इसमें आर डी बर्मन, आशा ताई और किशोर कुमार, ये तीनों ही संगीत के जादूगर जो थे। आइए सुनाती हूँ आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हवा के साथ साथ, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं विश्वजीत और सिमंतिका।

0: आओ झूमे गाए समूह की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया। आभार है जयपुर रेडियो का जिन्होंने हमें ये खूबसूरत मंच उपलब्ध कराया। इन चंद लाइनों के साथ आपसे विदा लूंगी। आपसे जी भर कर दिल की बात ना हो पाई, आपसे जी भर कर दिल की बात ना हो पाई, जो कभी ना भूले ऐसी मुलाकात ना हो पाई। फिक्र ना करो आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, फिर हाजिर हो जाऊंगी अगले सप्ताह एक और कार्यक्रम के साथ। तो चलिए इजाज़त दीजिए अपनी सखी तनुजा मुंद्रा को, फिर आ जाऊंगी अगले सप्ताह कुछ खट्टे मीठे किस्से कहानी और आपके पसंदीदा गीतों के साथ। शुभ रात्रि, शब खैर, अपना ध्यान रखिए।
1: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
3: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों?

0: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
1: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
0: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर
1: चाचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
0: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
1: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
4: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
3: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
5: हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हमें गायन ग्रुप के द्वारा आयोजित इस संगीत में शाम में मैं प्रियंका आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज के प्रोग्राम का थीम एक ऐसे स्पेशल कलाकार हैं जिन्होंने अपनी म्यूजिक की जर्नी 1974 में हिट फिल्म खुआरा बाप के म्यूजिक से शुरू की थी। इट्स बीन ऑलमोस्ट 48 इयर्स नाउ और संगीत से जुड़े रहने का इनका सफर अभी भी बेहद हसीन रूप से चल रहा है। और क्यों ना हो, इनकी फैमिली इतनी म्यूजिकल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ राजेश रोशन जी की, जिनके पिता श्री रोशन लाल जी फिल्म म्यूजिक कंपोजर थे और माता ईरा रोशन वॉज अ बंगाली सिंगर। तो चलो शुरू करें अंताक्षरी, मेरा मतलब आज का राजेश रोशन स्पेशल प्रोग्राम सिर्फ जयपुर रेडियो पर। राजेश जी फिल्म जूली को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट मानते हैं। इसका टाइटल ट्रैक रोमांस और प्यार में इतना डूबा हुआ था कि इट रिप्रेजेंटेड द यर्निंग्स ऑफ टू पीपल इन लव। लता जी सिंपली स्वेप्ट इन टू द सॉन्ग एज इफ शी ओन्ड इट। It became the anthem of the youth in 1974. And before Julie, Asha Bhosle was the go-to singer for all seductive songs. But Julie ne shrotaon ka Lata ji ki vocal personality ko perceive karne ka nazariya hi badal diya. Chaliye sunte hain ye super duper hit song, Bhul Gaya Sab Kuch, Anuja aur Dushyant se.

वाह अनुजा दुष्यंत, माहौल बना दिया आपने एकदम मस्त वाला। नेक्स्ट सॉन्ग ब्रॉट ऑल द टाइटन्स ऑफ म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्री टुगेदर, लता जी, किशोर दा, अमिताभ बच्चन, रेखा एंड ऑफ कोर्स राजेश रोशन। उफ क्या डेडली कॉम्बिनेशन है ना। अमित जी स्पेशली टुक आउट टाइम टू गेट हिमसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सॉन्ग, इतना दिल के करीब था ये सॉन्ग उनके। राजेश जी ने लता जी और किशोर दा को बस एक ही बात बोली, ऐसे गाइए जैसे वह एक वैली में गांव के एक युगल जोड़े हैं जो पहाड़ों में गा रहे हैं। बस फिर तो क्या था, रिजल्ट हम सबके सामने है जो हमने हजारों लाखों बार ऑलरेडी सुना है। रेखा और अमिताभ से बेहतर कौन स्क्रीन पर जस्टिस कर पाता है इसे। चलिए सुनते हैं अनदर सुपरहिट सॉन्ग फ्रॉम मिस्टर नटवरलाल, जो सुनाने आ रहे हैं हमें हमारे प्यारे दोस्त रेज और डॉली।

क्या बात है रेजन डॉली, इतनी सुंदर गायकी को कैसे दिल ना दे। बोलो दोस्तों, अगला गीत एकदम अलग जॉनर का है। बासु चैटर्जी वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म स्वामी, जो कि 1977 में रिलीज हुई। बासुदा ने राजेश रोशन को गायक चुनने का पूरा पूरा चॉइस दिया। येशुदास जी को चुना गया फ्रॉम डाउन साउथ। इनिशियली बासुदा वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग रफी साहब टू सिंग दिस वन, बट एक बार फाइनल सॉन्ग सुना तो रेस्ट वॉज हिस्ट्री। येशुदास जी का गाया हुआ ये आउटस्टैंडिंग गीत का करूं सजनी सुना रहे हैं हमें आज जगदीश जी, आइए सुनते हैं।

जगदीश जी कमाल ही हो आप. यू नो दोस्तों, जगदीश जी नेवर मिसेज एन अपॉर्चुनिटी टू सिंग. दैट्स हाउ मच ही लव सिंगिंग. चलिए आगे बढ़ते हैं. राजेश जी के परिवार में कई फिल्मी हस्तियां हैं. उनके भाई राकेश रोशन अपने टाइम के पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर रह चुके हैं और अब तो डायरेक्शन भी करते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो राजेश जी'स नेफ्यू ऋतिक रोशन. हिज फर्स्ट फिल्म वॉज वेरी स्पेशल टू हिम, कहो ना प्यार है. टाइटल सॉन्ग वॉज मेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड बिलीव इट और नॉट, ऑर्केस्ट्रा में भी कोई बदलाव नहीं किया गया था. और क्या धूम मचाई है इस फिल्म के म्यूजिक ने. और ऋतिक रोशन बिकेम द हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन. है ना, कन्फेशन, आई हैड अ स्टार क्रश ऑन हिम टू. इस फिल्म के सभी गाने सुपर हिट थे. आपको आज हम टाइटल ट्रैक सुना रहे हैं मानवेंद्र और मेरी यानी प्रियंका की आवाज में, जिसका ओरिजिनल प्लेबैक दिया है उदित नारायण एंड अलका याग्निक ने. लेट्स डू दिस देवा, होप यू लाइक इट.

वाह, एकदम बीच शोर पे ले जाता है ना ये सॉन्ग। मजा आ गया। राजेश रोशन ने लता जी के साथ बहुत काम किया। लता जी उनकी और हम सबकी भी फेवरेट सिंगर्स में से एक हैं। अगला गीत आओ मनाएं जश्ने मोहब्बत सुनते हैं प्रेरणा और बिमल से, जो लता जी और किशोर कुमार ने गाया है। मूवी दूसरा आदमी और फिल्माया गया था ऋषि कपूर और नीतू सिंह पे।

खूब गाया प्रेरणा और बिमल, छा गया आप लोग। दोस्तों अगला गीत मेरा बहुत ही फेवरेट है। इस गीत के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजी, गुजराती, बंगाली और पंजाबी में आई लव यू बोलना सीख गए। आपने गेस कर ही लिया होगा, फिल्म खुद्दार से अंग्रेजी में कहते हैं सॉन्ग। हमें सुना रहे हैं रति और मंदार। ओरिजिनल प्लेबैक था किशोर कुमार और लता जी का। लेट्स हियर इट आउट।

0: वाह, क्या पेपर नंबर है ना, मस्ती भरा, फुल ऑफ एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गीत एक कॉन्वर्सेशनल सॉन्ग है और इसकी सिंप्लिसिटी ही इस मूवी और इसके म्यूजिक की यूएसपी है। मूवी है बातों बातों में, सॉन्ग सुनिए कहिए। आर्टिस्ट किशोर कुमार आशा भोसले, 1979 में रिलीज हुई थी ये फिल्म और इसको टीना मुनीम और अमोल पालेकर पर फिल्माया गया था। आज हमको सुना रहे हैं गगन और सुजा, चलिए सुनते हैं।
1: सुनिए
2: कहीं कहीं
1: सुनिए सुनिए

वाह, अच्छे से सुना ना आपने ये सॉन्ग। दोस्तों आपको याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं आओ झूमे गाएं के सुरीले सिंगर्स को जयपुर रेडियो पर, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रियंका। नेक्स्ट पेशकश है इनकार मूवी का गीत छोड़ो ये निगाहों का इशारा, जो कि रिलीज हुई थी 1977 में। द सॉन्ग इज संग बाय किशोर कुमार एंड आशा भोसले, और म्यूजिक ऑफ कोर्स राजेश रोशन जी ने दिया है। हमें आज गायत्री और मुकेश जी सुना रहे हैं। लेट्स हियर देम आउट।

वाह वाह। दोस्तों एक बार दाद देना चाहूंगी आओ झूमे गाए के सुरीले सिंगर्स को जो आपके सामने ये अनमोल नगमे पेश कर रहे हैं। मूविंग ऑन, यू विल बी शॉक टू नो राजेश जी प्लेड द डफली फॉर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इन द सॉन्ग झूठ बोले कौआ काटे फ्रॉम द मूवी बॉबी, जो कि लता जी ने गाया था और तभी से लता जी को राजेश रोशन पसंद थे। अगला गीत हमें प्रेरणा और संजय सुना रहे हैं एक रास्ता है जिंदगी, जो कि वंस अगेन लता जी का ही गाया हुआ है फिल्म काला पत्थर से, और लता जी का साथ निभाया था इसमें किशोर कुमार ने। लेट्स हियर इट।

1977 में रिलीज हुई दूसरा आदमी का यह गीत क्या मौसम है, प्रेम में आदमी को खो जाने को कहता है। आदमी के इस तरह खोने से ही उसे जिंदगी का मतलब समझ में आने लगता है। What a beautiful thought, है ना? राजेश रोशन के मधुर संगीत और बजरू सुल्तानपुरी के इस गीत को लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी ने अपनी आवाजें दी। गीत के बोल दरअसल प्रेम को एकांत का सबसे सुनहरा पल कहते हैं। गीत के बोल तथा संगीत की वजह से ही ये गीत इतना पॉपुलर है और काफी लोगों को बहुत पसंद है, और आज हमें ये सुना रहे हैं प्रशांत एंड मनीषा। लेट्स हियर देम आउट।

0: संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बना के रखें, हमेशा हमेशा हमेशा। ओके, गुड नाइट।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आप सभी के पसंदीदा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगु में, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसे सितारा से जो कि अपनी बेहतरीन गायकी और जिंदा दिल स्वभाव से हर किसी के दिल को छू लेते हैं। ये है ट्विन सिटी अम्बाला से किशोर सुशील जी। स्टूडियो में स्वागत है आपका किशोर जी।
2: सपना जी, सबसे पहले तो मैं जयपुर रेडियो और आपका और जगदीश जी का बहुत बहुत आभारी रहूंगा मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपना गायन प्रदर्शन यहाँ कर सकूं।
1: किशोर जी, ये हमारी खुश नसीबी है कि आपके जैसे कलाकार यहाँ पर आए हैं।
2: तो अम्बाला भी खुश नसीबी है
1: जी। अम्बाला शहर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है किशोर जी। यहाँ न सिर्फ एक एयरबेस है बल्कि साइंटिफिक और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ बनते हैं। लेकिन आज हम आपके नजरिए से आपके शहर को देखना चाहेंगे और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि इतनी खूबसूरत आवाज के मालिक किशोर जी आखिर हैं कौन।
2: सपना जी, जहाँ तक शहर का सवाल है तो मेरा बहुत छोटा सा शहर है, हरियाणा में पंजाब के बॉर्डर के साथ लगता हुआ अम्बाला शहर
1: जी,
2: जिसमें एयरबेस भी है, मिलिट्री एरिया भी बहुत बड़ा है यहाँ पे, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की जहाँ तक बात की जाती है, पहले ये सारा है अम्बाला कैंट में। लेकिन मैं अम्बाला सिटी से बिलोंग करता हूँ जो कि सिटी ऑफ मिक्सर एंड ग्राइंडर्स का कभी था।
1: अच्छा,
2: इसके नाम से ये जाना जाता था। और जहाँ तक बात आप मेरी कर रहे हैं तो मैं कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्टर हूँ।
1: अच्छा,
2: और संगीत मेरा बचपन से मेरा शौक रहा है।
1: क्या बात है। अच्छा, तो अम्बाला को ट्विन सिटी कहा जाता है क्योंकि अम्बाला शहर भी है और अम्बाला छावनी भी। तो जाहिर सी बात है कि आप अपना जो आपने अपना प्रोफेशन बताया है उसमें ट्रैवलिंग काफी रहती होगी, तो आप दोनों ट्विन सिटीज में किसको अपने दिल के करीब ज्यादा मानते हैं? हम ये नहीं सुनना चाहेंगे कि आप अम्बाला शहर से हैं तो इसलिए अम्बाला शहर आपके दिल के करीब है, दोनों में से कौन सा ज्यादा खास है?
2: जी, मेरे लिए वैसे तो अम्बाला कैंट ज्यादा खास है। मैं बिलोंग चाहे मैं अम्बाला सिटी से करता हूँ लेकिन वो वेल प्लान्ड है।
1: अच्छा,
2: अब थोड़ा चेंज हो गया है कि ये अम्बाला सिटी में जो हुडा के जो सेक्टर्स बन गए हैं वो भी वेल प्लान्ड हैं। लेकिन फ्रॉम माय चाइल्डहुड, जब से मैं अम्बाला में आया हूँ तब से मुझे अम्बाला कैंट ही ज्यादा पसंद रहा है।
1: जी, अम्बाला के छावनी से एक मेरी भी बड़ी प्यारी सी याद जुड़ी हुई है। जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो कुरुक्षेत्र में एनआईटी में मैं पढ़ी हुई हूँ, तो हमारी जो ट्रेन होती थी अक्सर वहाँ पे रुकती थी और वहाँ पर या तो हम ब्रेड पकौड़े या चने, उनके पूरी चने मिलते थे जिसका स्वाद अभी तक हमारी जुबान पे बसा हुआ है।
2: सपना जी, वो रहेगा, बरकरार रहेगा क्योंकि उनका भी एक अपना एक जैसे कहा जाए कि स्टाइल होता है
1: जी,
2: उनका
1: जी,
2: भी अपना एक अंदाज है बनाने का उसको, जिसके लिए कि आप लोग अपनी उंगलियां भी चाट लें।
1: बिल्कुल सही कहा किशोर जी,
2: जी।
1: इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: किशोर जी आगे चलते हैं, तो हम और हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि संगीत में आपकी रुचि कैसे बनी। जैसे आपका काम तो कंस्ट्रक्शन के साथ है, तो कंस्ट्रक्शन और संगीत का देखा जाए तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है आपस में, पर आपने इतनी अच्छी जो आपकी गायकी है, क्या आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है कभी?
1: सपना जी देखिए, जहाँ तक दिलचस्पी की बात है तो दिलचस्पी तो मुझे बचपन से ही थी, और मेरी मदर बताया करती हैं कि मेरा पहला गाना ही था कि जूली आई लव यू।
0: अरे वाह क्या बात।
1: और इसके बाद मेरे जब मैंने अपनी स्कूलिंग में अपने आप ये मानिए कि नाइन्थ या एट्थ क्लास में था, तो मुझे रिदम की कोई नॉलेज नहीं थी कि रिदम क्या होती है।
0: अच्छा।
1: तो यहाँ पे हमारे अम्बाला सिटी में एक बहुत ही मशहूर सिंगर थे, जिनको के हर स्टेज पे मतलब जिनका के बहुत जम के स्वागत होता था, और बहुत अच्छी गायकी भी खैर वो करते
0: जी,
1: थे
0: जी।
1: अब भी करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार मुझे सुना और मैंने जब गाना स्टार्ट किया तो वहाँ रिदमिस्ट भी थे, तो उन्होंने रिदम बजाना शुरू किया। मुझे तो मैंने जैसे एज आई टोल्ड यू के मुझे तो रिदम की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी
0: जी।
1: तो उन्होंने एक गीत गाया था मेरे लिए जो कि मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था, और डिस्करेज मतलब किया गया था मुझे बहुत बुरी तरह से।
0: अच्छा।
1: कि गाना भी नहीं आता बजाना भी नहीं आता।
0: ओहो हो हो हो। अच्छा।
1: और मैं अननोइंगली, मुझे पता ही नहीं था, वो गाना नया नया अभी लॉन्च हुआ था और रिलीज हुआ था
0: जी।
1: तो मुझे उस गाने के बारे में भी इतना नहीं पता था, तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि तेरी इंसल्ट हो रही है यहाँ पे और तुझे रिदम में आना पड़ेगा। तो फिर मैंने रिदम की प्रैक्टिस शुरू की, और एक दिन वो भी आया कि फिर वो बेस्ट सिंगर ऑफ अम्बाला का अवार्ड भी मुझे मिला।
0: अरे क्या बात।
1: उस दिन से मतलब मैं उनका हमेशा ही आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे डिस्करेज किया, तो आज मैं इतना अच्छा गा पा रहा हूँ।
0: जी जी।
1: जो भी
0: जो, जो आपके आलोचक थे सबसे पहले, वही आपकी प्रेरणा बन गए कि आप संगीत में इतना आगे निकल गए। तो यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि किशोर सुशील जी इतने मंझे हुए कलाकार हैं, इतने मंझे हुए गायक हैं कि एक एक सुर की गहराई में वो उतर जाते हैं। अभी आप हमारे श्रोतागण इनकी गीत सुन ही रहे हैं, तो अपने आप ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका जो स्तर है गायकी का वो कितना ऊंचा है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने कभी कभी इनके साथ ड्यूएट्स गाए हुए हैं, युगल गीत गाए हैं, और इनसे मुझे बहुत सीखने को भी मिला है।
1: तो सपना जी, आप ये आपकी अपनी रुचि थी, ये आपके अपने एफर्ट्स थे जो आप आज एक मानी हुई कलाकारों में मतलब आपकी गिनती
0: है। तो जी आपका बड़प्पन है कि आप ऐसे शब्द मेरे लिए यूज कर रहे हैं। तो किशोर जी, आप स्टेज परफॉर्मेंसेस तो ऑब्वियसली बहुत जगह दे चुके होंगे अब तक, तो हमारे श्रोताओं को बताएं आप कहाँ कहाँ दे चुके हैं और सबसे ज्यादा मजा आपको कहाँ आया?
1: जी देखिए, जहाँ तक तो मेरा सोलो परफॉर्मेंसेस का दौर चला, जब मैं स्कूलिंग में था तो स्कूल में भी प्रोग्राम हुए, उसके बाद कॉलेज में भी हुए, फिर उसके बाद हम कई बार जैसे कहीं प्रोग्राम होता था बहुत बड़ी स्टेज पे, तो मैंने चंडीगढ़ में भी गाया है, शिमला में भी गाया है, जम्मू में भी गाया है।
0: जी जी।
1: तो उसके बाद म्यूल का दौर आया
0: जी।
1: मैंने आपको बताया कि मैं कोई ट्रेंड सिंगर तो हूँ नहीं,
0: जी,
1: जो
0: जी।
1: कुछ भी हूँ बाथरूम में सिंगिंग सीखी, और उस म्यूल तक का सफर ऐसे ही रहा
0: जी। लेकिन इतनी खूबसूरत आवाज की सौगात तो आपको भगवान से मिली ही है
1: जी। ये माँ सरस्वती की देन है, इसमें मैं कुछ डिजर्व नहीं करता हूँ
0: जी।
1: तो ये आपका बड़प्पन है जो आप इतनी बात मेरे लिए बोलते हैं और मानते हैं इस चीज को
0: जी।
1: तो सपना जी, ये बहुत से तो शोज ऐसे भी हैं जो मुझे याद नहीं है, मेरे फ्रेंड्स जब मुझे याद कराते हैं तो मुझे याद आता है, बहुत जगह की, और सबसे ज्यादा मजा मुझे आया उज्जैन में।
0: अच्छा।
1: जब स्म्यूल का दौर था
0: जी,
1: वो हमारी बहुत अच्छी मीट थी, और बहुत हर चीज मतलब आप कहें कि पूरी व्यवस्था से किया हुआ काम था हर चीज का।
0: अच्छा।
1: साउंड भी बहुत अच्छी थी, वो कीनल जी ने और मैंने मिलके किया था
0: जी, कीनल त्रिपाठी जी।
1: जी कीनल त्रिपाठी जी,
0: जी जी।
1: तो सबसे ज्यादा मुझे उस मीट में सबसे ज्यादा मजा आया।
0: क्या बात है, बहुत ही दिलचस्प रह रही हैं आपकी बातें, और इसी के साथ हम एक छोटा सा विराम लेंगे और आपका अगला गीत सुनाते हैं
1: जी। बहुत शुक्रिया।

0: किशोर जी, आप एक बहुत ही सफल प्रोफेशनल हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को भी आपने असिस्ट किया है। आप जैसे कि आपने खुद ही बताया, आप कई शहरों में अपना एक सिंगिंग में नाम बना चुके हैं और जब परफॉर्मेंसेस देते हैं, खैर मैं तो इसकी गवाह हूँ, तो लोग वाह वाह करते रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने परिवार और बिजनेस की या प्रोफेशन की जिम्मेदारियों के साथ आप संगीत का तालमेल कैसे बनाते हैं?
1: सपना जी, ये बनाने से नहीं बनता, ये अपनी, देखिए मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी को सिर्फ जिंदगी काटने के लिए नहीं होती, जिंदगी जीने के लिए होती है। और मैं सोचता हूँ कि अपने लिए हर इंसान को एक दो घंटा निकालना चाहिए, जो कि शाम को मेरा निकलता था।
0: बिल्कुल सही।
1: और अपने सारे जितना भी मेरे प्रोफेशनली जो मेरे पे जिम्मेदारियां थी, वो मैं शाम को 6 या 7 बजे तक उनको निपटाने की कोशिश करता था। और उसके बाद मतलब मेरा जो टाइम रहता था वो 8 to 10 का ही रहता था हमेशा। इसीलिए आपने शायद स्मूल पे भी देखा होगा, जो भी मेरे कोलैब्स वगैरह इनवाइट्स वगैरह आते थे वो रात को 8 और 10 के बीच में आते थे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस का टाइम भी वही था मेरा, और मेरा अपना अपने लिए अपनी जिंदगी जीने के लिए वो टाइम था।
0: जी जी, बिल्कुल सही। तो क्या आपके परिवार में किसी और को भी रुचि है संगीत की?
1: जी देखिए, वैसे तो ये जो संगीत की रुचि जो आप मुझे कह रही हैं, ये मुझे मेरे पेरेंट्स से सौगात में मिली है, क्योंकि मेरे फादर साहब भी मोहम्मद रफी साहब को बहुत अच्छा गाया करते थे।
0: क्या बात है, वाह।
1: और मेरी मदर भी भजन बहुत अच्छे गाया करती थी, तो उनके साथ भजन भी मैंने कई बार गाए हैं।
0: जी जी जी जी, तो आपके बच्चों में आए हैं ये संगीत?
1: मेरे बच्चों में मेरे सबसे छोटी बिटिया और बेटे को ही ज्यादा शौक है
0: जी,
1: बाकी किसी को नहीं है। मेरी वाइफ तो बिल्कुल इसके हिंदी सॉन्ग्स के तो बिल्कुल आप मानिए कि वो
0: उनको शौक
1: है बिल्कुल, क्योंकि वो पंजाबी हैं। अच्छा, तो उनको अच्छा, पंजाबी सुनना ज्यादा अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। यानी कि आपके परिवार में अभी जैसे आपके माता पिता हो गए, आप हो गए, और आपके बच्चे, 3 जनरेशन में ये जीन्स में आ गई है संगीत की बात, ठीक है ना?
1: जी,
0: बहुत बढ़िया। यहीं पर हम आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं।

0: जा। किशोर जी कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे कोई खड़ा रहता है जो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, उसे मॉरल सपोर्ट देता है। तो यहाँ जहाँ पर भी आप अपने आप को इस वक्त पा रहे हैं, आप अपनी कामयाबी का और संगीत का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा किसे देना चाहेंगे?
1: देखिए, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ सपना जी,
0: जी
1: तो मैं अपनी कामयाबी और अपनी मेहनत का, जो मुझे ये रास्ता जिन्होंने दिखाया, वो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं।
0: जी जी,
1: ये मेरी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ।
0: जी जी जी।
1: अब अगर हम संगीत की बात करें
0: जी,
1: तो संगीत में ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं जितना भी गा पाया, जितना भी मैंने जितना भी सीखा, जितना भी मैं कर पाया, वो सारा मैं उन्हीं सिंगर के मतलब ये वो करना चाहता हूँ, उन्हीं को श्रेय देना चाहता हूँ मैं ये सारा,
0: जिन्होंने आपकी आलोचना की,
1: जिन्होंने मुझे बहुत बैडली डिस्करेज किया था कि गाना भी नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, तो ये मैं श्रेय उन्हीं को दूंगा। संगीत के मामले में हमेशा मेरा श्रेय उन्हीं को रहेगा।
0: जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ पर भी हों, वो शख्सियत इस वक्त ये प्रोग्राम जरूर सुन रहे हों, ताकि वो खुद ही जान सकें कि उनकी एक छोटी सी बात,
1: एक दिलचस्प बात और भी, सॉरी मैं आपको
0: नहीं कोई बात नहीं बताइए,
1: वो समय भी आया कि जब उन्होंने आके मुझे गले लगाया और बोला कि मुझसे एक बार सॉरी फील किया कि मेरे वो जो अल्फाज थे वो गलत थे,
0: इससे बड़ी बात
1: मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
0: जी,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इसके लिए कोई भी ट्रॉफी, कोई भी अचीवमेंट मेरे लिए इससे बड़ी नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल,
1: जिसने मुझे डिस्करेज किया,
0: इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ही और कोई नहीं।
1: कंपटीशन में गा के मैंने बेस्ट सिंगर ऑफ अम्बाला का अवार्ड जीता।
0: क्या बात है, क्या,
1: और फिर उनका गले लगाना, सोने पे सुहागे का काम किया उसने।
0: वाह, तो किस गीत पर आपको अवार्ड मिला था किशोर जी?
1: सपना जी, ये था मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुमरू।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। किशोर जी का बहुत ही लोकप्रिय गीत है और इसे गाना कोई आसान नहीं, क्योंकि इस गाने में वेरिएशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि किशोर जी का
1: जी, वो टाइम था जब मैं सिर्फ 22 साल का था।
0: अरे वाह,
1: आज के टाइम में अगर आप मुझे कहें कि मैं यूडलिंग कर पाऊंगा तो वो मेरे आप बस में नहीं है, क्योंकि किशोर जी भी, किशोरदा हमारे जो थे, वो भी 50 के बाद यूडलिंग नहीं कर पाए थे।
0: अच्छा,
1: तो नाउ आई
0: नहीं मालूम था। अच्छा अच्छा,
1: नाउ आई एम आल्सो इन 50।
0: अच्छा, ठीक है ठीक है।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, बहुत मजेदार रही
1: आपके साथ। सपना जी, मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, जयपुर रेडियो और जगदीश अरोड़ा जी, और आपका तहे दिल से
0: धन्यवाद।
1: मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे आपने ये इतना माना और मुझे ये मौका दिया कि मैं जयपुर रेडियो के माध्यम से अपने गाने सुना पाऊँ।
0: आपका धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए दो शब्द कहते जाइए।
1: देखिए सपना जी, सबसे पहले तो मैं अपने सारे जो भी हमारे जयपुर रेडियो के श्रोता हैं उन सबका आभार धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वो अपने बहुत ही अपने बिजी टाइम में से अपना टाइम निकाल के जो सुनते हैं।
0: जी जी।
1: और श्रोताओं में से मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे जो स्म्यूल के सिंगर्स भी हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: स्पेशली उन सिंगर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए स्म्यूल हमारा स्ट्रेस बस्टर है।
0: जी।
1: हम अपना गाना गा के यहाँ पे अपनी जो दिन भर की टेंशन है, दिन भर का जो भी हमारा ऊंच नीच हुआ हमारे साथ, उसमें हम निपट के उससे हम ये अपना टेंशन दूर करने के लिए हम उसको अपना स्म्यूल पे आए।
0: जी बिल्कुल।
1: अब कई सिंगर्स का क्या रहता है कि वो अपने इनवाइट्स खोलते हैं, किसी को रिस्पांस नहीं देते।
0: जी।
1: ये बहुत गलत बात है। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप खुशी बांटेंगे तो खुशी लौट के भी आएगी आपके पास।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो मैं हर सिंगर से यही कहूंगा कि आप अपने ज्वाइनर्स को जरूर सपोर्ट करें, डिस्करेज ना करें। किसी ने अगर बुरा भी गाया तो उसको भी दो शब्द उसके लिए एनकरेजमेंट के लिए बोल दिए कीजिए।
0: बिल्कुल सही।
1: और आपस में प्रेम प्यार वाली भावना मन में रख के कमेंट करें उनको।
0: जी बिल्कुल, इज्जत करिए और इज्जत करवाइए। अगर जी, कोई जी, अपने
1: मेरे शब्द आपने कह दिए मेरे शब्द,
0: कोई अपनी व्यस्त जिंदगी में से दो मिनट भी निकाल के अगर हमारे साथ गाना गाने आ रही है तो खैर, पहली बात तो ये कि हम ये बोलने वाले या ये टोहने वाले, मापदंड करने वाले कोई भी नहीं है कि कोई अच्छा गा रहा है या बुरा, क्योंकि हम उस स्तर पर हम नहीं गाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई हमें ज्वाइन कर रहा है तो जरूर उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने सपना जी,
0: बहुत खूब। तो दोस्तों ये थी हमारी मुलाकात अम्बाला के किशोर सुशील जी के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ है टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।
2: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मनपसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आम सी जिंदगियों के चमकते सितारों से, जो अपनी चमक से हमारे कुछ लम्हों को खास बना जाते हैं। आज हम अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं एक बेहद खूबसूरत और बेहद टैलेंटेड गायिका सोनिका को, जो कि शहर अंबाला की शान है। सोनिका जी, हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सपना, एंड थैंक यू सभी श्रोताओं गण को मेरा नमस्ते, और थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: ये हमारी खुश नसीबी है। हमारे सुनने वाले बेताब हैं ये जानने के लिए कि आज की जो हमारी जगमगाता सितारा हैं, उनकी पहचान क्या है और आपके शहर अंबाला की खासियत क्या है।
2: मेरी पहचान छोटी सी पहचान है सोनिका। आई एम सोनिका
1: जी,
2: और बेसिकली आई एम फ्रॉम कानपुर। कानपुर शहर से हूँ और मेरी शादी अंबाला में हुई है
1: जी,
2: और अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। दो बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं, गुड़गांव में रहते हैं।
1: तो आपकी जो सारी परवरिश हुई है वो कानपुर की ही हुई है?
2: सारी परवरिश कानपुर की हुई है, मेरे पेरेंट्स कानपुर से ही हैं।
1: अच्छा अच्छा, तभी आपकी हिंदी जो है इतनी अच्छी है,
2: शुद्ध है।
1: जी, तो खैर ये तो बड़ी जाहिर सी बात है कि हर एक लड़की को अपना मायका बहुत ही पसंद होता है, पर आपके लिए इन दोनों शहरों में से आपके दिल के कौन से ज्यादा करीब है, अम्बाला या कानपुर?
2: एक्चुअली मैं बोलूँ तो अंबाला ज्यादा करीब है, कानपुर पसंद है। वहाँ पे मैंने बचपन बिताया है, लेकिन वो क्राउडेड ज्यादा लगता है मुझे।
1: अच्छा,
2: और मुझे
1: अच्छा।
2: पीसफुल जगह ज्यादा पसंद है, तो अंबाला मुझे बहुत छोटा सा और पीसफुल शहर लगता है
1: जी।
2: तो इसलिए मुझे अंबाला ज्यादा पसंद है कानपुर से ज्यादा।
1: वैसे आपने जो ये शब्द यूज किया है छोटा, कहने को तो शायद ये छोटा हो, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है हरियाणा के लिए भी और भारत के लिए भी। तो आप अपने शब्दों में बताइए कि आप अंबाला को किस तरह देखती हैं।
2: अंबाला हिस्टोरिकल अगर आप देखा जाए तो हिस्टोरिकल में भी, मतलब कि जब जिस टाइम पर ब्रिटिश और मुगल ने यहाँ पर रूल किया था उस टाइम से है
1: जी।
2: तो बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर रहा है ये उस टाइम का
1: जी।
2: और अंबाला फोर्ट है यहाँ पे
1: जी, जी।
2: जो 14th सेंचुरी से है।
1: अरे वाह, क्या बात है।
2: हाँ जी, और एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सब लोग बहुत अच्छी हैं।
1: बिल्कुल सही।
2: इकोनॉमिक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं।
1: अच्छा,
2: कपड़ा यहाँ बहुत फेमस है।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि खासकर पंजाब के लोग, अगर किसी के घर में कोई शादी आती है तो वो पंजाब को छोड़ के सीधा रवाना हो जाते हैं अंबाला की तरफ शादी की शॉपिंग के लिए।
2: राइट। यहाँ के कुछ एक दो फेमस शॉप्स हैं।
1: अच्छा।
2: तो जहाँ पर लोग स्पेशल शॉपिंग करने आते हैं।
1: क्या बात है। तो सोनिका, इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: तो सोनिका, अपनी बातों का हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। संगीत के बारे में कुछ बताइए कि आपकी रुचि क्या संगीत में शुरू से ही थी या इसके अलावा भी कुछ शौक रखती हैं आप?
1: हाँ, मैं शौक रखती हूँ, बहुत सारे शौक रखती हूँ। संगीत में मेरी रुचि सच में स्टार्टिंग से ही थी, और एक्चुअली मैं सिंगिंग से ज्यादा डांस करती थी।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: तो डांस का ज्यादा शौक था, लेकिन हाँ, सिंगिंग भी साथ साथ चलती रहती थी। मुझे म्यूजिक सुनने का बचपन से ही बहुत शौक था
0: जी।
1: बट हाँ, कभी कोई स्टेज प्रोग्राम तो नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी से मुझे ये गिफ्ट में मिला, आवाज मिली है।
0: अच्छा, वो गाती हैं आपकी मदर?
1: थी।
0: ओहो, अच्छा।
1: बहुत अच्छा गाती थी
0: जी।
1: और मींस 80 ईयर्स में वो गए हैं, तो 80 ईयर्स में भी उनकी वॉइस बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई बच्चा गा रहा हो।
0: अरे वाह, मतलब क्रिस्टल क्लियर वॉइस थी उनकी।
1: हाँ, बिल्कुल क्रिस्टल
0: क्लियर वॉइस। जीन्स में ही मिली है ये सौगात।
1: हाँ, ये मुझे जीन्स में मिली है
0: जी।
1: बिल्कुल, तो ये मेरी माँ का गिफ्ट है मेरे लिए।
0: तो आपके पिताजी को भी शौक रहा है संगीत?
1: नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल सोशल वर्कर थे।
0: अच्छा।
1: वो बीजेपी की साइड थे और बहुत अच्छे सोशल वर्कर रहे हैं मेरे पापा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट। तो आपके हस्बैंड को है शौक संगीत का?
1: सुनते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टेस्ट है, लेकिन हाँ, मुझे मना नहीं करते हैं। कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो वो स्पेशली मेरे से बिना पूछे अनाउंस कराते हैं कि सोनिका गाएगी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अदरवाइज स्पाउसेस में बड़ा कम होता है कि एक दूसरे को इतना प्रोत्साहन मिले। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप बहुत लकी हैं, और हमारी यही भगवान के आगे भी यही प्रेयर रहेगी कि इसी तरह आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे। तो सोनिका, आपने कभी स्टेज परफॉर्मेंसेज शादी के बाद दिए हैं?
1: मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेज ऐसे प्रोफेशनली तो नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ, 2-3 मीट्स में, ऐसे गेट टुगेदर में मैंने 1-2 बार गाया है।
0: जी जी,
1: स्टेज पे।
0: तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आपके दिल को छू गया हो, या कोई हंसी वाली बात हुई हो जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहती हैं?
1: ऐसा तो कुछ खास मुझे याद नहीं है।
0: तो यहाँ मैं अपने श्रोताओं को सोनिका की तरफ से इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। मैंने इनकी मीट का एक वीडियो देखा था जहाँ पर ये अपनी ऑडियंस से पूछ रही थी कि माइक कैसे पकड़ना है, कम से कम मुझे ये बता दो।
1: यस यस यस, मुझे सच में माइक पकड़ना अभी तक, क्योंकि मैंने अभी 1-2 बार ही मीट्स में मैं गई हूँ और मैंने वहाँ पे स्टेज में परफॉर्म किया है, तो मैं जब भी माइक पकड़ती हूँ तो वो वॉइस सबके तक जाती ही नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे माइक पकड़ना सिखा दो।
0: वैसे सोनिका, आप इतनी मंझी हुई कलाकार हैं, तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि इसमें माइक की गलती है कि वो आपसे पकड़ा नहीं जा रहा, आपकी गलती नहीं है।
1: ठीक है।
0: चलिए, इसके साथ हम आपका अगला गीत लेते हैं।

0: सोनिका, आप स्म्यूल के जगत में एक जाना माना नाम है। वर्सेटिलिटी में आपका कोई जवाब ही नहीं। अलग अलग जॉनर्स के गीत आप बड़ी कुशलता से गा लेती हैं और ये मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है क्योंकि मैं अक्सर आपको सुनती रहती हूँ।
1: थैंक यू सो मच।
0: कई ग्रुप्स की भी आप बहुत एक्टिव मेंबर हैं, तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि परिवार की जिम्मेदारियों के साथ आप अपने संगीत के परिवार का तालमेल कैसे बनाती हैं?
1: बहुत सिंपल है
0: जी।
1: जब पहले घर का काम देखती हूँ
0: जी,
1: जो मेरी प्रायोरिटी है,
0: हाँ,
1: सुबह से उठकर, तो उसके बाद जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो वो टाइम मैं खुद को देती हूँ, वो काम करती हूँ जो मुझे खुशी देता है, और म्यूजिक मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है
0: जी। हम सबकी रूह की खुराक है संगीत, और इसके बगैर तो खैर हम अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। तो बड़ी अच्छी आपने ये बात बोली कि प्रायोरिटी तो हमेशा हर किसी की पहले परिवार ही होना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपने शौक भी पूरे करने चाहिए, नहीं तो
1: जिंदगी
0: बड़ी नीरस हो जाती है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, अपने शौक की जिंदगी कुछ टाइम अपने लिए हमें देना है, देना है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सोनिका, आप संगीत के साथ साथ आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अब अपने जीवन में कदम बढ़ाया है, तो इसके बारे में भी कुछ बताइए कि आपको कैसे उस तरफ इंटरेस्ट बना।
1: स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए सिर्फ एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा इंसान बनकर रहना है
0: जी,
1: जिसमें लाइक मैं समझती हूँ कि नो क्रिटिसिज्म, नो जजमेंट
0: जी,
1: नो जेलसी, नो एंगर, इन शॉर्ट कि मुंह से कुछ भी निकालने से पहले हमें एक सेकंड का पॉज लो, फिर बस मुंह से निकाला हुआ ये शब्द सोच लो कि सामने वाले को कहीं हर्ट तो नहीं कर रहा।
0: और कहते हैं ना कि ये तो एक ऐसे तीर की तरह होता है जो वापस नहीं आप कभी ले पाते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से यही स्पिरिचुअलिटी है।
0: जी जी जी। एंगर की आपने बात की, तो एंगर को तो खैर काबू में रखना बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि आजकल की जिंदगी इतनी व्यस्त और इतनी तेज हो गई है। इवन अगर हम रोड पर भी जा रहे हो, कोई तेजी से हमें गलत तरीके से ओवरटेक कर जाए तो भी गुस्सा आ जाता है। तो
1: मुझे नहीं आता
0: है। आप अच्छा
1: आता ही नहीं है?
0: आता ही नहीं है,
1: नहीं आता आसानी से, नहीं आता।
0: अच्छा,
1: बहुत मुश्किल से गुस्सा आता है मुझे।
0: और जब आता है
1: आता है तो फिर थोड़ी देर का होता है, निकल जाता, फिर मैं बस वो रोती हूँ।
0: ओहो, मतलब आप अपने आप को ही तंग करती हैं, दूसरों को तंग नहीं करती।
1: नहीं, पर ठीक भी जल्दी होती हूँ।
0: जी जी, बहुत ही प्यारी इंसान है आप। हमारे श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सोनिका के साथ स्म्यूल में कई ड्यूएट्स भी गा चुकी हूँ, अक्सर इनको सुनती तो रहती ही हूँ। ये जितनी प्यारी इंसान है उतनी ही इनकी प्यारी आवाज है, शख्सियत है। खैर, हमारे श्रोता अब तक तो ये जान ही चुके होंगे आपके गीत सुनकर, तो इन दिलचस्प बातों से एक छोटा सा विराम लेते हैं और आपका अगला गीत सुनते हैं।

0: सोनिका, आज आपके डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने से यहाँ आपकी खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत आवाज और खूबसूरत गीतों से सारा माहौल महक उठा है। आपका दिल से आभार कि आपने अपनी व्यस्त जिंदगी से इतना वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में स्पेशली हमारे श्रोताओं के लिए कुछ अपने इतने बेशकीमती नगमे लेकर आई हैं। जाते जाते मैं चाहूंगी हमारे श्रोताओं के लिए आप दो शब्द जरूर कहते जाए।
1: बिल्कुल, मैं बस इतना सा कहना चाहूंगी, ऑलवेज चूज टू बी हैप्पी
0: जी,
1: चाहे कुछ भी हो। और इसके लिए मतलब चाहे कुछ भी हो, आप सिर्फ हैप्पीनेस को चूज करो, आपको खुश रहना है। और इसके लिए रोज कुछ समय अपने लिए निकालकर अपनी पसंद का अपना पसंद का काम जरूर करो जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि हम सबके लिए तो जीते ही हैं। अपने लिए जीना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्यार, खुद को प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी है।
0: बहुत ही बढ़िया बात कही। अक्सर हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में अपने आप से ही प्यार करना भूल जाते हैं। हम सबके लिए सब कुछ करते हैं, अपना नंबर हमारा सबसे पीछे होता है। स्पेशली जो भारत की गृहणियां हैं, जो होम मेकर्स हैं, मदर्स हैं, उनके ऊपर तो खैर ये बात बहुत ही 100% सही उतरती है। इनफैक्ट हम तो खाना भी जब बच्चे छोटे होते हैं तब खाते हैं कि चलो ठीक है, अगर इनका कुछ छूटा है तो वो खा लो।
1: यस, बिल्कुल बिल्कुल सच। हाँ,
0: तो अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात हमारे श्रोताओं को बोली।

0: आपका बहुत धन्यवाद सोनिका.
1: थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच फॉर इन्विटेशन.
0: ये हमारी खुशनसीबी है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए. तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात अंबाला से सोनिका जी के साथ. मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी. जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ. यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए. रब राखा.
2: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन. अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी. जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो.

0: तो सभी ने अपनी डिशेस को आप तक पहुंचाया है, आप सब तक शेयर किया है। तो जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ हैं अलका जी, और अलका जी से ही हम सीधा बात करते हैं। और चूंकि हम उनके किचन में पहुंच चुके हैं, तो किचन में रेसिपी बनाने के पहले मूड बनाना पड़ता है, ये तो सब आपको पता ही है आप सबको। तो पहले तो हम अलका जी से ही पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं और क्या करती हैं, कुछ अपने बारे में बताइए लिसनर्स को।
1: हाँ नमस्ते जी, प्रीत जी नमस्कार, और जयपुर
0: नमस्कार।
1: रेडियो को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो मुझे यहाँ पे सांझा चूल्हा में ऐड किया और मेरा एक अच्छा सा इंटरव्यू करने का मुझे सौभाग्य मिला।
0: जी बिल्कुल, स्वागत है आपका हमारी जयपुर रेडियो की पूरी टीम की ओर से। आरजे प्रीत वेलकम कर रही है आपका। तो अलका, आप कहाँ से हैं, कुछ अपने बारे में थोड़ा बताएं।
1: मैं एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, कानपुर से हूँ, बट मैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का ये होता है ना कि वो फिर मैं हैदराबाद में ही सेटल हूँ, और मेरे हस्बैंड भी एयरफोर्स में काम करते हैं, एक्चुअली डिफेंस
0: ओके।
1: में है, तो मेरा तो ऑल ओवर इंडिया घूमना चलता रहता है, बट फाइनली अभी मैं यहाँ पे सेटल हो गई हूँ कि अब हैदराबाद में
0: हैदराबाद,
1: फाइनली सेटल हो गए।
0: आप
1: हाँ
0: अलका हैदराबादी हो गई हैं। हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकती हैं
0: हाँ
1: मी हैदराबादा। एक्चुअली एक्चुअली जो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो हैदराबादा बोलते हैं यहाँ
0: हाँ, तो कानपुर से हैदराबाद का सफर बहुत लंबा है,
1: पे
0: तो
1: बहुत
0: बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा होगा आपको वहां पे।
1: बहुत बहुत। एक्चुअली मेरी जर्नी जो है वो कानपुर से हैदराबाद नहीं थी, आने के लिए मुझे बहुत ज्यादा जगह रहना पड़ा। कानपुर से मैं भुज गई, भुज से फिर बंगाल गई, बंगाल से फिर मैं राजस्थान गई, राजस्थान से फिर जम्मू कश्मीर गई, देन लास्टली मैं हैदराबाद सेटल हो गई हूँ।
0: मतलब कुछ फायदे नहीं, बहुत सारे फायदे हैं घूमने को मिल रहा है
1: बहुत बहुत
0: आपको।
1: बहुत ऑल ओवर इंडिया बहुत ज्यादा
0: और
1: मैंने देख लिया
0: हाँ,
1: है
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं अलका। अलका आपकी मतलब फुल नेम प्लीज।
1: अलका सक्सेना।
0: ओके, तो जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स सुन रहे हैं अलका सक्सेना को, जो हैदराबाद से हैं और हमारे कुकिंग शो में आई हैं, जिसका नाम है फ्यूजन सांझा चूल्हा विद आरजे प्रीत। तो लिसनर्स जानते हैं, उनका मूड तभी बनता है किचन में जाने का जब मॉम्स एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाती हैं। तो मैं सारे लिसनर्स की ओर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज कोई सुन, पहले शुरुआत हो जाए किसी सॉन्ग से। श्री
1: बिल्कुल
0: गणेश
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी,
1: श्री गणेश करते हैं एक दिल के सॉन्ग से, तो
0: बिल्कुल
1: मैं एक लाइन आपको गुनगुना के सुनाती हूँ फिर।
0: जी, बिल्कुल।

0: जयपुर रेडियो के सभी लिस्टनर सुन रहे हैं अलका सक्सेना जी को, जो है हैदराबाद से, और एक प्यारा सा सॉन्ग से उन्होंने श्री गणेश कर दिया है। तो अभी हम चलते हैं रेसिपी की ओर। तो अलका जी, आज क्या आप शेयर करने वाली हैं लिस्टनर से?
1: हाँ बिल्कुल, मैं एक अच्छी सी रेसिपी बताऊंगी और मैं चाहूंगी आप सब एक बार जरूर ट्राई करें इसको। और एक ऐसी रेसिपी है, जैसे कि होता है कि हम जैसे भूल जाते हैं कि सडनली मुझे याद आता है कि मुझे आज इडली खाने का मन हो रहा है,
0: हाँ।
1: बट मैं भूल गई कि मैंने नारियल भी नहीं भिगोया, नारियल की चटनी कैसे बनाऊंगी, फिर मैंने बैटर नहीं भिगोया, चावल नहीं भिगोए, दाल नहीं भिगोया, फिर मैं कैसे बनाऊंगी इडली।
0: करेक्ट,
1: तो वही थोड़ा सा क्या है कि उसको फटाफट वाला कि बस
0: ट्विस्ट ट्विस्ट
1: तो
0: लेकर
1: उसको,
0: आई हैं आज आप। हाँ
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हैदराबाद का तो है, हैदराबाद का फेमस
0: हाँ
1: है इडली सांभर डोसा तो
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ
1: मैंने कहा यहीं से ही शुरुआत करती हूँ एक बार
0: हाँ
1: देखिए
0: जी जी
1: मैं एक्चुअली वो इंस्टेंट इंग्लिश इडली है कि फटाफट आपको कैसे बनाना है, उसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल लेना है। मटेरियल है फर्स्ट कि आपको 1.5 कप चावल का आटा लेना है। जनरली चावल का आटा मिल जाता है हैदराबाद में, तो बहुत मिलता है,
0: हाँ,
1: बट
0: यहाँ
1: अगर
0: हर जगह मिलता है वो तो, चावल का आटा हर जगह मिलता है। हाँ
1: हाँ चावल का आटा हर जगह मिलता है, तो आप एक नाप रख लीजिए, जो भी नाप आपकी कटोरी है या कप है कुछ भी, एनीवन, तो
0: जी।
1: नाप रख करके 1.5 कप चावल का आटा ले लीजिए। फिर उसमें आधा कप सूजी, थोड़ी मोटी वाली सूजी, भी दो
0: ओके।
1: प्रकार की आती है, एक पतली आती है और एक मोटी
0: हाँ
1: आती है,
0: हाँ करेक्ट। हाँ
1: बट थोड़ी सी मोटी वाली लेंगे तो उससे पफ जो होता है ना थोड़ा सा अच्छा आएगा उसमें।
0: ओके।
1: हाँ
0: हाँ
1: तो वो मिलाकर और उसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली नमक डाल करके, और फिर उसमें 1 कप दही
0: ओके।
1: डाल करके, और उसको पानी धीरे धीरे डालते जाइए और उसको मिलाते
0: का
1: जाइए सीधे
0: बैटर
1: सीधे
0: बैटर ऐसा बनना है जो
1: बैटर।
0: इडली
1: हाँ
0: वाला हो।
1: हाँ तो बैटर जब ये वाला इतना डाल करके आप उसको फेंट लेंगे, देख लीजिए ये बैटर आपको कैसा लग रहा है, थिक लग रहा है या थोड़ा सा थिन लग रहा है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा पानी डाल के, बहुत थिन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक ही अच्छा लगता है इसमें, वो बैटर बना के आप 10 मिनट के लिए उसको रख दीजिए। उसके बाद उसमें फिर आप सोचेंगे चटनी कैसे बनाऊं, अब मैं तो नारियल को वो नहीं किया है, कैसे बनाऊंगी तो कैसे खाऊंगी, बट उसका भी एक प्रोसेस है कि चटनी कैसे बनानी है।
0: अलका जी, लेकिन हमें बैटर को मतलब कि रेस्ट करने के लिए रखा हुआ है, और उसके बाद आप चटनी के प्रोसेस की ओर जा रही हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो
1: अभी जो
0: मैं चाह
1: दस
0: रही हूँ कि बैटर को तब तक के रेस्ट करने दीजिए। और इस बीच हम सुनते हैं अलका सक्सेना जी का एक सॉन्ग, और तो कुछ
1: बिल्कुल
0: गुनगुनाएंगे
1: बिल्कुल
0: आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: बहुत अच्छी सिंगिंग है, इवन सिंगिंग करती हैं आप, बहुत ही प्यारे सॉन्ग सिलेक्शन, बहुत ही
1: थैंक
0: अच्छे। जो जयपुर रेडियो के लिस्टेंस है ना, जो थोड़े से मतलब ओल्ड सॉन्ग्स पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही प्यारा कलेक्शन लेकर आई हैं अलका सक्सेना,
1: यू, थैंक
0: जो
1: यू।
0: हैदराबाद से हैं। तो हमने अभी इडली के बैटर को रखा हुआ है रेस्ट करने के लिए, देन कंटिन्यू प्लीज।
1: हाँ, तो मैंने इडली के बैटर को 10 मिनट्स के लिए रखा था, आपने एक गाना भी सुन लिया उसके बीच में।
0: जी बिल्कुल।
1: अभी मैं उसकी चटनी पे आती हूँ। एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए, जरा सा। उसमें मूंगफली, कच्ची मूंगफली होती है ना,
0: हाँ
1: तो कच्ची मूंगफली को उसमें डाल दीजिए। छिलका नहीं
0: ओके,
1: उतारना है, सिंपल डाल देना है।
0: अच्छा, हाँ,
1: एंड जो रोस्टेड चना दाल होती है, जैसे वो वाली चना दाल, थोड़ी सी, जितना
0: हाँ,
1: मूंगफली लिया है उसका आधा जस्ट।
0: ओके ओके,
1: तो हरी मिर्च डाल दीजिए, एक अदरक ले लीजिए, और थोड़ा सा उसको जैसे चटपटा बनाने के लिए एक छोटी सी इमली डाल दीजिए, हरा धनिया डाल दीजिए, और उसको फ्राई कर लीजिए हल्का सा।
0: ठीक है, हाँ
1: बहुत थोड़ा सा तेल डालना है, ज्यादा तेल नहीं डालना है, क्योंकि फिर चटनी में तेल ही तेल नजर आएगा। बहुत
0: हाँ
1: ही हल्का सा
0: लाइट
1: डाल
0: सा,
1: दीजिए।
0: लाइट सा,
1: हाँ,
0: कुछ
1: बस कि
0: ड्रॉप
1: बस बस हाँ, जस्ट
0: ड्रॉप,
1: जस्ट वन वन स्पून समझ लीजिए, ताकि वो
0: ओके
1: हमारा बस भुन जाए, जो भी मटेरियल
0: ओके,
1: डाल रहे हैं उसमें एक हल्का सा सौंधापन आ जाए।
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: कानपुर में एक्चुअली ऐसे ही बोलते हैं, सौंधापन आ जाए,
0: हाँ
1: तो वो
0: हाँ
1: खुशबू जो आती है ना, वो आपको खुद से
0: बहुत
1: पता चलेगी।
0: आ रही है, आ रही है, आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है मेरे, नहीं लिसनर्स के भी मुंह में पानी आ रहा है। तो जल्दी से जल्दी तैयारी करिए फटाफट से इंस्टेंट
1: उसके बाद
0: इडली
1: आपका,
0: बनाने
1: तो आपका
0: के
1: बस भुन गया, आपको खुशबू आ गई है। अब बस
0: लिए।
1: उसको थोड़ा सा ठंडा करके रखिए, उसके बाद ठंडा करने के बाद उसको पीस लीजिए। बस पीस करके आपको उसमें अच्छा सा तड़का देना है, उसको बढ़िया वाला तड़का, जो कड़ी पत्ता से तड़का दिया जाता है।
0: ओके
1: तो उसमें तड़का देने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि तड़का कैसे देना है। तो उसको पीसने के बाद आपको एक ऑयल फिर से एक बाउल में गरम करना है, उसके बाद राई एंड थोड़ी सी उड़द दाल हाफ स्पून, एंड थोड़ा सा कड़ी पत्ता और लाल मिर्च फुल वाली जो सजी हुई होती है, जो
0: ओके
1: हमारे तड़का मिर्च बोलते हैं। आप लोग क्या क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ लाल तड़का वाली मिर्च बोलते हैं। तो
0: ओके
1: उससे तड़का दे करके बस उसको चटनी के ऊपर डाल देना है। आपकी चटनी रेडी हो गई, एकदम गर्मा गर्म।
0: वाह, मैं क्या करूं, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये ऐसी डिश है जो हर तरफ से बनाई जा सकती है
1: बिल्कुल,
0: ये।
1: अभी बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के टिफिन के लिए, और इतनी इंस्टेंट है कि फटाफट बन जाइए, हाफ एन आवर में आपकी डिश आप खा भी लेंगे,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: तो
1: वो
0: हमने
1: बहुत।
0: चटनी तो देख ली, सुन ली, पर अभी हमें इडली के बारे में थोड़ा सा जानना है कि इडली का बैटर फूल चुका है और
1: जी
0: हम
1: जी
0: उसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए उसकी रेसिपी भी सुन लेते हैं। हम चलते हैं इडली बनाने के लिए। आपके कैसे, ओवन में या गैस में कैसे बनाती हैं, बताइए।
1: जिसके पास ओवन नहीं है वो भी बना सकते हैं, कि आप एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख सकते हैं, उसके ऊपर इडली के पैन आते हैं, या फिर वैसे बने हुए आते हैं खांचे जैसे इडली के, जिसमें कि इडली का शेप होता है,
0: जी
1: उसको आप ले सकते हैं, और उसमें पानी गर्म करके उसकी स्टीम में ही डालना है उसको। एक्चुअली वो स्टीम से ही पकता है, फिर उसको ऊपर
0: ओके
1: से ढक करके आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, बट ओवन में भी बन सकता है आपको जैसा। इडली के वैसे भी प्रॉपर स्टैंड भी आते हैं जो इडली मेकर होते हैं, तो जिसके
0: हाँ,
1: पास जो भी
0: तो करेक्ट,
1: अवेलेबल है, जिसके पास नहीं भी अवेलेबल है तो वो भी इजीली बना सकता है उसको।
0: हाँ, तो फिर उसको इडली को हमें चेक करने के लिए एक स्टिक डाल के और चेक करना है कि वो पक गई है ना।
1: हाँ, तो जब आप ओवन के अलावा बनाते हैं तो आपको एक बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच में।
0: बिल्कुल
1: ओवन में
0: बिल्कुल,
1: तो हमें पता होता है कि क्या होता है, कैसे डालना है, कितना मिनट लगाना है, कितने सेकंड्स लगाना है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं कि आपको चेक करना पड़ेगा।
0: हाँ, तो मतलब ये बहुत ही टेस्टी सी इडली, उसके साथ डिप यानी चटनी भी शेयर कर चुकी हैं अलका सक्सेना जी। तो जब तक ये लिस्टर्स कर रहे हैं ना तैयारी, क्योंकि उनको तो टाइम लगने वाला है, ये सब घर में ही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा ये डिब्बे खोलना, वो डिब्बे खोलना, सब कलेक्ट
1: जी
0: करना, तो जब तक वो ये करेंगे ना, तब तक के चलिए एक सॉन्ग सुनते हैं आपका, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हो जाए।
1: चलिए हो जाए। जब छाए मेरा जादू, कोई बच ना पाए। हाय।

0: की रेसिपी शेयर करी है अलका सक्सेना जी ने, उनके जादू से कोई नहीं बच पाएगा। और जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स जरूर से जरूर अलका सक्सेना जी की बनाई हुई रेसिपी इडली विद चटनी जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। उनको अपना फीडबैक दीजिए, उनको अच्छा लगेगा अगर आपका फीडबैक आएगा। इनफैक्ट अगर आप उसमें कुछ वेरिएशन करना चाहें, कुछ अलग करना चाहें, तो वो भी हमें शेयर करिए। हमारा संजय चूल्हा की टीम आपके हर एक मैसेज का इंतजार करती है जो आप हमें देते हैं। और रेटिंग रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिए जयपुर रेडियो को। और जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को बोलना चाहूंगी कि अगर डिश में कुछ भी स्किप हुआ है तो प्लीज, हमारा रिपीट ब्रॉडकास्टिंग आता है डेली, दिन में 2 बजे, शाम 5 बजे, आप बिल्कुल सुनना ना भूलें। और अपनी इडली और चटनी दोनों की, ये जो मुंह में पानी आ रहा है ना लिस्टर्स, मेरे भी आ रहा था, क्या कर सकते हैं, वो तो ऐसी डिश है कि क्या ही करें। तो बनाने की तैयारी करिए और मस्ती से गाते गाते, सुनते सुनते जो अलका जी ने सॉन्ग सुनाए हैं उनको आराम से बनाइए। तो अलका, आप क्या कोई टिप शेयर करना चाहेंगी जयपुर रेडियो के लिसनर्स के साथ, किचन टिप?
1: बिल्कुल टिप शेयर करूंगी। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, जो आपने स्किप का नाम लिया तो मैंने तो 10 मिनट बैटर रखा था, 10 मिनट बाद एक और प्रोसेस है वो मैं
0: हाँ
1: बताना भूल गई हूँ, वेरी सॉरी।
0: हाँ हाँ बताइए बताइए,
1: वो
0: अभी टाइम
1: प्रोसेस ये कि
0: है।
1: 10 मिनट के जैसे ही आप उसको, चटनी आपकी रेडी हो गई है, उसमें आप जैसे ही बनाने जाएंगे, जस्ट 2 मिनट्स पहले एक इनो का पाउच उसमें डालेंगे, बिकॉज हमें उसका फर्मेंटेशन चाहिए। और मैं फर्मेंटेशन किसी से नहीं ले रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा
0: राइट
1: नहीं डाल रही हूँ। तो जस्ट
0: करेक्ट
1: एक इनो का पाउच डालेंगे, और डालते ही थोड़ा ही हिलाना है, बहुत ज्यादा फेंटना नहीं, क्योंकि वो फर्मेंटेशन उसका खत्म हो जाएगा। फटाफट बस हिला करके उसको चढ़ा देना है, बस इतना ही था। इन केस आप इनो नहीं डालना चाहते हैं तो सोडा भी यूज कर सकते हैं।
0: हाँ। तो अगर इनो नहीं है घर में तो आप सोडा यूज कर सकते
1: जी
0: हैं, पर
1: बिल्कुल,
0: बनानी तो जरूर है अलका जी की
1: बनानी
0: बनाई।
1: जरूर है, बहुत टेस्टी है, और
0: हाँ
1: हैदराबाद की तो स्पेशल
0: करेक्ट
1: डिश
0: यस
1: एक्चुअली यही है।
0: हाँ। तो अलका जी के बनना देख लीजिए आप, जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स की खबर लेने वाली हैं अलका जी। तो
1: बिल्कुल
0: बनानी जरूर है, फीडबैक जरूर देना है। टिप्स, जो
1: बिल्कुल,
0: टिप्स आपने शेयर करें वो जरूर
1: हाँ
0: से
1: एक,
0: जरूर फॉलो करना है। एक और टिप है ना?
1: हाँ हाँ जी, बस एक एक टिप जरूर बताना चाहूंगी जो अच्छा है लेडीज के लिए स्पेशली, क्योंकि पूड़ी वगैरह बनाते हैं हम लोग जनरली, हम लोग कानपुर के यू हैं, तो पूड़ी पराठा ये सब घर में बनता रहता है ना।
0: बिल्कुल
1: तो पूड़ी बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आटा माड़ के मैं रख देती हूँ, बट वो थोड़ी देर में जब पूड़ी बनाने जाओ तो एकदम वो गीला गीला सा हो जाता है। पूड़ी का आटा क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड माड़ो तो फटाफट पूड़ी बनती है,
0: जी
1: विदाउट मतलब पर्थन यूज करे हुए।
0: हाँ
1: पर्थन
0: हाँ
1: समझ रहे हैं ना,
0: जी
1: पर्थन
0: जी जी हाँ हाँ रोटियां बनाने के लिए तो हर घर में
1: जी
0: यूज होता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: जी
0: हाँ जी
1: बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो वो बर्तन यूज करे बगैर आपका कड़े आटे में अच्छा बनता है, बट अगर आपका थोड़ा लूज हो जाएगा तो आप या तो उसको उतना भी करेंगे वो बात नहीं आ पाती है। तो आपका जब आप पूरी सेकते हैं बर्तन के साथ बेल करके, तो वो पूरा ऑयल खराब हो जाता है, पूरा ब्लैक हो जाता है, उससे पूरा बर्तन चला जाता है। तो उसके लिए एक टिप है कि अगर आप बर्तन में पूरी सेक रहे हैं तो एक चुटकी नमक आप अपनी कढ़ाई में डाल लीजिए ऑयल में, पूरी सेकने से पहले, तो आपका ऑयल कभी भी खराब नहीं होगा।
0: हाँ, जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि ये बर्तन, ऐसे कुछ ऐसे शब्द है ना कुकिंग में जो
1: जी
0: हर घर में यूज होते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें कई कई नामों से जानते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि ड्राई आटा
1: हाँ
0: जो हम
1: बिल्कुल,
0: है ना उसको जो रोटियां बनाने में यूज करते हैं, उसे हम भी बर्तन ही बोलते हैं। आपका पता नहीं है क्या बोलते हैं, पर आपको समझ आ रहा होगा जो टिप आपको दी गई है। इंपॉर्टेंट टिप है, यूजफुल टिप है, इसको जरूर से जरूर यूज करिए और जरूर से जरूर अलका जी के रेसिपी को ट्राई करिए। अलका जी, जाते जाते एक सॉन्ग और आपका और सुनेंगे, फिर वापस आते हैं हम।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाय शर्मा, हाय शर्मा, हाय शर्मा, किस किस को बता।

0: जी आप बता चुकी हैं अपने खाने की कहानी, बता चुकी हैं अपनी डिश की कहानी, बता चुकी हैं, और ये कहानी जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स के दिल तक पहुंच चुकी है। और जयपुर रेडियो जो हमारी हर जगह कोने कोने में दुनिया देश में सुना जाता है, स्मॉल टाउन्स में, गांव में, देहात में, कस्बे
1: वाह
0: में, मेट्रो सिटीज में, आउट ऑफ इंडिया हर जगह पर जयपुर रेडियो सुनते हैं लोग। तो जयपुर रेडियो सुनना ना भूलें, और साथ में कुकिंग शो सुनना बिल्कुल ना भूलें, जिसका नाम है फ्यूजन साझा चूल्हा विद आरजे प्रीत। आज आप सुन रहे हैं अलका सक्सेना जी को। तो अलका सक्सेना जी,
1: जी
0: प्यारी सी
1: बोलिए।
0: सिंगिंग सुना करी आपने, मतलब सॉन्ग्स हम सबको सुनाए अच्छे अच्छे और
1: थैंक यू
0: डिश भी बहुत अच्छी शेयर करी, टिप्स यूजफुल थे। तो क्या अब आप जाते जाते लिसनर्स को कुछ बोलना चाहेंगे?
1: बस यही बोलना चाहूंगी। सबसे पहले आप तो जो मैंने डिश बताई है 100% ट्राई करिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप भूल जाते हैं, और भूल नहीं भूलते हैं तो आप नॉर्मल वे में कर सकते हैं, बट अगर भूल जाते हैं तो आपको हाफ एन आवर में आपको पसंदीदा आपको टिफिन बॉक्स में मिल जाएगा, बच्चों को आपको ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा। तो ये जरूर ट्राई कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गानों को सराहने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: मैं एक बार जानती हूँ कि ये ऐसी डिश है जो ब्रेकफास्ट में, लाइट लंच में और डिनर जो लोग हल्का करते हैं, जो चाहते हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी ना मिलके कुछ हल्का सा
1: हाँ
0: मिले, तो उस जगह पर ये बहुत यूजफुल डिश है। इसको आप
1: जी
0: ट्राई
1: जी
0: कीजिए
1: बिल्कुल
0: और जरूर से जरूर फीडबैक दीजिए। जयपुर रेडियो को रेटिंग देना ना भूलिए। अलका जी, जाते जाते एक तड़का मारिए, फिर हम आपसे विदा लेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जाते जाते मुलाकात पे ये गाना सुना देती हूँ।

0: जी बिल्कुल ललका जी, आपसे हमारा दिल का याराना और प्यार का सिलसिला पुराना है और चलता रहेगा। तो
1: क्या बात है।
0: जयपुर रेडियो में हम आपको दोबारा से फिर से जल्दी ही आमंत्रित करेंगे ताकि आप एक और नई डिश के साथ आए और हमारे जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स के दिल तक पहुंच जाए और उनके किचन के
1: थैंक
0: अंदर धावा दे दे।
1: यू,
0: तो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। कुछ
1: थैंक यू सो मच।
0: जल्द ही फिर मिलेंगे आपसे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि आप सुन रहे हैं कुकिंग शो जिसका नाम है फ्यूजन सांधा चूल्हा विद आरजे प्रीत। और आरजे प्रीत आज लेकर आई थी अलका सक्सेना जी को। तो जल्दी ही हम एक नई मोम के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हाँ नई नई डिशेस बनाते रहिए जो जयपुर रेडियो से प्रसारित हो रहा है कुकिंग शो फ्यूजन सांधा चूल्हा विद आरजे प्रीत। उसमें जो नई नई मॉम्स आ रही हैं उनकी बताई हुई डिश को ट्राई करते रहिए। तो जल्दी ही फिर वापस कल से मिलते हैं। गुड बाय।
2: आपने सुना प्रोग्राम फ्यूजन सांझा चूल्हा, और आज अपनी बात साझा कर रही थी हैदराबाद से अलका सक्सेना। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। और अब सुनते हैं संगीता माल्या को दुबई से।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगु। आज हम भारत के जिस शहर से अपना सितारा लेकर आए हैं उसकी तारीफ में अमीर खुसरो साहब ने लिखा है, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कश्मीर की वादियों की खूबसूरती हमारे स्टूडियो में लाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रद्युम्न पंडिता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार सपना जी, आपको और आपके श्रोताओं को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए।
0: जी ये हमारी खुश नसीबी है। हमारे सुनने वालों को प्रद्युम्न जी आप अपने बारे में कुछ बताइए और साथ में ये भी बताइए कि संगीत में आपकी रुचि कैसे बनी, कि क्या किसी खास घटना ने आपको प्रेरित किया या फिर आप ये विरासत में लेकर ही जन्मे थे।
1: जी देखिए मेरा जन्म कश्मीर में हुआ, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ।
0: जी जी,
1: तो मेरा बचपन कश्मीर में बीत गया, तो पूरी स्कूलिंग मेरी कश्मीर से है। और उसके बाद जब कॉलेज का टाइम आया तो मेरा एडमिशन हुआ था आरईसी श्रीनगर में, जो एनआईटी श्रीनगर कहलाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जहाँ तक संगीत का सवाल है, देखिए संगीत में रुचि तो थी, इनफैक्ट थोड़ी बहुत विरासत में तो डेफिनेटली है, क्योंकि मेरे फादर साहब जो हैं तो उनको गाना गाने का गुनगुनाने का ये तो शौक तो था।
0: अरे वाह क्या बात है।
1: तो शायद वही एक वजह है कि मेरी कई सिबलिंग्स में और मेरे में वो एक है रुचि म्यूजिक की तरफ।
0: मतलब आपका बचपन जो है वो काफी संगीतमय रहा।
1: संगीतमय मतलब ज्यादातर सुनने में हम विश्वास करते हैं, कभी ये लगा नहीं कि हम गा सकते हैं, बट हाँ ये तो आप ये कहिए कि क्योंकि आजकल एनीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी।
0: जी जी,
1: तो शायद एनीबॉडी कैन बिकम अ सिंगर।
0: कुछ
1: शायद अब वो किसी भी फील्ड में, इनफैक्ट तो आजकल टेक्नोलॉजी
0: बहुत हेल्प करती है, तरह तरह की एप्स डेवलप हो रही हैं, तो लोग अपनी कला को अपने हुनर को सबके आगे लाने में काफी सफल हो रहे हैं। तो प्रद्युम्न जी, सुनने में आया है कि हालांकि स्कूल और कॉलेज में आप बहुत ही शर्मीले से थे, इंट्रोवर्ट थे, लेकिन हमने सुना है कि दोस्तों के उकसाने पर आप एक बार गर्ल्स हॉस्टल किसी शरारत के इरादे से गए थे और वहां पर किसी खूबसूरत लड़की के झुमकों में उलझ कर रह गए थे, तो क्या हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करना चाहेंगे?
1: नहीं ये तो खैर ये तो गलत अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो ये बात जरूरी है, जो आप दोस्तों के साथ जो आपका व्यवहार होता है और जो पब्लिकली आपका व्यवहार होता है तो काफी अंतर होता है। मैं दोस्तों के साथ आप बेझिझक बिल्कुल अपने मस्ती में होते हो रहे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब ये घटना ऐसी है, जब हमारी माइग्रेशन हुई आरईसी श्रीनगर से, क्योंकि वहाँ टेररिज्म के कारण वो कॉलेज बंद हुआ एक डेढ़ साल, तो हमें फिर ऑप्शन दिया गया कि आप जो इंडिया के बाकी कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर आप माइग्रेशन ले सकते हो और अपना जो प्रोफेशनल स्टडीज है वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं।
0: जी,
1: तो फिर हमें कुरुक्षेत्र बुलाया गया उसके लिए। तो वहाँ पे अब कई चीजें, ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा वो पहली बार ऐसा था कि मैं कश्मीर से बाहर आ रहा, तो काफी सारी चीजें ऐसी लगी कि ये नई नई है। और फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ जो साइकिल रिक्शा होता है,
0: जी।
1: तो वहाँ पे जब हमने कुरुक्षेत्र के कैंपस में देखे कि लोग वो साइकिल

0: रिक्शा चला रहे हैं, हमारे लिए नई चीज थी। अब जब हम वेट कर रहे थे बाहर मतलब ग्राउंड में, तो फिर ऐसा लगा कि यार हम ये ट्राई करें, कोई नई चीज है। इसलिए शायद वो वहाँ लड़कियों ने देखा होगा भाई ये कई लोग आए हैं ये रिक्शा चला रहे हैं, तो शायद आप उस बात का जिक्र कर रहे होंगे।
1: यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि एक किस्मत की बात कह लीजिए या कुछ फेट कह लीजिए, तो जिस वक्त की प्रद्युम्न पंडिता जी बात कर रहे हैं, तो उसी वक्त मैं भी NIT कुरुक्षेत्र का ही एक हिस्सा थी, मैं वहां पे स्टूडेंट थी, और वाकई सारी लड़कियों में बड़ी सनसनी की तरह ये खबर फैल गई थी कि बहुत ही गोरे गोरे से लड़के आए हैं कश्मीर से जो कि रिक्शा चला रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी बड़े अजूबे की बात थी कि क्या इन्होंने आज तक रिक्शा नहीं देखा। तो इसी शरारती सी बात पर हम आपका पहला गीत लेते हैं। प्रद्युम्न जी क्या सुनवा रहे हैं आप?
0: देखिए मेरे मन में अभी आ रहा है कुछ ना कहो।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत है।
0: ये जो आप शरार की बात कर रहे हैं ना, तो बस इतना काफी है। तो कुछ ना कहो वाला गाना जो मेरे को बहुत ही दिल के करीब है।
1: जी, लेते हैं।
0: तो ये हम सुनाते हैं।

0: बहुत ही मिठास के साथ आपने इस गीत को निभाया प्रद्युम्न जी, मजा आ गया। तो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक हिस्सा हैं और जैसे कि आपने बताया कि आप भारत के बेहद प्रसिद्ध कॉलेज NIT वारंगल से आपने अपनी तालीम हासिल की है, तो कश्मीर के एक छोटे से गांव और अखरोट आदि ड्राई फ्रूट्स की बड़ी बड़ी फार्म से यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा? कुछ खट्टी यादें होंगी, कुछ मीठी यादें होंगी, कुछ चुनौतियां आपके जीवन में रही होंगी, तो वो थोड़ा संक्षिप्त में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी जरूर। देखिए, यादें तो बहुत है। मैंने जैसे आपको कहा कि पूरा बचपन मेरा बीता है वहाँ।
0: जी जी।
1: तो बचपन की यादें तो बहुत ही मीठी होती हैं। तो चाहे वो, क्योंकि मेरा ये सौभाग्य रहा है क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में ये था कि मतलब वहाँ एक्टिविटीज ही एक्टिविटीज है, चाइल्ड चाहे मतलब खेलना कूदना, ये नहीं है कि घर पे ही बैठना पढ़ाई करना। तो पढ़ाई इनफैक्ट मेरे लिए एक साइड एक्टिविटी होती थी। हमारे बाग, और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, हमारे बाग बगीचे गाय, फिर खेलना अलग, फिर आपकी पढ़ाई अलग। तो क्या होता था,
0: पूरे शरीर की वर्जिश हो जाती थी आपकी एक दिन में
1: पूरी पूरी। तो वो तो इनफैक्ट वहाँ कोई घरों में अगर बैठता था तो कह रहा क्यों सब ठीक है, बीमार तो नहीं है कोई। उस हिसाब से देखिए, वेरी लकी कि जो बचपन बीता है वो काफी अच्छा बीता है, काफी अच्छी यादें हैं। फिर आपके दोस्तों के साथ यादें, जैसे जो फ्री टाइम मिलता था खेलने जाते थे, चाहे वहाँ तो देखिए नेचुरल रिसोर्स की तो भरमार है, चाहे आप वाटर बॉडीज ले लो, दरिया ले लो, नदियां ले लो, स्प्रिंग ले लो। तो हम, हमारा ये था कि चलो दरिया तैरना है, स्विमिंग करनी है। अब ये वही है जो लाइफ स्किल्स आप पिक करते हैं ऑन द गो, कोई आपको सिखाने नहीं आता, चाहे वो बड़े बड़े दरिया है उनको क्रॉस करना, चाहे वो बागों में जाना सेब चुराने, किसी के
0: पेड़ पे चढ़ना,
1: पेड़ पे चढ़ना, तो ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ तक कि हमारे एक टीचर साहब थे, वो अभी हैं
0: जी,
1: तो जो हमारा स्कूल था तो उनका जो सेबों का बाग बिल्कुल पास में था स्कूल के,
0: अच्छा
1: हायर सेकेंडरी स्कूल था। अब हम जो ब्रेक का टाइम होता था तो हम उनके कई बार उनके बाग में घुस जाते थे, वहाँ उनके फादर साहब होते थे। अब ऐसा होता था कि हम पेड़ पे चढ़ के सेब उतार रहे हैं, अब वो एल्डरली थे, अब वो कितना बाग थे हमारे पीछे, और जब वो वहाँ से हमारे पीछे बाग थे तब हम खा पी के निकल जाते थे। अब उनके जो उनके जो बेटे साहब थे वो हमारे टीचर थे, इनफैक्ट मैथ्स टीचर थे।
0: अच्छा।
1: और हमारी जो पलटन होती थी इसमें एक लड़का ऐसा था जिसके बाल वो ब्लॉन्ड से थे, मतलब
0: अच्छा,
1: वो ब्राउन कलर,
0: सुनहरी। हाँ जी,
1: सुनहरी। अब क्या होता था, अब वो अपने बेटे को बोलते थे घर जाके, यार आपके स्कूल से बच्चे आए थे और एक लड़का ये था सुनहरी बाल वाला।
0: अच्छा।
1: अब अगला दिन क्या होता था, वो टीचर साहब उसको खड़ा करते थे और एक दो चांटे मारते थे कि बता कौन था तेरे साथ, तो वो सबके नाम देता था, फिर हमारी सबकी पिटाई। तो ये ऐसी खट्टी मीठी यादें मतलब बहुत सारी मेरे दिमाग में आती हैं।
0: जी।
1: लेकिन
0: जी।
1: फिर ऐसे बचपन बीतते बीतते फिर एक ऐसा स्टेज आया जब हम कॉलेज में गए कि सडनली वैली में वो अनरेस्ट हो गया।
0: जी, वो बहुत ही दुखदायी वक्त था, बहुत ही दुखदायी वक्त था।
1: एक काली रात आ गई कि हमें सब छोड़ छाड़ के, ये काफी लंबी स्टोरी है लेकिन मैं इसको बिल्कुल संक्षेप में ये बता रहा हूँ कि हमें बच्चों को हमारे माँ बाप ने बोला कि आप बिल्कुल जो घर के कपड़े हैं इसी में निकल के तुम निकल जाओ और जम्मू पहुंच जाओ। अब उस टाइम ये भी था कि देखिए ना कोई इंटरनेट था, ना कोई मोबाइल था, ना कोई फोन था, और बच्चे निकल गए, कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे, मरे। तो कई बार ये भी हमें ये मतलब हम भगवान का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जीवित हैं।
0: जी,
1: और
0: जी,
1: मतलब जिस तरह के हालात उस टाइम बने थे
0: जी,
1: तो वो सब देख के फिर अगेन ये भगवान की कृपा ही रही हम पे कि सब लोग पढ़े लिखे थे, सब लोग अपनी अपनी जगह सेटल हो गए। और
0: आपके माता पिता ने आपको बहुत ही अच्छे संस्कार दिए और बड़ी हिम्मत दी उन्होंने, क्योंकि ये हमारे, मैं कहूंगी हमारे जेनेटिक भी होता है ये कि अपने माँ बाप को देख देख कर ही हम कभी सीखते हैं, कुछ हमारे जीन्स में आता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने इतनी चुनौतियों भरी जिंदगी जी है और यहाँ तक इस मुकाम तक आप पूरी अपनी मेहनत से ही पहुंचे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेंगे और आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं प्रतिमन जी।

0: यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी प्रतिमन जी, कि आपके कश्मीर में इंडिया में से जगह जगह से टूर्स आते हैं, लोग स्पेशली इस जगह को देखने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं कि कितना खूबसूरत, जितना खूबसूरत हमने इसको सुना है, पढ़ा है, तो क्या ये वाकई में इसकी खूबसूरती उतनी है। तो हम तो बहुत ही हैरत से वहां पर जाकर सारी चीजें देखते हैं। तो एज अ होस्ट, जब आपके शहर में, आपकी स्टेट में ये सारे टूरिस्ट आते हैं, तो आपको कैसा लगता है?
1: देखिए, जब हम छोटे थे तो हमें तो अच्छा लगता था, कोई आता था वहाँ, मतलब हम आइडिया शेयर करते थे, हमें भी ये पता चलता था कि ये कहाँ से आए, इनका क्या कल्चर है। और फिर ये भी होता था, एक रौनक भी वहाँ होती थी, और जैसे
0: साथ में रिसोर्सेज तो फिर गवर्नमेंट को मिलते ही हैं टूरिस्ट से,
1: और एक टूरिज्म का वो एक सपोर्ट, देखो एक इकोनॉमी का वो होता है, तो हमें तो अच्छा ही लगता था। ऑनेस्टली बोलूंगा, अभी भी हम जाए, देखिए अब चाहे हमारा देश है, अब हम एक प्रदेश की बात कर रहे हैं, देश ये तो हम सब में एक ये बात है कि अगर कोई चीज है तो इसको हमें संभाल के रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हमारा देश है, हमें संभाल के रखना चाहिए, कोई जगह सुंदर है, इसकी सुंदरता को कायम करना चाहिए। तो आई थिंक वो एक पब्लिक में, जनता में ये जागरूकता होना बड़ा
0: बहुत
1: जरूरी
0: है। ये सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये रहने वालों की, जो पब्लिक है, जनता है, उसकी भी पूरी जिम्मेदारी है। आसपास सफाई रखें ताकि टूरिज्म को हम ज्यादा प्रमोट कर सकें, विनम्र रहें। तो प्रतिमन जी, आप कश्मीरी में गीत और भजन भी लिखते हैं, तो कैसे वक्त निकालते हैं आप इस शौक के लिए?
1: देखिए, शौक तो थोड़ा बहुत था, बट अभी तो टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहले ये था कि पहले जब भी मैं मतलब अकेले में होता था, तो कोई इनफैक्ट ये बिल्कुल बचपन में ही ऐसा होता था कि कोई ट्रिगर आपको हो जाता है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, बट मेनली मेरा वो स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड था। और कुछ कभी फ्लो बन जाता था और मैं अपना वो जॉट डाउन करता था थॉट्स, तो उसमें फिर चाहे थोड़ा बहुत शायरी बने या भजन बने, तो पहले थोड़ा बहुत मैं लिखता था
0: जी,
1: बट या आई विश आई कुड डू मोर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत।
0: चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप अभी भी वक्त निकालते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के लिए आप अपनी मीठी सी आवाज में कुछ कश्मीरी में ही गुनगुना दीजिए, जो आपने खुद लिखा है।
1: जी जरूर, देखिए ये एक गुरु के प्रति, अभी तो गुरु पूर्णिमा दो दिन पहले
0: गई, दो दिन पहले थी, हाँ।
1: राइट, एक गुरु को समर्पित है ये, एक भजन ही मान लीजिए कश्मीरी में, तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा इसका भाव क्या है।
0: जी,

0: तो काफी लंबा भजन है, लेकिन भाव मैं संक्षेप में ये बताऊंगा आपको। इसमें ये है कि हम अपने गुरुदेव को बोलते हैं कि मैं आपको क्या ऑफर करूं, मतलब मेरा अपना तो कुछ नहीं है, ये जो मेरी जान है या मेरे अंदर जो प्राण है ये भी तो ये मैं वारूं आपका, लेकिन ये भी आपका ही है, तो ये भी मेरा नहीं। इसका भाव ये है
1: जी।

0: प्रधानमंत्री जी, जिंदगी के जिस मुकाम पर आज आप अपने आप को पा रहे हैं, वहां तक पहुंचने का और अपनी कामयाबी का जो श्रेय है वो अपनी मेहनत के अलावा आप और किसे देना चाहेंगे?
1: देखिए सपना जी, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि जो भी हम हैं, कोई भी
0: जी,
1: इसमें माँ बाप का बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि वो आपके रोल मॉडल रहते हैं। और जिस कठिनाई से फिर हम आए, अब इमेजिन कीजिए कि हम कश्मीर से माइग्रेट होके आए रातों रात, फिर हमारे पास छत नहीं था, हम कैंपों में रह रहे थे, और आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी कठिनाइयां। और उसी दौर में मेरा इंजीनियरिंग एडमिशन हुआ ही था, तो ऐसे में मेरे माँ बाप के पास मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि उन्होंने कैसे सारा, जो चाहे मेरी फंडिंग हो या मेरी देख रेख की, और ये इंश्योर किया कि मेरी इंजीनियरिंग पे कोई इम्पैक्ट ना आए, राइट। तो इसलिए मैं पूरे का पूरा क्रेडिट, मेहनत तो हम सब करते ही हैं, लेकिन मैं पूरा क्रेडिट अपने माँ बाप को देता हूँ। मतलब फादर को अपने हिसाब से, मदर को अपने हिसाब से, आई वॉज वेरी क्लोज टू माई मदर, तो उनने बहुत कुछ मेरे को संभाला है, कितनी भी डिफिकल्टी थी, शी वाज ऑलवेज बाय माय साइड। तो इसलिए मैं पूरा श्रेय अपने माँ बाप को देता हूँ।
0: और इसी बात से हमारे श्रोताओं के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज भी है कि हम जहाँ पर भी हों, जिस भी मुकाम पर, जिस भी शिखर पर हों, हमें अपने माता पिता की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कि उनका कहना ही हमारे लिए भगवान के कहने के मुताबिक होना चाहिए। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री, आपसे बातचीत बहुत मजेदार रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात प्रधिमन पंडिता जी के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता, और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारे के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।
2: लफ्जों की गुजारिश, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
3: नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान के वीकली शो लफ्जों की गुजारिश में। मैं रति भार्गव, आपकी होस्ट और दोस्त, तेरी आंखों में समा जाऊं काजल की तरह, तू ढूंढती रह जाएगी पागल की तरह। हमारी आज के एपिसोड का थीम काजल, इट्स अ फन राइड। अगर हम इन शब्दों की खूबसूरती को देखें जो जादू कर देते हैं फिल्मी गीतों में। ये गाना फिल्म दूसरा आदमी यशराज फिल्म बैनर से बोल मजरू सुल्तानपुरी के, म्यूजिक राजेश रोशन, और गाया बड़ी खूबसूरती से लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, और इसे पेश कर रहे हैं आपके लिए प्रताप और विद्या।

मैं और मेरी दोस्त साथ में बैठे खाना बनाते हुए जब रेडियो पे गाना बजा, ये कहाँ आ गए हम। यार ये सिलसिला का गाना है ना। बस इतना ही कहना था कि मेरी फ्रेंड बोली, यही तो मैं कह रही हूँ, वो तो रेखा और अमिताभ की केमिस्ट्री थी, वो पैशन, वो इंटेंसिटी। अगर ऐसी केमिस्ट्री हर जोड़ी में होती तो हमारी तरफ भी कोई ऐसे देखता, हमारी भी घुटने पिघल से जाते, हम भी जान निगल से जाते। बस फिर मेरी दोस्त बोली, तू ये जावेद अख्तर गुलजार के गाने सुनने बंद कर दे और मटर छील ठीक से। द स्टोरी ऑफ आर लाइव्स, एक हकीकत रूहानी, एक सच्चाई बेमानी। आइए हम अपना अगला गाना सुनते हैं मूवी जीवा से संजय दत्त और मंदाकिनी पे पिक्चराइज। और ये गाना जितना प्यारा उतनी ही प्यारी आवाज लेके आ रहे हैं MD त्यागी और पूर्णा।

गाजर, मटर, ठंड और रेडियो पे चलते ये गीत। पैशन अ फ्रूट बन के रह गया और केमिस्ट्री सिर्फ बच्चों की किताबों में मिलती है। ट्रू और फॉल्स? सिजलिंग मुमताज पे पिक्चराइज ये गाना, जो इतनी हॉट, इतनी सुंदर, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। सच एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ चाइल्ड लाइक इनोसेंस एंड डीवा। एक टाइम पे तो उन्होंने सारी रेनिंग ब्यूटी क्वींस को पीछे कर दिया था। हमारा अगला गीत मूवी दो रास्ते से, ब्लॉकबस्टर हिट बॉक्स ऑफिस में। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज, बोल आनंद बख्शी के और म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसे पेश कर रहे हैं अपनी सुरीली आवाज में AKD और सुदी।

फिल्मों ने हमारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ऊपर नीचे कर दिया है। वो जो 3-4 मिनट में दिखा के दिल में आग लगा के निकल जाते हैं, हम बैठकर फिर सोचते रहते हैं कि हाय हमारी जिंदगी भी ऐसी होती तो, अभी होती तो कुछ काम नहीं कर पाते, दिन के 24 घंटे ऐसे रह सकते हैं क्या? ऐसा जीना गवारा नहीं। देर इज अ रीजन कि लाइफ आलू मटर गाजर बन जाती है, क्योंकि हम सबके अंदर एक सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट भी होता है। हमारा अगला गाना भी मुमताज और राजेश खन्ना पे पिक्चराइज मूवी अपना देश, खूबसूरती से निभाया किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, बोल आनंद बख्शी और म्यूजिक आरडी बर्मन का। इसे अपनी सुरीली आवाज में लेके आ रहे हैं किरण और वैदेही।

केमिस्ट्री और पैशन दो गाने गा के एक शिफॉन साड़ी पहन के थोड़ी ना होती है, वाट लग जाती है अच्छी खासी, क्योंकि इंटेंसिटी सही या गलत में फर्क नहीं करता। इंटेंस इमोशंस का मतलब इंटेंस गुस्सा भी, इंटेंस पॉजिटिवनेस भी, इंटेंस जेलेसी भी, और ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है उतनी ही बैंड बजती है। खैर, अभी तो आप पैशनेट गाने सुन के आहे भर लीजिए अपने घर, गाड़ी या ऑफिस स्पेस की सेफ्टी के अंदर से। बातें करते करते हमारे आज के प्रोग्राम का आखिरी गाना भी आ गया। ये गाना है मूवी दीवाने से, उर्मिला मातोंडकर, महिमा चौधरी और अजय देवगन जिनका डबल रोल था। इस फिल्म का साउंड ट्रैक साल का 13th हाईएस्ट सेलिंग एंड मोस्ट पॉपुलर था। पेश है ये गाना रमेश और प्रियंका की मधुर आवाज में।

0: आप अपना प्यार दे रहे हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, उसके लिए जयपुर रेडियो की पूरी टीम आभारी है। क्योंकि हमारे इस शो के स्टार्ट में कुछ लेडीज कुछ मॉम्स जो हैं ऐड हुई और उसके बाद ये संख्या लगातार से बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार हमारे जयपुर रेडियो के इस प्रोग्राम जो आता है जयपुर रेडियो में डेली कुकिंग शो फ्यूजन साझा चूल्हा विदार जी प्रीत, आपका सपोर्ट पूरा मिल रहा है, तहे दिल से धन्यवाद। और आज हम पहुंचे हैं एक प्यारी सी मॉम के किचन में, और अब हम तो उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, अब उनसे ही पूछेंगे कि प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और जयपुर रेडियो के लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताइए।
1: नमस्कार, मैं अनुराधा जैन बैंगलोर रहती हूँ और मैं निवासी हूँ जो हूँ राजस्थान की ही हूँ। तो आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं जयपुर रेडियो पर अपना जो है कुकिंग का एक रेसिपी है जो आप सबको बता सकूं। और थैंक यू सो मच प्रीत मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए। इट्स रियली गुड लक फॉर मी कि मैं आज आपके मंच पे हूँ यहाँ पे।
0: वेलकम राधा जैन, पहले हम आपका स्वागत कर लें, क्योंकि मैंने ये चीज पहले ही बोली कि आप अपने बारे में खुद से बताइए लिसनर्स को कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और जयपुर रेडियो की पूरी टीम और हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी सुन रहे हैं लिसनर्स, सबकी ओर से वेलकम।
1: थैंक यू सो मच प्रीत। मैं लेक्चरर हूँ एज प्रोफेसर और एक हाउसवाइफ भी हूँ, और मैं यहाँ पे बैंगलोर ही रहती हूँ। तो बस यही सिंपल सी लाइफ है मेरी, मैरिड हूँ और एक प्यारा सा बेटा है मेरा।
0: अरे वाह, आपकी काफी सारी क्वालिटी है आप में, और मतलब
1: और कभी कभी गुनगुना लेते हैं हम, सिंगिंग कर लेते हैं, कुकिंग कर लेते हैं, तो जो एक हाउस वाइफ की जो रोल है एक लेडी में तो सब है।
0: नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रही हूँ लिसनर्स को कि ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ ही सिर्फ इस शो में आ रही है, वर्किंग मॉम्स भी आ रही हैं जो काम भी करती हैं, घर में भी रहती हैं, कुकिंग भी करती हैं और बाहर के सभी वो काम करती हैं जो आजकल मेल सिंगर्स और मेल करते हैं। तो इस चीज के लिए मतलब ये क्या बोले, अप्रिशिएट करने वाली बात है कि आप इस शो में आई हैं, और आपने बताया आप सिंगर हैं, है ना?
1: जी हाँ।
0: तो शुरुआत लिसनर्स को पता है अच्छी तरीके से कि जो आते हैं हमारे शो में मॉम्स आती हैं वो मतलब प्यारी सिंगर हैं और ब्यूटीफुल तो होती ही है, तो स्टार्ट तो सिंगिंग से ही होती है, फिर हम मूड बनाते हैं और फिर किचन में जाते हैं। तो मैं आपको अनु बोल सकती हूँ क्योंकि
1: बिल्कुल बिल्कुल आप मुझे अनु ही बुलाइए, अच्छा लगेगा मुझे। और सिंगिंग मेरा शौक है, तो मैं हर तरह के गाने गाने के लिए ट्राई करती हूँ।
0: नहीं
1: तो म्यूजिक अपने आप में चीज ही ऐसी है कि कुछ आपके कानों को अच्छा लगना चाहिए बस, और वही आप गुनगुनाते हैं,
0: सुकून और शांति मिलती है और सारे काम छटपट हो जाते हैं अगर म्यूजिक साथ है, तो मुझे ऐसा लगता है। तो लिसनर्स जानते हैं कि जो मॉम्स आती हैं वो उनका इंट्रो तो म्यूजिक के साथ ही होता है, तो अपने लिसनर्स को कुछ सुनाना चाहेंगी एक लाइना?
1: मैं लता जी का एक बहुत फेमस सॉन्ग है वो गुनगुनाना चाहूंगी।
0: जी बिल्कुल।

0: हम क्या जाने, ये वो ही जाने जिसने लिखा है सबका नसीब।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है, इतनी प्यारी शुरुआत, इतनी क्यूट सी वॉइस। और प्लान हमारा पहुंच चुका है जयपुर रेडियो के डिजिटल वॉइस वर्ल्ड पे और इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पेज पे, तो आप जरूर से जरूर अनुराधा जी को वहां पर देख सकते हैं। और

0: अनुराधा जो है बंगलोर से, राइट?
1: जी बिल्कुल,
0: बैंगलोर से। इतना प्यारा सॉन्ग सुनाया है, तो मैं तो यही लिसनर्स को हमारे पता है कि जो मॉम्स आती है ना, एवन सिंगर होती है, तो इस खूबसूरत सॉन्ग को जो आपने दो लाइन गुनगुनाया है, इसको अगर हम फुल म्यूजिक के साथ फुल सॉन्ग सुने तो बहुत बहुत मजा आएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, और चलिए पहले लिसनर्स सुनते हैं फुल म्यूजिक के साथ

0: एक्सीलेंट स्टार्ट, प्यारी सी शुरुआत कर दी है अनुराधा जैन ने जो है बंगलोर से, और आई हुई है हमारे कुकिंग शो में जिसका नाम है फ्यूजन सांझा चूल्हा विद आरजे प्रीत। तो आप लोगों ने इंजॉय किया, मूड बन गया ना लिसनर्स। तो चलिए फिर चलते हैं रेसिपी की ओर, और अनुराधा आज आप क्या रेसिपी लेकर आई हैं हमारे जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स के लिए?
1: देखिए प्रीत, ये जो आपका पंच है ये जयपुर रेडियो है, ठीक है। मैं भी राजस्थान की, मेरा नेटिव राजस्थान है, तो मैं आज राजस्थान की एक फेमस डिश जो सब लोग जानते हैं और वर्ल्ड वाइज फेमस है, ये तो
0: है ये रब्बा, तो मतलब काल लगा के आगे राजस्थान जाके आज कोई राजस्थानी डिश आ रही है जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दाल बाटी हमारी राजस्थानी फेमस डिश है, जो दाल बाटी चूरमा। तो मैं आज इसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ
0: जी। बिल्कुल,
1: इसके लिए सबसे पहले हम एक साइड में दाल भिगो कर छोड़ते हैं। दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, सब प्रकार की दालें आप एक कटोरी के हिसाब से ले लीजिए। जितने आपके फैमिली मेंबर है की दाल आप किस हिसाब से लेते हैं, तो सब दालों को एक साथ भिगो कर छोड़ दीजिए। और थोड़ा नमक डाल के भिगोने से वो दाल क्या है जल्दी भीग जाती है और अच्छी भीगती है। तो सबसे पहले हम दाल धोकर और फिर उनको सबको एक साथ मिक्स बाउल में भिगो कर छोड़ देते हैं।
0: ओके,
1: और फिर थोड़ी देर बाद, एक घंटा बाद, डेढ़ घंटा बाद, इसको हमने उबालने के लिए रखना है। तो पहले दाल का काम कर लेते हैं। दाल को एक कुकर में डालिए और पानी का रेशियो है जो 3/4 रखिए, उसमें थोड़ा जीरा, हींग, दो लौंग डालकर और थोड़ा घी डालकर इसको उबलने के, और हल्दी डालकर उबलने के लिए साइड में छोड़ देते हैं हम। फिर इसके बाद हम जो हमारी बाटी है, बाटी को उसका डो बनाएंगे।
0: अच्छा जी,
1: ठीक है। तो बाटी का डो बनाने के लिए आप एक अच्छे बड़े बर्तन में या पराठ में सबसे पहले गेहूं का आटा लीजिए। अगर उसका रेशियो अगर मैं आपको बोलूं तो 10-15 बाटी के लिए, मैं बटन बाटी बनाती हूँ, छोटी छोटी बाटी, तो बच्चे भी खा के ना उसको खुश होते हैं, मिनी बाटी है,
0: वो कुछ नया लगता है
1: बच्चों के भी खाने के लिए। तो उस हिसाब से आप एक बड़ा बोल लीजिए, उसमें गेहूं का आटा लीजिए, उसमें उसके हिसाब से 1/4 बेसन का आटा।
0: ओके,
1: ठीक है, उससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाता है, फर्क ज्यादा नहीं पड़ता दिखने में, तो वो वैसे ही कलर का आता है जो बाटी का रंग होता है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा एक स्पून है उसमें हम सूजी डाल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: सूजी डाल लिया, थोड़ा बेसन और आटा अपने हिसाब से मात्रा में 1/4 उसका कर लीजिए, जो आप आटा का रेशियो लेते हैं उसके हिसाब से डाल लीजिए। फिर इसमें अच्छा से घी की मात्रा आप अपने हिसाब से उसको इकट्ठा करना है, गैदर करना है, उस हिसाब से आप उसमें घी मिलाइए, अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स करके, फिर थोड़ी मलाई, आधी कटोरी मलाई और दूध।
0: अच्छा,
1: उससे आटा जितना आप टाइट कर सके अच्छा, उसको मत सके।
0: Okay.
1: अच्छे फॉर्म में उसका बैटर है जो उसका डो है, अच्छे अच्छे फॉर्म में आ जाए। और फिर भी अगर थोड़ा सा कुछ कठिनाई लग रही है तो आप उसमें पानी की छींटे डाल सकते हो
0: जी।
1: तो सबको मिलाकर आप है जो, और उसको इकट्ठा कर लीजिए। फिर उसमें अजवाइन, नमक वो डाल के फिर उसको वापस से मथना है, मतलब डो अच्छा तैयार हो जाना चाहिए आपको।
0: तो
1: सभी आप अपने स्वादानुसार डालना है आपको, जैसे नमक है तो स्वादानुसार कि आप लोग किस तरह का नमक खाते हैं, अजवाइन है तो 1 टेबल स्पून ले सकते हैं, जो आपकी आटे की क्वांटिटी रहेगी।
0: हाँ,
1: कुछ फिक्स नहीं रहता है कि हाँ इतना इसका मेजरमेंट होना चाहिए, आपको किस तरह का फ्लेवर पसंद है उतने हिसाब से आप अपना नमक और अजवाइन डाल सकते हैं।
0: Okay,
1: और तो इस प्रकार जब हमारा डो बन जाएगा तो उसको
0: अनुराधा जी, जब तक के हम डो को ढक करके छोड़ते हैं और उसको थोड़ा सा फ्लफी होने देते हैं, तब तक हमें ऐसा लग रहा है कि हम तब तक मूड और बनाते हैं खाने का और सुनने का। तो एक सॉन्ग और चाहूंगी मैं कि अभी फिलहाल लिसनर्स को एक सॉन्ग और सुनाते हैं।
1: प्लीज मैं आपको देखकर आप ही के ऊपर एक गाना गाना चाहती हूँ
0: माय
1: इजाजत
0: गॉड
1: से।
0: जी
1: जब
0: बिल्कुल,
1: हमारी होस्ट इतनी अच्छी है तो उसके लिए तो एक गाना बनता है।
0: ओ माय गॉड, माय प्लेजर, प्लीज कुछ हाँ सुनाइए।
1: ये रेशमी जुल्फे

0: क्या बात है, इतनी खूबसूरत, मतलब इतना प्यारा सा सॉन्ग मैं जयपुर रेडियो के
1: हाँ
0: सभी
1: डिजर्व करती है, आपको देख के
0: लिस्ट
1: मुझे याद आया है।
0: मैं वही क्लियर कर रही हूँ, जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर्स को भी बताना चाहूंगी कि जरूर से जरूर जाइए हमारे डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे और व्हाट्सएप पेज पर, देखिए अनुराधा जी को ये सॉन्ग एक्चुअली में उन पर सूट करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि डेडिकेशन मेरे ऊपर है पर
1: थैंक यू
0: सॉन्ग
1: सो
0: उनके
1: मच।
0: ऊपर सूट करता है। बहुत ही प्यारी सी गर्ल है ये, मॉम है ये, तो जरूर से जरूर जाइए और देखिए और अपना अप्रिसिएशन जरूर दीजिएगा कि आपको ये प्यारी सी मॉम कैसी लगी दिखने में भी, क्योंकि ये जो डिश लेकर आई है आज, रेसिपी लेकर आई है, वो आपकी चोखा बाट क्या क्या बोलते हैं उसे, चोखा
1: दाल
0: बाटी,
1: बाटी,
0: ओ
1: हाँ
0: सॉरी
1: चोखा
0: सॉरी
1: बाटी बोल सकते
0: सॉरी
1: हैं, दाल
0: सॉरी
1: बाटी बोल
0: दाल,
1: सकते हैं,
0: हाँ
1: मिनी
0: दाल
1: इमली बोल
0: बाटी।
1: सकते हैं, सॉरी मिनी पार्टी।
0: जी, तो ये जो सॉन्ग है पहले हम इसे फुल म्यूजिक के साथ सुनते हैं और बहुत जल्दी से वापस।

0: बहुत ही खूबसूरत सिंगिंग, बहुत ही प्यारी डिश, आज फुल मतलब यूं कह सकते हैं कि एकदम फुल तड़का लगा हुआ है जयपुर रेडियो के जो हमारा कुकिंग शो है जिसका नाम है सुजन साझा चूल्हा विदाज प्लीज। और इस कुकिंग शो में आज की हमारी मेहमान है अनुराधा जैन बंगलोर से। तो आपने सुना पूरा सॉन्ग और अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी डिश को। तो चलिए अनुराधा जी प्लीज कंटिन्यू। आपने डो बना दिया और डो को रख दिया,
1: डो रेडी है हमारा और अभी हमारी जो दाल है वो भी पक चुकी है।
0: ओके,
1: सबसे पहले है हम बाटी बना लेते हैं फिर दाल को हम फ्राई करेंगे
0: जी।
1: तो बाटी बनाने के लिए आपको इसके छोटे छोटे बॉल के साइज में, क्योंकि हम मिनी बाटी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, इसका शेप जो आप देना चाहें, बड़ा छोटा मीडियम आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। पर मैं प्रेफर करती हूँ कि मिनी बनाई जाए, मिनी बाटी, ताकि बच्चे क्या है वो शौक से खाते हैं और आराम से इजीली डिप हो जाती है और हमको तोड़ना नहीं पड़ता। तो मैं बनाती हूँ सबसे पहले छोटे वाले बॉल की साइज की, हमने इसको राउंड बॉल की जैसे शेप लेनी है और उसको बीच में चाकू से कट कर देना है, चार जैसे टक लगा देना, तीन से चार टक लगा के या फिर आप टूथपिक से थोड़े थोड़े उनमें ना होल कर सकते हो, जिससे क्या वो अंदर से भी अच्छे सिक जाए।
0: ओके,
1: जो हमारी बाटी है वो अंदर से भी अच्छे से पक जाए वो। तो सबसे पहले मैं इसकी बॉल्स बना के इनको बाटी को तैयार करती हूँ। और ये देखिए हम लोगों की कम से कम 10 से 15 बाटी आराम से बन जाती है इससे। तो अभी मेरी जो है बाटी के सब बॉल्स बन के रेडी हो चुके हैं। और इसको पकाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास अवन ही होना चाहिए। बहुत मॉम्स या विलेजेस में, टाउन्स में ऐसा होता है कि उनके पास अवन नहीं होता है। तो उन मॉम्स के लिए क्या है कि जो आप अपनी तंदूर है, जो आजकल मार्केट में भी तंदूर आते हैं, है ना, आप
0: चूल्हे में भी बन सकते हैं ना, अगर छोटे टाउन में अगर चाहें तो, जो लकड़ी लगा के चूल्हा बनाते हैं,
1: बिल्कुल वैसे भी। और इनके साथ के पास अवन भी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, तो आप सिंपल जो हमारा तवा रहता है, तवा हैवी तवा रहता है ना, तो तवा तवा के ऊपर थोड़ा उसको ग्रीसी करके सारी बाटी उस पे रख दीजिए, 3 से 4, 5, 6 जितना आपका आता। और उस पे कढ़ाई है जो बिना जो हैंडल की कढ़ाई रहती है ना, कढ़ाई को उल्टा रख दीजिए और सिम, जो गैस को सिम करके फ्लेम है जो कम करके उसको सिकने दीजिए, ठीक है। तो आप तवे पे भी एक स्टाइल से बना सकते हैं, इनकेस आपके पास अवन नहीं है, पर प्लीज मेरे पास अवन है, सिल्वर जो तंदूर वगैरह अपने रोटी बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे सिटीज में वैसे विलेजेस के जैसे तंदूर नहीं मिलते, तो हम लोग इस तरह के तंदूर ला के रखते हैं जिसमें हम लोग अपना तंदूर की रोटी है या बाटी वगैरह है जो बना सकते हैं। और बाटी के लिए स्पेशल कुकर भी आते हैं, बाटी कुकर बोल के, आप डायरेक्ट उनमें भी रख सकते हैं। तो इसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो लीजिए। तो भी मैं बाटी को जो रख देती हूँ अवन में और उसका जो फ्लेम है मैं सिम कर देती हूँ। बाटी को बनने के लिए प्रीत कम से कम आधा से पौना घंटा लगता है, क्योंकि वो सिम रहता है फ्लेम और उसमें धीरे धीरे कलर के वो बनने लगते हैं,
0: गोल्डन ब्राउन, जब तक
1: गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। और अच्छे से आप उसको चाकू से या टूथपिक से अंदर पहले चेक कीजिए, कहीं आप पका की नहीं, आटा चिपक रहा है तो इसका मतलब अभी नहीं पका है, तो आपको फिर से उसी मध्यम आंच पे फ्लेम पे आपको अपना बाटी पकाना है
0: जी,
1: और उसको पकने देना है। अगर जब पक जाए तो आप उतार के उनको एक कैसरोल में या किसी बर्तन में उनमें अच्छे से घी डालकर उनको वापस बंद कर दीजिए, लेट को ढक्कन को वापस बंद कर दीजिए, ताकि वो जो घी है उसमें वो बाटी है जो एब्जॉर्ब कर सके।
0: ओके,
1: ठीक है, तो ये हमारी बाटी बन के तैयार है। अब हमें इसके लिए लेनी है दाल। दाल हमारी पककर रेडी है, अब उसमें सिर्फ हमको लगाना है उसका छौंक लगाना है।
0: ओके,
1: तो यूजली जो ये मिक्स दाल बनाते हैं हम, उसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, धनिया सब डालते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वो भी ये प्रेफरेंस नहीं करते कि हमें टमाटर प्याज डालना है, जैसे जैन लोग है तो जो प्रेफरेंस नहीं करते, तो वो लोग इसमें हींग और जीरे और मिर्ची का भी वगार लगा सकते हैं, उसका छौंक भी लगा सकते हैं। सिंपल जो हमारा रहता है ना, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के हींग, लाल मिर्च और अपना जीरे का तड़का भी लगा सकते हैं उसमें। पर मैं
0: ओके
1: हूँ तो मैं दाल फ्राई के जैसे इसको फ्राई करना चाहूंगी, तो उससे क्या है बाटी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है जब बाटी इसमें डिप होती है। तो
0: ओके
1: इसके लिए
0: मतलब
1: हम, हाँ इसके लिए हम लेते हैं 1 कली लहसुन की, एक बड़ा प्याज, तीन टमाटर, दो हरी मिर्ची, और इसको हम पीस लेते हैं एक मिक्सी में या चॉपर में, थोड़ा दरदरा
0: अच्छा
1: पीसना है एकदम,
0: ओके
1: इसको
0: ओके
1: वो नहीं करना
0: हाँ स्मूथ पेस्टिंग
1: पेस्ट
0: करना
1: के
0: है।
1: जैसे नहीं बनाना। हाँ इसको ग्राइंड आप कीजिए या चॉप कीजिए कि थोड़ा अच्छा ऐसे दरदरा किस्म का रहे, एकदम इसका पेस्ट नहीं बनना चाहिए। फिर एक कढ़ाई में हम तेल लेते हैं, उसमें तेज पत्ता और अपना ये जीरा डालकर इन सबको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, टमाटर प्याज लहसुन हरी मिर्ची इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक ये अच्छे गोल्डन नहीं हो जाए। फिर जब ये अच्छा कलर इनका आ जाएगा, अच्छी तरह सज जाएंगे, उसके बाद थोड़ी हींग डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और इनको अच्छे से उसमें मिक्स करके वापस से भून लेंगे। भूनने के बाद आप ये जो तड़का बना रहे हैं आप तेल में भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आजकल घी नहीं खाते, पर मैं प्रेफरेंस करूंगी कि आप इसको घी में ही बनाइए। तो घी में क्या है, घी एक तो हेल्दी होता है प्रीत सबके लिए तेल से ज्यादा,
0: जी
1: और इनफैक्ट आप बटर में भी कर सकते हैं,
0: हाँ
1: तो
0: टेस्ट अच्छा आएगा बटर में भी।
1: हाँ बटर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप घर में डेली यूज में क्या अपना खाने में प्रेफरेंस देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना तड़का है जो घी तेल या बटर किसी में भी बना सकते हैं। और जब ये मसाला अच्छे से एकदम मिक्स हो जाए अच्छे से, तो इसमें अब आप अपना दाल है जो डाल दीजिए। दाल डालने के बाद में आप उसमें एक नींबू है जो नींबू का रस है उसमें ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार है जो हमारा जो दाल है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके साथ हम एक और चीज ऐड करेंगे, क्योंकि दाल बाटी के साथ हम राजस्थानी लोगों को कुछ तो चटकारा चाहिए ही,
0: चटकारा
1: कुछ
0: चटकारा
1: तो तीखा
0: चटकारा
1: भी चाहिए।
0: चटकारे के लिए वेट कराएंगे ना, चटकारे के लिए वेट करेंगे, क्योंकि जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर्स सुन रहे हैं अनुराधा जैन को जो बैंगलोर से हैं, और शेयर करी है रेसिपी दाल बाटी की, जो कि जयपुर रेडियो के सभी लिस्टर्स चाहेंगे जो पूरी दुनिया में ये डिश फैले और इसे फैला रही है अनुराधा जैन। तो पहले तो एक सॉन्ग हो जाए और उसके बाद चटकारा लगाएंगे इसके साथ कुछ। हाँ
1: ठीक है,
0: तो
1: मैं अपनी चटनी है जो वो बाद में बताऊंगी आपको,
0: हाँ
1: और आपके लिए हमारे लिसनर्स के लिए रफी साहब है एक फेमस सॉन्ग है उनका, तो
0: जी
1: मैं वो गुनगुनाना चाहूंगी।
0: बिल्कुल
1: चलने

बात यहाँ आंखों और होठों तक पहुंच चुकी है और ये समय की मांग है कि अनुराधा जैन जो बेंगलोर से हैं और हमारे कुकिंग शो में है फ्यूजन चूल्हा विद आरती थी, तो ये जो प्यारा सा सॉन्ग है ना, हम पहले इसको हम सुन लेते हैं फुल म्यूजिक के साथ और उसके बाद बहुत जल्दी से लौट करके आते हैं वापस।

0: लिसनर्स, आप सुन रहे हैं फ्यूजन सांझा चूल्हा विद आरजे प्रीत, और आज हमारी मेहमान हैं अनुराधा जैन, जो बेंगलोर से हैं। खूबसूरत सॉन्ग सुना रही हैं, प्यारी सिंगिंग है, प्यारी सी मॉम है, बहुत बहुत क्यूट है, और उन्होंने शेयर करी है आज आपके साथ रेसिपी दाल बाटी की, और उसे चटकारा लगाना बाकी है। तो चटकारा लगाने के लिए वापस से हम आ गए अनुराधा जी के पास, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि इसको क्या छिटकारा आप लगाने वाली हैं आज इसमें।
1: ठीक, मैं दाल बाटी के साथ लाल मिर्च की चटनी बनाना चाहती हूँ, या इसके साथ आप गट्टे की सब्जी भी ले सकते हैं, जो हमारे राजस्थान की है, गट्टे की सब्जी है जो यहाँ की फेमस है, और सब लोगों को ये सब्जी बनानी आती है, तो उसके साथ आप गट्टे की सब्जी ले सकते हैं। अदरवाइज जो इसके साथ है, किसी तरह की भी आप चटनी ले सकते हैं, और जो सबसे अच्छा टेस्ट आता है वो मैं कह सकती हूँ वो लाल मिर्च की चटनी है, वो इसके साथ में बहुत अच्छी लगती है।
0: जी, तो इस लाल मिर्च की चटनी को हम कैसे बनाएंगे बताइए लिसनर्स को।
1: इसके लिए आपको रात में लाल मिर्च भिगो के छोड़ सकते हैं एक, तो मिर्च है जो अच्छे से फ्लफी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। अदरवाइज आप थोड़ा सा लाल मिर्च के जो सूखी हुई लाल मिर्च रहती है ना,
0: जी जी
1: सूखी हुई लाल मिर्च, तो उसको आप थोड़ा बॉईल भी कर सकते हैं।
0: ओके,
1: तो अभी मैंने रात में नहीं भिगो कर छोड़ा था इसको, तो मैं अभी इसको थोड़ा बॉईल करूंगी। कुकर में आप 5 से 6 या 7 मिर्ची ले सकते हैं, जितना आपको बनाना हो उसके अकॉर्डिंग। और कुकर में मैं उसको एक विसल लगा लूंगी।
0: ओके,
1: तो उससे वो क्या बॉईल होके सॉफ्ट हो जाएगी, जो हमारी लाल मिर्च है ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी इस लाल मिर्च मेरी है जो मैंने इसको बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैं इसमें 6-7 लहसुन का जो कलियां है वो लूंगी, एक आधा प्याज, थोड़ा सा अदरक और 2 टमाटर। इन सबको मिलाकर मैं एक पेस्ट रेडी कर लूंगी, और उसमें थोड़ा कच्चा जीरा ऐड कर लूंगी। जब हम पेस्ट बना रहे हैं मिक्सी में इसका, तो साथ में आप एक उसमें 1 टेबल स्पून आप कच्चा जीरा डाल दीजिए, तो उससे उसका फ्लेवर क्या है और भी अच्छा आ जाएगा। तो जब हमारा ये पेस्ट बन जाता है, उसके बाद आप अपना स्वादानुसार इसमें नमक डाल सकते हैं। नमक डालिए, और इसको आप कच्चे भी खा सकते हैं, इस चटनी को आप कच्चा भी खा सकते हैं, और इसका आप तड़का भी बना सकते हैं।
0: मतलब ये दोनों ही तरह से दाल बाटी के साथ जाती है, मतलब कि
1: जो चटनी है ये कच्ची होती है, तो ये भी अच्छी लगती है, इसका टेस्ट भी अच्छा फ्लेवर आता है चटनी का। और नहीं तो इसको हम थोड़ा जैसे सब सब्जी बनाते हैं, तड़का लगाते हैं, बघार लगाते हैं, उसी तरह हम इसको भी हम छौंक सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा इसको छौंक लगाना चाहूंगी, तो वही मैं इसके लिए मैं तेल इस्तेमाल करती हूँ। कोई भी रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल या कोई भी रिफाइंड ऑयल जो आप खाते हो, तो वो तेल लीजिए। उसको गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा जीरा डाल के उसको भून लेते हैं, फिर ये जो पेस्ट है वो उसको डालते हैं। पेस्ट को 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे हम उसको मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद थोड़ी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, तो उससे इसका टेस्ट क्या है अच्छा आ जाता है।
0: मतलब
1: इस बहुत सिंपल है प्रीत,
0: और बहुत इतनी प्यारी सी स्मेल, राजस्थान पहुंच गए हम तो।
1: राजस्थान में आई लाल मिर्च ये सब चटनी नहीं खाए तो, और राजस्थान का प्रोग्राम है तो मजा आएगा ही नहीं।
0: वही तो,
1: ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है, दिखने में आपको सिंपल लग रही है, बट जब आप खाएंगे तो इसका फ्लेवर इतना अच्छा होता है। बाटी के साथ, रोटी के साथ, आप किसी भी चीज के साथ इस चटनी को कभी भी यूजली भी अपने घर में बना के रख सकते हो, और ये 7 से 8 दिन आप फ्रिज में प्रिजर्व भी कर सकते हो।
0: पूरा कॉम्बो ही बहुत डिलीशियस दिख रहा है, बहुत यम्मी दिख रहा है। दाल बाटी साथ में लाल मिर्च की चटनी, भाई मेरे तो मुंह में पानी आ गया। सीरियसली मैं तो खाना चाहूंगी, और मैं जब भी मौका लगेगा ना तो जरूर से जरूर आपके हाथ का ये डिश खाना चाहूंगी।
1: बिल्कुल।
0: जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स आज बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और बहुत ज्यादा डिलीशियस ये जो डिश बताई है अनुराधा जैन ने, जो बंगलोर से हैं। तो आप ये बताइए, डिश तो रेडी हो गई, लिसनर्स तक पहुंच गई, आपकी सिंगिंग भी हमने सुनी, बात हो जाए थोड़ी सी सिंगिंग पे कि आपके फेवरेट सिंगर कौन है।
1: मेरे फेवरेट सिंगर तो प्रीत, हम बचपन में रफ़ी साहब, लता जी, किशोर कुमार, और जो हमारे 90s के सिंगर है, अलका याग्निक है, उदित नारायण जी है, इन्हीं सबको, इवन मैं तो आजकल, जब पता नहीं कब से गाने का शौक अपने आप में शुरू हो चुका है, तो इनफैक्ट जो टीवी सीरियल्स आते हैं उनकी
0: हाँ
1: नंबरिंग भी सुनती हूँ, उनमें भी बहुत
0: हाँ
1: अच्छे
0: बात
1: गाने
0: है।
1: आते
0: तो वो उसमें
1: हैं।
0: कुछ सुनाइए लिसनर्स को, उसमें कुछ सुनाइए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो।
1: हमारा एक बहुत ही फेमस सीरियल आ रहा है स्टार प्लस में, ये जादू है जिनका, तो उसका एक गाना मैं अक्सर गुनगुनाती हूँ, तो
0: जी बताएं।
1: मैं अपने लिसनर्स को वही सुनाना चाहूंगी। कहानी हमारी

0: क्या बात है, मतलब
1: आँखों में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें फिर से नम।
0: अगर लिस्टर्स ने नहीं सुना है ये सॉन्ग, तो इसको हम चलते हैं और सुनते हैं अनुराधा जैन की ही आवाज में, फुल सॉन्ग म्यूजिक के साथ।

0: अपनी सब कुछ समेट करके एक फुल पैकेज कर दिया इस प्रोग्राम को। तो सभी लिसनर्स ने आपकी सिंगिंग सुनी, बहुत इंजॉय किया। आपने जो डिश शेयर की वो बहुत बहुत फेमस है, ऑलरेडी बहुत फेमस है, और उसको आपने आज और जयपुर के, राजस्थान के, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। और बहुत बहुत प्यारा डिश। और मुझे ये बताइए कि आज आप कोई किचन टिप लेकर के आई हैं क्या?
1: किचन टिप तो किचन में रहते हैं तो एक के बाद एक हमारे दिमाग में आते रहते हैं, और जब लोगों को देखते हैं तब भी ऐसे रहता है कि हाँ इस चीज को ऐसे किया जा सकता है, इस चीज की सेफ्टी हम ऐसे कर सकते हैं। तो किचन में है जो हम लोगों को मैक्सिमम बहुत परेशानियां होती है, बहुत फैसिलिटी होने के बाद भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको सबसे ज्यादा सहन करनी पड़ती है। उनमें से एक है किचन में कॉकरोचेस होना, छोटे छोटे गैस जो हमारी शेल्फ है उस पे आ जाते हैं रात के टाइम या दिन के टाइम, कभी भी छोटे छोटे कॉकरोच है जो है, कीड़े वगैरह अपने आप मौसम के अकॉर्डिंग आ ही जाते हैं। तो इनके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी कि इनका बाजार में भी सब आते हैं, पेस्ट आते हैं इनके लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए, इन सबके लिए दवाइयां रहती है, बट फिर भी वो किचन के लिए मुझे इतना हेल्दी नहीं लगता। तो इसके लिए है कि मैं टिप देना चाहूंगी अपने सभी लिसनर्स को, कपूर रहता है, कपूर का पाउडर बना लीजिए, पीस कर कोई चीज में, पेपर में या फिर कपड़े में, उसको अच्छे से उसको पीस लीजिए। पीस लेने के बाद में उसको थोड़ा सा नारियल तेल मिला के उसका छोटी गोलियां या पेस्ट के हिसाब से उसको बना लीजिए। और जो किचन में हमारी शेल्फ रहती है उनके एजेस पे, और जो हमारे कबर्ड्स रहते हैं, कैबिनेट्स रहते हैं जितने भी, तो उनके हिंजेस में या उनके हिंजेस में साइड में जो वॉल रहती है, तो किचन में अगर हम इनको अप्लाई कर देना पेस्ट सा बनाकर, तो इससे उसके कॉकरोचेस नहीं आएंगे और किचन में वो खुशबू भी अच्छी रहेंगे।
0: यूजफुल टिप है लिसनर्स,
1: और बहुत इजी है। कपूर अपने हमारे घर में मिल जाता है,
0: पूजा में मिल जाता है,
1: पूजा में मिल जाता है, मार्केट में भी अवेलेबल रहता है। उससे क्या है आपकी किचन एक, मुझे लगता है हेल्दी रहेगा, बच्चे भी छूते हैं, टच करते हैं, मेरा बेटा छोटा है तो मुझे मालूम रहता है कि बच्चे कहीं भी जाते हैं हाथ लगाते हैं, तो दवाइयां अगर हम लगाते हैं पेस्ट लगाते हैं तो थोड़ा हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप एक ये टिप फॉलो कीजिए। और एक और टिप है मेरे पास में, हम लोग जो अपने मसाले रखते हैं, दालें रखते हैं, जितने भी हम लोगों का ग्रेन्स रहता है उनमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जीप पड़ जाते हैं ना, तो फिर अगेन लोग वही आजकल दवाइयां डालते हैं उनमें, वो सब मिक्स करके रखते हैं। तो इस चीज के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि माचिस की तीलियां रहती है, सबके घर में मिल जाएंगी माचिस की तीलियां, तो 5 से 6-7 अगर आप अपने मसाले के डब्बे में या फिर दालें जो है राइस है आप अगर उसमें वो माचिस की तीलियां डाल के छोड़ते हैं, तो उससे भी आपका कहीं जी कहीं कुछ कीड़े कुछ नहीं लगेंगे।
0: मतलब बहुत यूजफुल टिप शेयर करी है अनुराधा जैन ने जो बैंगलोर,
1: बहुत सिंपल अवेलेबल रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी टिप आपने करी है शेयर। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और ये बताइए हमें आपकी, बस इतना कुछ है बात करने के लिए हमें लग रहा है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो एक चलते चलते लिसनर्स को एक सॉन्ग और सुनाते हैं और उसके बाद फिर हम लौट कर आएंगे और आपसे विदा लेंगे। तो हो जाए एक और लास्ट सॉन्ग। हाँ जी,
1: अलका याग्निक जी को हम भूल नहीं सकते, बहुत ही फेमस जो हम लोगों की सिंगर है, तो मैं उन्हीं का एक नगमा, उनका एक सॉन्ग गुनगुनाना चाहूंगी।

क्या बात है, खूबसूरत सॉन्ग। तो लिसनर्स बहुत जल्दी से चलते हैं इस सॉन्ग को सुनते हैं और फिर वापस से आते हैं। तो चलिए सुनते हैं अनुराधा जैन जी का ये ट्रैक फुल।

0: बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, बहुत ही प्यारे टिप, बहुत ही डिलीशियस यम्मी डिश, बहुत सारी चीज़ें अनुराधा जैन ने आज शेयर करी हैं जो बेंगलोर से हैं और हमारे कुकिंग शो फ्यूजन शांजा चूल्हा विद आरजी प्रीत की प्रोग्राम में हैं। तो अनुराधा, आप जाते जाते लिस्टर्स को कुछ कहना चाहेंगी?
1: जी हाँ, सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगी, जयपुर रेडियो को, प्रीत आपको, जिन्होंने मुझे यहाँ आज इनवाइट किया इतने एक अच्छे प्रोग्राम में। एक बहुत अच्छा टास्क आप लोग कर रहे हैं, ये तो सबको दिल से बहुत धन्यवाद है। और जो मैंने आज अपना ये डिश बताया है दाल बाटी, आप इसको ज़रूर से बनाइए अपने घर पे, बहुत इजी है और खाने में भी बहुत यमी है और हेल्दी भी है सबके लिए, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। और वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रीत कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, और मैं अदर्स मॉम से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी रेसिपीज ऐसे ही लाइए। अपने टैलेंट है जो एक जयपुर रेडियो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप मस्ती से गाइए, कुकिंग कीजिए, तो इस प्रोग्राम को सुनिए, सबको सुनाइए और आप इसका एक हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच।
0: क्या बात है, क्या बात है। मतलब देखिए, जो ये कारवा है ना, ये मुझे भी लगता है रोकना नहीं चाहिए और हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से मॉम्स के इंटरेस्ट आ रहे हैं हमारे जयपुर रेडियो पर इस प्रोग्राम को करने के लिए, तो हम यही चाहेंगे कि और भी मॉम्स इकट्ठी हों यहाँ पर, है ना अनु जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा है लेडीज के लिए कि उनको आज सुन एंटरटेनिंग के साथ कुकिंग की रेसिपीज मिल रहे हैं। एक लेडी को क्या चाहिए, कुकिंग अच्छा और खुद का एंटरटेनमेंट हो जाए साथ में घर बैठे बैठे,
0: तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स सुन रहे थे अनुराधा जैन को जो बैंगलोर से हैं और हमारा कुकिंग शो फ्यूजन सांझा चूल्हा विद आरजी प्रीत प्रोग्राम में। तो थैंक यू सो मच अनुराधा हमारे शो में आने के लिए। हम जल्दी आपको वापस बुलाएंगे और फिर से एक नई डिश के साथ आपको आप रूबरू होंगे जयपुर रेडियो के सभी लिसनर्स से। थैंक यू अनु, बाय। जयपुर रेडियो ये प्रोग्राम लेकर आया है कुकिंग शो जिसका नाम है फ्यूजन सांझा चूल्हा विद आरजे प्रीत। और हमारे इस कुकिंग शो में नई नई मॉम्स आती हैं, हर कोने से आती हैं, देश विदेश से आती हैं, और ये प्रोग्राम आपको संदेश देता है इस चीज का कि देखिए, खाना तो बनाइए लेकिन साथ ही साथ म्यूजिक का भी लुत्फ उठाइए और सिंगिंग भी सुनिए, टिप्स भी सुनिए और साथ ही साथ डिश भी सुनिए। तो जल्दी ही फिर मिलते हैं एक नई मॉम के साथ। अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और खास तौर पे अच्छा अच्छा जरूर से खाते रहें। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं वापस।
2: जिंदगी के पन्नों पर लम्हों की लिखावट बहुत कुछ सुनाती है, अफसाना दर अफसाना। ऐसे ही अफसानों को तलाशने के लिए आज पलटते हैं एक और

0: कभी किसी के बोलने का अंदाज हमें भाता है तो कभी किसी के शब्द। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे गेस्ट आवाज की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, जिनके करियर ने उन्हें रेडियो का हमराही बना दिया, जहां अपने शब्दों के जादू से वो सुनने वालों को अपना मुरीद बनाते चले गए। हमारे साथ हैं विजय रॉय, जो ताल्लुक जोधपुर से रखते हैं मगर अब द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया यानी इंदौर के वासी हैं। नमस्कार विजय रॉय जी।
1: नमस्कार सुषमा जी, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी आवाज सुनने के बाद और भी मुतमईन हो गई हूँ और खुश हो गई हूँ। और हम सब अब उन गलियों की सैर करना चाहेंगे जहाँ आपका बचपन बीता।
1: जी हाँ, ये अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे भी उन गलियों की यादें हमेशा सताती रहती हैं, क्योंकि अब वहां पर जाना काफी मुश्किल सा हो गया है, जा ही नहीं पाता हूँ, एक तो उम्र के कारण और एक उन लोगों के कारण जो अब इस दुनिया में नहीं, मेरी माँ जिनके चरण जब छूता था कमर झुकाता था, कभी मेरे पैरों में दर्द नहीं हुआ, कभी घुटने नहीं दुखे, लेकिन आज घुटने भी दुखते हैं, कमर भी दुखती है, क्योंकि वो माता पिता, वो मेरे बुजुर्ग अब मेरे साथ नहीं
0: है। जी,
1: तो पिताजी जो थे वो वैसे तो मूल रूप से जोधपुर के ही निवासी थे, लेकिन व्यापार के सिलसिले में वो कराची चले गए थे उस समय, और वहां पर काफी उन्होंने अच्छा काम किया, बिल्डर थे वो, वहां पर पैसा कमाया, नाम कमाया, लेकिन फिर 1947 का वर्ष आया और जो मजबूरी में उन्हें फिर से अपने मातृभूमि जोधपुर ले आया। अच्छा लगा था उनको आना, लेकिन दुख भी था कि जो कुछ कमाया था सब कुछ वहीं छूट गया और खाली के हाथ वापस आ गए। उनकी शिकायतें तो अक्सर नहीं रहती थी, लेकिन माता हमारी वो हमेशा शिकायत करती थी और उन लोगों को कोसती थी जिनको आज पूजा जाता है। खैर, समय का है ये तो बात। दुख और सुख, एक देखा जाए तो दुख जो है अक्सर खो-खो के खिलाड़ी की तरह होते हैं, एक तभी अपना स्थान छोड़ता है जब उसका स्थान लेने के लिए दूसरा तैयार रहता है। तो जोधपुर जो मेरे 5 वर्ष थे शुरुआत के, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी कट गए थे। जी हाँ, उस समय की कोई बात मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसके बाद से मेरा पूरा जो 24 वर्ष में जोधपुर में रहा अपने शुरुआती, वो 24 वर्ष सरदारपुरा एक जगह है, उनकी अलग अलग गलियों में मेरा समय कटा, क्योंकि समय समय पर मकान बदलते रहते थे और इस कारण से उन गलियों से बहुत अच्छा परिचय हो गया, वहां के बच्चों के साथ बहुत अच्छा हो गया, और खेल ऐसे खेलते थे जो आज के बच्चे तो सोच भी नहीं सकते।
0: जी हाँ,
1: कंचे खेलना, नीम के पेड़ों पर चढ़ना और निबोलियां खाना, छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती थी टेकरियां, उन पर घूमना करना, ऐसा लगता था कि क्या बात है। और शायद यही कारण था कि दौड़ भाग हमेशा लगी रहती थी और कभी भी हम लोग बीमार नहीं पड़ते थे। उस समय सुषमा जी जो निबोलियां खाते थे, है ना
0: जी,
1: लगता है कि शायद उन्हीं का कारण है कि शरीर में इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि मैं अपने रिटायरमेंट तक कभी बीमार नहीं पड़ा।
0: जी
1: हाँ, जैसा कहते हैं कि नीम खाना चाहिए, नीम के पत्ते अच्छे होते हैं, तो शायद एक कारण वो हो सकता है। और खाने के समय जब होता था कि बाहर खेल रहे हैं, खेलते खेलते घर में आए, रोटी उठाई, सब्जी उसके अंदर डाली, रोल बनाया और खा लिया, कहाँ हाथ धोना और कहाँ पैर धोना, कुछ जी हाँ, आजकल जो बिल्कुल बातें हो गई हैं कि हर बात में कि पहले हाथ धो लो, पर खैर आज की बात बिल्कुल ही अलग है। उस समय इम्यूनिटी जो थी बच्चों की बहुत अच्छी थी और बीमारी कम होती थी, लेकिन आजकल जो सब कुछ आजकल चल रहा है केमिकल्स का बाजार, उसके कारण बच्चे जो हैं वो बहुत ही बीमार पड़ने लगे हैं, और ऐसा लगता है कि इनके पास खेलने के लिए अब कुछ नहीं बचा, बस मोबाइल है और उस मोबाइल ने सबको अपने से दूर कर दिया है।
0: बिल्कुल,
1: हमारा मकान भी जो था कोई बहुत बड़ा नहीं था, छोटा मकान था, लेकिन लोग सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, और वो जो परिवार का सुख होता है साथ

0: खाना खाने का उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती।
1: बिल्कुल, और इतनी देर से मैं आपकी ये खाने की बात को सुन रही हूँ, मुझे लगता है ये जोधपुर का असर है, क्योंकि जोधपुर में मिठाई और कचौरी और वो मिर्ची बड़ा, इनकी इतनी
0: आप
1: तारीफें सुनी है हमने।
0: कभी आई नहीं जोधपुर?
1: जी बिल्कुल, मैं गई हूँ जोधपुर और ये सब चीजों का जायका मैंने लिया है। तो खाने की बात से निकल के मैं आपके करियर के उस पॉइंट पे पहुंचना चाहती हूँ जहाँ आपको माइक्रोफोन से लगाव हुआ, तो ये लगाव की कहानी कैसे शुरू हुई?
0: सुषमा जी, मैं बताऊं, मेरे जीवन में कुछ भी सामान्य रूप से नहीं हुआ, हर कुछ
1: अच्छा
0: हुआ। जो माइक्रोफोन की बात है, जहां तक, ये भी बड़ी विचित्र रूप से मेरे जीवन में शामिल हुई है, क्योंकि हम चार पांच लोग, अपने जो मित्र थे, वो घूमने के लिए, वहां का एक जगह है कायलाना, वहां पर गए हुए थे। और वहां पर ट्रांजिस्टर चल रहा था, और उसमें गानों के बीच में एक उद्घोषणा हुई कि आकाशवाणी जोधपुर को आकस्मिक उद्घोषकों की आवश्यकता है। बड़ा अजीब लगा कि उद्घोषक कौन होते हैं और आकस्मिक क्या होता है, कुछ ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि उम्र काफी छोटी थी। खैर, जब हुआ तो ये हुआ कि चलो, ग्रेजुएशन तो हो चुका है, क्यों ना हम भी अप्लाई कर दें। तो हम लोग साइकिल पे थे सारे दोस्त, वहां करीब करीब, आप मान लीजिए कि करीब 10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर हमने कायलाना से और आकाशवाणी जोधपुर पहुंचे। वहां पर
1: जी
0: डरते सहमते अंदर पहुंचे तो मालूम किया कि भाई ये क्या है पोस्ट। तो उन्होंने कहा कि ये अनाउंसर है। तब समझ में आया कि अनाउंसर की पोस्ट है, उद्घोषक क्या होते हैं, उस समय तक ज्ञान नहीं था। उस समय फिर वहां पर अप्लाई किया और फिर भूल गए। करीब 5-6 महीने बाद घर पे पत्र आया आकाशवाणी जोधपुर से कि आपका जो वॉइस टेस्ट होना है, आप आ जाइए इस तारीख को। हम चले गए। वॉइस टेस्ट क्या होता है, कुछ भी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल जानते ही नहीं थे। वहां पर पहुंचे तो उस समय वहां पर आदरणीय मुरली मनोहर मंजुल जी मिले, और मंजुल जी ने सबको बिठाया, बताया कि क्या करना है, इस तरह से वॉइस टेस्ट होगा, आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी, उसको आपको पढ़ना है। और एक उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि उस समय कुछ उद्घोषणाएं जो वहां उस समय के अनाउंसर्स थे, उनकी सुनाई हमको कि देखिए ये है, ये उद्घोषणा होती है, इस तरह से आपको करना है, जो अच्छा करेगा उसको चुन लिया जाएगा। हमने कहा ठीक है। मेरा भी नंबर आया, 13 सीरियल नंबर था मेरा, और हमने उद्घोषणाएं कर दी और इंतजार कर रहे थे कि कब इसका रिजल्ट आएगा। शाम हो गई, शाम के समय उन्होंने कहा कि अब एक लिस्ट बनाई जा रही है, उसमें आप अपना नाम और नंबर देख लीजिएगा। और उस लिस्ट में खुशी की बात थी कि मेरा नाम भी था।
1: वाह,
0: जी हाँ, तब से मैं आकाशवाणी जोधपुर में कैजुअल अनाउंसर हो गया 1970 से।
1: तो विजय जी, बीइंग एन अनाउंसर, वाज दैट योर ओरिजिनल करियर चॉइस या कुछ और बनने का सपना देखा था आपने?
0: ये तो मालूम ही नहीं था कि अनाउंसर भी कोई कैरियर बनाया जा सकता है। मेरा तो शौक था कि मैं, वैसे मेरे घर परिवार में जो है उस समय टीचर्स ही टीचर्स थे, बड़ी बहन भी टीचर, बड़ा भाई भी टीचर, सबको टीचर थे। तो एक ऑप्शन तो यही होता था कि टीचर बन जाए, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगा। और इसी कारण से मैंने 9th में जो अब सब्जेक्ट की चॉइस होती है, ऑप्शनल लेने होते हैं, उस समय मैंने बायोलॉजी ली, और
1: जी
0: मैंने बीएससी बायोलॉजी में की थी, लेकिन पीएमटी में नंबर नहीं आ सका, क्योंकि शायद ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था कि कहीं और जाना है, कुछ और नाम कमाना है, सिर्फ डॉक्टर में ही सब कुछ नहीं है। तो यहाँ चयन हो गया। और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि जब ये मेरा रेगुलर अनाउंसर का इंदौर में चयन हुआ, ये भी बड़ी विचित्र बात है, मैं अपना चेक लेने के लिए आकाशवाणी जोधपुर गया था। वहां पर चेक बनने में कुछ समय था, और उस दौरान मैंने जो वहां पर नोटिस बोर्ड होता है उस पर देख रहा था, तो वहां था आकाशवाणी इंदौर का एक विज्ञापन। उसमें उन्होंने लिखा कि हमें आकाशवाणी इंदौर में अनाउंसर्स की जरूरत है, और जो डिटेल्स होती हैं उसके बारे में लिखा था। लेकिन जब अंतिम तारीख देखी तो वो वही तारीख थी जो उस दिन थी, मैं पढ़ रहा था, वो अंतिम तारीख थी।
1: जी
0: लेकिन अजीब सी बात थी कि मैंने अप्लाई कर ही दिया। मैंने उसमें, मैंने कहा अगर होगा भाग्य में तो हो जाएगा। और इंदौर में ऐसा हुआ कि किसी कारणवश वो जो डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई,
1: जी
0: और उस एक्सटेंशन के दौरान मेरी जो एप्लीकेशन है वो भी आ गई थी और मुझे शामिल कर लिया।
1: क्या बात है। और वहां से आपका ये दौर शुरू हुआ, तो एक अनाउंसर, वो भी रेडियो पर, तो उस वक्त तो रेडियो का एक अलग ही क्रेज था। कैसा था वो
0: बहुत,
1: वक्त और कैसी थी आपकी वो यात्रा?
0: मैं बताऊं आपको कि शुरुआत में जब मैं यहाँ आया इंटरव्यू देने के लिए, वो मेरे जन्मदिन का दिन था, 4 जून 1974। और
1: अच्छा
0: हाँ, उस पूरे बैच में करीब 600 लड़के लड़कियां थी, और कई दिग्गज लोग थे, लेखक थे, कवि थे, सब थे, हम तो सिर्फ कैजुअल अनाउंसर थे। तो उसमें 6 जनों को सेलेक्ट करना था, उन 6 जनों में मैं हुआ, और ईश्वर की कृपा रही कि उस लिस्ट में मैं सबसे नंबर 1 पर था।
1: वाह।
0: जी हाँ।
1: तो कैसा था वो वक्त और कैसी थी वो यात्रा? आपको तो बहुत फैन फॉलोइंग उस समय मिली होगी, क्योंकि वो
0: हाँ,
1: वक्त ही ऐसा था।
0: शायद आपको, आप भी चूंकि इसी फील्ड से हैं और आपको कुछ मालूम होगा, लेकिन हमने जो जीवन जिया है यहाँ पर, वो पूरा जीवन एक क्या कहें, ऐसे इंसान का जिया कि जिसको छूने के लिए लोग तरसते थे, जिनकी आवाज सुनने के लिए बिल्कुल आतुर रहते थे। और हमें लगता था कि फिल्म लाइन के जो कलाकार हैं उनके बाद तो सिर्फ अनाउंसर ही होता है, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी कार्यक्रम करके निकलते थे, उस समय मोबाइल तो थे ही नहीं, और जो फोन थे लैंडलाइन फोन, उनसे हमारे ऑफिस के फोन पर इतने कॉल आते थे, आप इनसे बात करा दीजिए, आप इनसे कर दीजिए। और जमघट हर 7वें 8वें दिन आकाशवाणी इंदौर में लग जाता था कि हमें अमुक अनाउंसर से मिलना है, और अगर मिल लें तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। तब लगता था बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे साथ अभी एक अनाउंसर हैं, अभी जो वर्तमान में अनाउंसर हैं, उन्होंने अपनी कहानी बताई। वो बोले कि मैं एक बार यहाँ पर आया था, और मैं उस समय 11वीं में पढ़ता था, और रॉय साहब आप ड्यूटी पर थे, आप एक प्रोग्राम कर रहे थे, आपने मेरे से हाथ मिलाया और फिर मैंने वो हाथ 3 दिन तक धोया नहीं। तो बोले कि जब मेरी माता जी पूछती थी कि तू सीधे हाथ से खाना क्यों नहीं खा रहा है, उल्टे से खाता है, तो बोले नहीं, वो फिर हाथ धोना पड़ेगा, और मैं रॉय साहब से हाथ मिलाकर आया हूँ।
1: क्या बात।
0: क्रेज था रियली, ऐसा लगता था कि पता नहीं हम कौन से आसमान पर चल रहे हैं।
1: बड़ा अच्छा लगता है उन मेमोरीज में जाना, उस वक्त को याद करना। लेकिन आपने आवाज की दुनिया की जो बात की है, आपने आवाज की दुनिया में अपने हस्ताक्षर करने के बाद और भी कुछ विधाओं में अपना फन आजमाया है, तो क्या विधाएं थी वो जो माइक्रोफोन से जुड़ी हुई थी?
0: माइक्रोफोन से जुड़ी, ठीक है, जो सामान्य कार्य होते हैं एक अनाउंसर के, वो तो करने ही होते हैं, रोजमर्रा के जो ट्रांसमिशन ड्यूटीज रहती हैं। उसके अलावा उस समय यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे हमारे साथ, स्वतंत्र कुमार ओझा, और वो मेरे लोकल गार्जियन हो गए थे। तो उसके कारण मेरा झुकाव ड्रामास की तरफ बहुत अधिक हुआ था। उनके साथ मैंने बहुत सारे ड्रामास किए और झलकियां की, काफी किए, नेशनल लेवल तक वो गए, और उनसे जो खुशी मिलती थी, सही कहूँ कि वो खुशी कभी और नहीं मिल सकी मुझे, क्योंकि उनका जो तरीका था ड्रामास को प्रोड्यूस करने का, वॉइस कल्चर करने का, वो बहुत ही अलग तरीका था। हालांकि मेरी हमेशा कोशिश ये रहती कि मैं उनको नकल न करूं, क्यों, करूंगा तो जो ओरिजिनल बंदा है उधर उसको पूछेंगे लोग या नकलची को पूछेंगे, इसलिए मैंने नकल नहीं की। जी हाँ, लेकिन
1: जी
0: सीखा बहुत कुछ। एक और मेरे को बहुत अच्छी विधा मिली, वो मिली मेरे को कहानी पढ़ने की, कहानी का जो
1: अच्छा
0: डिलीवरी होती है वो बहुत अच्छी मिली। और हुआ क्या था कि एक बार मैं ड्यूटी कर रहा था, शाम की ड्यूटी विविध भारती पे, और उस समय एक आधा का कार्यक्रम 8:15 बजे सुनो कहानी। उस सुनो कहानी में ओम शिवपुरी एक कहानी पढ़ रहे थे।
1: जी।
0: उनका पढ़ने का तरीका था, उसको मैंने गौर से सुना और सुनने के बाद लगा कि अरे कितना अच्छा पढ़ा इन्होंने। वो कहानी मेरे जहन में कर गई, वो मतलब मैं भूलने की कोशिश कर रहा था काफी समय तक, लेकिन भूल ही नहीं जाती थी, और ओम शिवपुरी का चेहरा मेरे सामने आ रहा था। तब से वो कहानी पढ़ने का तरीका जो है मैंने डेवलप किया, और वो डेवलप करने के बाद ऐसा लगा कि बस यही है बात जिसमें मुझे आगे जाना है। और सुषमा जी, आप शायद विश्वास न करें, एक बार मैं लाइव कहानी पढ़ रहा था रात के समय, और दो ड्यूटी ऑफिसर्स, एक आकाशवाणी जयपुर से ही आए थे, रमेश खत्री, और एक हमारे यहाँ के थे बिश्नोई, तो वो दोनों कहानी बाहर सुन रहे थे, और जब मैं कहानी पढ़ने के बाद बाहर आया तो वो रो रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले भाई साहब आपने कहानी ऐसी पढ़ी कि रोना आ गया। तो ये एक्सपेरिमेंट था मेरे जीवन में कि चलिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका असर कुछ लोगों पर तो अवश्य हो रहा।
1: बिल्कुल, और जब इन बातों को सोचते हैं और उस असर को देखते हैं तो वाकई हमारे दिल पर भी असर होता है। अब हम आपकी उस विधा की बात जरूर करना चाहेंगे जिसमें आपने बहुत नाम कमाया एज अ कमेंटेटर।
0: देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि सब कुछ अचानक हुआ मेरे जीवन में, ये बात है 1978 की, और हमारे यहाँ जो स्टेशन डायरेक्टर थे मिस्टर केशव पांडे, वो उन्होंने मेरे को बुलाया और बुला के बोला कि क्यों तुमने कभी क्रिकेट खेला है, तो मैंने कहा यार सर मैं यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा हुआ हूँ जोधपुर में। तो बोले वाह भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट्री करोगे? मैं चुप हो गया। बोले क्यों नहीं कर सकते क्या? बोले यार तुम अनाउंसर हो और क्रिकेट जानते हो तो कमेंट्री कर लो। तो मैंने कहा ठीक है सर, और उस समय मैंने पहली कमेंट्री हमारे इंदौर के नेहरू स्टेडियम में की, और वो थी इंग्लैंड और रणजी ट्रॉफी विनर बॉम्बे के बीच में मैच हुआ, उसकी शुरुआत की। और सुषमा जी आपको और बता दूं बात कि वो जो पहली कमेंट्री थी उसके साथ एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हुई हैं चंद्रा नायडू, आपने सुना हो है ना, जिन्हें कहा जाता है कि पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी, वो और मैं हमने साथ में शुरुआत की थी। और वैसे वो कर्नल सी के नायडू की बिटिया थी, और क्रिकेट उनके घर में रचा बसा था, लेकिन हाँ चूंकि वो अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, लेकिन क्रिकेट की तरफ उन्होंने वैसे बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस कारण से जब हम कमेंट्री करने बैठे तो उनका एक रिक्वेस्ट आई कि विजय मेरी मदद करोगे? मैंने कहा तो उन्होंने जब हम कर रहे थे कमेंट्री, वो एक चार्ट बनाकर ले आई थी, और उस चार्ट में पूरा फील्ड था क्रिकेट का, साथ में जो प्लेयर्स थे उनके नाम थे, और उसको देखकर मैंने उनकी खूब मदद की, और वो जो पहली कमेंट्री करने वाली महिला बनी उसमें शायद थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा।
1: बिल्कुल। तो कैसे थे वो दिन कमेंट्री के, कुछ खास यादें उस जर्नी से जुड़ी हुई जैसे आपने अभी बताई?
0: वो ऐसा लगा मुझे उस दिन जब पहली बार मैंने कमेंट्री की कि पता नहीं क्या मैंने किस आकाश पर हूँ, उपलब्धि मैंने क्या हासिल कर ली है, लेकिन धीरे धीरे मालूम किया कि अभी तो मुझे कमेंट्री का ए ही आता है, अभी जेड तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। लेकिन फिर लगातार मुझे इतने अवसर मिले कि मैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकता था। उस समय रणजी ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, बहुत सारी ट्रॉफीज होती थी, और उन सबकी कमेंट्री आकाशवाणी से होती थी। तो करीब करीब आप मान लीजिए कि 100 से 150 कमेंट्रीज तो मैंने यही कर ली होंगी इन सभी मैचेस की। एक बार तो मैंने एक कमेंट्री की भीलवाड़ा में जाकर, वहां से आकर मैंने फिर इंदौर में कमेंट्री की, इंदौर से फारिग हुआ तो उसके बाद मैं बीकानेर पहुंच गया, तो इस तरह से 3 कमेंट्री लगातार की। और फिर आया 1978 का दिन जब मैंने 78 में तो मैंने पहली कमेंट्री की, उसके बाद मैंने ODI किया 1997 में, 25 दिसंबर 1997 में मतलब वन डे इंटरनेशनल, और
1: जी
0: भारत और श्रीलंका के बीच। आपको शायद याद हो कि वो मैच जो था बहुत आज भी चर्चा में रहता है, जब बात है कि वो मैच अबेंडेंड हो गया था, और अबेंडेंड हुआ था वो विकेट के कारण। ये कहा गया श्रीलंका के खिलाड़ियों की तरफ से, उनके कप्तान अर्जुन रणतुंगा की तरफ से, कि विकेट जो है अंडर प्रिपेयर्ड है और उसमें मिट्टी उड़ रही है, इसलिए हम इसको मैं नहीं खेलेंगे। पहले तो बड़ा अजीब सा लगा कि पहले जब तीन ओवर हुए तो एक या दो बॉल अवश्य उछली थी, सामान्य ऊंचाई से अधिक गई थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उस विकेट पर खेला नहीं जा सकता था। उन्होंने भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर से अनुरोध किया कि ये मैच यहाँ नहीं हो सकेगा, लेकिन उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहला ओवर किया हमारी तरफ से श्रीनाथ ने और सिर्फ दो या तीन बॉल ऊपर उछली, बाकी तो सामान्य रूप से आ रही थी। फिर इसलिए सचिन तेंदुलकर ने दूसरा तेज गेंदबाज नहीं लगाया, लेकिन चौहान जो थे उनको लगाया, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, तो वो उन्होंने गेंद की, अच्छी हो रही थी, स्पिन हो रही थी, काफी अच्छी हो रही थी। और तीसरा ओवर जब वापस श्रीनाथ ने किया तो उसके खत्म होते ही अचानक खेल रुक गया, और ऐसा लगा कि रुक क्यों गया। मैं और भोगले वो अंग्रेजी में कर रहे थे, मैं हिंदी में कर रहा था, तो हमें लगा कि रोक क्यों दिया गया। फिर धीरे धीरे कुछ समाचार आने लगे कि नहीं, ये जो विकेट है ये अंडर प्रिपेयर्ड है, इसलिए इस पे मैच नहीं होगा, और जो पूरा ग्राउंड था वो दर्शकों से भरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि अगर ये मैच रोक दिया गया तो कुछ न कुछ बवाल हो जाएगा। अब उस समय स्थिति को संभालना कमेंटेटर्स के हाथ में था, हम दोनों ने मिलकर उस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला और लोगों को ये मालूम नहीं होने दिया लंबे समय तक कि वो जो मैच है वो अबेंडेंड हो गया है, और उसकी 25 ओवर का मैच खेला जा रहा था, और काफी देर बाद हमने लोगों को बताया कि ये अब जो मैच है ये सिर्फ सामान्य मैच है और 25 ओवर का खेला जाएगा, और संतुष्ट भी हो गए दर्शक उस समय इससे, और वो मैच 25 ओवर का हुआ। और मजे की बात ये थी कि उस मैच में डेब्यू कर रहे थे ऋषिकेश कानेटकर भारत की तरफ से, लेकिन वो ओडीआई में उस दिन डेब्यू नहीं कर पाए क्योंकि वो
1: तो विजय जी बहुत से खिलाड़ियों से आप, बड़े बड़े नाम जो हैं उनसे मिले आप, कमेंटेटर्स कमेंट्री की दुनिया में जो बड़े नाम हैं उनसे आप मिले। आपने बताया हर्षा भोगले जी जो इंग्लिश के एक बहुत ही जबरदस्त कमेंटेटर रहे हैं, इस तरह आपका भी कोई आइडियल रहा होगा जिसकी विशेष क्वालिटी ने आप पर प्रभाव छोड़ा, या आपने कभी किसी को कॉपी तो नहीं किया, बिकॉज ये आप पहले ही क्लियर कर चुके कि कॉपी।
0: मतलब मेरे हमारे शहर के ही है बहुत ही जाने माने कमेंटेटर सुशील दोषी, पद्मश्री सुशील दोषी है ना, वो यहाँ पर कमेंट्री करते थे, और बाद में उनसे मेरी अच्छी मित्रता भी हो गई यहाँ पर आने पर, और उनके साथ भी मैंने कई मैचेस कवर किए थे, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं उनको कम से कम सुनूं, क्योंकि अगर कोई किसी व्यक्ति को आप सुनेंगे तो जाने अनजाने अनकॉन्शियसली आपके माइंड में उनकी कुछ बातें, उनके कुछ शब्द, उनकी कोई स्टाइल वो आपके अंदर समा जाएगी और फिर आप उसकी नकल करेंगे। लेकिन मेरा शुरू से ये कहना था कि किसी की नकल करके अगर आपने नाम कमाया तो क्या कमाया, इसलिए मैंने कोशिश ये की कि मैं अपनी इंडिविजुअलिटी रखूं, और वही मैंने पूरे समय पे कोशिश की। हालांकि कई शब्द होते हैं ऐसे जो जाने अनजाने आपकी भाषा में शामिल हो जाते हैं जो किसी और ने पैदा किए थे, खैर ऐसा तो जीवन में चलता ही रहता है, और जी हाँ कुछ न कुछ तो आपके अपने आप ही आ ही जाता है आपके जीवन में, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रही कि मैं किसी की नकल ना करूं।
1: और कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एपिसोड आपकी कमेंट्री से जुड़ा हुआ जो आप शेयर करना चाहें?
0: जी हाँ, एक बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ था, यहाँ पर इंग्लैंड और इंडिया का ओडीआई मैच था इंदौर में, और पहले तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होते थे, लेकिन उसके बाद होलकर स्टेडियम में होने लगे, तो आकाशवाणी इंदौर से जो अधिकारी थे कार्यक्रम अधिकारी वो लोग गए एमपीसीए के पास हमें कमेंट्री करनी है आकाशवाणी को, तो हमें एक बॉक्स दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी कोई बॉक्स खाली नहीं है, तो हम नहीं दे सकते, कमेंट्री करें या ना। बड़ी अजीब सी बात हुई, लेकिन काफी उसके बाद परसुएशन हुआ, मैं भी गया और वहां पर जब बात की तो हमें एक ऐसा बॉक्स मिला जो 45 डिग्री पर था, बिल्कुल जो था ग्राउंड का वो दिया गया। अब जहां जब उस पर हम कमेंट्री करने बैठे तो वहां से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बैट्समैन क्या कर रहा है, बैट्समैन ने अपना लेग गार्ड कैसे लिया है, गेंदबाज आ रहा है तो गेंद कहाँ से कर रहा है वो, और उसकी गेंद कहाँ जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल हम सिर्फ अंदाज से कमेंट्री करते जा रहे थे। हमें भी बहुत बुरा लग रहा था कि जो वहां पर हैं बैठे हुए लोग, उनको दिख रहा है वो क्या सोचते होंगे हमारी कमेंट्री को सुनकर कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। लेकिन 15 से 20 मिनट बाद जब ये मजबूरी बहुत ही सिरदर्द बन गई, तो हमने फिर वहां के जो MPCA के लोग थे, संजय जगदाले विशेष रूप से, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि सर और कुछ ना हो सके तो एक आप TV मॉनिटर हमारे पास रख दीजिए जिससे देखकर हम कमेंट्री कर सके। तब उन्होंने हमारी जो थी रिक्वेस्ट उसको माना और वो TV आया वहां पर, उसको देखकर फिर हमने कमेंट्री की। वरना अगर वो नहीं आता तो वो शायद जीवन का सबसे बुरा दिन होता हमारा जब मुश्किल से कमेंट्री कर पाते, और दुख ये केवल यही रहता कि हमने ढंग से कमेंट्री की नहीं।
1: बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, जब आप लाइव कुछ कर रहे हैं तो एक एक पल जो गुजरता है वो बड़ा मायने रखता है। आपकी आंखों के सामने क्या चल रहा है वो क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तो आप उसे शब्दों में ढाल नहीं पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और सुषमा जी, मेरी हमेशा जीवन में कोशिश रही, जब भी मैं कमेंट्री करता था तो मैं ये चाहता था कि लोग इसे रेडियो पे सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता था कि उनको ये लगे कि ये उनको दिख भी रहा है। तो मैं अपनी कमेंट्री में ये पूरी कोशिश करता था कि मैं उनको विजुअलाइज करा दूं पूरा खेल, उनको ये लगे कि हाँ ये गेंद यहाँ से आई, इधर गई, और जो खिलाड़ी था उसने इस तरह से खेला, अपने दाएं तरफ खेला या बाएं तरफ खेला, और जो फील्डर था उसको कितना भागना पड़ा, अपने किस तरफ से भागना पड़ा, उसने किस तरह से फील्ड किया, गिर कर फील्ड किया या सामान्य रूप से फील्ड कर लिया, कैसे उठा के उसने थ्रो किया। तो ये जीवंत कर देता था मैं बिल्कुल ही कमेंट्री में। और मुझे अक्सर लोग कहते भी थे कि आप कमेंट्री जो करते हैं उसको हम सुनते नहीं, हम उसको देखते हैं।
1: और एक अच्छे कमेंटेटर का यही रोल होता है। मुझे याद है कि रेडियो की कमेंट्रीज बहुत मायने रखती थी, मतलब लोग उनके पीछे, लोगों का क्रेज होता था, खासकर अगर आपने जब शुरुआत में मुरली मनोहर मंजुल जी का नाम लिया, उनकी कमेंट्री में भी आपको सब कुछ दिखाई देता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंजुल जी तो महान कमेंटेटर थे। हालांकि उनके साथ ये था जुड़ा हुआ कि वो साथ में सुंदर कविताएं भी पेश करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि जब थोड़ा सा समय मिल गया है, जब खेल रुक गया है, तो आप कविताओं का आनंद भी ले लीजिए साथ साथ में। और एक जितने नेक दिल इंसान थे, क्योंकि मेरा सिलेक्शन भी उन्होंने ही किया था, तो मैं मन से तो वैसे ही उनके प्रति आभारी था बहुत। और फिर जब वो उनकी कमेंट्री सुनता था तो बहुत अच्छा लगता था। एक और बात बताऊं, मैं कमेंट्री कर रहा था और मेरा छोटा भाई है, वो भी कमेंट्री करता था कुछ समय के लिए उसने की, और मैं इंदौर से कर रहा था और भीलवाड़ा से वो कमेंट्री कर रहा था। तो ये दो भाइयों की एक साथ कमेंट्री उस समय बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को कि दो भाई एक साथ कमेंट्री कर रहे हैं
1: मतलब वो एक अलग ही रिकॉर्ड था जी अच्छा विजय जी, एक अनाउंसर के रूप में आपने अपनी भूमिका निभाई है और एक कमेंटेटर के रूप में भी, तो क्या फर्क लगता है आपको, क्या कुछ अलग है, क्या कुछ नया सीखना पड़ता है?
0: सीखना, यह जहां तक अनाउंसर का सवाल है, यहाँ तो सीखने की इतनी बड़ी है कैनवास जो है, बहुत बड़ा कैनवास है, आप सीखते जाइए सीखते जाइए। आज मैं रिटायर हो गया हूँ लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैंने बहुत कुछ नहीं सीखा, क्योंकि सीखने की कोई सीमाएं ही नहीं है अनाउंसर के रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्यतः मैंने देखा है कि जो आजकल के अनाउंसर हैं उनमें सीखने की कोई है ही नहीं, आदत ही नहीं है, उनको लगता है कि बस अनाउंसर बन गए ना, बस ठीक है। लेकिन हम जब थे तब मैं अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति मिल जाता था और मुझे किसी उर्दू शब्द के ज्ञान नहीं होता था तो मैं उससे पूछता था, हिंदी शब्दों के बारे में हिंदी के जो प्रोफेसर आते थे आकाशवाणी में उनसे सीखता था। तो इस तरह करके जो ज्ञान है हिंदी और अंग्रेजी का या उर्दू का, वो अर्जित करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आजकल तो क्या है कि किसी को अपने भाषा की वर्णमाला ही पूरी नहीं मालूम है ना, तो उच्चारण दोष बहुत हो जाता है आजकल, इतना अधिक होता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना उच्चारण दोष है। उर्दू के शब्दों में भी ऐसा ही होता है। तो मेरा तो ये कहना है, मेरे अगर कोई साथी हैं, कि आप भाषा हमेशा सीखते रहिए और ऐसे व्यक्ति से सीखिए जिसको आता हो, है ना।
1: बिल्कुल सही,
0: नादान को ना पकड़ लें, किसी अच्छे व्यक्ति से भाषा का ज्ञान लें आप। और
1: बिल्कुल
0: प्रेजेंटेशन का भी है, वो भी इसी तरह से है कि आप किसी प्रोग्राम को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें जब तक आप खुद शामिल नहीं हो जाएंगे, इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, तब तक आप उस प्रोग्राम में जान नहीं डाल पाएंगे। सिर्फ एक रूटीन ड्यूटी की तरह का आप प्रोग्राम करेंगे तो वो उसका असर किसी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल अपना समझकर अगर उसको पेश करेंगे तो मान लीजिए कि आपके जो लोग हैं वो आपके पीछे इतने दीवाने हो जाएंगे कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुषमा जी, एक और बात बताता हूँ मैं।
1: जी।
0: मैं बहुत बड़े यहाँ के सिंधी के कहानीकार थे, उनकी कहानी पढ़ी और उसके कुछ दिन बाद हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर थे लक्ष्मेंद्र चोपड़ा, उन्होंने मुझे बुलाया और उस समय एक व्यक्ति, बुजुर्ग से व्यक्ति वहां बैठे थे, बोले विजय ये है मिस्टर सो एंड सो, इनकी कहानी आपने पढ़ी? मैंने कहा जी हाँ मैंने पढ़ी। अब मैं मन में सोचूं क्या बात हुई, मुझे क्यों बुलाया? तो बाद में चोपड़ा जी ने उनसे कहा कि ये हैं मिस्टर विजय रॉय जिन्होंने आपकी कहानी पढ़ी। वो बंदा उठा, मुझसे उम्र में करीब करीब 25 से 30 साल बड़ा था, उठा और मेरे पैर पड़ने लगा। मैंने झुककर उन्हें उठाया, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, गुनाह हो रहा है ये। तो रोने लगे वो, बोले रॉय साहब मैंने जितनी कहानी लिखी थी अच्छी, उससे अच्छी आपने उसको बना दी। अचीवमेंट्स बहुत हुए हैं मेरे साथ, मुझे बड़ा मैंने अपनी जो एक करियर चुना उस करियर में मैंने कुछ उपलब्धि हासिल की है।
1: बिल्कुल, और बहुत खुशी होती है जब आप उम्र के इस पड़ाव पर होते हैं कि आपने इतना सब कुछ सबकी खुशियों के लिए उनके बीच रखा और उन्होंने उसे स्वीकारा है पूरे दिलो जान से, तो अच्छा लगता है। एक और बात कि आजकल जो वक्त चल रहा है उसको आपने डिस्क्राइब तो किया, फिर भी क्योंकि आजकल आवाज का बहुत महत्व है, शब्दों का बहुत महत्व है, चाहे हम कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हो, यंग जनरेशन की हम बात करें, बहुत से कामों में उन्होंने अपने आवाज का इस्तेमाल करना होता है, शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, तो अपनी आवाज से जो लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, क्या कुछ जरूरी है उनके लिए जानना और समझना या सीखना?
0: सबसे पहली बात तो यह है कि आपके आवाज में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। आप उसमें ये ना करें कि आप उसको बेस वॉइस बना दें और उस बेस वॉइस को मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। आपकी जो ओरिजिनल आवाज है उसी आवाज में आप बात कीजिए। और सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसके बारे में सबसे पहले उसकी जानकारी हासिल कर लीजिए कि क्या किस फील्ड का वो व्यक्ति है, हमें उससे किस तरह की बात करनी चाहिए, और वो अगर आपका हासिल होगा तो आप एक अच्छा इंटरव्यू ले पाएंगे। और एक बात जो मैंने के नैयर से सीखी, वो बहुत अच्छे इंटरव्यू लेते थे, तो उन्होंने हमें बताया कि विजय कभी भी कोई इंटरव्यू आप ले रहे हैं और सामने वाला बोल रहा है तो उसे काटिए मत, क्योंकि अगर आप काट देंगे तो उस समय जो वो बोलना चाह रहा है वो शायद आगे भूल जाए और वो बात हो सकता है कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हो और आपने सिर्फ अपने जिज्ञासा में अपने एक नए क्वेश्चन को आगे फेंकने के चक्कर में उसका वो जो है सोच वो गायब कर दिया। तो ये चीजें होती हैं कि आपको उस कला का ज्ञान होना चाहिए जिस कला में आप आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं। इंटरव्यू कला में और अगर कोई प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम को प्रेजेंट करने में आपके क्या भाव हैं, क्या सोच है आपकी, वो जरूर होनी चाहिए। सिर्फ आपने शब्दों को सामान्य रूप से आगे बढ़ा दिया तो वो इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। कहाँ पर शब्दों पर स्ट्रेस देना है, कहाँ खाली छोड़ना है, कहाँ अपने मनोभावों को उसमें शामिल करना है, ये ज्ञान आपके पास अवश्य होना चाहिए। तो अगर
1: जी
0: तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे उद्घोषक या कमेंटेटर या अनाउंसर बन सकेंगे।
1: और उसके अलावा भी मैंने जैसे बताया कि शब्दों और आवाज की जरूरत आपको रोज की दिनचर्या जो है आपकी उसमें भी पड़ती है, लोगों से मिलना है, बात करना है, बहुत प्रभावित करती है ये बातें। और जब हम आपकी आवाज सुन रहे हैं तो बस मन लग रहा कर रहा है कि सुनते चले जाए क्योंकि आप इतना दिल से बोल रहे हैं। और वो बात आपने बहुत अच्छी बोली कि जब तक आपके मनोभाव आपके शब्दों और भाषा के जरिए और आवाज के जरिए प्रकट नहीं होंगे तो सामने वाला उन्हें सुनकर आकर्षित नहीं होगा। तो ओरिजिनल होना और अपने आप को पूरे मनोभाव से उसमें डूब कर करना कोई चीज, वो एक अलग ही शो होता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आपके पास शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर होता क्या है सुषमा जी, एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैं कमेंट्री करता था तो मैं कई शब्द रिपीट करता था, तो मुझे मेरे घर वाले ही बोलते थे कि पापा आप ये बहुत ज्यादा बोलते हो। तो मैंने धीरे धीरे उसमें सुधार किया कि नहीं, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए, नए नए शब्दों का उपयोग करना चाहिए और किसी और के शब्दों को अपनी भाषा में शामिल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो बहुत जरूरी ना हो।
1: तो ये जो रेपिटेशन है वो आपके प्रेजेंटेशन को एक तरह से खत्म करता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई जी। अब आवाज की दुनिया में आपने एक बहुत खूबसूरत सा सफर तय किया है, तो इसलिए जरूर जानना चाहेंगे आपका वो मैसेज जो हम सबके लिए है, आई थिंक हर इंसान के लिए, क्योंकि बोलना हर एक की जिंदगी में शामिल है।
0: जी हाँ, बोलना तो शामिल है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा अपने जो भी सुन रहा हो इसे कि वो बोलिए जो आपको भी अच्छा लगे और सामने सुनने वाले को भी अच्छा लगे, क्योंकि सिर्फ बोल देना और ये सोचना भी नहीं कि मैंने जो शब्द फेंक दिए हैं उसका असर लोगों पर क्या होगा, है ना, तो वो बड़ी बुरी बात हो जाती है। इसलिए आपको जो कुछ बोलना है सोच के बोलिए, और कम से कम एक बात जरूर ध्यान रखिए कि आप सामने किससे बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति सामने जो है आपसे छोटा है, बड़ा है, कैसा है, उसके अनुसार ही उसके साथ आपको व्यवहार करना चाहिए। अगर आप इतने से बड़े व्यक्ति के साथ आदर के साथ बात करेंगे तो उसका जितना आदर बढ़ेगा उससे अधिक आदर आपका होगा, क्योंकि यही कहा जाएगा कि बहुत ही डिग्निफाइड व्यक्ति है ये और इसको ज्ञान है कि किस तरह से लोगों से बातचीत की जाती है। इसलिए जब भी बोला जाए बहुत सोच के बोला जाए, आपकी भाषा पर आपका कमांड हो, और वो कमांड सिर्फ ऐसा ना हो कि आपको खुशी दे, वो दूसरों को भी खुशी दे।
1: बहुत खूब। तो आपका ये जो खूबसूरत शब्दों का, भाषा का, आवाज का फलसफा है, ये इसी तरह और बढ़ता रहे आगे और लोगों को आप प्रभावित करते रहें। चाहे आप उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं, लेकिन आप बांटने को आपके पास बहुत कुछ है, तो आपकी इन बातों को सुनकर वाकई बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली होगी, ऐसा हम सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय रॉय जी आज हमसे बात करने के लिए।
0: धन्यवाद सुषमा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये पहल की और मेरे मन में जो छुपे हुए थे शब्द थे, विचार थे, जो शायद ऐसा मुझे लगता है कि कई समय से मेरे दिल में इधर उधर भटक रहे थे, वो आज आपके द्वारा एकत्रित हुए और हो सकता है कि आगे वो चलकर किसी न किसी को उसका लाभ अवश्य मिले।
1: बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू सो मच सर।

विक्रमंग था केलस भुज मेलस लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर घोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूं, और क्यों न हूं। इतनी खूबसूरत हसीन रात, ऐसा लग रहा है मानो आसमान ने काली चादर ओढ़ रखी हो और उस पर ये नन्हे टिमटिमाते सितारे जैसे चादर पे चमकते फूल। ऐसे सपनों वाली रात में हम हाजिर हैं आपका दिल बहलाने। तो चलिए मेरे साथ, यानी कि आज की आपकी

वाह क्या बात है टॉली और दीपशिका। दोस्तों कुछ ऐसी भी रातें होती हैं जब ये सितारे सैर करने निकलते हैं और सैर करते करते पहुंच जाते हैं हमारी मसरूफ दुनिया में। हमारे अगले गीत में ऐसा ही कुछ जिक्र है। दो सितारे जमीन पर मिल रहे हैं, पर्दे पे जब दिलीप कुमार जी और मीना कुमारी जी हों तो ऐसा महसूस भी होता है। लीजिए सुनिए कोहिनूर फिल्म से ये नायाब हीरा मनोज होलकर और संगीता की आवाज में।

वाह, दिलकश गायकी। बहुत शुक्रिया मनोज जी और संगीता। दोस्तों, प्रेमी चांद और सितारों को गवाह मानकर वादे करते हैं, पर निभाते कितने हैं ये ऊपर वाला ही जाने। पर जो प्रेमियों का जिक्र होने जा रहा है वो तो ये मानते हैं कि उनका प्रेम तब भी रहेगा जब ये चांद और सितारे भी नहीं रहेंगे। तो आइए सुनते हैं 1954 में फिल्माया गया सुगम फिल्म से ये गीत। एस एच बिहारी जी के शब्दों को सुरों के रस में डुबाया है हेमंत कुमार जी ने, और इसे हमारे लिए पेश करने आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा और मनप्रीत।

वाह बहुत खूब मुकेश जी और मनप्रीत जी, आज चांद और सितारों की महफिल की सैर करा रही हूं मैं आपकी दोस्त और होस्ट गायत्री। वैसे चांद प्रेमियों का ही नहीं हमारे नन्हे मुन्नों का भी तो प्यारा है। हम चंदा मामा और सितारों को दिखा करके इनको खिलाते हैं सुलाते हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत जो एक लोरी है फिल्म मस्ताना से, और इसे आपके लिए लेके आ रहे हैं अनूप दुआ और राजू शर्मा।

0: तुम।
1: दोस्तों, हमारा अगला गीत एक ऐसी फिल्म से है जिसे किशोर कुमार जी ने अपने भाइयों के साथ बनाया था। इसमें वो गाड़ी भी है जो उनको उनके पापा से मिली थी। कहा जाता है किशोर कुमार जी इस फिल्म को फ्लॉप होते देखना चाहते थे, पर हुआ ये कि ये फिल्म लगभग सारे पहलू में हिट रहा। अशोक कुमार जी जब इंडोर क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे, वहां कैंटीन की उनकी देंगी थी 5 रुपया पर आना। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं ये मस्ती भरा रचना, जहां मधुबाला जी बुला रही हैं सितारों के पास और किशोरदा मांग रहे हैं अपना 5 रुपया पारा आना, विश्वजीत और गायत्री यानी मेरी आवाज में।

सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। कौन नहीं चाहता ऐसा एक छोटा आशियां। आइए दोस्तों, जीवन मृत्यु फिल्म से ये गीत सुने। आनंद बख्शी जी की शब्दों को स्वरबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और ये प्यारा सा गीत जयपुर रेडियो में पेश करने आ रहे हैं हमारे छोटे केतन और गिरिजा।

शुक्रिया केतन और गिरिजा इस झिलमिलाते गीत के लिए। दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, अगला गीत रफी जी के टॉप 5 गीतों में से एक माना जाता है। स्क्रीन पर अपने जलवे बिखेर रही हैं वैजयंतीमाला जी और रफी जी गा रहे हैं शम्मी कपूर के लिए अपने अनोखे अंदाज में। प्रिंस फिल्म से ये गाना सुनिए शोर।

वाह, समा बांध दिया दोनों ने। दोस्तों, रफी जी के टॉप 5 गीतों में से तो एक सुन लिया आपने, अभी अगला गीत सुनिए जो आशा भोसले जी के टॉप 5 गीतों में से है। ये गाना 1968 में फिल्माई गई किस्मत मूवी से है, ओपी नैयर जी की कंपोजिशन, जिसे उन्होंने आशा जी के अनोखे अंदाज में गवाया है। इसमें आशा जी की हिचकियां आज भी हमको लुभाती हैं, और स्क्रीन में बबीता जी का वादा है वो हमें सितारों में ले चलेंगे। चलिए सुनते हैं तुलिका और विद्या को।

वाह बड़ा मजेदार। कब आ रही हो मुलाकात के लिए, हमने चांद रोक रखा है इस रात के लिए। दोस्तों, चांद और सितारे तो सदियों से प्रेमियों के दोस्त हैं। चांदनी में प्रेमियों का मिलन भी सदियों की कहानी है। आइए खय्याम साहब की रचना सुनते हैं, दिले नादान मूवी से, जिसको आपके लिए ले आ रहे हैं कविता और राजेंद्र।

अब बारी है एक बहुत ही नशीला सा गीत जो श्रेया घोषाल जी की आवाज में एमएम किरवानी जी के संगीत में जिस्म मूवी के लिए बनाया गया था। जी हां, हमारे ऑस्कर विनर एमएम क्रीम जी। आज ये जयपुर रेडियो के लिए आपके लिए गाने आ रहे हैं सुमधुर, तनुजा मुंद्रा और श्वेता।

0: हाँ दोस्तों, समय आ गया आपसे विदा लेने का, पर आशा करते हैं ये तारों का सफर आपके लिए भी उतना ही दिलकश रहा होगा जितना हमारे लिए था। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तो आपकी दोस्त और होस्ट गायत्री आपसे विदा लेती है, और सुनते रहिएगा जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त, और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

क्वीन भी माना जाता है। अपनी सौम्यता, आत्मविश्वास और सबसे ज्यादा अपनी खूबसूरत आंखों के लिए जानी जाती थी। लोगों की माने तो नरगिस के बाद शायद ही कोई अदाकारा इतनी खूबसूरत आंखों वाली फिल्मों में आई होंगी। नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, खम्बा खड़ी। मैं तनुजा मुंद्रा, आपकी दोस्त और आज के प्रोग्राम की होस्ट, तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ आई हूँ प्रस्तुत करने दास्ताने नरगिस, नरगिस की प्रेम कहानी और उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं।

फिल्म चोरी चोरी का ये खूबसूरत नगमा अपनी सुरीली आवाजों में प्रस्तुत किया सूर्य रेखा जी ने और संजय गुप्ता जी ने। फातिमा राशिद और नरगिस, जी हाँ, नरगिस का असली नाम था फातिमा राशिद। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 6 साल की कच्ची उम्र से ही कर दी थी। उस दौर में फिल्म तलाश इश्क में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस नरगिस ने पर्दे पर दस्तक दी और उनके इस रूप को लोगों ने बहुत सराहा भी, और धीरे धीरे वो अपने पैर फिल्म इंडस्ट्री में जमाने लगे। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी। यहां तक कि 1940 से 1960 के दशक में नरगिस को बॉलीवुड की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस भी कहा जाने लगा था। चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत प्रेम गीत जिसके बिना किसी भी युगल की प्रेम कहानी अधूरी सी है।

फिल्म का नाम श्री 420, गायक मन्ना डे और गायिका लता मंगेशकर। यहाँ इस गीत को स्वरबद्ध किया MD त्यागी जी ने और उनका साथ देने का सौभाग्य मिला मुझे यानी तनुजा मुंद्रा को। चलिए हमको आगे बढ़ाते हैं। प्रेसी अपने प्रियतम से पहली बार मिल रही है और चंदा मामा को कुछ उल्हाना दे रही है, तो चलिए सुनते हैं प्रेसी की गुहार।

फिल्म आवारा का ये खूबसूरत गीत प्रस्तुत किया डॉक्टर आदेश सक्सेना ने और उनका साथ दिया ज्योत्सना शर्मा जी ने। अगर तुम चांद होते तो मैं रोशन रात बन जाती, अगर तुम चांद होते तो मैं रोशन रात बन जाती, अगर होते कमल तो बन सबा खुशबू को बिखराती, जो होते ख्वाब तो पलकों को मैं खोलने ही ना पाती, मगर तुम तो हो वो पहेली जिसे मैं बूझ ही ना पाती। जी हाँ, हम सब ने बचपन में ये खेला जरूर खेला होगा, बूझो तो जाने। अगला गीत लेके आ रहा है कुछ पहेलियां, आप भी बूझने का प्रयत्न करें।

0: बोलो क्या बोलो ना
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान। दोस्तों जूही सिन्हा ने अपनी मधुर आवाज में आपसे कुछ पहेलियां पूछी। सच सच बताइएगा आप कितनी पहेलियों का उत्तर बूझ पाए। बेहतरीन अदाकारा नरगिस और उनके जीवन साथी सुनील दत्त। बात उस समय की है जब सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी का काम किया करते थे। तब एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्हें रेडियो के लिए नरगिस का इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया। तब तक नरगिस बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो चुकी थी और राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी भी खासी हिट हो चुकी थी। इंटरव्यू के दौरान अपने सामने नरगिस को बैठा देख सुनील दत्त बेनतहा नर्वस हो गए और उनसे एक भी सवाल ना पूछ सके। तो ये थी पहली मुलाकात सुनील दत्त और नरगिस जी की। तो सुनते हैं अगला गीत दिल की गिरह खोल दो।

वाह, मिश्री से भी मीठी आवाज वीरेन जी, और उस पर ये खूबसूरत गीत दिल की गिरह खोल दो। फिल्म का नाम रात और दिन। नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात विमल रॉय की फिल्म दो बीघा जमीन के सेट पर भी हुई। नरगिस वहां विमल रॉय से मिलने गई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान जब सेट पर अचानक आग लग गई तो उस समय नरगिस उस आग में फंस गई थी, तो अपनी जान की परवाह न करते हुए सुनील दत्त ने उन्हें बचाया और यहीं से दोनों करीब आने लगे। दोनों ने 1958 में शादी कर ली और इस शादी से पहले नरगिस ने अपना धर्म परिवर्तन भी किया। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। करीब 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने फिल्म रात और दिन में काम करना स्वीकार किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। श्री 420 का एक और खूबसूरत नगमा, रमैया वस्ता भैया।

रमैया वस्तावैया। इस खूबसूरत गीत को अपनी मधुर आवाजों से सजाया मनुजी मृदुल ने और उनका साथ दिया अंजलि जी ने। दोस्तों, पत्रकार मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में इस बात का जिक्र किया है कि जब राज कपूर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और आर के स्टूडियो को बेचने की नौबत आ गई थी, तब नरगिस ही तो थी जिन्होंने अपने सोने के कंगन बेच आरके स्टूडियो को बिकने से बचा लिया था। किताब में यह भी बताया गया है कि राज कपूर नरगिस के बारे में कहते थे, मेरी बीवी मेरे बच्चों की माँ है, मगर मेरी फिल्मों की माँ नरगिस है। समय ऐसा भी था जब राज कपूर और नरगिस की प्रेम गाथाओं से फिल्मी गलियारे गूंजा करते थे। धीरे धीरे ये प्रेम कथा धूमिल हो चली थी और नरगिस जी को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि राज कपूर अपनी बीवी बच्चों को कभी न छोड़ेंगे और ना ही वे अपने पिता की खिलाफत कर सकेंगे, जिसके चलते नरगिस जी ने राज कपूर को छोड़ने का निर्णय ले लिया। शायद उस समय नरगिस के मन में ये गीत जरूर आता होगा, यूं हसरतों के दाग।

फिल्म अदालत का ये बेहतरीन नगमा अपनी मधुर आवाज से सजाया संजय हारने जी ने। कहीं पर शाम ढलती है, कहीं पर रात होती है, कहीं पर शाम ढलती है, कहीं पर रात होती है, अकेले गुमसुम से रहते हैं, न किसी से बात होती है। तुमसे मिलने की आरजू दिल बहलने नहीं देती, तन्हाई में आंखों से रुक रुक कर बरसात होती है। तन्हाई का जिक्र हुआ है तो चलिए सुनते हैं ये शाम की तन्हाई।

सच्चा जी, आपने तो समा ही बांध दिया। नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वालों में वह प्रथम अभिनेत्री थी। मुंबई में बांद्रा में उनके नाम पर एक सड़क भी है। हर साल हो रहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त अवार्ड भी दिया जाता है। नरगिस जी की कुछ फिल्में जैसे मदर इंडिया, अंदाज, अनहोनी, जोगन, आवारा, रात और दिन, अदालत, घर संसार, लाजवंती, परदेसी, चोरी चोरी, जागते रहो, श्री 420, आहा और ये फहरिस्त बहुत लंबी है। चलिए सुनते हैं अदालत फिल्म का एक और खूबसूरत गीत, जमी से हमने आसमां पर।

इस बेहतरीन नगमे को अपने सुमधुर आवाजों से सजाया स्मिता और लक्ष्मी जी ने। अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी थीं और बड़े प्रेम के साथ अपने छोटे से संसार जिसमें उनका पुत्र संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ। 1981 में वो हमें छोड़कर सदा के लिए ईश्वर के चरणों में चली गई। बीमारी बहाना बनी उन्हें हमसे दूर करने का। चलिए सुनते हैं, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए।

0: बेहतरीन गायकी इंदिरा जी, समय आ चला है अलविदा कहने का। इन चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आ गया फिर वक्त रुखसत आखिर आज, आ गया फिर वक्त रुखसत आखिर आज, चल पड़े लिए अधूरी हसरत हम फिर आज। आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर रेडियो को तहे दिल से शुक्रिया, उन्होंने हमें ये खूबसूरत अवसर प्रदान किया। श्रोताओ, आपसे विनंती कि आप हमें जरूर बताएं आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। मैं तनुजा मुंद्रा मुंबई से आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, झूमते रहिए और गाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। तब तक के लिए शुभरात्रि, शब खैर, अपना ध्यान रखिए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं
2: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का, कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

झूमे धरती हुई बावरिया, दादुर पपिहा शोर मचाए,

0: सावन आया तुम न आए, डॉक्टर जाया अनंत का हमने ये गीत सुना। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: मानसून अपनी जवानी की रवानी पर है, बारिश का मौसम भीगा तन बदन, जमीन को रपट जाए तो हमें न कहिए। आइए पहले गीत में मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मानसून एपिसोड को मैं लेकर आ गई हूँ आरजे भूमिका, और मेरे साथ अपने सुरीले साथियों के साथ अर्जू रानू 16। पहले गीत में अर्जू रानू के साथ राजा गा रहे हैं गीत आज रपट जाए तो आगे उन्हीं से।

मौसम की आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, रुमानी मौसम का जादू है या बारिश की जवानी का आगाज है। अपने सुरीले स्वरों में सजा रहे थे राजा और जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आपकी आवाज को पहचान देने वाला ये मंच हर रात 8 बजे लेकर आता है सुरीले दो गानों का ये प्रोग्राम। और अब सुनते हैं जादू भरी आवाजों में ये अगला गीत।

0: गीत को ज्वाइन करें।
1: महान ऐसा मवाल दे रहे थे गीत, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आप कहीं नहीं होंगे, आपकी जमा आवाज जयपुर रेडियो पर होगी और आप जयपुर रेडियो के साथ होंगे। महालेसम और अर्चू रानू की आवाज में हमने सुना ये मशहूर सुरीला गीत। यादों के गुलदस्ते लेके आने वाले इस खूबसूरत गीत में अर्चू रानू का साथ दे रहे हैं इस मंच के अगले सिंगर। आइए सुने अर्चू रानू के संग इस अगले गीत को। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा एपिसोड में, आपकी आवाज आपकी पहचान।

बबलू आर्य साथ गा रहे थे अर्जु रानू के गीत आज रपट जाए तो। भई मौसम बारिश का है, जमीन भी भीगी है और इस मौसम की पहली बरसात भी है। ऐसे में झूमते गाते मन के साथ आप सुन रहे हैं सुरीले गीतों की सौगात। आपकी आवाज आपकी पहचान, जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। बबलू आर्य और अर्चु रानू के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत।

विशाल शर्मा जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चु रानू के संग आवाज में आवाज मिला रहे थे प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में। दिल को देने की बात, दिल की सौगात, अपनी महबूबा के नाम इस गीत में हमने सुना। और दिल का फैसला भी खुद ब खुद ही करने वाले हैं, ओ मेरी जाने जा कहो या महबूबा कहो। विशाल शर्मा और अर्जुन रानू के संग हमने सुना ये सुरीला दो गाना। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। इस प्रोग्राम में आज आपने जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर के साथ अब तक चार सुरीले सिंगर्स को सुना। आप अपनी समझ और सोच के हिसाब से अपना फीडबैक सबसे सुरीले सिंगर के लिए सेंड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9352784724 पर। और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत स्मूलियन के साथ अर्जुन।

जीरो के साथ अर्जु रानू को सुना आपने, अगर जिंदगी हो तो तेरे संग हो। और हम भी यही कहेंगे कि अगर आपका गीत हो दो गाना तो अर्जु रानू के संग हो। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस सुरीले मंच पर आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आपके फीडबैक हमें जरूर प्रेषित करें। और हाँ, जिन सिंगर्स ने इस प्रोग्राम के तहत अपने सॉन्ग सेंड किए हैं उनका भी नंबर जल्द ही आने वाला है। उम्मीद है आरजे भूमिका और अर्जु रानू का संग इस प्रोग्राम में आपको भाया होगा। इसी के साथ आज के एपिसोड से विदाई, नमस्कार। मॉनसून अपनी जवानी की रवानी पर है, बारिश का मौसम भीगा तन बदन, जमीन को रपट जाए तो हमें ना कहिए। आइए पहले गीत में मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मॉनसून एपिसोड को मैं लेकर आ गई हूँ आरजे भूमिका, और मेरे साथ अपने सुरीले साथियों के साथ अर्जु रानू 16। पहले गीत में अर्जु रानू के साथ राजा गा रहे हैं गीत आज रपट जाए तो आगे उन्हीं से।

मौसम की आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, रुमानी मौसम का जादू है या बारिश की जवानी का आगाज है। अपने सुरीले स्वरों में सजा रहे थे राजा और जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर अर्चू रानू। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से, मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। आपकी आवाज को पहचान देने वाला ये मंच हर रात 8 बजे लेकर आता है सुरीले दो गानों का ये प्रोग्राम। और अब सुनते हैं जादू भरी आवाजों में ये अगला गीत।

0: चीज को ज्वाइन करें
1: कहीं नहीं होंगे, आपकी जमा आवाज जयपुर रेडियो पर होगी और आप जयपुर रेडियो के साथ होंगे। महालेसम और अर्चू रानू की आवाज में हमने सुना ये मशहूर सुरीला गीत। यादों के गुलदस्ते लेके आने वाले इस खूबसूरत गीत में
2: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर, भूमिका सुनते हैं क्या गा रहे हैं अनुराग। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस मंच के मेल सिंगर अनुराग।

अनुराग कह रहे हैं हम ना करेंगे प्यार, अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी बात, अपना अपना राग, अपना अपना आलाप। आइए सुनते हैं अगले गीत में क्या कह रहे हैं अनुराग।

देखो भूमिका देख लेना, पहले कहा था हम न करेंगे प्यार और फिर कह रहे हैं प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे और गाते जाएंगे इस मंच पर जिसका नाम है मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। आपने सुना अनुराग से ये सुरीला सॉन्ग। और प्यार करने के नाम से ये जमी गाने लगी, आसमां गाने लगा और साथ पूरा जहां गाने लगा। तो हम भी गाएं और सुने अनुराग के इस अगले गीत को।

0: और अब हो चला है इस प्रोग्राम से विदा लेने का समय। तो अर्चुरानू 16 और अनुराग दोनों का आभार। सुनते रहे जयपुर रेडियो बार बार प्रोग्राम में आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा।
1: भक्ति प्रभा भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम भजनों की सरिता में। लक्ष्मी का सादर प्रणाम। मित्रों, भक्ति गीत प्रार्थना की एक विशेष अंश है, भगवान के साथ एक मिलाप का समय है। प्रार्थना में हम अपने आप को एक ऐसी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं।

वाह संजीव जी, बहुत खूब। मित्रों, भारतीय परंपरा के कई महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, संत रविदास, कबीर आदि, जिन्होंने हमें धार्मिकता का सही मार्ग दर्शाया। इनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित किया, जिसमें पिछले कई गुरुओं के गुरुवाणी शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से अधिक शब्द गुरु अर्जन द्वारा रचित हैं। चलिए एक शब्द सुनते हैं ललिता कृष्णमूर्ति की मधुर वाणी में।

वाह ललिता जी, अति मधुर प्रस्तुति। मित्रों, भक्ति संगीत में ऐसी शक्ति है कि वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। संगीत ऐसा सात्विक आनंद है जो जाति, धर्म, लिंग, आयु वर्ग सभी से परे है। संगीत सबके लिए है। संगीत को न सीमाओं से बांधा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आबाद धारा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। हमारा अगला गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए इंदिवर जी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्या शंकर जी।

वाह विद्या जी, इस सुमधुर प्रस्तुति से मन प्रफुल्ल हुआ। मित्रों, हमारे देश के संतों ने समय समय पर यह शिक्षा दी है कि वास्तव में भगवान और उनके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम भगवान राम से भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि कलयुग में श्री हरि के नाम के जाप से ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सब में राम और राम में है सब। तुलसी का प्रभु भी वही, नानक का रब भी वही। नाम भजन में ज्योति असीमित। पेश है एक राम धुन जो मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है प्रसिद्ध एल्बम राम श्याम गुण गान में। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागता पॉल और संजय हर।

और संजय जी हम मन विभोर हुए। मित्रों, भगवान राम एक अवतार पुरुष थे, असाधारण पुरुष थे, करुणा मूर्ति थे। ये सभी के प्रति स्नेह और अपनापन का सामान्य भाव रखते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन हो। वह तो ऐसे करुणा मूर्ति थे जो उनके शत्रु के प्रति भी स्नेही और दयालु थे। चलिए सुनते हैं एक भजन जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा रचाया गया है। इस भजन को स्वरबद्ध किया था जगजीत सिंह जी ने। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय फड़के जी और मैं लक्ष्मी बालचंद्र।

0: बेहद खूबसूरत संजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा साथ दिया। मित्रों, सुविचार, सत्संग और निरंतर भगवान के जाप से सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। हम आशा करते हैं आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से प्रकाशित हो।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
0: मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि संकट के समय हम भगवान की ओर रुख करते हैं। हम घोर विनम्रता और प्रत्याशा दोनों के दोहरे रवैया के साथ आते हैं। हम परमेश्वर को आदेश तो नहीं देते, लेकिन हम साहसपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनके सिंहासन के सामने आते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। नक्शलयालपुरी की ये पंक्तियाँ फिल्म राम नगरी के लिए लिखा गया था। इसे संगीत से सजाया था जयदेव जी ने। इस गीत को मूल रूप से हरिहरन जी और नीलम सानी जी ने गाया है। आपके लिए इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय फड़के जी।

वासंजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, एक व्यक्ति का आंतरिक जीवन और बाहरी ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। मन एक दर्पण की तरह है, जो कुछ भी सामने आता है वह उसमें प्रतिबिंबित होता है। आप जिस किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी भावनाएं और उसकी मनस्थिति आप पर टिकी रहती है। अगर आप खुश लोगों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। दुखी चीजों के बारे में सोचकर आप दुखी महसूस करते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस गीत को काजल फिल्म के लिए संगीतकार रवि ने स्वरबद्ध किया था और आशा भोसले जी ने अपने मधुर वाणी से इसे सजाया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मोनिका दश और अनुराधा वैद्यनाथन।

वाह मोनिका जी और अनुराधा जी, अति मधुर प्रस्तुति। हमारे अगले भक्ति गीत में कौशल्या मैया कागज से पूछती है, तुम सच बोलो और मुझे बताओ कि मेरे प्राणों से प्यारे वे लोग कब आएंगे। तुलसीदास जी की गीतावली से ये रचना बैठी सगुन मनावती माता, आइए सुनते हैं संजय हरने जी की आवाज में।

इतनी सुंदर प्रस्तुति संजय जी, आइए स्वागत करते हैं इस खूबसूरत शिव धुन के साथ। इस पारंपरिक धुन को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय हरने जी, संजय फड़के जी, अनूप शर्मा जी, जय कृष्णन जी, ललिता कृष्णमूर्ति, श्वेता, शोमा सी रॉय, प्रेरणा जकादार, मधुलिका शर्मा और स्वयं मैं लक्ष्मी बालचंद्र।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति, हम सचमुच मन विभोर हुए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम भजनों की सरिता। इस भक्तिमय संगीतमय साधना को प्रस्तुत कर रही थी लक्ष्मी बालाचंद्रन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: आप सुन रहे थे बिंदु व्यास की आवाज में डिजिटल वॉइस वर्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो,
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चाचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा,
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते और जयपुर।
4: चाचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
5: चलिए दोस्तों, भक्ति की ज्ञान गंगा में आपको डुबकी लगवाने के लिए मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे समता सक्सेना। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के पास आता है तो वो तीन परिस्थितियों की वजह से आता है, या तो भाव से आता है, या अभाव से आता है, या फिर किसी प्रभाव से आता है। इसलिए आपके पास जब भी कोई आए तो उसे पूरा सम्मान दें। पता नहीं वे किस स्थिति में आपके पास आया है। कहते हैं भाव से आया है तो उसे और कुछ नहीं चाहिए होता, उसे आपका सिर्फ प्रेम चाहिए होता है, और अभाव से आया है तो उसे आपकी मदद चाहिए और आपको सक्षम समझकर आपके पास आया है, और यदि प्रभाव से आया है तो आपको प्रभु की कृपा का अभिमान होना चाहिए कि आपको प्रभु ने इतना सक्षम बनाया है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो भूलकर भी उसका तिरस्कार ना करें,

आप हैं अपनी आरजे समता सक्सेना के साथ। सुनते रहिए जयपुर रेडियो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मनुष्य जीवन तभी सार्थक है जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को खुशियाँ दे पाते हैं, और जो खुशियाँ देकर जो आनंद की अनुभूति होती है वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती।

बने रहिए हमारे साथ भक्ति ज्ञान गंगा में। और अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, जब चारों तरफ कोई रास्ता ना दिखाई दे तो अपने सच्चे मन से अपने गुरु को, अपने भगवान को याद करना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि हमने अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया और फरियाद करते रहें कि हे मेरे मालिक, अब मैं तेरी शरण में हूँ, जैसा चाहे वैसा रख। हमारे प्रभु, हमारे मालिक अपने आप एक ऐसा रास्ता दिखा देते हैं जो हमें सब कठिनाइयों से दूर करता हुआ चला जाता है। और बस जरूरत होती है विश्वास की, धीरज की, संयम की और अपने प्रभु के नाम पर दृढ़ आस्था की।

बने रहिए हमारे साथ भक्ति ज्ञान गंगा में। और अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ईश्वर कहते हैं कि उदास ना हो, मैं तेरे साथ ही हूँ, सामने नहीं तेरे आस पास हूँ। पलकों को बंद कर कर किसी भी विषम परिस्थिति में हम उन्हें याद करते हैं तो हम संकटों से सहज ही हम निकल आते हैं। एक ऐसा आत्मविश्वास, एक ऐसी आत्म अनुभूति हमें होती है जो हमें अंदर ही अंदर हमें संभाले रखती है, संजोए रखती है। उसे ही तो ईश्वर की कृपा कहते हैं।

आपकी आवाज ही आपकी पहचान है और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। दोस्तों, अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं, प्रभु की कृपा सागर से भी विशाल है।

दोस्तों, प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, पर जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को अच्छा लगता है।

जिससे एहसास है जीने का वो मंजर तू है, जात मेरी है मगर जात के अंदर तू है। बने रहिए हमारे साथ भक्ति ज्ञान गंगा में, और अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।

कहते हैं लगन इंसान की तब लगती है जब सब जगह से साथ छूट जाता है। एक शेर सुनाना हूं, सुनिएगा जरा गौर से। और साथ कहां से छूटता है? हमारे जो आसपास के जो करीबी होते हैं वो सबसे पहले धोखा देते हैं। धोखा तो वही देगा जो आपके पास होगा, पराए आदमी को हमसे क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना, धोखा वाला। सुनिए शेर, सुनिएगा जो कुर्सियां पे बैठे ने वो भी सुन के, थोड़ा जा शेर सुनना। राजदारों से बचकर चलता हूं, राजदारों से बचकर ही चलता हूं, गम गोसारों से बचकर ही चलता हूं, मुझे धोखा दिया सहारों ने, अब सहारों से

सुनिएगा, शेर सुनिएगा। कहते हैं यू तो लाखों है कर्जमंद, यू तो लाखों है कर्जमंद, काम के लोग चंद मिलते हैं, जब पड़ती है मुसीबत तब सबके दरवाजे बंद मिलते।

0: लगन हमारी ही नहीं, जो हमसे पहले पीर मुर्शद थे उनकी भी थी।
1: बेशक
0: जदो बाबा फरीद जी की लगन लगी थे उन्हें की आलम सी, जरा गौर फरमाइएगा। कौवे उनका मांस नोच नोच के खा रहे थे, वे कौओं से कह रहे थे

किसी पे भी आया। हम भगवान को आजमाने से पहले उन लोगों को आजमाते हैं जो हमारे करीब होते हैं। मैंने भी वही किया, उन्हीं के आगे जाके हाथ फैलाया पर कोई वक्त पे काम ना आया, सबने मुंह फेर दिखाया। शेर सुनिएगा,

कहते हैं मांगो तो उससे मांगो जो दे के कभी ना मांगे, उससे क्या मांगते हो जो दे के बार बार मांगे। मैंने पहले कहा था कि लाखों हैं चमन देखे मैंने गुलजार, एक फूल दिया ना किसी ने उधार, तब बगिया लगाई मैंने। किसके नाम की? हाँ जी, उसके नाम की बगिया लगाएं कि जहां पर कभी कोई फूल खत्म ना हो। तो दोनों हाथ ऊपर करके जो जो उसके नाम की बगिया लगाना चाहता है। हाय हाय क्या बात है, थोड़ा इधर वाले भी हाथ खड़ा कर लो, क्या बात है। ये बात, दोनों हाथ ऊपर करके बगिया।

निश्चित वही होता है जहाँ परमात्मा की इच्छा हो, वो नहीं जिसमें हमारी इच्छा हो। निश्चित तो मात्रा हरी इच्छा है। राजस्थान का पहला इंटरनेट रेडियो जयपुर रेडियो आपके साथ कहीं भी कभी भी। सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

खोजा बहुत खुदा को पर कहीं मिला नहीं, न मंदिर में न मस्जिद में न चर्च में न गुरुद्वारे में। तब किसी फकीर ने कहा, खुदा खोजने से नहीं खुद को खो देने से मिलता है। जब आप सोने जाओ तब विनय का ये पद याद करके सोना चाहिए, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, सावन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो। भक्ति ज्ञान गंगा में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। स्टे ट्यून, सुनते रहिए चैप रेडियो।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम भक्ति धारा, और भक्ति धारा में अपनी भक्ति भरे भजनों को लेकर इस मंच पर उपस्थित हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से अलका उपाध्याय। वेलकम है अलका जी आपका, आपके सुरीले भजनों का।

हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि जो सुंदर है, जो शिव है, जो सर्वज्ञ है और जो अनिवर्चनीय है, उसको प्रणाम है, उसको हरि ओम है। और ये सुरीला स्वर आपने सुना इस भजन में। अलका उपाध्याय हमारे संग कोलकाता वेस्ट बंगाल से। आपकी आवाज, आपकी पहचान, भक्तिधारा प्रोग्राम की पहली प्रस्तुति आपने सुनी। आइए सुनते हैं अगला भजन अलका जी से।

राम का स्वागत कर रही हैं अलका उपाध्याय जयपुर रेडियो के इस मंच पर। और ये भी संगीत का घर है, मेरा ही घर है। और यहाँ राम पधारे हैं, स्वागत है हमारी आज की सिंगर

जयपुर रेडियो की चौखट पर चल के आ जाई हैं अलका उपाध्याय अपने सुरीले भजनों के साथ। आपकी आवाज आपकी पहचान, पहली बार अपने भजनों के साथ हमारी सुरीली सिंगर अलका उपाध्याय। राम जी के स्वागत और अलका जी के स्वागत के बाद अगली प्रस्तुति अलका जी की।

वृंदावन धाम पधारो, वृंदावन का आमंत्रण इस भजन के माध्यम से दे रही थी अलका उपाध्याय, हमारी आज की भक्ति धारा की सुरीली सिंगर। अपनी आवाज में, आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का प्रोग्राम भक्ति धारा। आइए सुने अलका उपाध्याय का ये अगला सुरीला भजन।

घड़ी में तेरे द्वार, मुझे चाहकर समझ निहार। और मुझे चाहकर समझ निहार, चाहकर का मतलब आप जानते हैं और चाहकर का मतलब भी, उसका अर्थ भी आप जानते हैं। और दोनों में वो प्रेम है, वो रस है और उसी रस से सराबोर है ये भजन। अलका जी की आवाज में हमने सुना, आइए सुनते हैं आपका अगला सुरीला भजन, आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं भक्ति धारा प्रोग्राम जयपुर रेडियो वर्ल्ड से।

मैं हूं तेरी प्रेम दीवानी, अब तो मुझे पहचान। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दे तान। और ये मधुर वचन कह रही थी अलका उपाध्याय, हमारी आज की भक्ति धारा की मेहमान। आपकी आवाज, आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं भक्ति धारा प्रोग्राम।

कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शंभु, कोटि कोटि नमन दिगंबरा। जो सत्य है, जो सुंदर है, जो शिव है, उसको सदा कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है। और ये वंदन अपनी आवाज में आप तक पहुंचा रही थी अलका उपाध्याय। आपकी आवाज, आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं भक्ति धारा प्रोग्राम शिव स्तुति

दुर्गा चालीसा का पाठ सुना रही थी अलका उपाध्याय। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आइए सुनते हैं भक्ति धारा का ये अगला सोपान। आवाज फिर एक बार हमारी आज की सिंगर अलका

वाले ने तो सारी दुनिया को ही घेर लिया है, तो पनघट की बात ही क्या करें। फिर जाइए और फिर पानी लेके आइए। मुरली वाले का तो यही कमाल है, पूरी दुनिया को घेर लिया है उसने और उसी के वश में हैं हम, उसी के वशीकरण में हैं। भक्ति धारा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप और हमारी भक्ति धारा की सिंगर है आज अलका उपाध्याय। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आइए सुनते हैं अगला सुरीला भजन।

भवसागर से बेड़ा पार उतारना है तो हमें अलका जी के भजनों को सुनना है और शिव शंकर के ध्यान में मगन होकर यदि हम इसी तरह से गाते रहेंगे तो सच में इस संसार सागर से अपना भी बेड़ा पार हो जाएगा। आप सुन रहे हैं भक्ति धारा प्रोग्राम। हमारी आज की भक्ति गायन की सिंगर हैं, गायिका हैं अलका उपाध्याय, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। आपकी आवाज आपकी।

मंदिर की, संगीत के मन मंदिर की, शिव के मन मंदिर की पूजा कर रही थी। इस मंच पर जिसका नाम है जयपुर रेडियो वर्ल्ड, प्रोग्राम भक्ति धारा में आज की सुरीली भक्ति गायिका रही अलका उपाध्याय, अपने सुरीले गीतों के साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका।

जिंदगी के पन्नों पर लम्हों की लिखावट बहुत कुछ सुनाती है अफसाना दर अफसाना। ऐसे ही अफसानों को तलाशने के लिए आज पलटते हैं एक और नया पन्ना। इस एपिसोड में मेरे तकनीकी सहयोगी श्री ओम प्रकाश शर्मा, बातें दिल की विद सुषमा।

0: नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। बोलते रहना क्योंकि तुम्हारी बातों से लफ्जों का ये बहता दरिया अच्छा लगता है। जी हाँ, होती हैं कुछ आवाजें इतनी प्रभावी कि उन्हें सुनते रहने को जी चाहता है। कभी किसी के बोलने का अंदाज हमें भाता है तो कभी किसी के शब्द। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे गेस्ट आवाज की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, जिनके करियर ने उन्हें रेडियो का हमराही बना दिया, जहां अपने शब्दों के जादू से वो सुनने वालों को अपना मुरीद बनाते चले गए। हमारे साथ हैं विजय रॉय, जो ताल्लुक जोधपुर से रखते हैं मगर अब द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया यानी इंदौर के वासी हैं। नमस्कार विजय रॉय जी।
1: नमस्कार सुषमा जी, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ और आपकी आवाज सुनने के बाद और भी मुतमईन हो गई हूँ और खुश हो गई हूँ। और हम सब अब उन गलियों की सैर करना चाहेंगे जहाँ आपका बचपन बीता।
1: जी हाँ, ये अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे भी उन गलियों की यादें हमेशा सताती रहती हैं, क्योंकि अब वहां पर जाना काफी मुश्किल सा हो गया है, जा ही नहीं पाता हूँ, एक तो उम्र के कारण और एक उन लोगों के कारण जो अब इस दुनिया में नहीं मेरे पास, जिनके चरण जब छूता था कमर झुकाता था, कभी मेरे पैरों में दर्द नहीं हुआ, कभी घुटने नहीं दुखे, लेकिन आज घुटने भी दुखते हैं, कमर भी दुखती है, क्योंकि वो माता पिता, वो मेरे बुजुर्ग अब मेरे साथ नहीं है।
0: जी,
1: तो पिताजी जो थे वो वैसे तो मूल रूप से जोधपुर के ही निवासी थे, लेकिन व्यापार के सिलसिले में वो कराची चले गए थे उस समय, और वहां पर काफी उन्होंने अच्छा काम किया, बिल्डर थे वो, वहां पर पैसा कमाया, नाम कमाया, लेकिन फिर 1947 का वर्ष आया और जो मजबूरी में उन्हें फिर से अपने मातृभूमि जोधपुर ले आया। अच्छा लगा था उनको आना, लेकिन दुख भी था कि जो कुछ कमाया था सब कुछ वहीं छूट गया और खाली के हाथ वापस आ गए। उनकी शिकायतें तो अक्सर नहीं रहती थी, लेकिन माता हमारी वो हमेशा शिकायत करती थी और उन लोगों को कोसती थी जिनको आज पूजा जाता है। खैर, समय का है ये तो बात। दुख और सुख, एक देखा जाए तो दुख जो है अक्सर खो-खो के खिलाड़ी की तरह होते हैं, एक तभी अपना स्थान छोड़ता है जब उसका स्थान लेने के लिए दूसरा तैयार रहता है। तो जोधपुर जो

0: बहुत अच्छा हो गया। और खेल ऐसे खेलते थे जो आज के बच्चे तो सोच भी नहीं सकते।
1: जी
0: जी हाँ, कंचे खेलना, नीम के पेड़ों पर चढ़ना और निबोलियां खाना, छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती थी, टेकरियां, उन पर घूमना करना, ऐसा लगता था कि क्या बात है। और शायद यही कारण था कि दौड़ भाग हमेशा लगी रहती थी और कभी भी हम लोग बीमार नहीं पड़ते थे। उस समय सुषमा जी जो निबोलियां खाते थे, है ना,
1: जी
0: लगता है कि शायद उन्हीं का कारण है कि शरीर में इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि मैं अपने रिटायरमेंट तक कभी बीमार नहीं पड़ा।
1: जी
0: हाँ, जैसा कहते हैं कि नीम खाना चाहिए, नीम के पत्ते अच्छे होते हैं, तो शायद एक कारण वो हो सकता है। और खाने के समय जब होता था कि बाहर खेल रहे हैं, खेलते खेलते घर में आए, रोटी उठाई, सब्जी उसके अंदर डाली, रोल बनाया और खा लिया, कहाँ हाथ धोना और कहाँ पैर धोना कुछ। जी हाँ, आजकल जो बिल्कुल बातें हो गई हैं कि हर बात में कि पहले हाथ धो लो, पर खैर आज की बात बिल्कुल ही अलग है। उस समय इम्यूनिटी जो थी बच्चों की बहुत अच्छी थी और बीमारी कम होती थी। लेकिन आजकल जो सब कुछ आजकल चल रहा है, केमिकल्स का बाजार, उसके कारण बच्चे जो हैं वो बहुत ही बीमार पड़ने लगे हैं। और ऐसा लगता है कि इनके पास खेलने के लिए अब कुछ नहीं बचा, बस एक
1: जी
0: मोबाइल है और उस मोबाइल ने सबको अपने से दूर कर दिया है।
1: बिल्कुल
0: हमारा मकान भी जो था कोई बहुत बड़ा नहीं था, छोटा मकान था, लेकिन लोग सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, और वो जो परिवार का सुख होता है साथ में खाना खाने का, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती।
1: बिल्कुल। और इतनी देर से मैं आपकी ये खाने की बात को सुन रही हूँ, मुझे लगता है ये जोधपुर का असर है, क्योंकि जोधपुर में मिठाई और कचौरी और वो मिर्ची बड़ा, इनकी इतनी
0: आप
1: तारीफें सुनी है हमने।
0: कभी आई नहीं जोधपुर?
1: जी बिल्कुल, मैं गई हूँ जोधपुर और ये सब चीजों का जायका मैंने लिया है। तो खाने की बात से निकल के मैं आपके करियर के उस पॉइंट पे पहुंचना चाहती हूँ जहाँ आपको माइक्रोफोन से लगाव हुआ। तो ये लगाव की कहानी कैसे शुरू हुई?
0: सुषमा जी, मैं बताऊं, मेरे जीवन में कुछ भी सामान्य रूप से नहीं हुआ, हर कुछ
1: अच्छा
0: हुआ। जो माइक्रोफोन की बात है, जहां तक, ये भी बड़ी विचित्र रूप से मेरे जीवन में शामिल हुई है, क्योंकि हम चार पांच लोग अपने जो मित्र थे वो घूमने के लिए, वहां का एक जगह है कायलाना, वहां पर गए हुए थे और वहां पर ट्रांजिस्टर चल रहा था और उसमें गानों के बीच में एक उद्घोषणा हुई कि आकाशवाणी जोधपुर को आकस्मिक उद्घोषकों की आवश्यकता है। बड़ा अजीब लगा कि उद्घोषक कौन होते हैं और आकस्मिक क्या होता है, कुछ ज्ञान ही नहीं था क्योंकि उम्र काफी छोटी थी। खैर, जब हुआ तो ये हुआ कि चलो ग्रेजुएशन तो हो चुका है, क्यों ना हम भी अप्लाई कर दें। तो हम लोग साइकिल पे थे सारे दोस्त, वहां करीब करीब आप मान लीजिए कि करीब 10 किलोमीटर का चक्कर लगाकर हमने कायलाना से और आकाशवाणी जोधपुर पहुंचे। वहां पर
1: जी
0: डरते सहमते अंदर पहुंचे तो मालूम किया कि भाई ये क्या है पोस्ट, तो उन्होंने कहा कि ये अनाउंसर है। तब समझ में आया कि अनाउंसर की पोस्ट है, उद्घोषक क्या होते हैं उस समय तक ज्ञान नहीं था। उस समय फिर वहां पर अप्लाई किया और फिर भूल गए। करीब 5-6 महीने बाद घर पे पत्र आया आकाशवाणी जोधपुर से कि आपका जो वॉइस टेस्ट होना है आप आ जाइए इस तारीख को। हम चले गए, वॉइस टेस्ट क्या होता है कुछ भी ज्ञान नहीं था, बिल्कुल जानते ही नहीं थे। वहां पर पहुंचे तो उस समय वहां पर आदरणीय मुरली मनोहर मंजुल जी मिले और मंजुल जी ने सबको बिठाया, बताया कि क्या करना है, इस तरह से वॉइस टेस्ट होगा, आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी, उसको आपको पढ़ना है। और एक उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि उस समय कुछ उद्घोषणाएं जो वहां उस समय के अनाउंसर्स थे उनकी सुनाई हमको कि देखिए ये है, ये उद्घोषणा होती है, इस तरह से आपको करना है, जो अच्छा करेगा उसको चुन लिया जाएगा। हमने कहा ठीक है। मेरा भी नंबर आया, 13 सीरियल नंबर था मेरा, और हमने उद्घोषणाएं कर दी और इंतजार कर रहे थे कि कब इसका रिजल्ट आएगा।

0: शाम हो गई, शाम के समय उन्होंने कहा कि अब एक लिस्ट बनाई जा रही है, उसमें आप अपना नाम और नंबर देख लीजिएगा। और उस लिस्ट में खुशी की बात थी कि मेरा नाम भी था। जी हाँ, तब से मैं आकाशवाणी जोधपुर में कैजुअल अनाउंसर हो गया 1987 से।
1: तो विजय जी, बीइंग एन अनाउंसर, वाज दैट योर ओरिजिनल करियर चॉइस या कुछ और बनने का सपना देखा था आपने?
0: ये तो मालूम ही नहीं था कि अनाउंसर भी कोई कैरियर बनाया जा सकता है। मेरा तो शौक था कि मैं, वैसे मेरे घर परिवार में जो है उस समय टीचर्स ही टीचर्स थे, बड़ी बहन भी टीचर, बड़ा भाई भी टीचर, सब कुछ टीचर थे। तो एक ऑप्शन तो यही होता था कि टीचर बन जाए, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगा। और इसी कारण से मैंने 9th में जो अब सब्जेक्ट की चॉइस होती है, ऑप्शनल लेने होते हैं, उस समय मैंने बायोलॉजी ली और मैंने बीएससी बायोलॉजी में की थी। लेकिन पीएमटी में नंबर नहीं आ सका, क्योंकि शायद ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था कि कहीं और जाना है, कुछ और नाम कमाना है, सिर्फ डॉक्टर में ही सब कुछ नहीं है। तो यहाँ चयन हो गया। और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि जब ये मेरा रेगुलर अनाउंसर का इंदौर में चयन हुआ, ये भी बड़ी विचित्र बात है, मैं अपना चेक लेने के लिए आकाशवाणी जोधपुर गया था। वहां पर चेक बनने में कुछ समय था और उस दौरान मैंने जो वहां पर नोटिस बोर्ड होता है उस पर देख रहा था, तो वहां था आकाशवाणी इंदौर का एक विज्ञापन। उसमें उन्होंने लिखा कि हमें आकाशवाणी इंदौर में अनाउंसर्स की जरूरत है, और जो डिटेल्स होती हैं उसके बारे में लिखा था। लेकिन जब अंतिम तारीख देखी तो वो वही तारीख थी जो उस दिन थी, मैं पढ़ रहा था, वो अंतिम तारीख थी। लेकिन अजीब सी बात थी कि मैंने अप्लाई कर ही दिया, मैंने उसमें अगर होगा भाग्य में तो हो जाएगा। और इंदौर में ऐसा हुआ कि किसी कारणवश वो जो डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई
1: जी।
0: और उस एक्सटेंशन के दौरान मेरी जो एप्लीकेशन है वो भी आ गई थी और मुझे शामिल कर लिया।
1: क्या बात है, और वहां से आपका ये दौर शुरू हुआ। तो एक अनाउंसर, वो भी रेडियो पर, तो उस वक्त तो रेडियो का एक अलग ही क्रेज था। कैसा था वो वक्त और कैसी थी आपकी वो यात्रा?
0: मैं बताऊं आपको कि शुरुआत में जब मैं यहाँ आया इंटरव्यू देने के लिए, वो मेरे जन्मदिन का दिन था, 4 जून 1974। और हाँ, उस पूरे बैच में करीब 600 लड़के लड़कियां थी और कई दिग्गज लोग थे, लेखक थे, कवि थे, सब थे, हम तो सिर्फ कैजुअल अनाउंसर थे। तो उसमें 6 जनों को सेलेक्ट करना था, उन 6 जनों में मैं हुआ और ईश्वर की कृपा रही कि उस लिस्ट में मैं सबसे नंबर 1 पर था।
1: वाह
0: जी हाँ।
1: तो कैसा था वो वक्त और कैसी थी वो यात्रा? आपको तो बहुत फैन फॉलोइंग उस समय मिली होगी, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा था।
0: शायद आपको, आप भी चूंकि इसी फील्ड से हैं और आपको कुछ मालूम होगा, लेकिन हमने जो जीवन जिया है यहाँ पर, वो पूरा जीवन एक क्या कहें, ऐसे इंसान का जिया कि जिसको छूने के लिए लोग तरसते थे, जिनकी आवाज सुनने के लिए बिल्कुल आतुर रहते थे। और हमें लगता था कि फिल्म लाइन के जो कलाकार हैं उनके बाद तो सिर्फ अनाउंसर ही होता है, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी कार्यक्रम करके निकलते थे, उस समय मोबाइल तो थे नहीं और जो फोन थे लैंडलाइन फोन, उनसे हमारे ऑफिस के फोन पर इतने कॉल आते थे, आप इनसे बात करा दीजिए, आप इनसे कर दीजिए। और जमघट हर 7वें 8वें दिन आकाशवाणी इंदौर में लग जाता था कि हमें अमुक अनाउंसर से मिलना है, और अगर मिल लें तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। तब लगता था बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे साथ अभी एक अनाउंसर हैं, अभी जो वर्तमान में अनाउंसर हैं, उन्होंने अपनी कहानी बताई। वो बोले कि मैं एक बार यहाँ पर आया था और मैं उस समय 11वीं में पढ़ता था, और रॉय साहब आप ड्यूटी पर थे, आप एक प्रोग्राम कर रहे थे, आपने मेरे से हाथ मिलाया और फिर मैंने वो हाथ 3 दिन तक धोया नहीं। तो बोले कि जब मेरी माता जी पूछती थी कि तू सीधे हाथ से खाना क्यों नहीं खा रहा है, उल्टे से खाता है, तो बोले नहीं, वो फिर हाथ धोना पड़ेगा और मैं रॉय साहब से हाथ मिलाकर आया हूँ।
2: क्या बात।
0: तेज था रियली, ऐसा लगता था कि पता नहीं हम कौन से आसमान पर चल रहे हैं।
1: बड़ा अच्छा लगता है उन मेमोरीज में जाना, उस वक्त को याद करना। लेकिन आपने आवाज की दुनिया की जो बात की है, आपने आवाज की दुनिया में अपने हस्ताक्षर करने के बाद और भी कुछ विधाओं में अपना फन आजमाया है, तो क्या विधाएं थी वो जो माइक्रोफोन से जुड़ी हुई थी?
0: माइक्रोफोन से जुड़ी, ठीक है, जो सामान्य कार्य होते हैं एक अनाउंसर के वो तो करने ही होते हैं, रोजमर्रा के जो ट्रांसमिशन ड्यूटीज रहती हैं। उसके अलावा उस समय यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे हमारे साथ, स्वतंत्र कुमार ओझा, और वो मेरे लोकल गार्जियन हो गए थे। तो उसके कारण मेरा झुकाव ड्रामास की तरफ बहुत अधिक हुआ था। उनके साथ मैंने बहुत सारे ड्रामास किए और झलकियां की, काफी किए, नेशनल लेवल तक वो गए, और उनसे जो खुशी मिलती थी, सही कहूं कि वो खुशी कभी और नहीं मिल सकी मुझे, क्योंकि उनका जो तरीका था ड्रामास को प्रोड्यूस करने का, वॉइस कल्चर करने का, वो बहुत ही अलग तरीका था। हालांकि मेरी हमेशा कोशिश ये रहती कि मैं उनको नकल न करूं, क्यों करूंगा, तो जो ओरिजिनल बंदा है उधर उसको पूछेंगे लोग या नकलची को पूछेंगे, इसलिए मैंने नकल नहीं की। जी हाँ, लेकिन
1: जी।
0: सीखा बहुत कुछ। ठीक, और मेरे को बहुत अच्छी विधा मिली, वो मिली मेरे को कहानी पढ़ने की, कहानी
1: अच्छा।
0: का जो डिलीवरी होती है वो बहुत अच्छी मिली। और हुआ क्या था कि एक बार मैं ड्यूटी कर रहा था, शाम की ड्यूटी विविध भारती पे, और उस समय एक आधा का कार्यक्रम 8:15 बजे सुनो कहानी, उस सुनो कहानी में ओम शिवपुरी एक कहानी पढ़ रहे थे
1: जी।
0: उनका पढ़ने का तरीका था, उसको मैंने गौर से सुना, और सुनने के बाद लगा कि अरे कितना अच्छा पढ़ा इन्होंने, वो कहानी मेरे जहन में कर गई, वो मतलब मैं भूलने की कोशिश कर रहा था काफी समय तक, लेकिन भूल ही नहीं जाती थी, और ओम शिवपुरी का चेहरा मेरे सामने आ रहा था। तब से वो कहानी पढ़ने का तरीका जो है मैंने डेवलप किया, और वो डेवलप करने के बाद ऐसा लगा कि बस यही है बात जिसमें मुझे आगे जाना है। और सुषमा जी, आप शायद विश्वास न करें, एक बार मैं लाइव कहानी पढ़ रहा था रात के समय, और दो ड्यूटी ऑफिसर्स, एक तो आकाशवाणी जयपुर से ही आए थे रमेश खत्री, और एक हमारे यहाँ के थे बिश्नोई, तो वो दोनों कहानी बाहर सुन रहे थे, और जब मैं कहानी पढ़ने के बाद बाहर आया तो वो रो रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले भाई साहब आपने कहानी ऐसी पढ़ी कि रोना आ गया। तो ये एक्साइटमेंट था मेरे जीवन में कि चलिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका असर कुछ लोगों पर तो अवश्य हो रहा।
1: बिल्कुल, और जब इन बातों को सोचते हैं और उस असर को देखते हैं तो वाकई हमारे दिल पर भी असर होता है। अब हम आपकी उस विधा की बात जरूर करना चाहेंगे जिसमें आपने बहुत नाम कमाया एज अ कमेंटेटर।
0: देखिए, जैसे मैंने आपको कहा ना कि सब कुछ अचानक हुआ मेरे जीवन में, ये बात है 1978 की, और हमारे यहाँ जो स्टेशन डायरेक्टर थे मिस्टर केशव पांडे, वो उन्होंने मेरे को बुलाया, और बुला के बोला कि क्यों तुमने कभी क्रिकेट खेला है? तो मैंने कहा यस सर, मैं यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा हुआ हूँ जोधपुर में। तो बोले वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट्री करोगे? मैं चुप हो गया। बोले क्यों नहीं कर सकते क्या? बोले यार तुम अनाउंसर हो और क्रिकेट जानते हो तो कमेंट्री कर लो। तो मैंने कहा ठीक है सर, और उस समय मैंने पहली कमेंट्री हमारे इंदौर के नेहरू स्टेडियम में की, और वो थी इंग्लैंड और रणजी ट्रॉफी विनर बॉम्बे के बीच में मैच हुआ, उसकी शुरुआत की। और सुषमा जी आपको और बता दूं बात कि वो जो पहली कमेंट्री थी उसके साथ एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हुई हैं चंद्रा नायडू, आपने
1: जी
0: सुना हो, है ना, जिन्हें कहा जाता है कि पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी, वो और मैं हमने साथ में शुरुआत की थी। और वैसे वो कर्नल सी के नायडू की बिटिया थी, और क्रिकेट उनके घर में रचा बसा था, लेकिन
1: बिल्कुल
0: हाँ, चूंकि वो अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, लेकिन क्रिकेट की तरफ उन्होंने वैसे बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस कारण से जब हम कमेंट्री करने बैठे तो उनका एक रिक्वेस्ट आई कि विजय मेरी मदद करोगे। मैंने कहा तो उन्होंने जब हम कर रहे थे कमेंट्री, वो एक चार्ट बनाकर ले आई थी और उस चार्ट में पूरा फील्ड था क्रिकेट का, साथ में जो प्लेयर्स थे उनके नाम थे, और उसको देखकर मैंने उनकी खूब मदद की और वो जो पहली कमेंट्री करने वाली महिला बनी उसमें शायद थोड़ा सा योगदान मेरा भी रहा।
1: बिल्कुल। तो कैसे थे वो दिन कमेंट्री के, कुछ खास यादें उस जर्नी से जुड़ी हुई जैसे आपने अभी बताई?
0: वो ऐसा लगा मुझे उस दिन जब पहली बार मैंने कमेंट्री की कि पता नहीं क्या मैंने किस आकाश पर हूँ, उपलब्धि मैंने क्या हासिल कर ली है, लेकिन धीरे धीरे मालूम किया कि अभी तो मुझे कमेंट्री का ए ही आता है, अभी जेड तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। लेकिन फिर लगातार मुझे इतने अवसर मिले कि मैं उनके बारे में सोच भी नहीं सकता था। उस समय रणजी ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, बहुत सारी ट्रॉफीज होती थी और उन सब की कमेंट्री आकाशवाणी से होती थी। तो करीब करीब आप मान लीजिए कि 100 से 150 कमेंट्रीज तो मैंने यही कर ली होंगी इन सभी मैचेस की। एक बार तो मैंने एक कमेंट्री की भीलवाड़ा में जाकर, वहां से आया, आकर मैंने फिर इंदौर में कमेंट्री की, इंदौर से फारिग हुआ तो उसके बाद मैं बीकानेर पहुंच गया। तो इस तरह से 3 कमेंट्री लगातार की और फिर आया 1978 का दिन जब मैंने 78 में तो मैंने पहली कमेंट्री की, उसके बाद मैंने ODI किया 1997 में, 25 दिसंबर 1997 में, मतलब वन डे इंटरनेशनल भारत और श्रीलंका के बीच। आपको शायद याद हो कि वो मैच जो था बहुत आज भी चर्चा में रहता है, जब बात है कि वो मैच अबेंडेंड हो गया था और अबेंडेंड हुआ था वो विकेट के कारण। ये कहा गया श्रीलंका के खिलाड़ियों की तरफ से, उनके कप्तान अर्जुन रणतुंगा की तरफ से, कि विकेट जो है अंडर प्रिपेयर्ड है और उसमें मिट्टी उड़ रही है, इसलिए हम इसको मैं नहीं खेलेंगे। पहले तो बड़ा अजीब सा लगा कि पहले जब 3 ओवर हुए तो 1 या 2 बॉल अवश्य उछली थी, सामान्य ऊंचाई से अधिक गई थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उस विकेट पर खेला नहीं जा सकता था। उन्होंने भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर से अनुरोध किया कि ये मैच यहाँ नहीं हो सकेगा, लेकिन उन्होंने कहा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहला ओवर किया हमारी तरफ से श्रीनाथ ने और सिर्फ 2 या 3 बॉल ऊपर उछली, बाकी तो सामान्य रूप से आ रही थी। फिर इसलिए सचिन तेंदुलकर ने दूसरा तेज गेंदबाज नहीं लगाया, लेकिन चौहान जो थे उनको लगाया, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। तो वो उन्होंने गेंद की, अच्छी हो रही थी, स्पिन हो रही थी, काफी अच्छी हो रही थी, और तीसरा ओवर जब वापस श्रीनाथ ने किया तो उसके खत्म होते ही अचानक खेल रुक गया और ऐसा लगा कि रुक क्यों गया। मैं और भोगले, वो अंग्रेजी में कर रहे थे, मैं हिंदी में कर रहा था, तो हमें लगा कि रोक क्यों दिया गया। फिर धीरे धीरे कुछ समाचार आने लगे कि नहीं, ये जो विकेट है ये अंडर प्रिपेयर्ड है, इसलिए इस पे मैच नहीं होगा, और जो पूरा ग्राउंड था वो दर्शकों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि अगर ये मैच रोक दिया गया तो कुछ न कुछ बवाल हो जाएगा। अब उस समय स्थिति को संभालना कमेंटेटर्स के हाथ में था। हम दोनों ने मिलकर उस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला और लोगों को ये मालूम नहीं होने दिया लंबे समय तक कि वो जो मैच है वो अबेंडेंड हो गया है, और उसकी 25 ओवर का मैच खेला जा रहा था और काफी देर बाद हमने लोगों को बताया कि ये अब जो मैच है ये सिर्फ सामान्य मैच है और 25 ओवर का खेला जाएगा, और संतुष्ट भी हो गए दर्शक उस समय इससे, और वो मैच 25 ओवर का हुआ। और मजे की बात ये थी कि उस मैच में डेब्यू कर रहे थे ऋषिकेश कानेटकर भारत की तरफ से, लेकिन वो ODI में उस दिन डेब्यू नहीं कर पाए क्योंकि वो
1: तो विजय जी, बहुत से खिलाड़ियों से आप, बड़े बड़े नाम जो हैं उनसे मिले आप, कमेंटेटर्स कमेंट्री की दुनिया में जो बड़े नाम हैं उनसे आप मिले। आपने बताया हर्षा भोगले जी, जो इंग्लिश के एक बहुत ही जबरदस्त कमेंटेटर रहे हैं। इस तरह आपका भी कोई आइडियल रहा होगा जिसकी विशेष क्वालिटी ने आप पर प्रभाव छोड़ा, या आपने कभी किसी को कॉपी तो नहीं किया, बिकॉज ये आप पहले ही क्लियर कर चुके कि कॉपी
0: मतलब मेरे हमारे शहर के ही है, बहुत ही जाने माने कमेंटेटर सुशील दोषी, पद्मश्री सुशील दोषी है ना, वो यहाँ पर कमेंट्री करते थे और बाद में उनसे मेरी अच्छी मित्रता भी हो गई यहाँ पर आने पर, और उनके साथ भी मैंने कई मैचेस कवर किए थे, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं उनको कम से कम सुनो, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आप सुनेंगे तो जाने अनजाने अनकॉन्शियसली आपके माइंड में उनकी कुछ बातें, उनके कुछ शब्द, उनकी कोई स्टाइल वो आपके अंदर समा जाएगी और फिर आप उसकी नकल करेंगे। लेकिन मेरा शुरू से ये कहना था कि किसी की नकल करके अगर आपने नाम कमाया तो क्या कमाया, इसलिए मैंने कोशिश ये की कि मैं अपनी इंडिविजुअलिटी रखूं, और वही मैंने पूरे समय पे कोशिश की। हालांकि कई शब्द होते हैं ऐसे जो जाने अनजाने आपकी भाषा में शामिल हो जाते हैं जो किसी और ने पैदा किए थे। खैर ऐसा तो जीवन में चलता ही रहता है, और जी हाँ कुछ न कुछ तो आपके अपने आप ही आ ही जाता है आपके जीवन में, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रही कि मैं किसी की नकल ना करूं।
1: और कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एपिसोड आपकी कमेंट्री से जुड़ा हुआ जो आप शेयर करना चाहें?
0: जी हाँ, एक बहुत अच्छा इंसिडेंस हुआ था। यहाँ पर इंग्लैंड और इंडिया का ओडीआई मैच था इंदौर में, और पहले तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होते थे, लेकिन उसके बाद होलकर स्टेडियम में होने लगे। तो आकाशवाणी इंदौर से जो अधिकारी थे, कार्यक्रम अधिकारी, वो लोग गए एमपीसीए के पास कि हमें कमेंट्री करनी है आकाशवाणी को, तो हमें एक बॉक्स दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी कोई बॉक्स खाली नहीं है, तो हम नहीं दे सकते, कमेंट्री करें या ना। बड़ी अजीब सी बात हुई, लेकिन काफी उसके बाद परसुएशन हुआ, मैं भी गया और वहां पर जब बात की तो हमें एक ऐसा बॉक्स मिला जो 45 डिग्री पर था, बिल्कुल जो था ग्राउंड का वो दिया गया। अब जहां जब उस पर हम कमेंट्री करने बैठे तो वहां से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बैट्समैन क्या कर रहा है, बैट्समैन ने अपना लेग गार्ड कैसे लिया है, गेंदबाज आ रहा है तो गेंद कहाँ से कर रहा है वो, और उसकी गेंद कहाँ जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल। हम सिर्फ अंदाज से कमेंट्री करते जा रहे थे, हमें भी बहुत बुरा लग रहा था कि जो वहां पर हैं बैठे हुए लोग उनको दिख रहा है वो क्या सोचते होंगे हमारी कमेंट्री को सुनकर कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। लेकिन 15 से 20 मिनट बाद जब ये मजबूरी बहुत ही सिरदर्द बन गई, तो हमने फिर वहां के जो एमपीसीए के लोग थे, संजय जगदाले विशेष रूप से, उनको हमने रिक्वेस्ट की कि सर और कुछ ना हो सके तो एक आप टीवी मॉनिटर हमारे पास रख दीजिए जिससे देखकर हम कमेंट्री कर सके। तब उन्होंने हमारी जो थी रिक्वेस्ट उसको माना और वो टीवी आया वहां पर, उसको देखकर फिर हमने कमेंट्री की, वरना अगर वो नहीं आता तो वो शायद जीवन का सबसे बुरा दिन होता हमारा जब मुश्किल से कमेंट्री कर पाते, और दुख ये केवल यही रहता कि हमने ढंग से कमेंट्री की नहीं।
1: बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ, जब आप लाइव कुछ कर रहे हैं तो एक एक पल जो गुजरता है वो बड़ा मायने रखता है, आपकी आंखों के सामने क्या चल रहा है वो क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तो आप उसे शब्दों में ढाल नहीं पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और सुषमा जी, मेरी हमेशा जीवन में कोशिश रही, जब भी मैं कमेंट्री करता था तो मैं ये चाहता था कि लोग इसे रेडियो पे सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता था कि उनको ये लगे कि ये उनको दिख भी रहा है। तो मैं अपनी कमेंट्री में ये पूरी कोशिश करता था कि मैं उनको विजुअलाइज करा दूं पूरा खेल, उनको ये लगे कि हाँ ये गेंद यहाँ से आई इधर गई और जो खिलाड़ी था उसने इस तरह से खेला, अपने दाएं तरफ खेला या बाएं तरफ खेला, और जो फील्डर था उसको कितना भागना पड़ा, अपने किस तरफ से भागना पड़ा, उसने किस तरह से फील्ड किया, गिरकर फील्ड किया या सामान्य रूप से फील्ड कर लिया, कैसे उठा के उसने थ्रो किया। तो ये जीवंत कर देता था मैं बिल्कुल ही कमेंट्री में। और मुझे अक्सर लोग कहते भी थे कि आप कमेंट्री जो करते हैं उसको हम सुनते नहीं, हम उसको देखते हैं।
1: और एक अच्छे कमेंटेटर का यही रोल होता है। मुझे याद है कि रेडियो की कमेंट्रीज बहुत मायने रखती थी, मतलब लोग उनके पीछे, लोगों का क्रेज होता था। खासकर अगर आपने जब शुरुआत में मुरली मनोहर मंजुल जी का नाम लिया, उनकी कमेंट्री में भी आपको सब कुछ दिखाई देता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंजुल जी तो महान कमेंटेटर थे। हालांकि उनके साथ ये था जुड़ावा कि वो साथ में सुंदर कविताएं भी पेश करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि जब थोड़ा सा समय मिल गया है, जब खेल रुक गया है, तो आप कविताओं का आनंद भी ले लीजिए साथ साथ में। और एक जितने नेक दिल इंसान थे, क्योंकि मेरा सिलेक्शन भी उन्होंने किया था, तो मैं मन से तो वैसे ही उनके प्रति आभारी था बहुत। और फिर जब वो उनकी कमेंट्री सुनता था तो बहुत अच्छा लगता था। एक और बात बताऊं, मैं कमेंट्री कर रहा था और मेरा छोटा भाई है, वो भी कमेंट्री करता था कुछ समय के लिए उसने की। और मैं इंदौर से कर रहा था और भीलवाड़ा से वो कमेंट्री कर रहा था, तो ये दो भाइयों की एक साथ कमेंट्री उस समय बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को कि दो भाई एक साथ कमेंट्री कर रहे हैं
1: मतलब वो एक अलग ही रिकॉर्ड था जी। अच्छा विजय जी, एक अनाउंसर के रूप में आपने अपनी भूमिका निभाई है और एक कमेंटेटर के रूप में भी, तो क्या फर्क लगता है आपको, क्या कुछ अलग है, क्या कुछ नया सीखना पड़ता है?
0: सीखना, यह जहाँ तक अनाउंसर का सवाल है, यहाँ तो सीखने की इतनी बड़ी है कैनवास जो है, बहुत बड़ा कैनवास है। आप सीखते जाइए सीखते जाइए। आज मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैंने बहुत कुछ नहीं सीखा, क्योंकि सीखने की कोई सीमाएं ही नहीं है अनाउंसर के रूप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामान्यतः मैंने देखा है कि जो आजकल के अनाउंसर हैं, उनमें सीखने की कोई है ही नहीं, आदत ही नहीं है। उनको लगता है कि बस अनाउंसर बन गए ना, बस ठीक है। लेकिन हम जब थे, तब मैं अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति मिल जाता था और मुझे किसी उर्दू शब्द का ज्ञान नहीं होता था, तो मैं उससे पूछता था। हिंदी शब्दों के बारे में हिंदी के जो प्रोफेसर आते थे आकाशवाणी में, उनसे सीखता था। तो इस तरह करके जो ज्ञान है हिंदी और अंग्रेजी का या उर्दू का, वो अर्जित करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आजकल तो क्या है कि किसी को अपने भाषा की वर्णमाला ही पूरी नहीं मालूम है ना, तो उच्चारण दोष बहुत हो जाता है आजकल, इतना अधिक होता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना उच्चारण दोष है। उर्दू के शब्दों में भी ऐसा ही होता है। तो मेरा तो ये कहना है, मेरे अगर कोई साथी है, कि आप भाषा हमेशा सीखते रहिए और ऐसे व्यक्ति से सीखिए जिसको आता हो, है ना।
1: बिल्कुल सही,
0: आदान को ना पकड़ लें, किसी अच्छे व्यक्ति से भाषा का ज्ञान लें आप। और
1: बिल्कुल
0: प्रेजेंटेशन का भी है, वो भी इसी तरह से है कि आप किसी प्रोग्राम को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें जब तक आप खुद शामिल नहीं हो जाएंगे, इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, तब तक आप उस प्रोग्राम में जान नहीं डाल पाएंगे। सिर्फ एक रूटीन ड्यूटी की तरह का आप प्रोग्राम करेंगे तो वो उसका असर किसी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल अपना समझकर अगर उसको पेश करेंगे, तो मान लीजिए कि आपके जो लोग हैं वो आपके पीछे इतने दीवाने हो जाएंगे कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुषमा जी, एक और बात बताता हूँ मैं बहुत बड़े यहाँ के सिंधी के कहानीकार, उनकी कहानी पढ़ी और उसके कुछ दिन बाद हमारे जो स्टेशन डायरेक्टर थे लक्ष्मेंद्र चोपड़ा, उन्होंने मुझे बुलाया। और उस समय एक व्यक्ति, बुजुर्ग से व्यक्ति वहां बैठे थे, बोले विजय ये है मिस्टर सो एंड सो, इनकी कहानी आपने पढ़ी? मैंने कहा जी हाँ मैंने पढ़ी। अब मैं मन में सोचूं क्या बात हुई, मुझे क्यों बुलाया? तो बाद में चोपड़ा जी ने उनसे कहा कि ये है मिस्टर विजय रॉय जिन्होंने आपकी कहानी पढ़ी। वो बंदा उठा, मुझसे उम्र में करीब करीब 25 से 30 साल बड़ा था, उठा और मेरे पैर पड़ने लगा। मैंने झुककर उन्हें उठाया, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, गुनाह हो रहा है ये तो। तो रोने लगे वो, बोले रॉय साहब मैंने जितनी कहानी लिखी थी अच्छी, उससे अच्छी आपने उसको बना दी। तो अचीवमेंट्स बहुत हुए मेरे साथ, मुझे बड़ा मैंने अपनी जो एक करियर चुना, उस करियर में मैंने कुछ उपलब्धि हासिल की है।
1: बिल्कुल, और बहुत खुशी होती है जब आप उम्र के इस पड़ाव पर होते हैं कि आपने इतना सब कुछ सबकी खुशियों के लिए उनके बीच रखा और उन्होंने उसे स्वीकारा है पूरे दिलो जान से, तो अच्छा लगता है। एक और बात कि आजकल जो वक्त चल रहा है उसको आपने डिस्क्राइब तो किया, फिर भी क्योंकि आजकल आवाज का बहुत महत्व है, शब्दों का बहुत महत्व है, चाहे हम कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हो, यंग जनरेशन की हम बात करें, बहुत से कामों में उन्होंने अपने आवाज का इस्तेमाल करना होता है, शब्दों का इस्तेमाल करना होता है, तो अपनी आवाज से जो लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, क्या कुछ जरूरी है उनके लिए जानना और समझना या सीखना?
0: सबसे पहली बात तो यह है कि आपके आवाज में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। आप उसमें ये ना करें कि आप उसको बेस वॉइस बना दें और उस बेस वॉइस को मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। आपकी जो ओरिजिनल आवाज है उसी आवाज में आप बात कीजिए। और सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसके बारे में सबसे पहले उसकी जानकारी हासिल कर लीजिए कि क्या किस फील्ड का वो व्यक्ति है, हमें उससे किस तरह की बात करनी चाहिए, और वो अगर आपका हासिल होगा तो आप एक अच्छा इंटरव्यू ले पाएंगे। और एक बात जो मैंने के नैयर से सीखी, वो बहुत अच्छे इंटरव्यू लेते थे, तो उन्होंने हमें बताया कि विजय कभी भी कोई इंटरव्यू आप ले रहे हैं और सामने वाला बोल रहा है तो उसे काटिए मत, क्योंकि अगर आप काट देंगे तो उस समय जो वो बोलना चाह रहा है वो शायद आगे भूल जाए और वो बात हो सकता है कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हो और आपने सिर्फ अपने जिज्ञासा में अपने एक नए क्वेश्चन को आगे फेंकने के चक्कर में उसका वो जो है सोच वो गायब कर दिया। तो ये चीजें होती हैं कि आपको उस कला का ज्ञान होना चाहिए जिस कला में आप आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं इंटरव्यू कला में। और अगर कोई प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम को प्रेजेंट करने में आपके क्या भाव हैं, क्या सोच है आपकी, वो जरूर होनी चाहिए। सिर्फ आपने शब्दों को सामान्य रूप से आगे बढ़ा दिया तो वो इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। कहाँ पर शब्दों पर स्ट्रेस देना है, कहाँ खाली छोड़ना है, कहाँ अपने मनोभावों को उसमें शामिल करना है, ये ज्ञान आपके पास अवश्य होना चाहिए। तो अगर
1: जी
0: तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे उद्घोषक या कमेंटेटर या अनाउंसर बन सकेंगे।
1: और उसके अलावा भी मैंने जैसे बताया कि शब्दों और आवाज की जरूरत आपको रोज की दिनचर्या जो है आपकी उसमें भी पड़ती है, लोगों से मिलना है, बात करना है, बहुत प्रभावित करती है ये बातें। और जब हम आपकी आवाज सुन रहे हैं तो बस मन लग रहा कर रहा है कि सुनते चले जाए क्योंकि आप इतना दिल से बोल रहे हैं। और वो बात आपने बहुत अच्छी बोली कि जब तक आपके मनोभाव आपके शब्दों और भाषा के जरिए और आवाज के जरिए प्रकट नहीं होंगे तो सामने वाला उन्हें सुनकर आकर्षित नहीं होगा। तो ओरिजिनल होना और अपने आप को पूरे मनोभाव से उसमें डूब कर करना कोई चीज, वो एक अलग ही शो होता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आपके पास शब्दों का ज्ञान ही नहीं है, आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर होता क्या है सुषमा जी, एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैं कमेंट्री करता था तो मैं कई शब्द रिपीट करता था, तो मुझे मेरे घर वाले ही बोलते थे कि पापा आप ये बहुत ज्यादा बोलते हो। तो मैंने धीरे धीरे उसमें सुधार किया कि नहीं, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए, नए नए शब्दों का उपयोग करना चाहिए और किसी और के शब्दों को अपनी भाषा में शामिल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो बहुत जरूरी ना हो।
1: तो ये जो रिपीटेशन है वो आपके प्रेजेंटेशन को एक तरह से खत्म करता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई जी। अब आवाज की दुनिया में आपने एक बहुत खूबसूरत सा सफर तय किया है, तो इसलिए जरूर जानना चाहेंगे आपका वो मैसेज जो हम सबके लिए है, आई थिंक हर इंसान के लिए, क्योंकि बोलना हर एक की जिंदगी में शामिल है।
0: जी हाँ, बोलना तो शामिल है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा अपने जो भी सुन रहा हो इसे कि वो बोलिए जो आपको भी अच्छा लगे और सामने सुनने वाले को भी अच्छा लगे, क्योंकि सिर्फ बोल देना और ये सोचना भी नहीं कि मैंने जो शब्द फेंक दिए हैं उसका असर लोगों पर क्या होगा, है ना, तो वो बड़ी बुरी बात हो जाती है। इसलिए आपको जो कुछ बोलना है सोच के बोलिए, और कम से कम एक बात जरूर ध्यान रखिए कि आप सामने किससे बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति सामने जो है आपसे छोटा है, बड़ा है, कैसा है, उसके अनुसार ही उसके साथ आपको व्यवहार करना चाहिए। अगर आप इतने से बड़े व्यक्ति के साथ आदर के साथ बात करेंगे तो उसका जितना आदर बढ़ेगा उससे अधिक आदर आपका होगा, क्योंकि यही कहा जाएगा कि बहुत ही डिग्निफाइड व्यक्ति है ये, और इसको ज्ञान है कि किस तरह से लोगों से बातचीत की जाती है। इसलिए जब भी बोला जाए बहुत सोच के बोला जाए, आपकी भाषा पर आपका कमांड हो, और वो कमांड सिर्फ ऐसा ना हो कि आपको खुशी दे, वो दूसरों को भी खुशी दे।
1: बहुत खूब। तो आपका ये जो खूबसूरत शब्दों का, भाषा का, आवाज का फलसफा है, ये इसी तरह और बढ़ता रहे आगे और लोगों को आप प्रभावित करते रहें। चाहे आप उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं, लेकिन आप बांटने को आपके पास बहुत कुछ है। तो आपकी इन बातों को सुनकर वाकई बहुत से लोगों को प्रेरणा मिली होगी, ऐसा हम सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय रॉय जी आज हमसे बात करने के लिए।
0: धन्यवाद सुषमा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये पहल की, और मेरे मन में जो छुपे हुए थे शब्द थे, विचार थे, जो शायद ऐसा मुझे लगता है कि कई समय से मेरे दिल में इधर उधर भटक रहे थे, वो आज आपके द्वारा एकत्रित हुए, और हो सकता है कि आगे वो चलकर किसी न किसी को उसका लाभ अवश्य मिले।
1: बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू सो मच सर।

गया, केलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम नई आवाज़ नई पहचान, और नई आवाज़ नई पहचान हम उन सिंगर्स को दे रहे हैं ये नाम जो पहली बार इस मंच पर आ रहे हैं। आज हमारे साथ राजस्थान के नोहर तहसील की और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की सुनीता इस मंच पर है। वेलकम है सुनीता, आपका पहली बार इस मंच पर, आप जयपुर रेडियो की प्रोग्राम सुनती हैं और आपका भी मन हुआ कि आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, तो हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आपके गीतों के साथ आपका। नई आवाज़ नई पहचान में हम आज एक ऐसी आवाज़ को लेके आए हैं जो राजस्थान की रहने वाली हैं। राजस्थान में हम कहें तो गंगानगर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में एक तहसील है नोहर। नोहर राजस्थान से हमारे साथ हैं आज की नई आवाज़ युवा आवाज़, जो आपकी आवाज़ आपकी पहचान बनने वाली है आज इस मंच पर, जिसका नाम है नई आवाज़ नई पहचान, आपकी आवाज़ आपकी पहचान, जिस प्रोग्राम को आप रोज़ सुनते हैं शाम 6 बजे जयपुर रेडियो से। तो आज हमारे संग हैं सुनीता। सुनीता वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है आपका। अपना परिचय दें आप हमारे सभी लिसनर्स को, सुनने वालों को।
1: मैं सुनीता हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और मैंने म्यूजिक है वो मतलब बचपन से स्टार्ट कर दिया था
0: जी।
1: और मैंने मेरे पापा से सीखा है म्यूजिक
0: जी।
1: और मैंने म्यूजिक में MA भी कर रखी है और विशारद भी कर रखी है, और मैं गवर्नमेंट म्यूजिक टीचर की तैयारी कर रही हूँ अभी।
0: हमारी ओर से ही शुभकामनाएं हैं। तो आप कौन कौन से गाने आपको पसंद है, गजल गाती हैं कि ठुमरी गाती हैं, या फिर दादरा, या फिर फिल्मी बॉलीवुड म्यूजिक, या लोक संगीत, इसमें आपकी क्या अभिरुचि है वो जरा सा इस पे प्रकाश डालिए जरा सा।
1: मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और नोहर तहसील में रहती हूँ, और वैसे मैं ऑलराउंड सभी प्रकार के सॉन्ग गाती हूँ, फिल्मी गीत भी गाती हूँ, रागे भी गाती हूँ, ठुमरी भी गाती हूँ, और तालों का भी मुझे नॉलेज है। वैसे मैं 3 ताल में गाती हूँ, दादरा में गाती हूँ, रूपक में गाती हूँ।
0: तो कुछ सुनाएंगे आप अपने, वैसे बिना म्यूजिक के, कोई भी 2 लाइनियाँ?

ऐसा मंजर हो या ना हो, हम श्रोताओं को ज़रूर बताएंगे कि ये मंजर ज़रूर है कि काश नहीं सच में हमारे साथ हैं सुनीता आज इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई आवाज़।

आवाज सुनीता की हनुमानगढ़ से हमारे संग युवा सिंगर नई आवाज नई पहचान लेके वेलकम स्वागत अभिनंदन।

कभी कहा ना किसी से, कभी कहा ना किसी से तुम्हारे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। दुआ बाहर की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना रही मेरे आशियाने को। बहुत ही खूबसूरत नॉन फिल्मी गजल हमने सुनी, जी के एल्बम से ली गई ये गजल, और आवाज हमारे युवा सिंगर सुनीता की, हनुमानगढ़ नोहर राजस्थान से। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आइए सुनते हैं अगली पेशकश। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। अगले सॉन्ग में सुनीता की आवाज,

आपकी आवाज़ आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नई आवाज़ नई पहचान। और नई बार पहली बार हमारे संग हमारे साथ हैं सुनीता हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ राजस्थान से। सुनीता युवा कलाकार अपने खूबसूरत स्वर के साथ आवाज के साथ वेलकम है, अभिनंदन है आपका इस मंच पर।

जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। और जयपुर रेडियो का साया आपके साथ है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं सुनीता को, प्रोग्राम नई आवाज़ नई पहचान के तहत। आपने सुना ये खूबसूरत गीत, और आइए सुनते हैं अगली आवाज़ में सुनीता को एक बार फिर।

क्लासिकल सुपर सुपर डुपर सॉन्ग, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले तो जिंदगी हो जाए सफल। और सुर में सुर मिलाने के लिए आपको जयपुर रेडियो पर आना ज़रूरी है और वहीं आपका सुर और सुर की साधना सही हो सकती है। और इसके लिए हमने एक स्वर साधना प्रोग्राम भी रखा हुआ है जो रोज़ रात 8 बजे आता है और उस पर हमारी जयपुर रेडियो की सुरीली सिंगर आपका साथ देती हैं। तो सुर से सुर मिलाने का ये बहुत सुनहरा अवसर है, हम तो यही कहेंगे। और सुर के साथ शब्दों की साधना भी बहुत ज़रूरी है। शब्द और सुर जब दोनों मिल जाते हैं सुनीता तो बहुत कमाल करते हैं, यानी वो उस ईश्वर, वो जो हमारी साधना का साध्य है, हम उससे मिल जाते हैं, उससे हम एकाकार हो जाते हैं। इसलिए हमें स्वर शब्द और सुर और उसकी साधना की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप इतना प्रयास कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। हमें उम्मीद है कि आपके आवाज़ की रोशनी पूरी दुनिया में फैले और आप यूं ही गाती रहें। बस थोड़ा सा आत्मबल और शक्ति की ज़रूरत है। तो बहुत बधाई हमारी ओर से और आइए सुनते हैं आपका अगला खूबसूरत गीत। सुनीता हनुमानगढ़ से हमारे साथ, हनुमानगढ़ राजस्थान।

जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। और हम कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं लगा इस शाम का लंबी है कि नहीं, हमारे श्रोताओं को भी पता नहीं लगा। और अब हम प्रोग्राम के इस मोड पर आ पहुंचे हैं कि हमें बताना होगा कि आज आपने नई आवाज नई पहचान में सुना सुनीता को। नोहर तहसील की रहने वाली हैं, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, राजस्थान से आप बिलोंग करती हैं और पहली बार हमारे इस मंच पर आई हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि आपके जो श्रोता हैं जिन्होंने आपके इस प्रोग्राम को सुना और सराहा है, हम उनके नाम भी ले लें। आप हैं केवल कृष्ण शर्मा, गंगानगर राजस्थान से, भट्ट हीना गुजरात से, अनुपमा खुराना दिल्ली से, जय सिंह सीकर से, लोकजीत दास असम से, लक्ष्मी शर्मा मुंबई से, जीना चौधरी हरियाणा से, चित्रा वर्मा, सोनल पारिक जूनागढ़ गुजरात से, सुनील चड्डा पंजाब से, पूजा नादकर्णी जर्मनी से, ज्योति भावसार भरूच गुजरात से, रुक्मणी लालवानी वडोदरा गुजरात से, मंदाकिनी वडोदरा गुजरात से, महेश रावल वडोदरा गुजरात से, विभूति पंचोली वडोदरा गुजरात से, ओम प्रकाश शर्मा जयपुर राजस्थान से, राजगोड़ मुंबई से, हसीना बानू जयपुर से, संगीता त्यागी बीकानेर राजस्थान से, अनीता दुगड़ नेपाल से, मुस्कान इसरानी जयपुर राजस्थान से, सत्यप्रकाश सिन्हा यूपी से, तेज दान चारण जोधपुर राजस्थान से, राम सिंह यादव जयपुर से, सीमा बजाज दिल्ली से, राजा राम जवर बिश्नोई जोधपुर राजस्थान से और श्याम थाडे, आप सबका आभार और धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने आपके प्रोग्राम को सुना है और सराहा है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ दें हम। और इसके अलावा जिन लोगों ने आपके गीतों को पसंद किया है, हम उनके नाम भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। आप हैं सुषमा गोदरा, कपिल त्रिवेदी, ओम गायकवाड़, गीता बेन, दीपिका त्रिपाठी, राधे राधे, कोलू परवाज, अनुपमा, नीलेश शाह, आशा रानी, सैयद यूनुस, अब्दुल जमाल, सपना चौहान हिमाचल से, संता राय, मीना प्रकाश दिल्ली से, मजहर यूपी से, सचिन यूपी से, अनीसा बेगम बरेली से, एनडी रटवानी गुजरात से, हिमांशु जोधपुर से, शिवनाथ गौड़ दुबई से, कमलेश साहू छत्तीसगढ़ से, नरेंद्र कुमार पंजाब से, योगेश सूरती अहमदाबाद से, विक्की जय जीवन घोष वेस्ट बंगाल से, ध्यानवंती रेखा भाटिया अजमेर राजस्थान से, नेहा रावल, उत्तम सिंह जंघेल, बीना धुरवा, अलीम खान, प्रवीण एम आर व्यास, सीरीश असपी अजमी खान, फैजल मीता ठक्कर छत्तीसगढ़ से, प्रणब नोमेश, जगदीश देवांगन, दोमन ठाकुर, दिलीप विजय, सुरजिता घोष, रघुवंशी, जया बारोट, जयेश बारोट, ज्योति गोमरे, पूनम सिंह बिहार से, सीताराम कागरा और आर के। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अलग अलग डिवाइस से हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए सबको शामिल करना मुमकिन नहीं होता। इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि जिन लोगों के नाम हम आज के इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे। और बहुत धन्यवाद, बहुत हमारी ओर से बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ कि सुनीता आप इसी तरह गाती रहें और स्वर पथ पर यूं ही
हमारी

बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सुनीता नौहर तहसील से, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हमारे साथ रही इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नई आवाज़ नई पहचान। फिर मिलते हैं एक नई पहचान, नई शख्सियत के साथ, उभरती हुई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार। आज हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है आपकी आवाज आपकी पहचान। और इस मंच पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जयपुर रेडियो की सुपर सिंगर सीमा फूकन के बर्थडे के स्पेशल प्रोग्राम का।

0: तुम्हारे कहने से पहले ही बोल उठी आवाज, हैप्पी बर्थडे टू यू सीमा फुकन। और हमारे साथ यानी जयपुर रेडियो के संग आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं सौरभ मिश्रा जी, आपके को सिंगर, और अपर्णा अच्युता, उन दोनों की ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज के प्रोग्राम में हम सुनेंगे सीमा फुकन की सुरीली आवाज में गाए कुछ गीत, और इसी तरह हम सेलिब्रेट करेंगे इस मंच पर हमारे श्रोताओं के साथ सीमा फुकन का बर्थडे। तो एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। असम में मूल रूप से रहने वाली और आजकल जोधपुर में प्रवास करने वाली सीमा फुकन हमारे साथ। वेलकम है सीमा जी आपका, आपकी आवाज आपकी पहचान इस प्रोग्राम में। करते हैं सीमा जी से थोड़ी सी मुलाकात श्रोताओं के साथ।
1: मेरा नाम सीमा फुकन है और मैं भारतवर्ष के सुंदर राज्य असम की निवासी हूँ, लेकिन आजकल राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर में रह रही हूँ। संगीत प्रेम मुझे बचपन से है और संगीत मेरा माता पिता की ही देन है। मैंने पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इन्फोएज इंडिया में कई वर्षों तक कंटेंट राइटर का कार्य बखूबी संभाला है। लॉकडाउन की वजह से घर में रहते हुए काफ़ी वक्त मिला और मुझे एक बार फिर से मौका मिला गीत संगीत की मधुर दुनिया में वापस लौटने का और अपना शौक पूरा करने का। सिंगिंग ऐप के माध्यम से मैंने 2 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की, रोज लाइव सिंगिंग भी कर रही हूँ और आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ कि रेडियो जयपुर के लाइव प्रोग्राम में शिरकत कर पा रही हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।
0: तो हुजूर आली, वेलकम है सीमा फुकन का इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान। और जो मन से कोई काम करता है वो 2 साल में रेडियो सिंगर बन सकता है, और ये सिद्ध कर दिया है हमारी आज की कलाकारा सीमा फुकन ने। तो चलते हैं सितारों की संगीत की दुनिया में। आपकी आवाज आपकी पहचान आज की कलाकार सीमा जोधपुर से।

संगीत का सफर है और हमारे आज के प्रोग्राम की हम सफर हैं सीमा फुकन, मूलतः असम निवासी और आजकल जोधपुर रहती हैं। आज हमारे साथ हैं इस लाइव शो में, जिसका नाम है आज के कलाकार, आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

की डली में लिपटी स्वीट सी वॉइस, कमाल की प्रस्तुति। सीमा, बधाई हो बहुत। आपकी आवाज़, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर आज के कलाकार प्रोग्राम। आज हमारे साथ हैं सीमा फूकन, जोधपुर राजस्थान से।

कितना सुख है बंधन में, और प्यार भरी बदली बन के बरस रही है जयपुर रेडियो के आंगन में। सीमा फूकन हमारे साथ हैं, आज आपकी आवाज़ आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

स्वर और संगीत के इस गांव में जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान में आज हमारे साथ सीमा फुकन जोधपुर राजस्थान से। आपकी आवाज आपकी पहचान बेहद खूबसूरत सुरीली आवाज। आपकी आवाज आपकी पहचान सीमा फुकन।

ऐसा समान न होता, कुछ भी यहाँ न होता मेरे हमराई, जो तुम न होते। और जयपुर रेडियो की आज की हमराई हैं अपनी शबनमी आवाज लिए हमारे संग सीमा फूकन जोधपुर राजस्थान से। आपकी आवाज़ आपकी पहचान, आइए सुनते हैं आपकी आवाज़ में अगला खूबसूरत नगमा, ये दिल और उनकी निगाहों के साए। आपकी आवाज़ आपकी पहचान, सीमा फूकन।

0: वाह, आपने सुना प्रोग्राम आज की कलाकार। हमारी आज की कलाकार रही सीमा फूकन। जयपुर रेडियो की ओर से बहुत शुभकामनाएं आपकी शबनमी मखमली गायकी के लिए। फिर मिलते हैं गीत संगीत की राहों में आते जाते। सीमा जी, बहुत सारे विशेष हमें प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे लिसनर्स के नाम हैं, हम किस तरह से उनको शामिल करें हमें मालूम नहीं और वो तरीका भी नहीं आता हमें। दिल्ली से अनुपमा खुराना, गंगानगर से केवल कृष्ण शर्मा, डी के वर्मा बिहार सोपोर से, कामना सिंह बिहार से, चित्रा वर्मा, सोनल पारेख, सुनील चट्टा, पूजा नाटकर्णी जर्मनी से, रुक्मणी लालवानी, विभूति पंचोली, मंदाकिनी शाह, तेज करण गण और अनीता दुगड़ नेपाल से, आपको अपनी ओर से जयपुर रेडियो की सिंगर सीमा फूकन को हैप्पी बर्थडे कह रही हैं। तो आप तक इन सब की शुभकामनाएं पहुंच गई होंगी, और भी शुभकामनाएं बराबर आ रही हैं, लेकिन समय अभाव की वजह से हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर सीमा फूकन को, जयपुर रेडियो की सुरीली सिंगर को, आज के दिन की, जन्मदिन की। धन्यवाद।
1: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
3: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
2: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
3: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
2: अरे बेटा, कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम?
3: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: अच्छा,
3: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
2: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
3: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
2: जयपुर रेडियो? पर बेटा, हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
3: चचा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
2: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
3: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो। तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
4: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
1: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
5: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आम सी जिंदगियों के चमकते सितारों से, जो कि अपनी चमक से हमारे कुछ लम्हों को खास बना जाते हैं। स्टूडियो में स्वागत करती हूँ आज के झिल मिलाते सितारे का, जो कि आए हैं सपनों की नगरी मुंबई से। एक ऐसा जादू है इनकी आवाज में जो हर सुनने वाले के दिल को छू लेता है। ये हैं मुश्ताक खान उर्फ मुशी। मुशी जी, बहुत स्वागत है आपका। सुना है कि जब आप अपना गिटार उठाकर इम्प्रॉम्प्टू गाते थे तो आसपास रहने वाले लोग अपना काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपको सुनते थे। तो हमारे सुनने वाले बेताब हैं ये जानने के लिए कि मुशी कौन है?
6: थैंक यू, नमस्कार। जयपुर रेडियो के जितने श्रोता हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सपना जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया
5: जी, और हमारी

0: मेरा जो म्यूजिक और प्रोफेशन दोनों अलग अलग है। मैं संगीत को भी प्रोफेशनली ही कर रहा हूँ और
1: जी
0: वैसे बाय प्रोफेशन मैं आर्किटेक्ट हूँ और
1: जी
0: वही में
1: जी
0: ही मेरा प्रैक्टिस है। फैमिली
1: जी
0: में आई हैव मेरी वाइफ है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है इसमें,
1: जी
0: और मेरे दो बेटे हैं वो भी आर्किटेक्चर में हैं।
1: क्या बात है, वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो यानी कि खान एंड खान सन्स की तैयारी है पूरी, आपका जो ये फैमिली बिजनेस बन गया है। तो आपके बेटे भी गाते हैं?
0: एक्चुअली संगीत हमारे घर से खानदान में है पर मेरे बच्चों में नहीं आया। हालांकि मैंने एक बार बड़े बेटे से सुना है गाते हुए तो मुझे आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, पर उन्होंने
1: अरे
0: इसको एज अ प्रोफेशन या हॉबी लिया नहीं।
1: वाह, अच्छा। जी तो चलिए इसी के साथ हम आपका पहला गीत लेते हैं
0: जी शुक्रिया।
1: जी।
0: क्या सुनना चाहेंगे आप मुझसे?
1: जो भी आप अपने दिल की आवाज सुनिए और जो आप सुनाना चाहते हैं वो सुनवाइए।
0: जरूर जरूर।

0: मुंशी संगीत में आपने शिक्षा ली है या यूं ही आपने रुचि के तौर पे अपना सीखा?
1: संगीत की मैंने शिक्षा ली है बाकायदा। मैंने एक्चुअली पहले मैं तबला सीखता था,
0: अरे वाह,
1: और जब एक्चुअली पेरेंट्स को जब पता लगा कि बच्चा गाने में रुचि रखता है, तो उन्होंने मुझे एक तबला, हमारे ट्रेनर थे गुरु जो मुझे सिखाने आते थे,
0: जी
1: और हारमोनियम भी मैं उन्हीं से सीखा हूँ।
0: अच्छा है। तो क्या उम्र रही होगी आपकी?
1: मैं होऊंगा अराउंड 8-10 साल, 8-9 साल का उस वक्त।
0: अरे वाह,
1: हाँ, और पेरेंट्स ने मुझे जब नोटिस किया तब मैं 5 साल का था, मैं डायरेक्ट स्टेज पे खड़ा होकर गाना गा रहा था।
0: क्या बात है।
1: तो एक हादसा है वो भी समझ लीजिए कि, और वहाँ से उन्हें पता लग गया कि बच्चे में रुचि है। तो
0: जी,
1: फिर जब मैं हम मुंबई आ गए, तो यहाँ हमारे ट्रेनर थे जो मुझे तबला सिखाते थे और हारमोनियम भी बताते थे।
0: अच्छा, आप शुरुआत से ही मुंबई में नहीं रह रहे, आप मुंबई से पहले कहीं और रहते थे?
1: हाँ, माई फादर ही इज़ अ रिटायर्ड कमांडर फ्रॉम नेवी, तो
0: क्या बात है।
1: पोस्टिंग्स होती रहती हैं यहाँ।
0: जी,
1: तो
0: बिल्कुल।
1: मेरी स्कूलिंग का टाइम जो था तब मैं मुंबई में था, फिर कॉलेज मैंने ग्वालियर में किया, फिर वापस मुंबई आ गया। ये मेरी
0: अच्छा, तो मुझे आप बहुत से लेजेंडरी सिंगर्स जैसे कि किशोर जी, रफी साहब, महेंद्र कपूर जी के गीतों को बखूबी निभाते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह के गीतों को आप अपने दिल के करीब

0: मानते हैं और क्यों?
1: बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। जब मैं 5 साल की उम्र से गा रहा था, तब किशोरदा बड़े पॉपुलर थे उस वक्त, और हम तो जो रिकॉर्डर होता था उससे सुन के गाना गाते थे या रेडियो को सुन के गाना गाते थे। तो तब किशोरदा के बहुत गाने, राजेश खन्ना, ये बहुत पॉपुलर हीरो होते थे उस वक्त। और
0: जी
1: जैसे हम बड़े हुए तो रफ़ी साहब आ गए, और जब मैं 10th में पहुंचा तो मैं गज़लों की तरफ काफ़ी झुक गया। फिर मैंने गुलाम अली साहब और मेहंदी हसन साहब, इनके गाने, गज़लें, और हुसैन ब्रदर्स, उनकी गज़लें गाना शुरू की, और फिर मैंने खुद की कुछ गज़लें भी कंपोज की।
0: क्या बात है, अच्छा।
1: और ऑल इंडिया रेडियो राजकोट में मैंने करीब 7-8 गाने, मेरे गजलें मेरी वहां पे रिकॉर्ड की।
0: अरे वाह, अरे वाह।
1: तो ये मेरा एक्चुअली स्कूल तक का सफर था। इसके बाद फिर मैंने वापस संगीत विद्यालय में एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, और फिर लगा कि नहीं, ये मेरा फील्ड नहीं है, तो मैं वापस आर्किटेक्चर में आ गया। और तब
0: अच्छा।
1: जाके मैंने दूसरे सिंगर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसमें काफी लोगों ने तारीफ की कि आप महेंद्र कपूर साहब बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि
0: जी
1: उनकी हाई रेंज काफी रहती है। तो
0: जी
1: फिर मेरा झुकाव उनकी तरफ भी हो गया। और सही बात कहूँ तो मैं उन सब गानों को गाने की कोशिश करता हूँ जो मेरे दिल के करीब लगते हैं। तो मैं सिंगर एज अ स्पेसिफाई करने की कोशिश नहीं करता हूँ, तो
0: जी
1: शायद वो वर्सिटैलिटी कहीं ना कहीं झलकने लग जाती है।

0: जी, और आपकी एक और खासियत है कि आप रेयर सॉन्ग्स गाकर बड़े खुश होते हैं, और आपके जो सह गायक या सह गायिकाएं हैं उनको आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं तो ये कहूंगी कि मेरी खुशनसीबी है कि एक स्म्यूल ऐप पर जब आप इनफॉर्मली गाते हैं, यूं ही अपने शौक के लिए गाते हैं, तो वहां पर मुझे भी मौका मिला है आपके साथ कभी कभी गाने का, और बहुत सीखा है मैंने आपसे। तो इन दिलचस्प बातों से विराम लेते हैं, और अब क्योंकि आप हमारे स्टूडियो में आए ही हुए हैं, तो अपनी मीठी सी आवाज में हमारे सुनने वालों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए।
1: जरूर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा तुम्हारा कि मुझे स्म्यूल ऐप में इतने अच्छे से नोटिस किया, और मेरे जो अतरंगी गाने हैं जो मैं, क्योंकि रेगुलर गाने सब गाते हैं, तो
0: जी
1: उनको आप लोगों ने अच्छे से सुना और गाया भी, तो
0: नहीं, आपसे
1: कोई
0: बहुत कुछ
1: ऐसा ही
0: सीखा है मुझे।
1: शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब क्या कहूँ, इसके तारीफ समझूँ या तो कोई एक ऐसा ही गाना आप लोगों को सुनाता हूँ।
0: जी

0: मुशी, आपके बारे में हमने सुना है कि आप बहुत से मेगा म्यूजिकल इवेंट्स करते हैं। आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से प्लेबैक सिंगिंग का भी ऑफर आया। आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी बहुत अच्छे से मन से वक्त निकालते हैं। पेशे से, जैसे आपने कहा, आप आर्किटेक्ट हैं, तो इन सब चीजों के साथ आप अपने संगीत का तालमेल कैसे बनाते हैं?
1: जब संगीत आपके सिर्फ प्रोफेशन ना हो, आपकी हॉबी भी बन जाए, आपका नशा
0: जी
1: हो, तो फिर वो वक्त तो निकल ही जाता है। क्योंकि प्रोफेशन के बिना, जो मेरा आर्किटेक्चर जो प्रोफेशन है उसके बिना तो दाल रोटी नहीं चलने वाली, तो मुझे उससे पूरा डेडिकेशन देना पड़ता है।
0: सही सही
1: फैमिली को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वरना वो सब नाराज हो जाएंगे। तो
0: जी
1: मेरा जो संगीत का वक्त है वो 12 बजे के बाद शुरू होता है, और
0: जी
1: मैं रिलीजियसली 2 घंटे बैठता हूँ और गाता हूँ। कभी कभी शेड्यूल पे गा देता हूँ, कभी अगर शेड्यूल नहीं गा रहा हूँ तो मैं वैसे ही गुनगुना रहा होता हूँ, पर मैं वो 12 से 2 बजे तक मैं अपना पूरा वक्त संगीत को देता हूँ।
0: तो आप नियम से रियाज भी करते हैं?
1: बिल्कुल, उसको आप यही समझ लीजिए कि
0: अच्छा, वो
1: क्योंकि
0: रियाज के
1: रियाज
0: तौर पर ही है।
1: के तौर पे मैं कुछ कुछ नए गाने प्रैक्टिस करता हूँ,
0: जी
1: पुराने गाने प्रैक्टिस करता हूँ, उनको सुनता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, वापस सुनता हूँ।
0: जी क्योंकि मैंने आपके मन्ना डे साहब के क्लासिकल सॉन्ग्स भी सुने हुए हैं। आपकी क्लासिकल सॉन्ग्स पर भी उतनी ही बखूबी से पकड़ है जितनी कि आप किशोर जी के नॉर्मल सॉन्ग्स, जो नॉन क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं, उनको गाते हैं। तो यहाँ पर हम आपका एक और गीत लेते हैं।
1: जरूर।

0: वह मुंशी, आपके एक एक गीत को सुनकर ऐसे लग रहा है कि हम सुनते ही जाएं। इतना आपने खूबसूरत माहौल बना दिया है सारे स्टूडियो में। तो मैं अब अगला सवाल मेरा ये है कि हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई खड़ा रहता है, जो उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है, उसे मॉरल सपोर्ट देता है। तो इस वक्त आप जहां पर अपने आप को पाते हैं, आप अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी मेहनत के अलावा और किसे देना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स का दूंगा, क्योंकि मेरे फादर मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
0: जी।
1: और माय मदर जो थी, उन्होंने मुझे कंपोजिशन कैसे करना है उसके लिए प्रेरित किया काफी।
0: अच्छा।
1: वो बोलती थी कि तुम हारमोनियम में इतना गाते हो और गजल गाते हो, तो क्यों ना अपनी खुद की एक गजल बनाओ और गाओ। तो वो पेपर में कुछ कटिंग्स निकाल के मुझे देती थी कि देखो, पहले पेपर में गजलें आती थी, लोग लिखते थे ऐसे, मैगजीन्स में भी आती थी, तो उसमें से गजल कट करके मुझे दे देती थी और बोलती थी इसका धुन बनाओ और इसको गा के देखो। और यही मेरी शुरुआत थी कि मैं ऑल इंडिया रेडियो राजकोट में मैंने अपनी खुद की गजलें वहां पे कंपोज करके, उस टाइम तो मेरी लिखी हुई नहीं थी। ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने फिर उसके बाद खुद लिखना भी शुरू किया।
0: अरे वाह, मतलब आप एक बहुत ही उम्दा गायक के साथ साथ एक उम्दा शायर भी हैं।
1: अपने दिल में जो है उसको कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो शौक मेरी मदर ने मेरे मुझे मतलब प्रेरित किया कि तुम करके देखो, कोशिश करो।
0: तो अपनी कोई लिखी हुई रचना हमें सुनाइए।
1: जरूर, एक मेरी जो मैं कभी सोच रहा था एक एल्बम बनाने के लिए, तो उसको मैंने ही लिखा है, कंपोज किया हुआ है, तो मैं वो सुनाता हूँ और मैं डेडिकेट भी करूंगा मेरी मदर को।
0: जी,
1: गा के सुनाओ या पढ़ के सुनाओ?
0: जी, गा के सुनाइए, नेकी और पूछ पूछ।

0: अरे वाह मुझे, आपने तो मंत्र मुग्ध कर दिया। यहाँ पे एक सैक्सोफोन की कमी महसूस कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: लास्ट ईयर मैंने अपनी मदर को खो दिया और उनकी याद में मैंने एक गाना कंपोज किया था, तो मैं चाहूँगा कि वो गाना मैं अपनी मदर को डेडिकेट करूँ आपके इस प्रोग्राम में। तो लीजिए सुनिए।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुशी। मैं चाहती हूँ कि जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कुछ मैसेज देकर जाइए, कुछ कहकर जाइए।
1: मैं सबसे यही कहूंगा कि संगीत जो है वो दिल से होना चाहिए।
0: जी
1: ये वैसा नहीं है कि हम कोई इंजीनियरिंग सीख के और फिर करते हैं। सीखना तो जरूरी है, पर जब आप दिल से उसे गाते हैं तो वो कनेक्ट करता है दूसरे के दिल से। तो
0: जी
1: कोशिश करें कि आवाज़ कैसी भी हो आपकी खुद की होनी चाहिए,
0: जी
1: और बस दिल से उसे गाइए। और संगीत दो चीज़ों पे बहुत अच्छी तरह से आधारित है, जो है सुर और तार। तो
0: जी
1: ना बेताला हो और ना बेसुर हो, और बस दिल से गाइए।
0: जी तो जैसे कि आप एक प्रोफेशनल सिंगर हैं मुशी, तो आजकल जो कैरियोके सिंगिंग इतनी पॉपुलर हो रही है और जगह जगह हम देखते हैं कि छोटे छोटे इवेंट्स भी होते रहते हैं, बहुत तरह के अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग इकट्ठा होते हैं और कैरियोके पर गाना गाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: हाँ, इनफैक्ट मैं तो सोचता हूँ कि संगीत अब घर घर में चला गया है।
0: जी
1: कराओके आने से जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो गाना गा सकते हैं,
0: राइट
1: या सिंगिंग से कोसों दूर थे, सिर्फ सुनते थे, वो कम से कम संगीत के साथ जुड़ गए। हाँ, पर उनको इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि संगीत जो है सुर और ताल पे आधारित है।
0: जी
1: जैसे समय एक ताल उसकी चलती है, तो अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो समय तो चलता रहेगा। तो कराओके भी एक समय की तरह चलता रहता है। अगर आपने
0: बिल्कुल
1: बीच
0: सही,
1: में छोड़ दिया तो वो आगे ताल चली जाएगी। तो
0: बिल्कुल
1: बस
0: सही
1: सीख
0: कहा
1: के करिए, जो भी करिए अच्छा करिए।
0: जी, बहुत खूब। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात मुंशी जी के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।
1: थैंक यू सपना जी, मुझे डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो में बुलाने के लिए आपके स्टूडियो में, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और आपकी टीम का।
0: शुक्रिया। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो का संगीत से जुड़े हुए सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो का लोकप्रिय जगमगाता सा प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आम सी जिंदगियों के चमकते सितारों से, जो अपनी चमक से ही हमारे कुछ लम्हों को खास बना जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में आ रही हैं पंजाब के मैनचेस्टर लुधियाना शहर से एक बहुत खूबसूरत वहां की जानी मानी टैलेंटेड गायिका दीपिका चावला जी। ये सीधा ट्रेन पकड़कर आ रही हैं हमारी कमर्शियल कैपिटल लुधियाना से जयपुर रेडियो के स्टूडियो में। दीपिका जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे सुनने वाले को सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी पहचान क्या है, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं?
2: नमस्ते सपना, सारे सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज स्टूडियो में आकर,
0: जी
2: बहुत मजा आने वाला है यहाँ पर सारी बातचीत करके।
0: जी
2: सपना, मेरा मायका जो है वो पानीपत का है, जो कि हरियाणा में है, और शादी के बाद से ही मैं लुधियाना में अपने परिवार के साथ रह रही हूँ। और मेरे परिवार में मेरे पति और मेरे प्यारे प्यारे 3 बच्चे हैं, और उनका ध्यान रखती हूँ मैं सारा दिन।
0: जी, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए।
2: मैं गृहिणी हूँ,
0: जी
2: यही
0: जी जी
2: मेरा संसार है, बच्चे और
0: जी
2: पति।
0: दीपिका जी, गृहिणी होना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम बाहर का काम तो बखूबी खैर संभालती ही हैं, लेकिन घर में आकर अपने परिवार की देखरेख करना, उनको अच्छा खाना बनाकर देना, उनकी कहानियां सुनना, सारे घर का ख्याल रखना, ये सबके बस की बात नहीं होती अगर मैं कहूँ तो।
2: हाँ जी, बिल्कुल
0: तो दीपिका जी, जैसे कि सभी जानते हैं कि हरियाणा जो है वो पंजाब से ही बना हुआ है, और आप दोनों जगह रह चुकी हैं, पानीपत और लुधियाना, है ना? तो दोनों शहरों के अगर हम कंपेयर करें तो किसके प्रति आपका ज्यादा झुकाव है और क्यों?
2: सपना, ज्यादा झुकाव तो मेरा लुधियाना में ही है, क्योंकि शादी को काफी साल हो गए हैं
0: जी जी
2: और लुधियाना अपने होजरी इंडस्ट्री, साइकिल पार्ट्स इंडस्ट्री और खान पान के लिए बहुत मशहूर है।
0: बिल्कुल,
2: यहाँ के लोग जिंदगी को बड़ी अच्छी तरह से जीते हैं
0: जी,
2: खाते हैं, पीते हैं, शॉपिंग करते हैं और मस्ती करते हैं
0: और स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं
2: और म्यूजिक के तरफ भी सबका बहुत झुकाव रहता है
0: जी।
2: और लुधियाना में जैसे और पंजाब का कमर्शियल कैपिटल भी है
0: जी,
2: यहाँ पर बहुत पुराने किले भी बने हुए हैं ना, और किलों के खंडर अभी भी हैं, वहाँ पर शूटिंग के लिए कई डायरेक्टर भी आते हैं, और जैसे रंग दे बसंती मूवी में आमिर खान अपनी टीम के साथ आए थे
0: जी जी जी।
2: तो
0: ये तो दीपिका आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर जब हम अपने शहरों की बात करते हैं तो लुधियाना सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन के लिए ही जाना जाता है, बल्कि मजाक बना हुआ है कि कोई सफेद रंग की कार में अगर बैठकर लुधियाना आएगा तो शाम तक उसकी कार काली होकर ही पहुंचेगी। तो बड़ा अच्छा लगा आपने यहाँ का ये बताया कि यहाँ के जो खंडर हैं किलों के पुराने, वहां पर बॉलीवुड टीम से शूटिंग भी होती है।
2: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
0: तो फटाफट हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि जितनी खूबसूरत और टैलेंटेड आप हैं, तो क्या कभी किसी बॉलीवुड टीम से आपको कोई चांस नहीं मिला?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सपना ऐसी कोई बात नहीं
0: जी
2: है।
0: मुझे लगता है वो लक्स सोप की जो एडवर्टाइजमेंट आती थी उसमें तो पक्का ही आप कर सकती थी, गा भी खुद सकती थी।
2: चलिए, खैर,
0: ये दिलचस्प बातों का सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ पर हम आपका पहला गीत लेते हैं।
2: हाँ जी, ओके।

0: वाह दीपिका, कितना खूबसूरत गीत आपने हमें सुनाया। बल्कि मैं ये कहूंगी कि आपकी खूबसूरत आवाज और खूबसूरत गीत से हमारे स्टूडियो का सारा माहौल महक उठा है। तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि संगीत में आपकी रुचि क्या शुरू से ही रही है या फिर इसके साथ आपके और भी कोई शौक रहे हैं?
1: हाँ सपना, वैसे तो मेरे पास वक्त नहीं होता ज्यादा, पर संगीत के लिए मैं जरूर वक्त निकालती हूँ
0: जी,
1: क्योंकि संगीत ही मेरे रूह की खुराक है और संगीत ही मेरा प्यार है।
0: वाह वाह,
1: जब मैं छोटी थी तब से संगीत की शिक्षा ले रही हूँ।
0: अच्छा।
1: और कॉलेज में भी म्यूजिक वोकल लिया, फिर शादी के बाद जैसे घर की जिम्मेदारियां हो जाती हैं तो इसमें ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता, संगीत में नहीं मिल पाया
0: जी।
1: तो फिर बच्चे अब अपने सब लाइफ में सेटल हो गए तो हस्बैंड ने बहुत एनकरेज किया कि नहीं अब संगीत में होना चाहिए,
0: बहुत खूब
1: आगे जाने के लिए उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया। तो हालांकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता,
0: अच्छा,
1: तो फिर भी मेरे लिए टाइम निकाल लेते हैं।
0: जी जी, बहुत खूब,
1: मेरे शौक पूरा करने के लिए हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं।
0: अच्छा, और तो इसके अलावा भी आपके शौक है?
1: हाँ जी, शौक कह सकते हैं, शौक है डांसिंग का, कुकिंग का।
0: वाह वाह, क्या बात है।
1: मेरी छोटी बेटी वो बहुत अच्छी कोरियोग्राफर है, जुम्बा इंस्ट्रक्टर है।
0: अच्छा,
1: जिन मान्या के नाम से।
0: जी जी, लुधियाना में उनका काफी नाम है। जी जी,
1: उसके साथ उसका कभी कभी डांस करती हूँ।
0: अरे वाह,
1: तो अपना शौक पूरा करती हूँ वो भी डांसिंग का भी।
0: क्या बात है दीपिका, बहुत अच्छी बात आपने ये बताई। बल्कि हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि जिस तरह के आपको जीवन साथी मिले हैं, हरीश जी जो आपका हर कदम के साथ देते हैं, इस तरह का साथी हर किसी को मिले, इस तरह का परिवार प्यारा सा।
1: बहुत शुक्रगुजार हूँ हरीश जी की, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है।
0: जी
1: हाँ जी
0: जी, हरीश जी फिर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दीपिका जी यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज देना चाहती हैं कि रब ने बना दी जोड़ी और इस जोड़ी को कभी नजर ना लगे। तो चलिए दीपिका, आपका हम अगला गाना लेते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी, जी।

0: दीपिका, जैसे आपने शुरू में हमें बताया कि आप एक गृहिणी हैं, और ये तो खैर एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो गृहिणी होती है जितने मेहनत और समर्पण और प्यार से वो अपने परिवार के लिए काम करती है वह अनमोल होता है। हर हर स्टेप पर, हर कदम पर उसकी ममता, उसकी सेवा और उसके प्रेम से जिंदगी चलती है। तो आपका आधे से ज्यादा वक्त तो अपने घर की जिम्मेदारियों में ही निकल जाता होगा, तो इतनी जिम्मेदारियों के साथ आप अपने संगीत का तालमेल कैसे बनाती हैं?
1: हाँ सपना, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि मेरा परिवार ही मेरा संसार है
0: जी।
1: और मैं और हरीश जी बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें दामाद के रूप में बेटा मिला है।
0: वाह क्या बात है।
1: उनको भी संगीत में बहुत ही रुचि है और वो बहुत ही अच्छा गाते हैं। और जैसे आपने संगीत के बारे में पूछा कि तालमेल कैसे बना
0: जी,
1: तो वो भगवान की दया से खुद ही बन जाता है, क्योंकि जब हम लोग साथ इकट्ठे होते हैं तो संगीत की महफिल लगती ही है
0: जी,
1: और हम
0: जी,
1: लोग
0: जी,
1: बहुत खूब मजा करते हैं
0: जी जी तो जी। एक बहुत ही अच्छे गाने के बोल अच्छा। दिमाग में आ रहे हैं, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल
0: बहुत खूब नजर ना लगे जी आपके परिवार को, बहुत ही हंसता गाता खिलखिलाता और म्यूजिकल सा परिवार है आपका। और हमने तो ये भी सुना है कि आप जैसे ही वीकेंड आते हैं आप फटाफट हिल स्टेशन की तरफ रुक कर लेते हैं ताकि और स्टेज परफॉर्मेंसेस आप कर सके। तो यही हमारी तो इच्छा रहेगी कि कभी ना कभी हमारे श्रोताओं को आपकी लाइव परफॉर्मेंस भी सुनने को मिले। इसी के साथ हम आपका अगला गीत लेते हैं
1: जी।

0: दीपिका, ये बातों के सिलसिले तो खैर कभी खत्म नहीं हो सकते। आप जो इतने प्यारे प्यारे गीत लेकर आई हैं और इतने सारे किस्सों की जो पिटारी लेकर आई हैं, मन कर रहा है कि हम ये बातचीत करते ही रहें, पर वक्त हमें कह रहा है कि आगे की गुफ्तगू किसी और एपिसोड में। तो डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।
1: सपना, मैं आपकी और डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के स्टूडियो की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत मजा आया आपसे सबसे बात करके।
0: जी,
1: और
0: हमें भी
1: आपकी
0: बहुत
1: अगर
0: मजा आया।
1: इजाजत, हाँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगी।
0: अरे वाह, इरशाद।
1: मेरे बच्चों, तुम ही मेरी धड़कन, तुम ही तुमसे ही है ये जीवन मेरा चंदन। तुम्हारे बिना मैं अधूरी कहानी, तुमसे ही सजी है मेरी ये जिंदगानी।
0: वाह वाह,
1: तुमसे है घर, तुमसे है संसार, तुमसे ही है मेरे जीवन का सार। तुम ही मेरी दुनिया, मेरी सबसे बड़ी सौगात।
0: अरे वाह दीपिका जी, ये तो आज आपकी एक और खूबी हमें पता चल गई कि आप तो बहुत अच्छी शायरा भी हैं। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए भी दो शब्द कहिए।
1: हाँ जी सपना, अंत में मैं जाते जाते श्रोताओं को अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहूंगी
0: जी,
1: कि आप कोई भी रिश्ता किसी से भी बनाते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो या मोहब्बत का, बहन का हो या भाई का,
0: जी
1: उस रिश्ते के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। रिश्ते बनाना बहुत आसान होता है, पर निभाना भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है।
0: जी
1: और
0: जी
1: सबसे प्यार से रहिए। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: बहुत खूब दीपिका,
1: बहुत शुक्रिया।
0: बहुत खूब।

तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात लुधियाना की दीपिका चावला जी के साथ। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और जल्द ही आपसे दोबारा मिलूंगी एक नए सितारा के साथ, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो के साथ। यूं ही हंसते मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिए। रब राखा।

0: नमस्कार जयपुर रेडियो के लिसनर्स, आप सुन रहे हैं करो बात हर्षी और योगी के साथ और ये है हमारा एपिसोड नंबर 25 दैट इज सिल्वर जुबली एपिसोड ऑफ करो बात हर्षी और योगी के साथ ओनली ऑन जयपुर रेडियो। आपकी आवाज आपकी पहचान और मैं हूँ आपकी दोस्त योगी
1: और मैं हूँ हर्षी और आज का थीम है फुल ऑन हटके। बजेगा वही बस तड़का नया। मतलब दोस्तों हम आज काफी दिनों के बाद वापस आए हैं तो वापस आने के बाद कुछ एक धमाका तो होना ही चाहिए और वही धमाका हमारे शो में करो बात हर्षी और योगी के साथ हम करने वाले हैं। मतलब वही सुर जो आपके कान पहले भी सुन चुके हैं लेकिन इस बार नया फ्लेवर और नई ट्विस्ट के साथ हम आज बात करेंगे कॉपीड सॉन्ग्स फ्रॉम हॉलीवुड जो बॉलीवुड में आए अपने तड़के के साथ।
0: बिल्कुल, आज हम जानेंगे कैसे एक गाना जो हॉलीवुड में हिट था बॉलीवुड ने अपने मसाले लिरिक्स और बीट्स के साथ एक नया ब्लॉकबस्टर बना दिया। और इसी क्रिएटिविटी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान जिनका काम ही है फैमिलियर म्यूजिक को एक नई रोशनी में पेश करना।
1: जी हाँ, हमारे गेस्ट हैं आदित्य शिव प्रसाद डोंगर साने और प्राजक्ति आदित्य डोंगर साने। दे आर द फाउंडर्स एंड प्रोप्राइटर ऑफ सुर तेज छेड़िता रिस्पेक्टिवली, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो शुरू हुआ था एक छोटे से सपने के साथ सुंदर मैत्री के नाम से, लेकिन आज दुनिया भर में अपना म्यूजिकल मैजिक ये फैला रहा है।
0: जी हाँ दोस्तों, सुर तेज छेड़िता मतलब एसटीसी। एसटीसी ने लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, कराओके कॉम्पिटिशन, ट्रिब्यूट शोज, थीम्ड इवेंट्स और चैरिटी कॉन्सर्ट्स का एक पूरा यूनिवर्स बनाया है। ये सिर्फ गाने नहीं बजाते बल्कि एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, ब्लेंडिंग लाइव म्यूजिक विथ मॉडर्न टेक। और इनका ग्लोबल रिकॉग्निशन इतना है कि स्मॉल आईएनसी ने इन्हें वेरीफाइड बैज दिया। ये पहली मराठी कम्युनिटी है जिनको ये ऑनर मिला। तो दोस्तों तालियों से स्वागत कीजिए आदित्य डोंगर सने और प्राजक्ति डोंगर सने फ्रॉम सुर तेज छेड़िता।
2: नमस्कार, बहुत खुशी है यहाँ आके
3: और आपके लिसनर्स के साथ अपनी जर्नी शेयर करने का मौका मिल रहा है।
1: 52,000 से ज्यादा फॉलोअर्स ऑन स्म्यूल एंड 75,000 से ज्यादा फॉलोअर्स अक्रॉस सोशल मीडिया के साथ एसटीसी एक म्यूजिकल फैमिली बन चुका है जो क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिटी स्पिरिट पे चलता है। और आदित्य जी, प्राजक्ति जी, आज का थीम तो लगता है बिल्कुल आप दोनों के काम से ही मिलता जुलता है।
4: जी बिल्कुल, हम बिलीव करते हैं कि सुर का सोल प्रिजर्व रहना चाहिए, चाहे उसका प्रेजेंटेशन कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, चाहे

मूवी मर्डर याद है ना, जिसमें इमरान हाशमी और मलिका शेरावत थे। हाँ हाँ वही वही। तो ये मूवी मर्डर का है, विच हैज बीन कॉपीड फ्रॉम द इजिप्शियन सॉन्ग तमल्ली माक। आइए सुनते हैं ये धमाकेदार सॉन्ग और करते हैं शो की शुरुआत।

0: Welcome to the world of Dicept range of disinfectants and hygiene products. Hamare yahan pe IPA based hand rub disinfectants and alcohol based hand sanitizers banaye jaate hain. Natural hand wash, mosquito repellents, air fresheners, shampoos, shower gels, hair conditioners and ayurvedic herbal soap bhi banaye jaate hain. Kehte hain na, ayurved se judiye, प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति के साथ रहिए और इसी तरह से डाइसेप्ट के साथ भी बने रहिए। हमारे शैम्पूज में नीम, तुलसी, हल्दी, आंवला, शिकाकाई के गुण हैं और हेयर कंडीशनर्स में काले अंगूर के रस भी हैं। सो एंजॉय आवर प्रोडक्ट्स।
1: बॉलीवुड गॉसिप कॉर्नर्स द टॉक ऑफ द नाइट।
0: वेलकम बैक दोस्तों, और आप सुन रहे हैं एपिसोड नंबर 25। जी हाँ, हमारा सिल्वर चुपली एपिसोड विद आवर एस्टीम्ड गेस्ट। बजेगा वही बस तड़का नया यहाँ ऑन करबात हाशी और योगी के साथ, ओनली ऑन ओनली जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। और अब वक्त है हमारे धमाकेदार बॉलीवुड गॉसिप कॉर्नर का।
2: लेकिन दोस्तों, आज गॉसिप थोड़ा स्पेशल है क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन बॉलीवुड गानों की जो हॉलीवुड या वर्ल्ड म्यूजिक से इंस्पायर हुए और बन गए प्योर देसी तड़का के ब्लॉकबस्टर्स।
0: म्यूजिक इंडस्ट्री के कॉरिडोर्स में तो ये एक पुरानी कहानी है। कभी 70s में डिस्को बीट्स इंपोर्ट हुए, कभी 2000s में पॉप बैलाड्स, और अभी अभी एक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर का स्टेटमेंट आया है, इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं लेकिन उसमें अपना रंग भरना जरूरी है।
2: बिल्कुल, और गॉसिप ये भी है कि एक अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म का टाइटल ट्रैक एक फेमस 80s हॉलीवुड पॉप हिट से इंस्पायर्ड है। म्यूजिक डायरेक्टर ने ओपनली कहा, मैं चाहता था ऑडियंस को फैमिलियर फील के साथ नया सरप्राइज भी मिले। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: ये पहले भी हुआ है, जैसे कहो ना कहो फ्रॉम मर्डर, जो अमर दयाब के एरेबिक हिट तमन्ना मैं से इंस्पायर्ड था। लोगों ने पहचाना भी, लेकिन गाना इतना पसंद आया सबको कि चार्ट बस्टर बन गया।
2: और सुनने में आया है एक टॉप सिंगर ने तो अपने इंस्टा लाइव पे एक मैशअप गाया, पहले एक हॉलीवुड ट्रैक फिर उसका बॉलीवुड रीमेक, और फैंस ने कमेंट किया, पता है क्या, जो आज का थीम है, बजेगा वही बस तड़का नया।
0: ट्रेंड इवॉल्व हो गया है, अब सिर्फ लिरिक्स चेंज नहीं होते, बीट ड्रॉप भी होता है, रैप वर्स और EDM लेयर्स के साथ गाने को पूरा एक क्लब हिट बना देते हैं दोस्तों।
2: अब बात चली ही है तो बहुत दूर तक जाएगी तो चलो एक गोल्डन एग्जांपल से इस सेगमेंट को एंड करते हैं। एक ऐसा गाना जो बॉलीवुड हिस्ट्री का हिस्सा है, इनफैक्ट बॉलीवुड हिस्ट्री का एक गोल्डन हिस्सा है, लेकिन जिसका ओरिजिन काफी इंटरेस्टिंग है और शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं।
0: दोस्तों याद है शोले का वो एवरग्रीन सॉन्ग? जी हाँ, आदि बर्मन का म्यूजिक, हेलन जी का डांस और एनर्जी फुल ऑन। लेकिन थोड़ा ट्रिविया, एक गाना इंस्पायर था डेमिस रुजोस के इंग्लिश ट्रैक से यू लव मी से, बस वही मेलोडी ली, देसी बीट्स डाले और बन गया बॉलीवुड का क्लासिक।
2: तो दोस्तों चलिए सुनते हैं एक सुपरहिट मूवी का सुपरहिट आइटम नंबर जिसने हेलन को एक नई पहचान दी थी। सुनते हैं वही टाइमलेस नंबर, बजेगा वही बस तड़का नया।

0: जिंदगी स्ट्रेस फ्री कैसे हो, मुस्कुराने का सीक्रेट क्या है और योगी से हाशी का क्या कनेक्शन है,
1: आपके सवालों का जवाब लेकर आ रहा है जयपुर रेडियो का सबसे धमाकेदार शो करो बात हाशी और योगी के साथ।
2: हर हफ्ते मिलेगा आपको मोटिवेशन, हंसी और जिंदगी की नई सोच। तो स्ट्रेस को करो बाय बाय और हंसी को लेके आओ अपनी जिंदगी में।
0: ट्यून इन टू जयपुर रेडियो हर शाम 7 बजे, सुनना न भूलना करो बात हाशी और योगी के

0: जाइएगा नहीं दोस्तों, बातों का सिलसिला यही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, ऑन करो बात हाशी और योगी के साथ, ओनली ऑन जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। तो दोस्तों अब आ गया है वो पल जो हमारे शो का हार्ट बीट होता है, आपको तो पता ही है, हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टार गेस्ट स्पेशल। और आज हमारे साथ हैं दो ऐसे लोग जिनका म्यूजिक के लिए जुनून सिर्फ गाने तक सीमित नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया बनाने तक है, आदित्य और प्राजक्ति डुंगरसने, फाउंडर्स एंड प्रोप्राइटर ऑफ सूर्य तेज छेड़ता इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट।
1: जी हाँ, एसटीसी एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक इवेंट कंपनी नहीं बल्कि एक म्यूजिकल मूवमेंट बन चुका है। कराओके लवर्स से लेके प्रोफेशनल परफॉर्मर्स तक सबके लिए एक प्लेटफॉर्म है ये। आज हम उनकी कहानी, उनके सफर और उनके फ्यूचर ड्रीम्स जानेंगे।
2: नमस्कार, बहुत खुशी है आज जयपुर रेडियो के साथ जुड़ के
3: और आपके लिसनर्स के साथ अपनी जर्नी शेयर करने का जो मौका भी मिल रहा है।
0: तो आदित्य जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। सुंदर मैत्री से सूर्य तेज छेड़ता का सफर कैसे हुआ और ये नाम कैसे डिसाइड हुआ, बताइए हमारे लिसनर्स को।
3: वेल, इनिशियली एक ग्रुप फॉर्म किया था तो वी वांटेड पीपल टू यू नो जॉइन आवर ग्रुप एज अ सिंगर्स। तो उस टाइम ग्रुप को नाम क्या देना है, तो मराठी ग्रुप था, सब मराठी थे, हर एक दूसरे को कोई ज्यादा पहचानता नहीं था। सो हम लोगों ने जस्ट एक रैंडमली ग्रुप का नाम डिसाइड किया सुंदर मैत्री। बट आफ्टर अ मंथ व्हेन वी गॉट फ्यू रियली गुड सिंगर्स ऑन स्म्यूल, तो सुंदर मैत्री और म्यूजिक ये कुछ मैच नहीं हो रहा था। तो जैसे कि मैंने कहा कि दिस वॉज अ मराठी कम्युनिटी का एक ग्रुप, तो माई फर्स्ट थॉट प्रोसेस वॉज कि ग्रुप का नाम मराठी होना चाहिए एंड दैट शुड ऑल्सो बी वेरी कॉमन और यूनिक नेम, कॉमन भी है और यूनिक भी है। तो वी हैड अ कॉम्पिटिशन इन आवर ग्रुप कि हु विल गिव द बेस्ट नेम। तो बहुत सारे नाम सजेस्ट किए थे, सुरांशी बेट, स्वरांश, सूर्ययुग, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम आए थे। बट हमारे ही एक एक्स एडमिन थे जिनका कुछ सालों पहले देहांत हो गया, अनिकेत जाधव। तो अनिकेत ने सूर तेज छेड़ता ये नाम सजेस्ट किया। सूर तेज छेड़ता ये गाना मेरा खुद का पसंदीदा गाना था। सेकेंडली रमेश देव जी जो मराठी हैंडसम एक्टर थे वो मेरे नाना जी के क्लासमेट थे एंड आई ऑलवेज यूज टू एडमायर हिम इन माई चाइल्डहुड डेज। तो सोचा कि इससे अच्छा और कुछ नाम हो ही नहीं सकता। सो फ्रॉम वी इवॉल्व फ्रॉम सुंदर मैत्री टू सूर तेज छेड़ता।
1: राजीव जी, आप इस जर्नी में कब और कैसे जुड़े और एसटीसी में आपका रोल क्या है?
2: अच्छा, अगर मेरी जॉइनिंग आप पूछेंगे तो बताना चाहूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य स्म्यूल पे ज्वाइन हुए थे एज अ सिंगर और तब मैं किचन में गाने गाती बेसिकली। तो यही हॉबी पकड़ के हमारे मियां साहब जो है उन्होंने सजेस्ट किया कि आप किचन छोड़ के आप स्म्यूल के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तो एज अ मेंबर मैंने सूर तेज छेड़ता ज्वाइन किया था 2018 में। फिर जब आदित्य और उनके एडमिन इन एक्टिविटीज या कुछ कॉन्टेस्ट के रिगार्डिंग डिस्कस करते थे तो जस्ट बैकएंड में मैं उनको सपोर्ट करती थी। फिर धीरे धीरे मुझे कुछ आइडियाज आने लगे, कुछ एक्टिविटीज सूझने लगी तो मैंने एडमिन्स के साथ शेयर किया। एडमिन्स टीम को भी अच्छे लगे वो एक्टिविटीज आइडियाज, फिर उन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको लॉन्च किया और धीरे धीरे से मैं एसटीसी मेंबर्स से एसटीसी की एडमिन बन गई। फिर हमने मीट्स के लिए प्लानिंग्स किए, वर्चुअल एक्टिविटीज को हमने रेगुलर एक्टिविटीज में कन्वर्ट करने के ट्राई किए और ऐसे ही सूरतेज छेड़ता को हमने स्म्यूल से लेके रियल प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए और अभी हम इसी एक्टिविटीज को आगे बढ़ा रहे हैं। सो एज अ फाउंडर सूरतेज छेड़ता आदित्य हैंडल कर रहे थे बट कुछ जॉब के एक्टिविटीज थे, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे तो वो वहां पे फुल टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए इसकी प्रोपराइटरशिप मेरे पास आ गई और अभी सूरतेज छेड़ता एज अ प्रोपराइटर मैं हैंडल कर रही हूँ और ये हमारी जर्नी अभी के दिनों में बहुत अच्छे से रन हो रही है। आई होप कि सभी का आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे ही जुड़ा रहेगा और इसी तरीके से हम आगे और ग्रो करते रहेंगे।
0: अच्छा आदित्य, एसटीसी के बारे में मैंने सुना है कि आप सिर्फ लाइव म्यूजिक इवेंट्स ही नहीं बल्कि चैरिटी कॉन्सर्ट्स, ट्रिब्यूट शोज और स्मॉल बेस्ड ऑनलाइन कॉम्पिटिशन भी करते हो, क्या ये आपके लिए चैलेंज होता है कि ऑडियंस को हर बार कुछ नया मिले?
3: वेल योगिता, अभी 17 साल कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर चुका हूँ तो इनोवेशन इज ऑलवेज वेलकम, ये हमेशा सुनते आया हूँ, इम्प्रोवाइज करते आया हूँ। वैसे ही म्यूजिक के बारे में है, आप जितना नया लोगों को दोगे, दैट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। सो सूरते शरीता में आप कॉन्टेस्ट के बारे में अगर आप बोलोगे, तो कोरोना के टाइम पे जब इवेंट्स नहीं हो रहे थे, जब एवरीथिंग वाज अंडर लॉकडाउन, तो हम लोगों ने बच्चों के लिए कॉन्टेस्ट की थी, बिकॉज बच्चे सबसे ज्यादा बोर हो रहे थे, तो उनके लिए हम लोगों ने एसटीसी लिटिल आइडल्स सीजन 1 रखा था। फिर उसके बाद बच्चों के साथ बड़े भी धीरे धीरे बोर होने लगे थे, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम कितना करेंगे, बीवी भी बर्तन फेंक फेंक के बर्तन टूट गए थे, हस्बैंड के भी लैपटॉप पटक पटक के लैपटॉप खराब हो गए थे। तो ऑन अ वेरी कैजुअल नोट था वो। तो हमने सोचा था कि क्यों ना हम एक ऐसी कॉन्टेस्ट लेके आए जो कभी रन हुई ना हो। सो दैट टाइम हम लोगों ने एक बहुत ही यूनिक कॉन्टेस्ट लॉन्च की थी, दैट वाज एसटीसी जोड़ी कमाल की, जहां पे आपको पार्टिसिपेट करना था विद अ पेयर, ड्यूएट कॉन्टेस्ट थी वो। और हर एक लेवल पे एक पड़ाव थे, जो पड़ाव पार करते करते कॉन्टेस्ट को फाइनल राउंड में पहुंचना था। तो जिसमें 108 पार्टिसिपेंट्स ने ऑडिशंस दिए थे और फिनाले में आते आते सिर्फ 13 लोग बचे थे। तो उसको और चैलेंजिंग बनाने के लिए हम लोगों ने थीम सॉन्ग भी बनाया था, जो हमने पार्टिसिपेंट से भी गवाया था, उसके भी हमने अलग अलग सेगमेंट्स रखे थे। या फिर अगर बात करें तो हमारी स्म्यूल मीट्स जो हम हर साल करते हैं, जिसका नाम हमने थोड़ा हटके दिया है, विच इज सिंग यूनाइट रिसाइटल, तो नाम भी थोड़ा कैची होता है। और उसमें भी हम थीम्स अलग अलग रखते हैं, लोगों को बेशक पार्टनर चॉइस करने का हम मौका देते हैं, बट उसमें भी हम थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल देते हैं। कभी मेल सिंगर ज्यादा होते हैं तो मेल ड्यूएट्स, कभी कुछ थीम उसमें ऐड कर देते हैं, कभी कुछ जॉनर ऐड कर देते हैं। ऐसी चीज में हम थोड़ा सा बिलीव करते हैं, बिकॉज कैसा है ना कि रोज अगर मैं गुलाब जाम खाऊं तो एक दिन मुझे भी उबासी आएगी गुलाब जामुन देख के। तो समटाइम्स काला जामुन होना जरूरी है, कभी कभी मावा गुलाब जामुन होना जरूरी है, कभी कभी ड्राई फ्रूट गुलाब जामुन होना जरूरी है। तो ये मेरी थॉट प्रोसेस है, एंड आई एम वेरी लकी इनफ कि सूरते शरीता की जो एडमिन टीम और कोऑर्डिनेटर्स टीम है, उनका भी यही सोचना होता है। तो हर टाइम कोई ना कोई एडमिन में से आइडिया लेके आता है, एंड वो हम हमारे पिछले एक्सपीरियंस से उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी मुंबई में कैरोके शो किया था, जिसमें हम लोगों ने 1951 टू लेके 2025 तक के इरा बेस्ड सॉन्ग्स किए थे। तो हर एक एपिसोड जो था वो 10 साल के इरास का था, वैसे हम लोगों ने 7 एपिसोड्स किए थे, जिसमें सिंगर्स जो पैशनेट होते हैं, जिनको सच में गाना गाने की इच्छा होती है, दिल से इच्छा होती है, वो सिर्फ गाते नहीं है बट वो उसमें स्टडी करते हैं। दे मेक देयर नॉलेज स्ट्रॉन्गर इन फील्ड ऑफ म्यूजिक एंड सिंगिंग, और उसके साथ वो परफॉर्म भी करते हैं। तो एक जगह पे उनका लर्निंग भी है और एक जगह पे उनका परफॉर्मेंस भी है। तो आई ऑलवेज कॉल्ड सूरते शरीता इज अ प्लेटफॉर्म, इज अ म्यूजिकल गुरुकुल प्लेटफॉर्म फॉर एन एस्पिरेंट सिंगर्स एंड अ रिफ्रेशर फॉर द पैशनेट्स।
1: और आप दोनों के लिए सबसे यादगार इवेंट कौन सा रहा?
2: सबसे यादगार इवेंट अगर मैं कहूँ तो लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर के दरमियान हमने मोहम्मद रफी जी का लाइव म्यूजिकल शो रखा था, जहाँ पे हमारे साथ तकरीबन 17 से 20 सिंगर जुड़े थे और लाइव म्यूजिक के साथ उन्होंने गाने परफॉर्म किए थे ऑन स्टेज। ये हमारा एक्चुअली फर्स्ट लाइव शो था और सच कहूँ तो बहुत उम्दा एक्सपीरियंस रहा इस शो का। फर्स्ट शो में ही हमें इतना अच्छा रिस्पांस आया, सिंगर्स भी बहुत खुश थे, म्यूजिशियंस ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, और एंकरिंग पार्ट जिन्होंने हैंडल किया था उन्होंने भी मोहम्मद रफी जी से रिलेटेड जितनी सारी बातें वो हमारे साथ शेयर कर पाते उतनी सारी बातें उन्होंने हमारे साथ थ्रू द एंकरिंग शेयर की थी। और वो इवेंट हमारे लिए, हम दोनों के लिए कहूंगी तो बेस्ट इवेंट था लास्ट ईयर का।
0: क्या बात है, दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा आदित्य, अब हमें बताइए, स्मॉल आईएनसी का वेरीफाइड बैच फर्स्ट मराठी कम्युनिटी को मिला, क्या रिएक्शन था जब आपको ये पता चला?
3: वेल योगिता, इट वाज अ रियली मेसमराइजिंग मोमेंट फॉर मी। मकर संक्रांति का दिन था, 15 जनवरी 2019, वॉज अ मेमोरेबल डे फॉर मी। मैं और मेरी टीम बैकएंड पे ऑलमोस्ट 6-7 महीने से उस पे काम कर रहे थे। वी हैड लॉट ऑफ करेस्पॉन्डेंस एंड लॉट ऑफ प्रिपरेशंस उस पे पूरे एडमिन टीम ने दी थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उस मैडेज को हासिल करने के लिए हम लोग ऑफिस को भी छुट्टी मार के जाते थे, प्लान करने के लिए कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। उसी टाइम पे हम लोगों ने टू शो दैट वी हैव अ कैपेबिलिटी, हम लोगों ने वेबसाइट बुक की थी, वेबसाइट डिजाइनिंग शुरू किया था। उसी टाइम पे हम लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था टू शोकास, कि हम लोग सिर्फ स्म्यूल पे ही नहीं बल्कि स्म्यूल के बाहर भी हम हमारी ताकत आजमा सकते हैं, लोहा ले सकते हैं। लोहा ले सकते विल बी नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, बट हम हमारे धुन से कोई भी तार छेड़ सकते हैं। सो टू मेक पीपल अवेयर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुर तेज छेड़ीता, तो हम लोगों ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया था। इसका मतलब था स्ट्रमिंग दैट कॉर्ड, सुर तेज छेड़ीता। एंड बताने में ये भी गर्व होता है दैट फर्स्ट मराठी कम्युनिटी सुर तेज छेड़ीता थी स्मूल पे, एंड टिल डेट वी आर द ओनली मराठी कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब जिसके पास वो बैडेज आज तक बरकरार है। उसके बाद स्म्यूल ने बैडेजेस देना बंद किया था। आजकल तो स्म्यूल पे करके आप वेरीफाइड बैडेज ले सकते हो, बट सुर तेज छेड़ीता इज वन ऑफ ओनली फोर कम्युनिटीज फ्रॉम इंडिया एंड द ओनली मराठी कम्युनिटी जिसके पास वो बैडेज है। इट्स रियली ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी।
1: और आप बताइए एसटीसी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या नए शोज आने वाले हैं जो हमारे लिसनर्स मिस ना करें?
3: वेल वी हैव फ्यू ऑफ आवर मेलोडियस म्यूजिकल प्रोग्राम्स प्लान, जिसमें से मेघ मल्हार जो हमारा श्रावण स्पेशल प्रोग्राम है, इसमें हिंदी और मराठी गाने कैरोके पे करने वाले हैं हम थाने में, विच इज ऑन 16th of August। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा हट के एक प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। 14 सितंबर को हमारा प्रोग्राम होने वाला है, अगेन इट्स अ कैराओके शो जिसका नाम है चुरा लिया है ट्यून ने जो दिल को। जो थीम आज का प्रोग्राम है, जो हमारा ये शो है आज का, कि इंटरनेशनल म्यूजिक्स जो बॉलीवुड में कॉपी करके इम्प्रोवाइज करके प्रेजेंट किए गए थे, तो वैसे गाने हम प्ले करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एसटीसी इज अ गुरुकुल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग हर एक शो अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। थीम बेस्ड होता है या फिर जॉनर बेस्ड होता है, तो लोगों को थोड़ा सीखने मिले एंड पीपल ऑल्सो विल गेट इन टू द बुक्स ऑफ म्यूजिक एंड दे विल फाइंड दोज फिल्टर दोज सॉन्ग्स एंड प्रेजेंट। तो ये हमारा शो है जो हम गणपति के तुरंत बाद करने वाले हैं। उसके बाद वी आर प्लानिंग फॉर अ लाइव शो विथ लाइव म्यूजिशियंस, जो कि आरडी बर्मन किशोर कुमार इस थीम पे होने वाला है, जिसके डेट्स अभी तक हमने डिसाइड की नहीं किए हैं। बट द ड्रीम प्रोजेक्ट दैट आई ऑलवेज से कि हमें कालिदास में एक फंड रेजिंग शो करना है, जहां पे हमारा प्लानिंग चल रहा है दैट वी लुक फॉर द इन्वेस्टर्स, वी लुक फॉर द स्पॉन्सरर्स एंड एडवर्टाइजर्स एंड वी इवेल्युएट एंड वी फिल्टर गुड सिंगर्स अलॉन्ग विद गुड म्यूजिशियंस जो आके परफॉर्म करे। इट विल बी अ टिकटिंग शो और फंड जो भी रेज होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अरेंजमेंट कॉस्ट निकाल के जो भी फंड्स बचेगा वो हम एनजीओस को डोनेट करना चाहते हैं। तो दिमाग में फिलहाल एनजीओस की अगर बात करें तो अवा फेडरेशन है जो आर्मी विडो वेलफेयर के लिए काम करती है, या फिर सिर्फ करके एक एनजीओ है जो सियाचिन में हमारा ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन प्लांट है, उसको फंडिंग करती है, या फिर मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे एनजीओ है जिनको जो फंड रेजिंग के लिए काम करते हैं। ऐसे काम के लिए मुझे अपना समय देना है और मेरा टैलेंट मुझे वहां पे लगाना है। सो या दीज आर माई अपकमिंग प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स विथ सुर तेज छेड़ीता इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट।
0: अच्छा प्राजक्ति, अब आप बताइए, अगर मैं पूछूं कि आपका 5 साल का ड्रीम रोड मैप क्या है, तो आप क्या कहेंगी?
2: 5 साल का ड्रीम रोड मैप जो है, तो मैं यहाँ पे यही बताना चाहूंगी कि सुर तेज छेड़ीता के जो भी रेगुलर शोज अभी फिलहाल हो रहे हैं वो हम ऐसे ही कंटिन्यू करें और उसमें आगे बढ़े, और ये जो ब्रांड है सुर तेज छेड़ीता का वो एक प्रॉमिसिंग ब्रांड बने जहाँ पे लोग हमें 100% ट्रस्ट कर सके और हम उनके एक्सपेक्टेशन को उसी ताकत से डिलीवर कर पाए। तो आगे जाके जब आज हम इस ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं कि सुर तेज छेड़ीता के इवेंट्स शोज हम ला रहे हैं, आगे जाके ऐसा हो कि इस ब्रांड की वजह से हमें लोग पहचाने कि हाँ यही है सुर तेज छेड़ीता के प्रोपराइटर एंड फाउंडर।
0: कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: डाइसेप्ट हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर, काले अंगूर के रस, शहद, आंवला, नीम, तुलसी और शिकाकाई के गुणों से भरपूर, बालों को मजबूत और चमकदार बनाए, आपके बालों को झड़ने से रोके, बाल बने मुलायम, रेशम से लहराए।
1: बालों की क्या फिकर है।
2: नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, आवाज की दुनिया के मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हाशी सेन गुप्ता चौधरी है और मैं मुंबई से हूं। मैं जयपुर रेडियो की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उनकी टीम ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आज मैं आप सबके सामने रूबरू हुई हूं। कोशिश करूंगी कि आज थोड़ा बहुत अपने बारे में कुछ कह सकूं, कुछ बता सकूं। मैं करीबन 15 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रही हूं और जाक फार्मा लैब प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूं। यहां पर हम डाइसेप्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें हैंड रब डिसइंफेक्टेंट्स, हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, एयर फ्रेशनर्स, बाथ सॉल्ट, शैम्पूज, शावर जेल्स, हेयर कंडीशनर्स और आयुर्वेदिक रेंज ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स, ऐसे तरह तरह के बनाते हैं हम।
3: चलिए अब थोड़ा सा तड़का लगाते हैं, एक्सटेंडेड रैपिड फायर। इसमें आप दोनों को सवालों का क्विक क्विक जवाब देना होगा, बिना सोच समझ के।
4: रेडी।
5: चलो कुछ हो जाए रैपिड फायर, एकदम धमाकेदार।
6: तो आदित्य, ये रहा आपके सामने आपका पहला सवाल। देखिए, ज्यादा टाइम नहीं देना है, रैपिड फायर राउंड है, जो मन में आए फटाफट आंसर देना है, ठीक है? तो आपका पहला सवाल, आपका ऑल टाइम फेवरेट बॉलीवुड सॉन्ग कौन सा है?

0: अच्छा, वो हॉलीवुड सॉन्ग बताइए जिसे बॉलीवुड ने कॉपी करके अच्छा बनाया।
1: तो सॉन्ग है चुरा लिया है तुमने चतुर को, नजर नहीं चुराना सनम।
2: अच्छा आदित्य, आप हमारे लिसनर्स को बताइए, ये ऐसा मोमेंट जब स्टेज पे कभी टेक्निकल ब्लंडर हुआ हो।
3: 2019 में हमारी स्म्यूल मीट थी एंड उस टाइम पे मुंबई में धुआंधार बारिश हुई थी। उस टाइम पे हमारे साउंड टेक्नीशियन जो थे उनकी गाड़ी अटक गई थी, जिसमें से हमारा बेस आने वाला था और वो आ नहीं पाया बिकॉज ऑफ वाटर लॉगिंग एट मुलुंड। तो हम लोगों ने जो है वो दो टॉप्स पे ही पूरा इवेंट किया था। बट यस, साउंड सिस्टम या फिर हमारे साउंड प्ले करने वाले जो हमारे साउंड दादा थे श्रीकांत बुआ जी, वो इतने सीजन थे कि उन्होंने वो टेक्निकल एरर लोगों को समझने आने का मौका ही नहीं दिया।
0: फेवरेट इंडियन प्लेबैक सिंगर।
1: वैसे तो बहुत सारे हैं, फिर भी मैं कहना चाहूंगी किशोर जी और आशा जी, और लेटेस्ट में अगर बताना चाहूँ तो यस सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल।
2: नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड फॉर एसटीसी कम्युनिटी।
3: ताल वेगा, दैट इज रिदम एट स्पीड।
0: इफ नॉट म्यूजिक, आप क्या करते?
1: वैसे म्यूजिक तो मेरी जान है, बट अगर म्यूजिक नहीं रहता तो डेफिनेटली मैं वीडियोग्राफी में जाती हूँ, क्योंकि लोगों के स्पेशल मूवमेंट या स्पेशल एक्सप्रेशंस कैच करने में बहुत अलग ही मजा आता है।
2: दैट्स इंटरेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर आदित्य, कॉफी और चाय बिफोर परफॉर्मेंस आप क्या प्रेफर करेंगे?
3: वेल योगिता, अगर ऑफर कर रही हो तो आई विल से ओल्ड मॉन्क रम, बट फिलहाल मैं बोलूंगा कि ठीक है कॉफी। ओके।
0: एक गाना जो आप अपने शादी में जरूर बजाएंगे।
1: वैसे शादी तो हो चुकी है, बट हाँ अगर एनिवर्सरी होती तो डेफिनेटली ये गाना बजता। सपने में मिलता है ओ मुंडा मेरा, सपने में मिलता है।
2: वेल दैट्स नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य फेवरेट रेट्रो म्यूजिक कंपोजर कौन है आपको बताइए?
3: आरडी बर्मन, नाम ही काफी है।
0: एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिसे आप एसटीसी स्टेज पे लाना चाहेंगे। बताइए।
1: वैसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो अभी कोई दिमाग में नहीं है, बट यस, क्राउन ऑफ एसटीसी जो हमारी अंकिता सिन्हा जी हैं, उनके लिए हम एक लाइव कॉन्सर्ट जरूर प्लान करने का सोच रहे हैं और उनको मैं स्टेज पे जरूर लाना चाहूंगी।
2: एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीसी का मोस्ट इमोशनल मोमेंट।
3: पूरे एसटीसी का मोस्ट इमोशनल मोमेंट वाज 15 जनवरी 2019, जिसे कि हमारा वेरिफिकेशन डे, वो हमारा सबसे इमोशनल मोमेंट था बिकॉज हमारे सबके मेहनत फल रही थी उस दिन एंड वी वर रिकग्नाइज ग्लोबली।
0: फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
1: वैसे तो फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेलन और चम्मच है, उसका भी म्यूजिक में यूज कर लेती हूँ कभी कभार। बट उसके अलावा पियानो और गिटार मुझे बहुत पसंद
2: दैट्स फनी। ओके आदित्य, आप बताइए आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन इन म्यूजिक कौन है?
3: आई वुड से माई सिंगिंग गुरु इज माई मॉम ऑलवेज। माई इंस्पिरेशन इज माई मॉम बिकॉज मम्मी अपने टाइम की सितारिस्ट थी, शी हैज लर्न सितार, तो मेरे लिए वो सिंगिंग इज अ गर्भ संस्कार आई वुड से।
0: आपकी प्लेलिस्ट का गिल्टी प्लेजर सॉन्ग।
1: गिल्टी प्लेजर सॉन्ग, यस, माधुरी दीक्षित का एक बहुत ही टेम्प्टी सॉन्ग है, चोली के पीछे क्या है। इट वॉज माई गिल्टी प्लेजर सॉन्ग।
2: क्या बात है प्रजति, दैट वन इज माई गिल्टी प्लेजर सॉन्ग ऑल्सो। वेरी फनी। आदित्य आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ड जो आपको डिफाइन करता है।
3: टेढ़ा इंसान।
2: एंड आई अग्री विद दैट। तो गाइस, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड, मजा आ गया आप लोगों के साथ खेल के। और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स ने हमसे एक रिक्वेस्ट किया है कि आप दोनों एक छोटा सा अनप्लग परफॉर्मेंस करें। क्या हम लकी हो सकते हैं कि हम सुनने मिलेगा हमको यहाँ पे इस शो पे लाइव?
1: जी बिल्कुल योगी, हम एक रेट्रो क्लासिक लेते हैं जो थीम के मूड को मैच कर पाए।
3: जी श्योर, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये रहा गाना।

0: बस यही है असली मैजिक जो एसटीसी बनाता है, सुर जुनून और प्यार का कॉम्बो, लीथल कॉम्बो।
1: और अब सुनते हैं एक ऐसा गाना जो बॉलीवुड ने हॉलीवुड से इंस्पायर होके आइकॉनिक बना दिया, हमारे स्टार गेस्ट आदित्य और प्राजक्त की आवाज में। गाना है गुलाबी आंखें।

0: Radio.
1: Nostalgia segment on replay.
2: वेलकम बैक दोस्तों, ऑन करो बात हाशी और योगी के साथ, ओनली ऑन जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमारे शो के सबसे फिल्मी और नॉस्टैल्जिक कॉर्नर का, जहां हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे म्यूजिक जमाने में जो न सिर्फ हमें गाने सुनाता है बल्कि हमें सपने भी दिखाता है। और क्योंकि आज का थीम है बजेगा वही बस तड़का नया, हम ला रहे हैं एक ऐसा सॉन्ग जो पुराना भी है, नया भी और दिल को छू लेने वाला भी।
3: बिल्कुल योगी, मैं बात कर रही हूँ 90s के

0: करार।
1: जी हाँ, बाय अनामिका। अरे याद है वो दिन जब टीवी पर म्यूजिक चैनल्स आते थे और हम एकदम काउंटडाउन के लिए वेट करते थे। कोई मोबाइल ऐप नहीं था, कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं था, बस पूरा वीडियो एंजॉय करने के बाद हम खुश हो जाते थे।
0: चलिए हम आपसे कुछ फन फैक्ट शेयर करते हैं जो शायद आपको पता ना हो। कहीं करता होगा 90s के टॉप इंडी पॉप एल्बम्स में शामिल था और एमटीवी पर ये सॉन्ग लगातार चलता रहता था।
1: अनामिका के इस सॉन्ग का शूट गोवा के बीच और एक हेरिटेज पोर्तुगीज स्टाइल विला में हुआ था, उस टाइम के लिए एक एकदम हट के लोकेशन।
0: इस गाने का म्यूजिक अरेंजमेंट एक सॉफ्ट रॉक प्लस इंजन स्ट्रिंग्स का फ्यूजन था जो उस टाइम पे एक फ्रेश और मॉडर्न साउंड माना जाता था। और हाँ, इस सॉन्ग ने म्यूजिक वीडियोस को एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट भी दिया था। यहाँ सिर्फ गाना नहीं, एक छोटी सी लव स्टोरी चलती थी स्क्रीन पर।
1: वाह योगी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सॉन्ग हमारे आज के थीम से परफेक्टली कनेक्ट होता है। बजेगा वही बस तड़।

0: अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं एक 90s का इंडी पॉप गाने की लाइन गाऊंगी और हाशी को गेस करना होगा गाना कौन सा है। रेडी हाशी?
1: अरे बेरी, तो मैं हमेशा रहती हूँ योगी, लेकिन तुम्हारे हिंट्स जो होते हैं ना, जरा सा ट्रिकी होते हैं, कभी कभी समझ नहीं आता।
0: तो ये रहा आपका पहला हिंट। ओके, मैं अंतरे से गाऊंगी, आपको गाना पहचाना है। ओके, तो अंतरा ये है इस गाने का। क्या हुआ कि अगर मिल न सके हम, क्या हुआ कि मेरे वादों में ना दम।
1: नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा गाना है ये?
0: तो दोस्तों, क्या आप भी खेलेंगे हमारे साथ? इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए करो बात हाशी और योगी के साथ को। कमेंट कीजिए कौन सा सॉन्ग था जो मैंने गाया, और अपने फेवरेट 90s इंडी पॉप ट्रैक्स के नाम लिखिए। हो सकता है हम अगले एपिसोड में आपका सॉन्ग प्ले करें, है ना?
1: दोस्तों याद रखिए, जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान, और ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, ये हमारा प्रॉमिस है कि आपकी कहानी आपकी पसंद हमारे शो का हिस्सा बनेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम रेडियो पर आए तो हमें DM जरूर कीजिएगा या अपने डेडिकेशंस भेजना न भूलिएगा।
0: तो बस दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। 90s का एक जेम जो आपके दिल को छू लेगा, अनामिका का कहीं करता होगा गाना। एंजॉय कीजिए, यादों में खो जाइए, और याद रखिए, बजेगा वही बस तड़का नया।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कर्मोपाशी और योगी के साथ, और अब आ गया है हमारे शो का सबसे प्यारा सेगमेंट डेडिकेशंस वाला दिल से कॉर्नर। यहाँ हम बजाते हैं वही गाने जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके दिल की बात हम तक आती है और हमारी आवाज के साथ पूरे जयपुर रेडियो पर गूंज जाती है।
1: बिल्कुल, और आज तो स्पेशल डबल ट्रीट है क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आदित्य और प्राजक्ति डोंगरसनी, सूर तेज छिड़ता के फाउंडर और प्रोप्राइटर, जो म्यूजिक के असली एम्बेसडर्स हैं। आज के डेडिकेशन हम मिलके सुनाएंगे, मिलके बात करेंगे और मिलके सेलिब्रेट करेंगे।
0: तो चलिए शुरू करते हैं पहला डेडिकेशन। ये आया है जयपुर से शिवानी का, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड रूपल के लिए भेज रही है सॉन्ग पहला नशा। शिवानी का कहना है कि रूपल से उनकी दोस्ती भी एकदम 90s फिल्म की तरह शुरू हुई थी।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कर्पाधाशी और योगी के साथ, और अब आ गया है हमारे शो का सबसे प्यारा सेगमेंट डेडिकेशंस वाला दिल से कॉर्नर। यहाँ हम बजाते हैं वही गाने जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपके दिल की बात हम तक आती है और हमारी आवाज के साथ पूरे जयपुर रेडियो पर गूंज जाती है।
1: बिल्कुल, और आज तो स्पेशल डबल ट्रीट है क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आदित्य और प्राजक्ति डोंगरसने, सूर तेज छिटता के फाउंडर और प्रोप्राइटर, जो म्यूजिक के असली एम्बेसडर्स हैं। आज के डेडिकेशन हम मिलके सुनाएंगे, मिलके बात करेंगे और मिलके सेलिब्रेट करेंगे।
0: तो चलिए शुरू करते हैं पहला डेडिकेशन। ये आया है जयपुर से शिवानी का, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड रूपल के लिए भेज रही है सॉन्ग पहला नशा। शिवानी का कहना है कि रूपल से उनकी दोस्ती भी एकदम 90s फिल्म की तरह शुरू हुई थी।

0: वाह, पहला नशा। सुनते ही कॉलेज के और स्कूल के वो दिन याद आ गए जब हम म्यूजिक के लिए खुद छोटे छोटे महफिलें जमाया करते थे।
1: हाँ, और इसी तरह के कनेक्शन हमारे रिश्ते को स्पेशल बनाते हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए लोगों की कहानियाँ।
2: तो चलिए सुनते हैं अगला डेडिकेशन। अगला डेडिकेशन आया है मुंबई से राज का, जो अपनी वाइफ पूजा के लिए भेज रहे हैं, तुम मिले। राज ने कहा है कि ये गाना उनका रेन ड्राइव एंथम है। आदित्य और प्रजति, आप बताइए, आप दोनों का कोई स्पेशल कपल सॉन्ग है?
3: अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों का गाना है ना, कांटी।

0: और अब एक डेडिकेशन आया है पुणे से आरव का, जो अपने स्म्यूल सिंगिंग ग्रुप के लिए सिफारिश वाला जो गाना है। जी हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना, वो गाना है
1: चांद

0: दोस्तों देख रहे हो ना, म्यूजिक का जादू सिर्फ गाने तक सीमित नहीं होता, ये हमें लोगों के दिल तक ले जाता है। आदित्य और प्राजक्ति, आज के डेडिकेशन के बारे में आपका क्या कहना है?
1: मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सुर तेज श्रेता का भी यही मिशन है, चाहे वो लाइव इवेंट हो या ऑनलाइन कॉन्सर्ट। हम चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट्स हमारे पास उनकी कहानी लेके आए और एक याद लेके जाए, एंड दैट मेमोरी शुड बी द लाइफ टाइम मेमोरेबल मोमेंट फॉर देम।
2: और ये जो बजेगा वही बस तड़का नया का कंसेप्ट है, ये बिल्कुल एसटीसी के स्टाइल का है, पुराने प्यार पुराने सुर लेकिन नई ताजगी के साथ।
3: चलिए दोस्तों, अब आखिरी डेडिकेशन आया है दिल्ली से मीनल का, जो अपने म्यूजिक टीचर के लिए भेज रही है।

लिए जाए। क्या मस्त गाना है मीनल। और मीनल का कहना है कि म्यूजिक उनके लिए एक दुआ है। जी हाँ, ये बात तो सच है, म्यूजिक सबके लिए एक दुआ है, एक बून है हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जज्बे के लिए और हम सभी को एक इंस्पिरेशन देने के लिए।

0: तो बस फिर दोस्तों, इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम आज का सफर यही खत्म करते हैं। आदित्य और प्राजक्ति, आप दोनों का शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और म्यूजिक का मैजिक हमारे लिसनर्स के साथ बांटा।
1: थैंक यू जयपुर रेडियो, हशी, योगी और सारे लिसनर्स, हमारे लिए ये एक यादगार शाम रही थी।
2: हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमेशा म्यूजिक के साथ जुड़े रहेंगे।
3: तो दोस्तों, याद रखिए, जयपुर रेडियो आपकी आवाज, आपकी पहचान। हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, करो बात हाशी और योगी के साथ। अपने डेडिकेशंस भेजिए, हमें डीएम कीजिए और शायद अगले एपिसोड में हम आपका नाम यहीं ले।
0: और अब दोस्तों, शो एंड करते हैं एक परफेक्ट।
4: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले, हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का, कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: नरगिसे साहिर हो तुम, नूर नजर हो, जिसे देखकर ही खो जाए ऐसा असर हो। पुर नूर हो गया जो भी मिला एक बार तुमसे, मैं तुम्हारा काफिया और तुम मेरी बहर हो। अपने जमाने की मशहूर अदाकारा नरगिस, जिन्हें सिनेमा की क्वीन भी माना जाता है, अपनी सौम्यता, आत्मविश्वास और सबसे ज्यादा अपनी खूबसूरत आंखों के लिए जानी जाती थी। लोगों की माने तो नरगिस के बाद शायद ही कोई अदाकारा इतनी खूबसूरत आंखों वाली फिल्मों में आई होंगी। नमस्कार, वड़कम, सत श्री अकाल, खम्बा खड़ी। मैं तनुजा मुंद्रा, आपकी दोस्त और आज के प्रोग्राम की होस्ट, तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ आई हूँ प्रस्तुत करने दास्ताने नरगिस, नरगिस की प्रेम कहानी और उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं

चोरी चोरी का ये खूबसूरत नगमा अपनी सुरीली आवाजों में प्रस्तुत किया सूर्य रेखा जी ने और संजय गुप्ता जी ने। फातिमा राशिद और नरगिस, जी हाँ, नरगिस का असली नाम था फातिमा रशीद। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 6 साल की कच्ची उम्र से ही कर दी थी। उस दौर में फिल्म तलाश इश्क में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस नरगिस ने पर्दे पर दस्तक दी और उनके इस रूप को लोगों ने बहुत सराहा भी और धीरे धीरे वो अपने पैर फिल्म इंडस्ट्री में जमाने लगे। बहुत ही कम समय में उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी। यहां तक कि 1940 से 1960 के दशक में नरगिस को बॉलीवुड की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस भी कहा जाने लगा था। चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत प्रेम गीत जिसके बिना किसी भी युगल की प्रेम कहानी अधूरी सी है।

फिल्म का नाम श्री 420, गायक मन्ना डे और गायिका लता मंगेशकर। यहाँ इस गीत को स्वरबद्ध किया MD त्यागी जी ने और उनका साथ देने का सौभाग्य मिला मुझे यानी तनुजा मुंद्रा को। चलिए हमको आगे बढ़ाते हैं। प्रेसी अपने प्रियतम से पहली बार मिल रही है और चंदा मामा को कुछ उल्हाना दे रही है, तो चलिए सुनते हैं प्रेसी की गुहार।

फिल्म आवारा का ये खूबसूरत गीत प्रस्तुत किया डॉक्टर आदेश सक्सेना ने और उनका साथ दिया ज्योत्सना शर्मा जी ने। अगर तुम चांद होते तो मैं रोशन रात बन जाती, अगर तुम चांद होते तो मैं रोशन रात बन जाती, अगर होते कमल तो बन सबा खुशबू को बिखराती, जो होते ख्वाब तो पलकों को मैं खोलने ही ना पाती, मगर तुम तो हो वो पहेली जिसे मैं बूझ ही ना पाती। जी हाँ, हम सब ने बचपन में ये खेला जरूर खेला होगा, बूझो तो जाने। अगला गीत लेके आ रहा है कुछ पहेलियां, आप भी बूझने का प्रयत्न करें।

0: बोलो क्या बोलो ना
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो आपकी आवाज आपकी पहचान। दोस्तों जूही सिन्हा ने अपनी मधुर आवाज में आपसे कुछ पहेलियां पूछी। सच सच बताइएगा आप कितनी पहेलियों का उत्तर बूझ पाए। बेहतरीन अदाकारा नरगिस और उनके जीवन साथी सुनील दत्त। बात उस समय की है जब सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी का काम किया करते थे। तब एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्हें रेडियो के लिए नरगिस का इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया। तब तक नरगिस बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो चुकी थी और राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी भी खासी हिट हो चुकी थी। इंटरव्यू के दौरान अपने सामने नरगिस को बैठा देख सुनील दत्त बेइंतहा नर्वस हो गए और उनसे एक भी सवाल ना पूछ सके। तो ये थी पहली मुलाकात सुनील दत्त और नरगिस जी की। तो सुनते हैं अगला गीत दिल की गिरह खोल दो।

वाह, मिश्री से भी मीठी आवाज वीरेन जी, और उस पर ये खूबसूरत गीत दिल की गिरह खोल दो। फिल्म का नाम रात और दिन। नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात विमल रॉय की फिल्म दो बीघा जमीन के सेट पर भी हुई। नरगिस वहां विमल रॉय से मिलने गई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान जब सेट पर अचानक आग लग गई तो उस समय नरगिस उस आग में फंस गई थी, तो अपनी जान की परवाह न करते हुए सुनील दत्त ने उन्हें बचाया और यहीं से दोनों करीब आने लगे। दोनों ने 1958 में शादी कर ली और इस शादी से पहले नरगिस ने अपना धर्म परिवर्तन भी किया। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। करीब 10 साल के बाद अपने भाई अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन के कहने पर नरगिस ने फिल्म रात और दिन में काम करना स्वीकार किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पहला मौका था जब किसी अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। श्री 420 का एक और खूबसूरत नगमा, रमैया वस्ता भैया।

रमैया वस्तावैया। इस खूबसूरत गीत को अपनी मधुर आवाजों से सजाया मनु जी मृदुल ने और उनका साथ दिया अंजलि जी ने। दोस्तों, पत्रकार मधु जैन ने अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में इस बात का जिक्र किया है कि जब राज कपूर आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और आरके स्टूडियो को बेचने की नौबत आ गई थी, तब नरगिस ही तो थी जिन्होंने अपने सोने के कंगन बेच आरके स्टूडियो को बिकने से बचा लिया था। किताब में यह भी बताया गया है कि राज कपूर नरगिस के बारे में कहते थे, मेरी बीवी मेरे बच्चों की माँ है, मगर मेरी फिल्मों की माँ नरगिस है। समय ऐसा था भी था जब राज कपूर और नरगिस की प्रेम गाथाओं से फिल्मी गलियारे गूंजा करते थे। धीरे धीरे ये प्रेम कथा धूमिल हो चली थी और नरगिस जी को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि राज कपूर अपनी बीवी बच्चों को कभी ना छोड़ेंगे और ना ही वे अपने पिता की खिलाफत कर सकेंगे, जिसके चलते नरगिस जी ने राज कपूर को छोड़ने का निर्णय ले लिया। शायद उस समय नरगिस के मन में ये गीत जरूर आता होगा, यूं हसरतों के दाग।

फिल्म अदालत का ये बेहतरीन नगमा अपनी मधुर आवाज से सजाया संजय हारने जी ने। कहीं पर शाम ढलती है, कहीं पर रात होती है, कहीं पर शाम ढलती है, कहीं पर रात होती है, अकेले गुमसुम से रहते हैं, न किसी से बात होती है। तुमसे मिलने की आरजू दिल बहलने नहीं देती, तन्हाई में आंखों से रुक रुक कर बरसात होती है। तन्हाई का जिक्र हुआ है तो चलिए सुनते हैं ये शाम की तन्हाई।

वाह सज्जाद जी, आपने तो समा ही बांध दिया। नरगिस पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वालों में वह प्रथम अभिनेत्री थी। मुंबई में बांद्रा में उनके नाम पर एक सड़क भी है। हर साल हो रहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त अवार्ड भी दिया जाता है। नरगिस जी की कुछ फिल्में जैसे मदर इंडिया, अंदाज, अनहोनी, जोगन, आवारा, रात और दिन, अदालत, घर संसार, लाजवंती, परदेसी, चोरी चोरी, जागते रहो, श्री 420, आहा और ये फहरिस्त बहुत लंबी है। चलिए सुनते हैं अदालत फिल्म का एक और खूबसूरत गीत, जमी से हमने आसमां पर।

इस बेहतरीन नगमे को अपने सुमधुर आवाजों से सजाया स्मिता और लक्ष्मी जी ने। अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सुखी थी और बड़े प्रेम के साथ अपने छोटे से संसार जिसमें उनका पुत्र संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर डिटेक्ट हुआ। 1981 में वो हमें छोड़कर सदा के लिए ईश्वर के चरणों में चली गईं। बीमारी बहाना बनी उन्हें हमसे दूर करने का। चलिए सुनते हैं, जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए।

0: बेहतरीन गायकी इंदिरा जी, समय आ चला है अलविदा कहने का। इन चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आ गया फिर वक्त रुखसत आखिर आज, आ गया फिर वक्त रुखसत आखिर आज, चल पड़े लिए अधूरी हसरत हम फिर आज। आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर रेडियो को तहे दिल से शुक्रिया, उन्होंने हमें ये खूबसूरत अवसर प्रदान किया। श्रोताओं, आपसे विनंती कि आप हमें जरूर बताएं आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। मैं तनुजा मुंद्रा मुंबई से आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, झूमते रहिए और गाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। तब तक के लिए शुभरात्रि, शब खैर, अपना ध्यान रखिए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं
2: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

हरे।

सावन आया, दूर गगन में बिजुरी चमके, दूर गगन में

0: सावन आया तुम ना आए,
1: सावन आया तुम ना आए। डॉक्टर जाया अनंत का हमने ये गीत सुना। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
3: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने

समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेतु दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल है, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्याशंकर

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठें खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठें खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाए तो एक चीज हमारे बीच स्वरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, MD त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मोंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
4: आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न तो कोई आरंभ है और न कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ भोर भई अब जाग